0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे योगेश शंकर का शहनाई पर बजाया गया राग नट भैरव। इसी के साथ स्वर रंजनी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा, जिसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है। एक रिपोर्ट।
2: 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। इस दिन देश उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने देश के विभाजन के दौरान जान गंवाई और अपने घरों से विस्थापित होने के लिए मजबूर हुए। यह दिवस आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की याद दिलाता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि यह व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेन हर 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल के सबसे नजदीकी स्टेशन हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जेपी नड्डा तथा सुब्रमण्यम जयशंकर कल हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृहमंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। मुंबई के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के कैडेटों ने शहर के फोर्ट क्षेत्र में मार्च निकाला। भोपाल में 350 से अधिक नावों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलोव न्यांती के बीच नई दिल्ली में कल द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक में भारत लाइबेरिया संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा तथा तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने क्षमता निर्माण और लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने पर भी जोर दिया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कल विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस नई उड़ान से विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा अम्मा मंदिर और वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ धाम के बीच तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस हवाई सेवा से दोनों धार्मिक शहरों के बीच यात्रा सुविधाजनक हो जाएगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में हथकरघा हाट हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। ये केंद्र भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को अनुभव करने, समझने

और उससे जुड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड में चमोली जिले के पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना स्थल पर कल भूस्खलन और पानी के रिसाव से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 14 लोग घायल हुए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सुरंग में 22 मजदूर फंसे थे, इनमें से 20 को बाहर निकाल लिया गया है और 2 मजदूरों की तलाश जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों को राहत और बचाव अभियान चलाने का निर्देश दिया है। आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि आपातकालीन संचालन केंद्रों से स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इस बीच मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 2026 was passed by the Parliament, with the Rajya Sabha approving it yesterday. In Uttarakhand, 6 people died and 14 sustained injuries following landslide and water seepage in an under-construction tunnel at a hydroelectric power project site in Chamoli district yesterday evening. According to the preliminary information, 22 workers were trapped inside the tunnel. 20 people have been brought out of the tunnel. Of them, 6 were declared dead, while 14 others have sustained injuries and are undergoing treatment at a nearby hospital. Squadron leader Bhavna Kant has scripted history by becoming the first women officer of the Indian Air Force IAF to qualify as a fighter combat leader at the Tactics and Air Combat Development Establishment, Gwalior. India emerged as the overall champions at the Commonwealth Fencing Championship by winning an impressive 35 medals after 4 days of competition held at Lagos in Nigeria. And that is the end of this news bulletin.
1: अब आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर 6:10 हुए हैं। ये वक्त है भक्ति संगीत और देशभक्ति से लबरेज कार्यक्रम वंदना का। एक बार फिर आप सबको नमस्कार, आप सबका स्वागत। एक नई सुबह, एक नई शुरुआत और साथ नई उम्मीदों की पूरी दुनिया। कहते हैं हर सुबह ईश्वर की तरफ से दिया गया एक नया अवसर है ये सुबह। तो बीते कल को जाने दीजिए और आज को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। मुस्कुराइए, क्योंकि आपकी एक मुस्कान किसी और की सुबह को और भी खूबसूरत बना सकती है। और इसी खूबसूरत सुबह की शुरुआत करते हैं इस देशभक्ति गीत से। कहते हैं सफलता हमेशा बड़ी छलांग लगाने से नहीं मिलती, कभी कभी हर दिन उठकर एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाने से भी सफलता हासिल हो जाती है।

क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह की सबसे खूबसूरत बात क्या होती है? ये कि हम फिर से शुरुआत करने का मौका मिलता है। कल कुछ अच्छा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आज बेहतर करने का अवसर आपके पास है। तो चलिए इस नई सुबह को ईश्वर के नाम से कुछ और पवित्र बनाते हैं।

कहते हैं जहां विश्वास होता है वहां रास्ते खुद ब खुद निकल आते हैं, और जहां सकारात्मक सोच होती है वहां मुश्किलें छोटी लगने लगती हैं। तो अपने मन से एक बात कहिए, मैं शांत रहूंगा, सकारात्मक रहूंगा और हर परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा।

सुबह सुबह अगर मन में तीन चीजें रख ली जाएं, कृतज्ञता, सकारात्मकता और विश्वास, तो पूरा दिन अपने आप में खूबसूरत लगने लगता है। आज जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद कहिए, और जो पाना चाहते हैं उसके लिए मेहनत कीजिए।

दूसरों को खुश करने के लिए नहीं बल्कि अपने कर्मों से खुद को बेहतर बनाने के लिए जिए। किसी की मदद कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, किसी को खुशी दे सकते हैं तो जरूर दीजिए, क्योंकि अच्छाई बांटने से कभी कम नहीं होती।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। 6:40 हुए हैं, आइए सुनते हैं चिंतन कार्यक्रम में रामप्रसाद बिस्मिल के विचार।
1: नमस्कार। रामप्रसाद बिस्मिल एक ऐसे क्रांतिकारी जो मात्र 30 वर्ष की आयु में फांसी के फंदे पर झूल गए। बहुभाषाविद, साहित्यकार, अनुवादक, इतिहासकार, महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ। 1915 में भाई परमानंद जी की फांसी का समाचार सुनकर राम प्रसाद ने ब्रिटिश साम्राज्य को समूल नष्ट करने की प्रतिज्ञा की और मात्र 19 वर्ष की अवस्था में क्रांतिकारी मार्ग पर अपना कदम बढ़ाया। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी। उन पुस्तकों से जो धन प्राप्त होता था उससे उन्होंने हथियार खरीदे। उनकी पुस्तकों में क्रांति का स्वर था, इसलिए अंग्रेज सरकार ने उन पुस्तकों को जब्त कर लिया। सितंबर 1920 को कलकत्ता अधिवेशन में उनकी भेंट लाला लाजपत राय से हुई। लाला जी ने उनकी लिखी हुई पुस्तकें देखी तो वह बहुत प्रभावित हुए। गांधी जी की अति उदारता से असहमति रखते हुए राम प्रसाद ने क्रांति का मार्ग चुना। अपने अभियान के लिए संसाधन जुटाने के लिए बिस्मिल और उनके साथियों ने सरकारी खजाना लूटा। 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर स्टेशन से बिस्मिल के नेतृत्व में जिन 10 लोगों ने उस रेलगाड़ी को लूटा, उनमें अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहड़ी, चंद्रशेखर आजाद, मम्मत नाथ गुप्त, मुकुंदी लाल, केशव चक्रवर्ती और मुरारी शर्मा जैसे लोग थे। ट्रेन जब काकोरी स्टेशन पर रुकी तो क्रांतिकारियों ने गार्ड के डिब्बे से खजाना लूट लिया। अगले दिन ये समाचार पूरी दुनिया में फैल गया। अंग्रेज सरकार ने उसकी छानबीन की और 26 सितंबर को बिस्मिल और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बिस्मिल मेनपुरी षड्यंत्र और काकोरी हत्याकांड जैसी अनेक घटनाओं में शामिल थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य बिस्मिल ने गिरफ्तार होने पर आगरा लखनऊ सेंट्रल जेल में उन्हें रखा गया, जहां उन पर उनके साथियों पर ब्रिटिश राज के विरुद्ध साजिश रचने का ऐतिहासिक मुकदमा चलाया गया। अपने जीवन के अंतिम दिन तक बिस्मिल ने गोरखपुर की जिला जेल में अपनी आत्मकथा का आखिरी अध्याय पूर्ण किया, माता पिता से अंतिम मुलाकात की और 19 दिसंबर 1927 को प्रातः बिस्मिल को फांसी दे दी गई। बिस्मिल का शव जब परिजनों को सौंपा गया तो उनकी अंतिम यात्रा में लाखों लोगों ने भाग लिया। राप्ती नदी के तट पर अंतिम संस्कार हुआ। इस घटना से आहत होकर भगत सिंह ने जनवरी 1929 में कीर्ति, जो पंजाबी पत्रिका थी, उसमें विद्रोही छदम नाम से लिखा कि फांसी पर ले जाते समय जोर से कहा था वंदे मातरम, भारत माता की जय, और शांति से चलते हुए बिस्मिल ने कहा था, मालिक तेरी रजा और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं और न मेरी आरजू रहे, जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा ही फिक्र और तेरी ही जुफ्त जू रहे। फांसी के तख्ते पर खड़े होकर बिस्मिल ने दोहराया था कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य का पतन चाहता हूं। महान क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल एक ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने कई कविताएं, गजल और पुस्तकें लिखी। उनकी एक गजल, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, क्रांतिकारियों का मंत्र बन गई। ऐसे महान क्रांतिकारी जिन्होंने अंग्रेजों को इस देश से भगाने में, इस देश को आजाद कराने में भूमिका निभाई, उनके प्रति इस देश की जनता के अंदर बहुत सम्मान है। ऐसे महान क्रांतिकारी के प्रति शत शत नमन।
0: चिंतन कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राम प्रसाद बिस्मिल के विषय में। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। हम अपने सुनने वालों को बता दें, आज सुबह 7:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। इसमें कुछ फिल्मी गीत आपको सुनवाए जाएंगे। आज ही आप सुन सकते हैं संस्कृत वार्ता शाम 6:10 पर, और दिन में 1:10 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे फिल्म लम्हे के कुछ गीत। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं श्री श्रामचरित मानस से संगीत में पाठ।

पुत्र व्यूह की कल्पना ने महाराज दशरथ से मानो उनकी वाक शक्ति छीन ली है। उनके मन में एक ही विचार उमड़ घुमड़ रहा है कि जगत में चाहे उनका सुयश नष्ट हो जाए, पूर्व पुण्यों द्वारा अर्जित स्वर्ग भले ही ना मिले, बस राम किसी भी तरह उनकी आंखों से दूर ना हो। किंतु श्री राम को पिता के वचन के मर्यादा का पालन करने के लिए अपने वन गमन की बात अत्यंत तुच्छ सी लगती है। पिता से उनका अनुरोध है कि वे पुत्र स्नेह के कारण दुखी ना हों। इस पृथ्वी पर उस पुत्र का जीवन धन्य है जिसके आचरण से पिता को आनंद की प्राप्ति हो। वे पिता को धीरज बंधाते हैं कि उनकी आज्ञा का पालन कर शीघ्र ही लौट आवेंगे। उधर राम वन गमन के समाचार से अयोध्या नगरी में विषाद छा गया है। उसकी दशा ऐसी हो गई है जो जंगल की आग में झुलस गए पेड़ पौधों की होती है। जो भी ये समाचार सुनता है सिर धुनने लगता है। लोग कैकई के लिए अपशब्द कह रहे हैं जिसने भरे पूरे घर में आग लगा दी है, जिसने पत्ते पर बैठकर पेड़ को ही काट डाला है। कभी शायद सत्य ही कहते हैं कि स्त्री के मन की गति पकड़ में नहीं आती। जैसे आग सब कुछ भस्म कर सकती है, समुद्र में सब कुछ समा सकता है, उसी प्रकार अबला कहलाने वाली प्रबल स्त्री क्या कुछ नहीं कर सकती।

0: दृश्यन्ते। दिल्ली मेट्रो निगमेन निगदितं यत् एषः निर्णयः स्वतंत्रता दिवस समारोहे सहभागितायै आगच्छताम् विशेषातिथीनाम् आमन्त्रितानां सुगम गमनागमनाय गृहीतः। नाइजीरिया देशस्य लागोस नगरे चतुर्दिनानि यावत् आयोजितायां राष्ट्रमंडल प्रतिस्पर्धायां अत्युज्ज्वल प्रदर्शनेन सह भारतं 35 पदकानि स्वायत्ति कृतवत् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा, जिसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है। एक रिपोर्ट।
2: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। यह दिवस आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की याद दिलाता है। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कल विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में विभाजन की त्रासदी झेलने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर कल हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृहमंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। मुंबई के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के कैडेटों ने शहर के फोर्ट क्षेत्र में मार्च निकाला। भोपाल में 350 से अधिक नौकाओं पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि ये व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेन हर 30 मिनट के अंतराल पर चलेगी। लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल के सबसे नजदीकी स्टेशन है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलोव नयांती के बीच नई दिल्ली में कल द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा तथा तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने क्षमता निर्माण और लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने पर भी बल दिया। नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने कल विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस नई उड़ान से विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा अम्मा मंदिर और वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ धाम के बीच तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस हवाई सेवा से दोनों धार्मिक शहरों के बीच यात्रा सुविधाजनक बनेगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। ये केंद्र भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को अनुभव करने, समझने और उससे जुड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड में चमोली जिले के पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना स्थल पर कल भूस्खलन और पानी के रिसाव से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 14 घायल हो गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सुरंग में 22 मजदूर फंसे थे। इनमें से 20 को बाहर निकाल लिया गया है और 2 की तलाश जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी एजेंसियों को राहत और बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।

संगीतिका कार्यक्रम में आप सुन रही हैं अमृता जोशी के गाए भजन। आइए अब सुनते हैं स्वामी रायदास की रचना, बोल हैं दर्शन दीजिए राम।

आइए अब सुनते हैं एक और पारंपरिक रचना। मैया चलो दीना पार हमारे अंगना, आवाज अमृता जोशी की।

संगीतिका कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अमृता जोशी के गाए भजन। आपका साथ दिया था सितार पर अकील अहमद ने और तबले पर आपके साथ संगत कर रही थी पशुपतिनाथ। इसके साथ ही संगीतिका कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर 7:30 हुए जाते हैं। अब वक्त है कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग का। आज के इस कार्यक्रम में आपका साथ दे रहा है आप ही का दोस्त नवीन।

स्टूडियो में आने से पहले हम भी एक कसम लेकर आते हैं कि बहुत ही खूबसूरत गीतों और बहुत मजेदार बातों के साथ आपका स्वागत करेंगे, आपसे बातें करेंगे। अच्छा, कभी आपने जादू के बारे में सुना है या जादू कभी आपने देखा है? पता है ना, कब कौन सा जादूगर चिड़िया बना दे, कब कौन सा जादूगर चिड़िया उड़ा दे। जिंदगी एक जादू की तरह है, कब कौन सी खुशी आपके पास आ जाए और कौन सी खुशी आपके सामने से पुर रोके उड़ जाए। तो जो है उसको खूबसूरत तरीके से जिए, मुस्कुरा के जिए, क्योंकि ये पल दोबारा नहीं मिलेंगे। बहुत ही खूबसूरत गीत आपके लिए, फिल्म मन मंदिर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, राजेंद्र कृष्ण के लिखा गीत है, आवाज किशोर और लता की।

इन्हें ना बहुत जादूगर होती है, इन्हें संभाल के रखिए, क्योंकि अगर इनमें से कुछ बात निकल कर आ गई ना, तो फिर देखिए बात बहुत आगे तक बढ़ती है। शायर भी क्या खूब कहते हैं, आंखें बोलती हैं, वाकई आंखें बोलती हैं, लेकिन इन आंखों को ठीक रखना भी तो आपकी जिम्मेदारी है। और आंखों को ठीक रखने के लिए बहुत बेसिक सी चीज है कि सुबह सुबह आप फ्रेश एकदम निकलिए, घूमिए, घास के ऊपर टहलिए, अपनी आंखों का ख्याल रखिए और देखिएगा ये आंखें बोल देंगी। और जब ये आंखें बोलेंगी ना, तो बहुत कुछ कह जाएंगी किसी से। थोड़ी सी रोमांटिक बातें हो रही है ना, तो चलिए अब आपको हम मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में एक बहुत ही रोमांटिक गीत सुनवाने जा रहे हैं। शंकर जयकिशन का संगीत है, हसरत जयपुरी की कलम से ये शब्द निकले हैं। फिल्म बहुत ही शानदार फिल्म है, 1964 में बनी फिल्म जिंदगी का ये गीत मैं आपको सुनवाने जाऊंगा। राजेंद्र कुमार और वैजयंती माला ने इस गीत में एक्टिंग की है और खूबसूरत सा गीत आपके लिए है।

आँख शराबी तेरी है उसमें गुलाबी डोरे डोरे डोरे आँख शराबी तेरी उसमें गुलाबी डोरे शर्म के मारे दहके गाल ये गोरे गोरे गोरे गोरे शर्म के

0: जालू फैलाती कली आई हो तेजी सोचो तो जरा।
1: तो घर से निकलने से पहले आज थोड़ा सा सोच लीजिए कि मौसम कैसा होगा, आपको जो जो चीज़ें करनी है आपने उसकी एक लिस्ट बना ली है, और एट द एंड ऑफ द डे आप इन सब से कितना खुश हुए कितना दुखी हुए। तो एक लिस्ट बना लीजिए और उसी लिस्ट में कुछ और बातें ऐड कर लीजिए, क्योंकि आज का दिन बहुत खास है। जानते हैं हर दिन किसी न किसी एक खास व्यक्ति से जुड़ा होता है, और आज का दिन जिन व्यक्तियों से जुड़ा हुआ है उनमें नाम आता है अमृत राय, प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंधकार, समीक्षक और अनुवादक। आज इनका निधन हुआ था, आज इनकी पुण्यतिथि है, और आज ही पुण्यतिथि है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही चुलबुले कलाकार जिन्हें हम कभी नहीं भूल सकते, जिनके गीत, जिनकी अदाएं, जिनके ठुमके, जिनका मूड और जिनकी लचक आज भी हमारे गीतों में और हमारे साथ जिंदा है। मैं बात कर रहा हूं शमी कपूर की। आज ही के दिन उनका निधन हुआ था, तो आज का ये प्रोग्राम बिना उनके गीत के हम कैसे कैसे आगे बढ़ सकते। बहुत ही खूबसूरत गीत है फिल्म जंगली का, सुनते हैं, मोहम्मद रफी की आवाज़ है और शमी कपूर हैं इसमें,

किसी का एहसान लेना कितनी अच्छी बात है, कितनी बुरी बात है, ये तो आप ही जानते हैं। लेकिन अगर किसी से एहसान लिया है तो भाई उसे चुकाने की भी तो कोशिश करो ना। कुछ बातें, कुछ गीत, कुछ नगमे और कुछ वाकयात ऐसे होते हैं जो खुद ब खुद आपकी ज़िंदगी से जुड़ जाते हैं। ऐसे बहुत से वाकयात आपकी ज़िंदगी से जुड़े होंगे जिसमें ना चाहते हुए भी आपको किसी से थोड़ा सा फेवर लेना पड़ता होगा, है ना भाई। ज़िंदगी में फेवर बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि बिना इसके आप आगे बढ़ भी नहीं सकते। अगर सारी चीज़ें आप खुद ही कर डालोगे तो फिर दूसरों की ज़रूरत क्या है। बहरहाल वक्त अब मुझे बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रहा है, कह रहा है कि मुझे इस प्रोग्राम को यही वाइंड अप करना होगा। बहुत सी बातें करनी थी, बहुत से गीत सुनाने थे, लेकिन आपको एक बार फिर मोहम्मद रफ़ी की मखमली आवाज़ के साथ छोड़े जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं ये गीत आपको बेहद पसंद आएगा। इजाज़त दीजिए अपने दोस्त नवीन को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कि तुम्हारे गुड मॉर्निंग। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर 8 बजने को है। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में, फिर अंग्रेजी में और फिर उर्दू में।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। देश के बंटवारे के दौरान पीड़ा झेलने वाले लोगों की याद में आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। दिल्ली में अग्निशमन और कारागार विभाग में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को उपराज्यपाल की मंजूरी। आयु सीमा में भी मिलेगी छूट। उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन सुरंग में भूस्खलन और जल रिसाव से 7 श्रमिकों की मौत, 14 घायल। और पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कजाकिस्तान की एलेना राय बाकिना को हराकर कनाडा ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा, जिसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है। एक रिपोर्ट।
4: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। यह दिवस आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की याद दिलाता है। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और वैमनस्य को दूर करने तथा शांति, सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि हम विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद करते हैं। इतिहास का वो क्षण जिसने कई जिंदगियों को तहस नहस कर दिया, अपनों को खो दिया गया और असहनीय पीड़ा भी सहनी पड़ी। श्री मोदी ने कामना की कि ये दिन हमारे राष्ट्र में सद्भाव और भाईचारे को बनाए रखने के हमारे संकल्प को और मजबूत करेगा और हम सब मिलकर एक विकसित भारत के निर्माण की दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर कल हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृहमंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। भोपाल में आज एक तिरंगा रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली कोलार 6 लेन रोड पर मदर टेरेसा स्कूल के पास से शुरू होगी और इसमें लगभग 32 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। आयोजकों को रैली में 1 लाख से अधिक लोग शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी रैली में शामिल होंगे। यातायात, पार्किंग, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों और नौकरी

0: के इच्छुक उम्मीदवारों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इनकार कर दिया है तथा सीबीआई जांच और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय सीजीएल परीक्षा रद्द करने की अपनी मांगों को दोहराया है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन को और मजबूत करने के लिए कल तिरंगा यात्रा निकालने की भी घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
1: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 21 दिनों से जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ धरना दे रहे अभ्यर्थी स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर अपने आंदोलन को एक नया रूप दे रहे हैं। छात्र कल राजधानी रांची की सड़कों पर एक भव्य तिरंगा मार्च निकाल रहे हैं, जिसमें पूरे राज्य से हजारों युवाओं के जुटने की उम्मीद है। स्वतंत्रता दिवस समारोह और इस भारी छात्र विरोध को देखते हुए रांची जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। संवेदनशील इलाकों और छात्रों के तिरंगा मार्च के रास्ते पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। छात्रों की मांगे हैं 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को पूरी तरह रद्द किया जाए, पूरे मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच के आदेश दिए जाएं। सरकार राज्य के सीआईडी से मामले की जांच करा रही है और इस संबंध में जेपीएससी के एक पूर्व अध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम करकेट्टा।
0: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू होंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि ये व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेन हर 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल के सबसे नजदीकी स्टेशन है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने अग्निशमन सेवा में फायर ऑपरेटर और कारागार विभाग में वार्डर और मैट्रन पदों पर सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। गृह विभाग के आदेश में उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट का भी प्रावधान है। गृह मंत्रालय ने पहले ही सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में कांस्टेबल और राइफलमैन स्तर के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए हैं। उत्तराखंड में चमोली जिले के पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना स्थल पर कल भूस्खलन और पानी के रिसाव से 7 लोगों की मृत्यु हो गई और 14 घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी एजेंसियों को राहत और बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी के साथ बातचीत में आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि आपातकालीन संचालन केंद्रों से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।
2: टनल का कुछ पोर्शन धंस गया है, उसमें पानी आ गया था और पानी आने के कारण लगभग 30 से अधिक लोग थे, जिसमें से सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है। रेस्क्यू किए गए लोगों में 14 लोग जिंदा हैं और 7 को मृत घोषित किया गया है। वर्तमान में रेस्क्यू काम में थोड़ी सी बाधा हो रही है क्योंकि पानी लगातार आ रहा है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलो नियांती के बीच नई दिल्ली में कल द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा तथा तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कल विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस नई उड़ान से विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा अम्मा मंदिर और वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ धाम के बीच तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस हवाई सेवा से दोनों धार्मिक शहरों के बीच यात्रा सुविधाजनक हो जाएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए डिजिटल मुद्रा आज केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में शुरू की जाएगी। ये पहल भारत सरकार द्वारा कल्याणकारी वितरण में एक नए विकास का प्रतीक है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: यह पहल भारत सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में एक और कदम है। सब्सिडी वाले अनाज के भौतिक वितरण से लेकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT और अब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC के जरिए डिजिटल डिलीवरी तक। सूत्रों के अनुसार चंडीगढ़ देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश होगा जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों के लिए खाद्य सब्सिडी के लिए CBDC आधारित DBT को पूरी तरह से लागू करेगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री

0: जोशी विशेष अतिथि होंगे। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री निमुबेन जयंती भाई के अलावा केंद्र और राज्य के अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहेंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। ये केंद्र भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को अनुभव करने, समझने और उससे जुड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। ओडिशा में कम दबाव के क्षेत्र के कारण लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है। उत्तरी ओडिशा की कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस महीने की 20 तारीख के आसपास एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है।
2: उड़ीसा में कम दबाव वाले सिस्टम की वजह से लगातार हो रही बारिश से कई जगहों पर बाढ़ की हालत गंभीर हो गए हैं। भद्रक के अखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान 18.33 मीटर से ऊपर बह रही है और इसका जलस्तर लगभग 19.27 मीटर तक पहुंच गया है। भंडारी पोखरी समेत नदी के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आ गई है और कई इलाके अलग थलग पड़ गए हैं। चंपुआ में बाढ़ के पानी ने एक पुल को बह दिया है जिससे सड़क संपर्क टूट गया है। इसी महीने की 20 तारीख के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने केरलम के 6 जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट और पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में सूती के रघुनाथपुर में एक भयावह हमले में 4 से 11 वर्ष की आयु के 3 बच्चों की मौत हो गई है। आरोप है कि 21 वर्षीय एक व्यक्ति ने 4 बच्चों को अपने घर के एक कमरे में ले जाकर उन पर हसीये से हमला किया। और अब खेल समाचार। पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कनाडा ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। टोरंटो में फाइनल में कल 7वीं वरीयता प्राप्त स्वियाटेक ने दूसरी वरीयता प्राप्त एलेना रायबाकिना को सीधे सेटों में हराया। इस जीत के साथ इन्होंने सीजन का अपना पहला खिताब जीत लिया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद विशाल। संसद के मानसून सत्र का समापन आज सभी अखबारों की पहली खबर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, हंगामे के बीच धुला संसद का मानसून सत्र। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, न चर्चा न मंथन, सत्ता और विपक्ष की अड़ाअड़ी में बर्बाद हो गए जनता के 171 करोड़ रुपए। अमर उजाला लिखता है, संसद में हंगामे का ग्रहण, 19 बैठकों में 19 घंटे भी ना चल पाई लोकसभा। संसद सत्र से निराशा शीर्षक के साथ हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है, मॉनसून सत्र उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। बड़े अफसोस की बात है कि सत्र के दौरान हर दिन कार्यवाही बाधित हुई। प्रश्नकाल का ना होना सबसे बड़ी त्रासदी है। दिल्ली के लाल किला धमाकों की साजिश रचने में के बड़े खुलासे को भी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। दैनिक भास्कर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, लाल किला धमाकों में अलकायदा का था हाथ, स्लीपर सेल के जरिए रची थी साजिश। पैक्ड फूड पर चेतावनी लेबल को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का कड़ा रुख, हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। न्यायालय ने कहा, ज्यादा चीनी, नमक और फैट वाले पैक्ड फूड पर चेतावनी लेबल लगाने पर सरकार फैसला लेने में विफल रही तो खुद दिशा निर्देश जारी करेंगे। हरियाणा में महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप को 7 साल तक मिलेगी GST से छूट। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, राज्य मंत्रिमंडल ने हरियाणा स्टेट स्टार्टअप पॉलिसी 2022 में किए बदलाव, 25 लाख निवेश करने पर सरकार भी मिलाएगी इतनी ही रकम।
1: धन्यवाद मुकेश। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। देश के बंटवारे के दौरान पीड़ा झेलने वाले लोगों की याद में आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। दिल्ली में अग्निशमन और कारागार विभाग में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी। उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन सुरंग में भूस्खलन और जल रिसाव से 7 श्रमिकों की मौत, 14 घायल। और पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना को हराकर कनाडा ओपन टेनिस महिला सिंगल्स खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 80वें यौम आज़ादी से कबल आज शाम मुल्क के लोगों से खिताब करेंगी। आज मुल्क की तकसीम की हौलनाकी की याद का दिन मनाया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने फायर सर्विसेज और जेल महकमे में साबिक अग्नि

0: अमीरों के लिए 20% कोटे की मंजूरी दी है और उम्र की हद में रियायत दी गई है। उत्तराखंड के चमोली जिले में सिरे तामीर टनल में पानी के रिसाव और चट्टानों के टुकड़े गिरने के वाकये में 7 कारकुनों की मौत हो गई जबकि 14 जख्मी हुए। और कनाडा ओपन टेनिस में ईगा श्यांटेक ने एलेना रिबाकिना को हराकर खवातीन सिंगल्स का टाइटल जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 80वें यौम आज़ादी से कबल आज शाम मुल्क के लोगों से खिताब करेंगी। सदर जमहूरिया का ये खिताब आकाशवाणी के पूरे कौमी नेटवर्क पर शाम 7 बजे से नश्र किया जाएगा। दूरदर्शन के सभी चैनलों पर पहले ये खिताब हिंदी में टेलीकास्ट किया जाएगा और इसके बाद अंग्रेजी में होगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में इस खिताब के टेलीकास्ट के बाद दूरदर्शन के इलाकाई चैनलों पर इसे इलाकाई जबानों में नश्र किया जाएगा। इधर आकाशवाणी से भी सदर जमहूरिया का ये खिताब मुतालिका इलाकाई नेटवर्क पर रात 9:30 बजे इलाकाई जबानों में नश्र किया जाएगा। आज मुल्क की तकसीम की हौलनाकी की याद का दिन है। आज उन सभी लोगों को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है जिन्होंने साल 1947 में मुल्क की तकसीम के दौरान नाकाबिल तसव्वुर दुख और तकलीफ का सामना किया और अपनी जान कुर्बान कर दी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: तकसीम की हौलनाकी को याद करने के दिन के मौके पर कौमी राजधानी समेत मुल्क भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। मुल्क की तकसीम के सबब अपनी जान गंवाने वाले और अपने आबाई वतन से बेघर हुए लोगों को खराज अकीदत पेश करने और उनकी कुर्बानियों को याद करने के लिए हुकूमत ने साल 2021 में हर साल 14 अगस्त को यह दिन मनाने का फैसला किया था। यह दिन इस बात को यकीनी बनाता है कि आइंदा नस्लें आज़ाद भारत के वजूद में आने के वक्त हुए तशद्दुद के दौरान लोगों के दर्द और मुश्किलात को याद रखें। आज का दिन लोगों को माशरती तकसीम और इंतशार की लानत को ख़त्म करने और यकजहती समाजी हम आहंगी और लोगों को बाइख्तियार बनाने के जज्बे को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत की याद दिलाता है। मुल्क की तकसीम के सबब इंसानी तारीख की सबसे बड़ी नकल मकानी हुई जिससे तकरीबन 20 मिलियन लोग मुतासिर हुए। आज़ादी का जश्न मनाकर मुल्क उन लोगों को भी सलाम पेश कर रहा है जिन्होंने तशद्दुद के दौरान अपनी जानें कुर्बान कर दीं। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: तकसीम की हौलनाकियों को याद करने के दिन के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उन लोगों की हिम्मत और हौसले को याद किया जो मुल्क की तकसीम से मुतासर हुए थे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने मुल्क की तकसीम को तारीख का एक ऐसा लम्हा करार दिया जिससे लोगों की जिंदगियां बिखर गईं, खानदान उजड़ गए, लोगों ने अपने अजीजों को खो दिया और इंतहाई मुश्किलात का सामना किया। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि इसके साथ ही लोगों ने इस मुश्किल को बर्दाश्त किया और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू की, सख्तियों को कामयाबी में बदला और मुल्क की तरक्की में बेपनाह तआवुन पेश किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हर घर तिरंगा मुहिम के तहत आज भोपाल में एक बड़ी तिरंगा रैली का अहतमाम किया जा रहा है। ये रैली सुबह 10 बजे कोलार 6 लेन रोड से शुरू होगी और तकरीबन 32 किलोमीटर का फासला तय करते हुए संत नगर में ख़त्म होगी। इस रैली में 1 लाख से ज़्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी के रियासती सदर हेमंत खंडेलवाल भी इस रैली में शिरकत करेंगे। बारिश के इम्कान के मद्देनज़र रैली के लिए इंतजाम किए गए हैं। चूना भट्टी समेत कई मकाम पर सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। इन मकाम के जरिए मनुष्यात की लानत के खिलाफ नौजवानों में बेदारी पैदा करने के पैगाम की तशहीर की जाएगी। कल यौम आज़ादी पर दिल्ली मेट्रो की खिदमात पूरे नेटवर्क पर सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4:15 बजे शुरू हो जाएंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने कहा है कि यौम आज़ादी तकरीबात में शिरकत करने वाले खसूसी मेहमानों, मधु किए गए अफराद और आम लोगों की सहूलत की खातिर ये फैसला किया गया है। DMRC ने यह भी कहा है कि मामूल की खिदमात शुरू होने तक सभी लाइनों पर मेट्रो खिदमात आधे घंटे के वक्फे से चलेंगी। दिल्ली सरकार ने फायर सर्विसेज के शोबे में फायर ऑपरेटर ओहदों और जेल के महकमे में वार्डन और मेट्रन ओहदों पर सीधे भर्ती में साबिक अग्निवीरों के लिए 20% रिजर्वेशन की मंजूरी दी है। उम्र दाखिला के महकमे के हुक्म में अहल उम्मीदवारों के लिए उम्र की हद में रियायत भी दी गई है। ये कदम साबिक अग्निवीरों की बाजाबादकारी की मरकजी सरकार की पॉलिसी के ऐन मुताबिक है। उम्र दाखिला की मरकजी वजारत ने साबिक अग्निवीरों के लिए पहले ही जनरल ड्यूटी पर काम करने वाले कांस्टेबल और सभी मरकजी

0: पुलिस फोर्सेस, नीज, असम राइफल्स में राइफलमैन सतह पर 50% ओहदे रिजर्व कर दिए हैं। ग्वालियर में टैक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ ने फायर कॉम्बैट लीडर के तौर पर क्वालिफाई किया है। इस तरह उन्होंने भारतीय फजाइया की पहली खातून अफसर बनकर तारीख रकम की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारतीय फजाइया ने कहा कि ये एक तारीखी कामयाबी है जिससे पेशावराना महारत, जंगी समझबूझ और लीडर्स की हौसला अफजाई के तई फजाइया के अज़्म का इजहार होता है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। उत्तराखंड के चमोली जिले में एक पनबिजली प्रोजेक्ट के मकाम पर जेरे तामीर टनल में पानी के रिसाव और चट्टानों के टुकड़े गिरने के वाकये में 7 कारकुनों की मौत हो गई जबकि 14 जख्मी हुए। नजदीक के अस्पताल में जख्मियों का इलाज किया जा रहा है। हमारे नामा निगार ने बताया है कि ये वाकया पीपल कोटी इलाके में टेहरी हाइड्रोजन डिवेलपमेंट कारपोरेशन प्रोजेक्ट मकाम पर पेश आया।
1: इस हादसे की इत्तला मिलते ही जिला इंतजामिया, पुलिस, SDRF, NDRF, फायर सर्विसेज और तिब्बी महकमे की टीमें वहां पहुंच गईं। चमोली के जिला मजिस्ट्रेट गौरव कुमार ने वहां बचाव कार्रवाई की निगरानी की। जख्मी कारकुनों को गोपेश्वर के जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। इधर रियासत के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कल रात देर गए देहरादून में रियासत के इमरजेंसी ऑपरेशंस मरकज में राहत और बचाव कार्रवाइयों का जायजा लिया।
2: हमारा प्रयास है कि जितने भी लोग हैं उनका रेस्क्यू जल्दी से जल्दी किया जाए। उसके लिए NDRF, SDRF, जिला प्रशासन की टीम, हमारे यहाँ की पुलिस की टीम, स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन, सभी लोग मौके पर हैं। उसके साथ साथ सभी जो मशीनरी है वो मशीनरी भी वहाँ पहुँच गई है, वहाँ काम चल रहा है और जल्दी से जल्दी निकालने की सबको कार्रवाई चल रही है।
1: शमीम इरफान।
0: हवा के कम दबाव का हल्का बनने के तनाजुर में ओडिशा में लगातार बारिश होने से बड़े दरियाओं में तुगयानी आ गई है और शिमाली जिलों में बैतरणी और बूढ़ा बलंगा दरियाओं से फिर से सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। भद्रक में बैतरणी दरिया खतरे के निशान को पार कर गया है जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है और भंडारी पोखरी में कई गाँव पानी से घिर गए हैं। हमारे नामा निगार ने बताया है कि हुकाम सैलाब की सूरत हाल मजीद खराब होने के अंदेशे के तनाजुर में जरूरी इकदामात कर रहे हैं।
1: ओडिशा में कई मकामात पर लगातार बारिश होने से सैलाब की सूरत हाल संगीन हो गई है। हवा के कम दबाव का हल्का बनने के जेर असर वहां बारिश हो रही है। कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। केंझार जिले में आनंदपुर के मकाम पर भी बैतरणी दरिया खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। इस तनाजुर में हुकाम ने आसपास के कस्बों और गांवों के लोगों को चौकस कर दिया है और लोगों से कहा गया है कि वो महफूज मकामात पर चले जाएं। इधर चंपुआ में सैलाब के पानी से एक पुल बह गया है जिससे सड़क राबते में रुकावट पड़ गई है। बूढ़ा बलंगा दरिया में पानी चढ़ने की वजह से मयूरभंज और बालासोर जिले के निचले इलाकों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। भुवनेश्वर से प्रकाश दाश की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: मगरबी बंगाल के साहिल पर हवा के गहरे दबाव का हल्का मगरब शिमाल मगरब में रफ्ता रफ्ता गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल की सम्त बढ़ रहा है। फिलहाल ये कोलकाता के तकरीबन 60 किलोमीटर मगरब और मिदनापुर के 50 किलोमीटर मशरक शिमाल मशरक में मरकूज है। इसके जेर असर आज कई जिलों में तेज बारिश होने का इम्कान है। मशरकी और मगरबी मिदनापुर, झारग्राम, जनूबी 24 परगना, पुरुलिया और पश्चिम बर्धमान के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। माहीगीरों को सलाह दी गई है कि वो कल तक समंदर में ना जाएं। इधर शिमाली बंगाल में भी आज जलपाईगुड़ी और अलीपुर द्वार जिले में तेज बारिश होने की पेशगोई की गई है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज छत्तीसगढ़ में शदीद से लेकर इंतहाई शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। इधर गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी कहीं तेज और कहीं बहुत तेज बारिश होने के इम्कान के तनाजुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसमियात महकमे ने शिमाल मशरकी भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश होने की पेशगोई की है। जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, ज़ैली हिमालयाई मग़रिबी बंगाल और

0: सिक्किम में भी इसी तरह का मौसम रहने की पेशगोई की गई है। उधर अंडमान निकोबार जजायर, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों में भी शदीद बारिश होने की पेशगोई की गई है। झारखंड में भर्ती इम्तिहानात में मुबैना बेजाबतगियों के मामले पर तलबा और मुलाजमीन के मुलाजमत के उम्मीदवारों का एहतजाज आज 21वें दिन भी जारी है। मुजाहिरीन ने अपना एहतजाज खत्म करने से इनकार किया है और सीबीआई जांच और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेएसएससी के कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल इम्तिहान को मनसूख करने के मुतालबे का इरादा किया। मुजाहिरीन ने 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकालने का भी ऐलान किया है ताकि इस मुजाहिरे को मजीद मजबूत बनाया जा सके। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में उम्मीदवारों का धरना जारी है। तलबा कल एक बड़ी तिरंगा यात्रा निकालेंगे जिसमें रियासत भर के हजारों नौजवानों के इकट्ठा होने की तवक्को है। यौम आज़ादी की तकरीबात और इस बड़े तलबा मुजाहिरे के पेश नज़र रांची ज़िला इंतजामिया पूरी तरह चौकस है। तलबा की तिरंगा यात्रा के रास्ते पर और हसास मकामात पर बड़ी तादाद में पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। कैनेडा ओपन टेनिस में ईगा श्यांटेक ने एलेना रिबकीना को हराकर खवातीन सिंगल्स का टाइटल जीत लिया है। कल रात टोरंटो में खेले गए फाइनल में सातवीं नंबर की ईगा श्यांटेक ने दूसरे नंबर की खिलाड़ी एलेना रिबकीना को 6-2 और 6-3 से हराकर सीजन का अपना पहला टाइटल हासिल किया। इस तरह वो अब पूरे इतमाद के साथ यूएस ओपन टेनिस में कदम रखेंगी। इधर अमेरिका के बेन शेल्टन ने मर्दों का सिंगल्स टाइटल जीता है। उन्होंने मॉन्ट्रियल में खेले गए फाइनल में अपने हमवतन ब्रेंडन नाकाशिमा को 6-3 और 7-6 से शिकस्त दी। भारत नाइजीरिया के लागोस में मुनाकिदा दौलत मुश्तरका फेंसिंग चैंपियनशिप में शानदार 35 तमगे जीतकर मजमूई तौर पर चैंपियन बनकर उभरा है। भारतीय दस्ते ने अंडर 23 और सीनियर मुकाबलों में 13 सोने के, 8 चांदी के और 14 कांसे के तमगे हासिल किए हैं। भारत ने अपनी शानदार कारकर्दगी की बदौलत विल्किंसन सोड ट्रॉफी भी जीत ली है, जो मजमूई तौर पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले मुल्क को कॉमनवेल्थ फेंसिंग फेडरेशन की जानिब से की जाती है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया नीतिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास के आखिरी दिन से मुतालिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब की शह सुर्खी है, मानसून इजलास हंगामे की नज़र, गैर मुयना मुद्दत के लिए मुलतवी, नीट पेपर लीक मामला छाया रहा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की जानिब से मुल्क के मोजिज फनकारों को साल 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप और अवार्ड्स तफवीज किए जाने से मुतालिक खबर को अखबारात ने अहमियत के साथ पहले सफ़े पर जगह दी है। रोजनामा प्रताप ने इस दौरान दिए सदर जमहूरिया के इस बयान को शह सुर्खी बनाया है कि अवार्ड हासिल करने वाले फनकार मिलकर मुल्क का एक ऐसा सकाफती नक्शा पेश करते हैं जिसमें मुल्क की मिट्टी की कहानियां और गीत जुड़े हैं।
0: और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 80वें यौम आज़ादी से कबल आज शाम मुल्क के लोगों से खिताब करेंगी। आज मुल्क की तकसीम की हौलनाकी की याद का दिन मनाया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने फायर सर्विसेज और जेल महकमे में साबिक अग्निवीरों के लिए 20% कोटे की मंजूरी दी है और उम्र की हद में रियायत दी गई है। उत्तराखंड के चमोली जिले में जेर तामीर टनल में पानी के रिसाव और चट्टानों के टुकड़े गिरने के वाकये में 7 कारकुनों की मौत हो गई जबकि 14 जख्मी हुए। और कैनेडा ओपन टेनिस में ईगा श्यांटेक ने एलेना रिबाकिना को हराकर खवातीन सिंगल्स का टाइटल जीता है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर 8:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं शहनाई वादन। कलाकार हैं लोकेश आनंद और साथी। आइए

0: अभी आप सुन रहे थे शहनाई वादन, कलाकार थे लोकेश आनंद और साथी। अभी आपने इन कपल शहनाई पर बजाया राग बैरागी सुना। इसके साथ ही स्वरगंगा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर 9:15 होने को है। नीचे अब प्रस्तुत है गांधी चर्चा। इसमें आज आप सुनेंगे वार्ता सामाजिक कुरीतियों और उनके उन्मूलन पर गांधी जी के विचार। वार्ताकार हैं शुभांगी पवार।
1: ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।

0: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में आज की वार्ता का विषय है सामाजिक कुरीतियां और उनके उन्मूलन पर गांधी जी के विचार। आलेख एवं स्वर शुभांगी पवार।
1: जब तक समाज अन्याय भेदभाव और अंधविश्वास जैसी बुराइयों से मुक्त नहीं होगा तब तक किसी भी राष्ट्र का वास्तविक विकास संभव नहीं है। यह विचार महात्मा गांधी के जीवन और दर्शन का मूल संदेश था। गांधी जी केवल भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराना नहीं चाहते थे बल्कि वे भारत को सामाजिक बुराइयों से भी मुक्त देखना चाहते थे। उनका मानना था कि राजनीतिक स्वतंत्रता तभी सार्थक होगी जब समाज समानता न्याय सत्य और मानवता के मूल्यों पर आधारित होगा। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि सामाजिक कुरीतियाँ क्या होती हैं। सामाजिक कुरीतियाँ वे बुराइयाँ हैं जो समाज के विकास में बाधा बनती हैं और लोगों के बीच असमानता अन्याय तथा शोषण को बढ़ावा देती है। इनमें जाति भेद छुआछूत दहेज प्रथा बाल विवाह लैंगिक असमानता नशाखोरी अशिक्षा अंधविश्वास और सांप्रदायिकता जैसी समस्याएं प्रमुख हैं। गांधी जी ने इन सभी कुरीतियों को समाज की कमजोरी माना और इनके विरुद्ध जीवन भर संघर्ष किया। गांधी जी छुआछूत को मानवता पर सबसे बड़ा कलंक मानते थे। उनका विश्वास था कि सभी मनुष्य ईश्वर की संतान हैं, इसलिए किसी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर ऊंचा या नीचा मानना अन्याय और अधर्म है। उस समय समाज का एक बड़ा वर्ग मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकता था, सार्वजनिक कुओं से पानी नहीं भर सकता था और उसे सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार भी नहीं मिलता था। गांधी जी ने इस अमानवीय व्यवस्था का खुलकर विरोध किया। उन्होंने तथाकथित अस्पृश्य लोगों को समाज में सम्मान दिलाने के लिए अनेक अभियान चलाए। वे स्वयं उनके बीच रहते थे, उनके साथ भोजन करते थे और लोगों से आग्रह करते थे कि जाति के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करें। उनका मानना था कि जब तक समाज का अंतिम व्यक्ति सम्मान और समान अवसर प्राप्त नहीं करेगा तब तक भारत का विकास अधूरा रहेगा। दूसरा महत्वपूर्ण विषय था महिलाओं की स्थिति। गांधी जी का विश्वास था कि महिलाओं और पुरुषों के अधिकार समान हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी समाज की प्रगति का सही आकलन वहाँ की महिलाओं की स्थिति से किया जा सकता है। उस समय महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता था, उन्हें निर्णय लेने का अधिकार नहीं था और अनेक सामाजिक बंधनों में बांध दिया जाता था। गांधी जी ने महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि महिलाएं केवल परिवार की जिम्मेदारी निभाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे समाज और राष्ट्र के निर्माण में समान रूप से सक्षम हैं। उनके नेतृत्व में हजारों महिलाओं ने सत्याग्रह विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार और अन्य आंदोलनों में भाग लिया। इससे महिलाओं में आत्मविश्वास और जागरूकता दोनों का विकास हुआ। इसके साथ ही गांधी जी बाल विवाह और दहेज प्रथा के भी कट्टर विरोधी थे। बाल विवाह बच्चों के बचपन शिक्षा और भविष्य को छीन लेता है। गांधी जी का मानना था कि विवाह तभी होना चाहिए जब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व हो। इसी प्रकार उन्होंने दहेज प्रथा को समाज के लिए अभिशाप बताया। उनका कहना था कि विवाह कोई व्यापार नहीं बल्कि दो व्यक्तियों और दो परिवारों का पवित्र संबंध है। यदि विवाह धन और संपत्ति के आधार पर होने लगे तो यह समाज की नैतिकता पर प्रश्न चिन्ह है। आज भी दहेज के कारण अनेक परिवार आर्थिक बोझ झेलते हैं और कई महिलाओं को मानसिक तथा शारीरिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। इसलिए गांधी जी के विचार आज भी पूरी तरह प्रासंगिक हैं। गांधी जी शराब और अन्य नशीले पदार्थों को व्यक्ति परिवार और समाज तीनों के लिए घातक मानते थे। उनका विश्वास था कि नशा केवल स्वास्थ्य को ही नहीं बल्कि व्यक्ति के चरित्र परिवार और आर्थिक स्थिति और सामाजिक वातावरण को भी नष्ट कर देता है। उन्होंने लोगों से आत्मसंयम अपनाने और नशा मुक्त जीवन जीने की अपील की। गांधी जी अंधविश्वास के भी विरोधी थे। वे धर्म में आस्था रखते थे, लेकिन अंधविश्वास में नहीं। उनका मानना था कि किसी भी बात को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करना चाहिए। मनुष्य को सत्य, तर्क और विवेक के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। उनका जीवन इस बात का उदाहरण था कि सच्चा धर्म मानव सेवा, प्रेम और सत्य में है, न कि रूढ़ियों और अंधविश्वासों में। इसी प्रकार गांधी जी ने सांप्रदायिक सौहार्द पर भी विशेष बल दिया। भारत अनेक धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों का देश है। गांधी जी का विश्वास था कि सभी धर्म हमें प्रेम, करुणा और मानवता का संदेश देते हैं। इसलिए धर्म के नाम पर हिंसा और घृणा फैलाना किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं है। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक राष्ट्रीय एकता के लिए कार्य किया। अब प्रश्न यह उठता है कि गांधी जी ने इन सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए कौन से उपाय बताए। सबसे पहला उपाय था शिक्षा। गांधी जी का मानना था कि शिक्षा केवल परीक्षा पास करने या नौकरी पाने का साधन नहीं है। वास्तविक शिक्षा वह है जो व्यक्ति में अच्छे संस्कार, नैतिकता, आत्मनिर्भरता और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करे। उनका नई तालीम का सिद्धांत इसी विचार पर आधारित था कि शिक्षा जीवन से जुड़ी हुई हो और व्यक्ति के संपूर्ण विकास में सहायक बने। दूसरा उपाय था सत्य और अहिंसा। गांधी जी का मानना था कि हिंसा से केवल भय पैदा किया जा सकता है, लेकिन स्थायी परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। सत्य और अहिंसा के माध्यम से लोगों के विचार बदले जा सकते हैं और समाज में स्थायी सुधार लाया जा सकता है। उनका पूरा जीवन इस सिद्धांत का प्रमाण है। तीसरा उपाय था स्वयं से परिवर्तन की शुरुआत करना। गांधी जी कहते थे, आप स्वयं वह परिवर्तन बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। वे मानते थे कि समाज बदलने की शुरुआत किसी और से नहीं बल्कि स्वयं से होती है। यदि हम जाति, धर्म, भाषा या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, यदि हम ईमानदारी, अनुशासन और मानवता का पालन करेंगे, तो समाज भी धीरे धीरे बदलने लगेगा। चौथा उपाय था स्वच्छता और श्रम का सम्मान। गांधी जी स्वयं सफाई करते थे और दूसरों को भी प्रेरित करते थे कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, प्रत्येक व्यक्ति को श्रम का सम्मान करना चाहिए। उनका विश्वास था कि स्वच्छता केवल वातावरण की नहीं बल्कि विचारों और चरित्र की भी होनी चाहिए। आज 21वीं सदी में भी गांधी जी के विचार अत्यंत प्रासंगिक हैं। भले ही छू अछूत कानूनी रूप से अपराध है, लेकिन सामाजिक भेदभाव अभी भी कई स्थानों पर दिखाई देता है। दहेज प्रथा पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध आज भी चिंता का विषय है। नशाखोरी युवाओं के सामने एक गंभीर चुनौती है। गांधी जी आज हमारे बीच होते तो वह निश्चित रूप से सत्य, सहिष्णुता, विवेक और मानवीय संवेदनाओं को अपनाने का संदेश देते। गांधी जी का सपना केवल एक स्वतंत्र भारत का नहीं था, बल्कि एक ऐसे भारत का था जहां पर व्यक्ति को समान सम्मान मिले, जहां किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव ना हो, जहां सत्य, प्रेम और अहिंसा जीवन के आधार बने और जहां प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करे। सामाजिक कुरीतियों का अंत केवल कानून बनाने से नहीं होगा, इसके लिए समाज की सोच बदलनी होगी। शिक्षा का प्रसार करना होगा, नैतिक मूल्यों को अपनाना होगा और प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं से शुरुआत करनी होगी। यही गांधी जी का संदेश था और यही उनके विचारों की सबसे बड़ी विशेषता है। आइए हम सभी यह संकल्प ले कि हम किसी भी प्रकार के भेदभाव का समर्थन नहीं करेंगे, महिलाओं का सम्मान करेंगे, दहेज और नशा जैसी कुरीतियों का विरोध करेंगे, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे तथा अपने आचरण से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास

इसी के साथ गांधी चर्चा कार्यक्रम का ये अंक अब संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग श्रीनाथ दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता थे वी के तोमर।

इसी के साथ आप अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा, और ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। सुबह के ठीक 9:30 होने को है, और ये वक्त होता है अपने श्रोताओं को पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक सुनवाने का।

पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक लेके हाजिर हां मैं बलविंदर। दिन दी शुरुआत एक वधिया विचार दे नाल। किसे ने कहा है कि सफल इंसान उही है जो अपने ते सुटियां इट्टां दी मजबूत नींव उसार लवे।

लेके आ गई। थोड़ी देर बाद रसोई विच जा के शांता वास्ते चाह ते नाश्ता भी ले आई। शांता रब दा शुक्र मनांदी है कि उहदा बुढ़ापा ठीक निकल रहा है। दूजे पासे जयंती घर पहुंची, दरवाजा खोलिया ते फ्रिज विचों ठंडी पानी दी बोतल लैके बह गई। गल्ला कर खान नूं दौड़दा है, पर की करे, प्रेम आ भी गया ते कलेश नाल लैके आएगा। वह प्रेम दा सोचन लग जांदी है, उन्हें किसी दे समझाने का असर भी नहीं होंदा। नशे की भैड़ी लत ने उसकी समझदारी खत्म कर दिती है। उन्हें नहीं पता किन्ना खाना है, कदों खाना है। पेंशन विचों लड़ झगड़ के सारे रुपए ले जाता है। जे पैसे खत्म हो जान तो मजदूरी करता है, फिर नशा, फिर पैसे खत्म। और फिर जिस दिन मजदूरी नहीं, उस दिन माँ ते हमला, सारे पैसे लब लबा के खो के ले जाता है। उन्ना ही ज्यादा फिर पी के आंदा है। नशे ने उन्हें अविवेकी बना दिता है। जे विवेक बचता रहा तो आने वाली मुसीबतों तो सावधान भी रहा, पर जे विवेक ही खत्म तो मनुख ही खत्म, विनाश। जयंती सोचन लग जाती है, हर रोज भगवान नू याद करनी आ, चंगे व्याख्यान सुननी आ, पर अपने पुत्र नू चंगे पासे नहीं ले जा सकी। फिर अपने आप नू जवाब देंदी है, मेरी रोटी खान नाल किसी दूजे का पेट नहीं भर सकता। थोड़ी देर रुक के अपने आप नू कहंदी है, उठ जयंती उठ, तेनू किन्ने खाना देना है। जयंती रसोई विच जाके अपने वास्ते चाह ते नाश्ता बनान लग गई। दूजे पासे रात वास्ते दाल भी पकान रख दिती। रात दे 11 बज गए सी, प्रेम हले तक घर नहीं आया। जयंती ने दरवाजा खोल के बाहर वेख्या, प्रेम दरवाजे दे बाहर चबूतरे ते लेटिया होया सी। जयंती समझ गई, अज भी कोई उहदा दोस्त घर दे बाहर छड गया होना है। सवेरे होश आएगा तो फिर लड़ाई झगड़ा करेगा, पैसे ना मिलन ते फिर मार कुटाई करेगा। जयंती अंदर आ गई, दरवाजा खुला छोड़ आई, आपे होश आवेगा ते अंदर आ जाएगा। अगले दिन मंदिर विच कीर्तन शुरू हो गया, पर शांता दा ते जयंती दोनों दा कोई पता नहीं। बिना ढोलकी कीर्तन दा हो नहीं सकदा। मंदिर दे पुजारी ने ढोलकी दा जिम्मा ले लिता। दोनों दी कमी तां महसूस हो रही सी, पर कोई काम कदी रुकिया है। कीर्तन भी हो गया, प्रसाद भी वंडिया गया। दूसरे दिन भी मंदिर विच कीर्तन होया, पर ना शांता आई ते ना ही जयंती। किसी ने शांता नू फोन करके पूछा कि वह मंदिर विच क्यों नहीं आ रही। शांता ने दस्या, दो दिन तो तबीयत खराब चल रही है, इसलिए नहीं आ सकी, कल जरूर आवांगी। तीसरे दिन शांता मंदिर पहुंची तो उन्हें ढोलकी ते जयंती नू ना वेख के पूछा। उन्हें पता चलिया कि जयंती तो दो दिन तो आई नहीं। शांता नू जोर दा झटका लग्या, उन्हें जयंती दे दित्ते नंबर से फोन मिलाया। घंटी वज रही सी। आखिर प्रेम ने फोन चुकया ते शांता ने पूछया, तेरी मम्मी कित्थे वे, गल करा। प्रेम ने जवाब दिता, मां ते मर गई, मैं मार दिता मां नू, पैसे नहीं दे रही सी, रोज रोज मंदिर, मैनू घर कल्ला छड के बाहर भजदी रही। शांता ने प्रेम की पूरी कहानी सुनी नहीं, उन्हें मंदिर विच सब नू दस्या। मंदिर दे लोग कट्ठे होके जयंती दे घर गए। कुछ लोगों ने पुलिस नू खबर दे दित्ती सी। पुलिस दी वैन आ गई। मंदिर तो कुछ लोग जयंती दे घर पहुंचे। अंदर जाके वेख्या, जयंती कमरे विच पुंजे पई हुई सी, उहदे उत्ते चादर सी। दो दिन दी लाश दे आसे पासे कीड़ियां चल रही सी। शांता ने पुलिस नू प्रेम दा फोन नंबर दे दिता। पुलिस ने उहदा नंबर ट्रैकिंग ते ला दिता। मंदिर दे लोगां ने पुलिस अगे हाथ जोड़े, तुसी जयंती पेंजी दी लाश दा पोस्टमार्टम ना करवाना, कुछ गल्लां छुपियां ही रहन दिओ, जयंती दा संस्कार असी सारे मिल के करांगे, तुसी प्रेम नू लभ के उहनू सजा दिओ। पुलिस ने सब दा कहना मान लिया। अगले दिन पुलिस ने शांता नू फोन करके दस्या, प्रेम दा पता चल गया है, उहदी लाश सैक्टर 2 दे मंदिर दे चबूतरे कोल मिली है, जिथे भिखारी रहिंदे ने। मित्रों, ए कहानी ते खत्म हो गई, पर सवाल कई खड़े हो गए जिन्हां दा जवाब मिलना बाकी है। जिंदगी दी समस्यावां दा हल
जिंदे जी

0: क्यों नहीं हो सकता? केवल मौत ही हर समस्या का हल क्यों है? सोचना तो पड़ेगा, मिलके सोचना पड़ेगा। पहली बारी जदों लाइन क्रॉस होवे उदों सख्त होना समस्यावां का हल हो सकता है? पता नहीं, जयंती ने कोशिश तो की होगी। नशे के आदि तो कोई भी सख्ती कम नहीं कर सकती। शांता अज भी किन्ने सवाल लैके बैठी हुई है, किन्ने ही सवाल, हर रोज सवाल लैके बैठ जाती है। तो उहदियां नज़रां कदी आसमान ते, ते कदी समाज वल ते कदी सरकार वल। रब राखा, रब राखा, रब राखा।
1: हुणे तुसीं सुन रहे सी कहानी जिसका सिरलेख सी अनसुलझे सवाल। कहानी पेश कर रहे सन सविता चड्डा। ते आओ हुण सुनदे हां देश भगती दा ए सैगान।

यारो असी तवासी हिंदुस्तान दे हाँ, अपने वतन दी खातिर मरना भी जानते हाँ। हुणे तुसी इह सैगान सुन रहे सी। आस करदे हाँ कि अज दा पंजाबी प्रोग्राम तुहानू चंगा लग्या होवेगा। इस दे नाल ही प्रोग्राम दा वेला हुण खत्म हुंदा है। बलविंदर नू इजाजत दिओ।

अभी आप सुन रहे थे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक। ज्यादा के सुबह सुबह के ठीक 10 बजने को है। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा, जिसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर होगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है। एक रिपोर्ट।
1: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न

0: कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। यह दिवस आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की याद दिलाता है। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और मनुष्य को दूर करने तथा शांति, सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने विभाजन को इतिहास का वो क्षण बताया जिसने कई जिंदगियों को तहस नहस कर दिया, अपनों को खो दिया गया और असहनीय पीड़ा भी सहनी पड़ी। श्री मोदी ने कामना की कि ये दिन सद्भाव और भाईचारे को बनाए रखने के हमारे संकल्प को और मजबूत करेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 14 अगस्त 1947 का दिन इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक का गवाह है जिसमें लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और अमानवीय पीड़ा सहनी पड़ी। उन्होंने कहा कि करोड़ों लोगों को अपने घर, संपत्ति और प्रियजनों को छोड़कर विस्थापित होना पड़ा। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ जारी है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। मुंबई के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के कैडेटों ने शहर के फोर्ट क्षेत्र में मार्च निकाला। भोपाल में 350 से अधिक नौकाओं पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि ये व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेन हर 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों और नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इनकार कर दिया है और सीबीआई जांच तथा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा रद्द करने की अपनी मांग दोहराई है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन को और मजबूत करने के लिए कल तिरंगा यात्रा निकालने की भी घोषणा की है। ओडिशा में कम दबाव के क्षेत्र के कारण लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है। उत्तरी ओडिशा की कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। इस महीने की 20 तारीख के आसपास एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। मौसम विभाग ने केरलम के 6 जिलों के लिए तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी गई है। उत्तराखंड में चमोली जिले के पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजना स्थल पर कल भूस्खलन और पानी के रिसाव से 7 लोगों की मृत्यु हो गई और 14 घायल हो गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी एजेंसियों को राहत और बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कनाडा ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल स्वियाटेक ने एलेना रायबकिना को सीधे सेटों में हराया। पुरुष सिंगल्स में अमरीकी टेनिस खिलाड़ी बेन शेल्टन ने मॉन्ट्रियल में अपने हमवतन खिलाड़ी ब्रेंडन नाकाशिमा को हराकर खिताब जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। President Draupadi Murmu will address the nation today on the eve of the 80th Independence Day. The President's address will be broadcast at 7 p.m. on the entire national network of Akashwani. It will also be telecast on all the channels of Doordarshan in Hindi, followed by the English version. The telecast of the address in Hindi and English on Doordarshan will be followed by its broadcast in regional languages on the regional channels of Doordarshan. Akashwani will broadcast the regional language versions of the address at 9:30 p.m. on its respective regional networks. Prime Minister Narendra Modi has remembered the courage of all those who were impacted by partition. In a social media post, Mr. Modi termed the partition as a moment in history that tore apart several lives, where families were uprooted, loved ones were lost, and immense suffering was endured. Services of the Delhi Metro will commence from all terminal stations across its network at 4 a.m. on Independence Day. The Delhi Metro Rail Corporation, DMRC, said that the decision has been taken to facilitate the movement of special guests, invitees and the general public attending the Independence Day celebration. The DMRC said that the metro services will operate at a 30-minute frequency on all lines until the commencement of regular revenue services as per the scheduled timetable for the day. The Lal Qila, Jama Masjid and Delhi Gate metro stations are the nearest stations to the Independence Day celebration venue. Delhi government has approved 20% horizontal reservation for ex-Agniveers in direct recruitment to fire operator posts in Delhi Fire Services and warder and matron posts in prison department. The Home Department order also provides age relaxation for eligible candidates. It fits in with the policy of the Government of India for rehabilitation of ex-Agniveers. Union Home Ministry has already reserved 50% of the posts at the constable, general duty and rifleman level in all the Central Armed Police Forces, CAPFs and Assam Rifles for ex-Agniveers. Union Home Minister Amit Shah and Defence Minister Rajnath Singh has paid homage to all those who lost their lives in the partition and to those who struggled against the atrocities on Partition Horrors Remembrance Day. In a social media post, Mr. Shah said that the day of 14th August 1947 stands witness to one of the most brutal chapters in history in which millions of people had to lose their lives and endure inhuman suffering. He added that tens of millions were forced to abandon their homes, property and loved ones and become displaced. Mr. Shah also said that on the Partition Horrors Remembrance Day, the Modi government is conveying the memories of the tragedy to the youth so that the forces seeking to divide the country again can never succeed. In West Bengal, three children aged between 4 and 11 have been killed in a shocking attack in Raghunathpur in Suti, Murshidabad district. A 21-year-old man allegedly attacked four children with a sickle after taking them inside a room at his house. Incidentally, the children killed are his nieces. A 5-year-old girl, Manifa Khatun, died on the spot while other two children later succumbed to their injuries while being taken to hospital. The fourth child sustained serious injuries and is undergoing treatment. U.S. President Donald Trump announced new tariffs of up to 100% on imports of unmanned drones and their components, saying the move is aimed at reducing the United States' reliance on foreign suppliers in an industry largely dominated by China. India Meteorological Department, IMD, has issued a red color warning for very heavy to extremely heavy rainfall over Chhattisgarh today. In Canadian Open tennis, 7th seed Iga Swiatek of Poland defeated 2nd seed Elena Rybakina in straight sets to claim women's singles title in Toronto last night. Swiatek captured her first title of the season with a swift 6-2, 6-3 win, giving her confidence boost heading into the US Open. And that is the end of this news bulletin.
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। सुबह के ठीक 10:10 और 16 सेकेंड्स हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है आपकी पसंद कार्यक्रम, लेकिन इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
4: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
5: जी,
4: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
5: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
4: पर ये होगा कैसे?
5: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
4: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो
5: ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर

0: केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
0: बस
1: समझ गया।
0: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: जी हाँ, जानकार बनिए और सतर्क रहिए, साथ ही साथ करें अपने पैसे को भी सुरक्षित इस सतर्कता के साथ। फिलहाल कार्यक्रम है आपकी पसंद और आज इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूं मैं, आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना गुप्ता। शुरुआत करते हैं अपने इस कार्यक्रम की और करेंगे ढेर सारी बातें, सुनेंगे ढेर सारे मनोरंजक गीत और साथ ही साथ लेंगे आपके प्यारे प्यारे संदेश। अब संदेश तो आप भेजेंगे, जाहिर सी बात है, कार्यक्रम आपका है, आपकी पसंद है, इसमें तो संदेश भेजने के लिए एड्रेस तो हमें आपको बताना ही पड़ेगा। जी हाँ, आप भेज सकते हैं अपने संदेश हमें हमारी ईमेल आईडी ipradiodelhi@gmail.com पर। और बात हम करेंगे यहाँ पे बहुत ही यूनिक, आज एक टॉपिक लेकर आई हूँ मैं उसके बारे में, लेकिन फिलहाल सुनिए ये गीत। कुछ कुछ जज कर सकते हैं, कुछ कुछ गैस कर सकते हैं कि क्या हो सकता है आज का टॉपिक।
5: हो गई।

जान बचाओ।

देखिए इस गीत में तो चले जाने की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल अभी आपका आना जारी है और यहाँ पर ना आपके संदेशों का भी आना शुरू हो चुका है। और विषय मुझसे पूछ रहे हैं आने वाले श्रोता कि आज का विषय क्या है। देशभक्ति हो सकता है, लेकिन वो दिन हमने कल के लिए रिजर्व रखा हुआ है। जी हाँ, देशभक्ति तो हमेशा दिल में रहती है, लेकिन कल जो स्पेशल डे है ना, उसके लिए रिजर्व है। देशभक्ति वाला जो टॉपिक है, वो कल जो आएंगे हमारे साथी, वो उसके बारे में बात करेंगे, उस टॉपिक पर बात करेंगे। लेकिन आज एक दिन पहले एक खास बहुत ही प्यारा सा जो टॉपिक है वो मैं लेकर आई हूँ इस कार्य इस गीत में, जो है ना शायद समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ हूँ आपको बताने के लिए कि आज हम ना बात करेंगे कुछ आपके अंदर पाई जाने वाली अजीब आदतों की। किसी और की बात नहीं करेंगे आज, हम बात करेंगे आज अपनी, हमारे अंदर क्या ऐसी अजीब सी आदतें हैं। अगर आपका जवाब है नहीं, तो मेरी जान ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हर इंसान में एक अजीब आदत जरूर होती है। क्योंकि हो सकता है कि वो आदत आपके लिए अजीब ना हो, लेकिन आपकी फैमिली के लिए वो आदत बिल्कुल अजीब हो सकती है। तो जरा सोचिए, जरा दिमाग पर जोर डालिए, जरा अपने फैमिली वालों से पूछिए कि भाई मेरे अंदर कोई अजीब सी आदत है जिसे आप पसंद ना करते हो, जो मुझे तो लगता है नॉर्मल है, बट वो आपके लिए अजीब है। तो बस झट से इस बात का जवाब भेजिए अपने संदेशों के जरिए। अब तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको जो है ना बता दिया है आज का टॉपिक, और रेलिवेंट मैसेज भेजिएगा

मत कीजिएगा प्लीज। हाथ जोड़ कर विनती है आपसे, आप बार बार एक ही कहते हैं ना मैसेज को रिपीट करते हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, दस दस बार कई हमारे श्रोता है ना भेज देते हैं, तो प्लीज ऐसे क्या होता है ना कि जो जिनके एक ही मैसेज आ रखा होता है ना वो बेचारा कहीं गायब हो जाता है, और ऐसे श्रोताओं के साथ थोड़ी सी नाइंसाफी हो जाती है। तो प्लीज एक एक संदेश भेजिए और रिलेवेंट भेजिए और जल्दी जल्दी भेजिए।

0: अरे दिन तिनक दिन, अरे सीटी बज गई।
1: सबसे पहले संदेशों में मिला है तुलसी मस्किन जी का। ये कहते हैं, प्रिय होस्ट अर्चना गुप्ता जी नमस्कार, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बता देती हूँ कि आपके अंदर कोई ऐसी आदत है जो आपको तो लगता है कि नॉर्मल है बट दूसरों के को लगता है कि एबनॉर्मल है। अब चलिए कुछ आदतों के भी बारे में बता दूं मैं आपको कि किस तरह की आदतें जो है आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कि जैसे रात को सोने से पहले मोबाइल को 10 बार चेक करना, वो तो आजकल नॉर्मल आदत है, वो हर किसी में है। दैट इज नॉट अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, वो नहीं है, बट एक यूजुअल आदतों में मैं शुमार कर रही हूँ उसको। अगली है हमारी, फ्रिज को बार बार खोल कर देखना, बिना किसी वजह के खोल कर देखना, किसी एक ही गाने को बार बार गुनगुनाना। कहते ना कई बार कुछ हमने सुन लिया, कोई भी गीत, कोई भी लिरिक्स, कोई भी शब्द हमने सुन लिया, वो बार बार हमारे दिमाग में, जहन में, हमारे लफ्जों पर आते हैं, हम उनको गुनगुनाते रहते हैं जब तक कि वो हमारे माइंड से हट नहीं जाते, निकल नहीं जाते। और ऐसी भी आदत कि किसी को कमरे से बाहर निकल कर वापस आना होता है, और वो वापस क्यों आता है, किस लिए आया है, उसे याद ही नहीं होता। जाने के बाद भूल जाते कि अगर अरे हम यहाँ आए थे तो क्यों आए थे, क्या कारण था। और ऐसे भी होता है कि लोग जो है ना, वो अलार्म लगाते तो 8 बजे का है लेकिन उठते 10 बजे। ये भी एक नॉर्मल आदत है बट यूजुअल अगर आदत ये बनती है तो ये बहुत सीरियस हो सकती है। दोस्त, अगर आपको कहीं जल्दी पहुंचना है तो आप अलार्म के चक्कर में लेट हो सकते हैं। तो बस ऐसी बहुत सारी आदतें हैं, अभी मेरे पास तो यही है। आप बताइए अगर है कोई ऐसी आदत, आज आपके बारे में बात करेंगे। आपके अंदर अगर ऐसी कोई आदत है तो उसके लिए जो बातें हैं वो शेयर कीजिए, बताइए मुझे कि आपके अंदर कौन सी ऐसी आदत है जो आपके लिए तो नॉर्मल है लेकिन आपके फैमिली वालों के लिए थोड़ी सी अटपटी है। बातों बातों में देखो, एक आदत तो ये गंदी सी हो जाती है हमारे अंदर कि हम जिस बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं, वो भूल ही जाते हैं। हम बात कर रहे थे तुलसी मस्किन जी के मैसेज के बारे में, इन्होंने पूछा आज का टॉपिक क्या है। टॉपिक मैंने बता दिया लेकिन ये लिख कहाँ से रही है, मैं बताना ही भूल गई। ये मेरे अंदर एक छोटी सी तो नहीं कह सकते, बहुत बड़ी बुरी आदत है कि मैं अक्सर भूल जाती हूँ। आपके मेल्स लेना नहीं भूलती हूँ, ये मत सोचिएगा, आपके मेल्स लेती हूँ। देखो मेरे को याद आ गया कि मेरे को अभी इस मेल को पूरा पढ़ना है। ये कहते हैं, लवली रोमांटिक गीत से आगाज करा है आपने, गड़बड़ हो गई। वाकई में हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, बस वो मिस कर दिया जो टॉपिक हमने पूछा था, लेकिन वो भी हमने क्लियर कर दिया, हमने बता दिया है। लिख कहाँ से रहे, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से। साथ में इनके हैं वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशव खुराना और डब्बू सम्राट।

हमें संदेश मिला हरजिंदर सिंह भाटिया जी का, ये कहते हैं जब आपसे कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप कैसे ठीक करते हैं। जी नहीं, आज का टॉपिक ये नहीं है कि हमसे कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसे कैसे ठीक करते हैं। हम ये कहते हैं कि वो जो गड़बड़ वाली बात है ना, वो जो आदत है ना, वो क्या है। जी हाँ, मेन यही है कि अगर आपसे कुछ गड़बड़ हो जाती है, आपके अंदर कोई ऐसी आदत है जिसकी वजह से कोई गड़बड़ हो जाती है, लेकिन वो बात आपके लिए नॉर्मल है, वो आदत आपके लिए नॉर्मल है, बट आपकी फैमिली मेंबर्स के लिए वो थोड़ी सी मुश्किल करने वाली है, तो बस उसी आदत के बारे में आज हमारे साथ डिस्कस करना है, शेयर करना है, वही वाली आदत हमारे साथ शेयर करनी है। आप लिख रहे हैं कहाँ से, स्टेशन रोड जमशेदपुर से, साथ में है एंजल भाटिया और तमन्ना भाटिया।

अगला संदेश हमें मिल रहा है, ये हमें सुधाकर राजे जाधव देशमुख जी का, साथ में इनके बहुत सारे हमारे लिसनर्स हैं। फटाफट से नाम ले लेती हूँ, प्रशांत राजे, संचित, प्रथमेश सरवद, प्रणाली, सानवी, हर्षिता देशमुख, और ये लिख रहे हैं मैं काले गांव जाफराबाद से, मुकाम पोस्ट से। ये कहते हैं अर्चना ताई प्रेम पूर्वक नमस्कार आपको भी। ये कहते हैं कि मेरे को ना दूसरे लोगों की चुगली सुनना ये आदत है। ये आदत अच्छी नहीं है लेकिन क्या करूं। ये आदत कह सकते हैं, वैसे तो गलत बात है, ये ना गंदी आदत है एक्चुअली में, किसी की चुगली करना और किसी की चुगली सुनना, ये दोनों ही आदतें बड़ी गंदी है। और एक छोटी सी बात है, अगर आप किसी की चुगली कर रहे हैं किसी के साथ, तो वही इंसान आपकी भी चुगली करता होगा ना किसी के साथ, तो कृपया करके इस गंदी आदत से थोड़ी सी दूरी बना ले, थोड़ी नहीं बिल्कुल ही दूरी बना ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ना ये आगे चल के बड़ी ही प्रॉब्लम करती है।

चलिए गीत के साथ आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला संदेश। ये भेजा हमें रोशन देवांगन जी ने। ये कहते हैं, लिख कहाँ से रहे पहले तो मैं ये बता दूं, भिलाई छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन और हेमलता डिंपल। ये कहते हैं, बुरी आदतें शरीर को अंदर से कमजोर करती हैं। नशा करना, धूम्रपान, तंबाकू खाना, शराब पीना, ज्यादा तेल मसाले वाला भोजन करना और व्यायाम से दूर रहना, ये ऐसी आदतें हैं जो धीरे धीरे हमारे शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचा सकती हैं। हमें समय रहते इन सभी बुरी आदतों को छोड़कर स्वस्थ भोजन, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और सकारात्मक सोच को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। स्वस्थ शरीर ही सुखी जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल अच्छी बात कही है। बहुत अच्छा जो संदेश है वो आपने मैसेज के जरिए हमें कन्वे किया है। लेकिन आज हम बात करें कि आपके अंदर कोई ऐसी आदत है, मतलब कई लोगों की आदत होती है ना कि जरा सा कुछ डिसअप्रोप्रिएट चीज़ें देखी, लाइक घर में कोई सामान फैला हुआ है तो फौरन उसको उठा के एकदम अपने फिक्स जगह पे रख दिया है। जैसे गीला टॉवल अगर बेड पे छोड़ देते हैं लोग नहाने के बाद, तो ऐसी कोई आदत। जूते चप्पल ऐसे ही इधर उधर कहीं भी उतार देने की आदत, बार बार हाथ धोने की आदत, सफाई करने की, मतलब ऐसी आदतें जिसको कह भी सकते हैं दूसरे भाषा में कि फोबिया होता है एक तरीके का, कि आप किसी चीज़ को गंदा नहीं देख सकते, किसी के टच करने से आपको परेशानी है, किसी मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये तो आप बताएंगे मुझे, आप बताइए अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके साथ है या ऐसी कोई आदत आपके साथ है, तो ऐसी कोई बातें जो है ना वो हमारे साथ शेयर कीजिए, फटाफट से शेयर कीजिए।

करता हूँ। कई बार घर में मेहमान आए होते हैं लेकिन मेरे अंदर का किशोर कुमार लबों पर ही आ जाता है। बहुत खूबसूरत आदत है। किसी को कैसा लगे कुछ नहीं पता लेकिन खुद को सुकून मिलता है। वाकई में मतलब होती है कुछ आदतें किसी को वियर्ड लगती होंगी लेकिन आपके दिल को उससे तसल्ली मिलती है। तो ऐसी आदतें अगर हमारे और किन्हीं श्रोताओं में है तो वो भी प्लीज शेयर कीजिए। देखिए हमारी ये जो श्रोता है ना, इन्होंने बिल्कुल करेक्टली अच्छा वाला कैच किया हमारा आज का टॉपिक और इसी से रेलिवेंट जो है ना अपना संदेश इन्होंने हमें भेजा है। तो बस इसी तरीके के और संदेश भेजिए, बताइए आपके अंदर का किशोर कुमार भी कभी बाहर आता है, लता मंगेशकर बाहर आती हैं, या फिर कोई और चीज़ की आदत जो आपको लगी हुई हो वो आप हमारे साथ शेयर कीजिए आज।

कौशल्य देवांगन जी का हमें संदेश मिल रहा है, कहते हैं कि मेरी एक ऐसी आदत है कि जब तक रेडियो की आवाज मेरे कानों तक नहीं पहुंचती, मन को चैन नहीं मिलता। रेडियो मेरे लिए सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि खुशी, अपनापन और दिन भर की सकारात्मक ऊर्जा का साथी बन गया है, इसलिए रेडियो सुनना मेरी जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा बन चुका है। जी हाँ, ये तो खूबसूरत हिस्सा बन चुका है और ये आदत जो है ना बहुत अच्छी है भाई, हमारे शो के लिए तो बहुत अच्छी है और हमारे लिए भी बहुत अच्छी है। इसके दिगर कोई और आदत है तो वो भी शेयर कीजिए प्लीज़।

हमारे कौशोदा का प्यारा से संदेश आया, ये कहते हैं कि मैं 3-3 बार गैस अपना बंद किया है या नहीं, मेरे को मालूम ही नहीं पड़ता। मैं 3 बार गैस की तरफ जाता हूँ और ये बुरी आदत जो है ना इनके अंदर है। वाकई में ये बुरी आदत तो है ही, क्योंकि इससे किसी की जान पर भी बन सकती है और आपकी भी जान खतरे में पड़ सकती है। तो प्लीज़ इस आदत को थोड़ा सा सुधारें और अपने आप को और थोड़ा सा अलर्ट करें गैस को बंद करने के लिए को लेकर।

0: जी हम बात जो है ना आज आदतों के बारे में बात कर रहे हैं और कुछ ऐसी अजीब और गरीब आदतें जो अक्सर हम लोगों में आम तौर पर देखने को मिल जाती है, जैसे कि आईने के सामने बार बार जाना, अपने आप को निहारना। मैं बताऊं, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो हर टाइम, मतलब स्पेशली गर्ल्स को देखा है, गर्ल्स में होती है, लेडीज में ये आदत होती है कि जाके बार बार आईने के सामने खड़े हो जाना, अपने आप को निहारना, अपने आप को टचअप करते रहना। ये बहुत ही वियर्ड सी आदत होती है। जब आप एक बार अच्छे लग रहे हो तो अच्छे लग रहे हैं, बार बार चेक करने से बुरे नहीं हो जाएंगे। और ऐसी बहुत सारी वियर्डनेस से भरी आदतें होती हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग तो होती हैं लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा इरिटेट करती हैं। तो बस ऐसी ही कुछ बातें, कुछ आदतें अगर हैं आप में, चलिए थोड़ा सा आपको एक्सटेंशन देते हैं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसके अंदर कुछ ऐसी आदतें हैं, लोगों को जानते हैं जिनमें ऐसी आदतें हैं, तो वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।
1: सती हो इनको भला है दिल के बड़े सच्चे बच्चे मेरे बच्चे बच्चे मेरे बच्चे बच्चे मेरे बच्चे।
0: अगला संदेश हमें मिल रहा है।

है गुलाब दास मानिकपुरी जी का और लिखते कहां से हैं ये लेवाई छत्तीसगढ़ राजा दास मानिकपुरी इनके साथ है। कहते हैं अर्चना जी हर इंसान में कुछ ना कुछ खामियां आदत होती है, वैसे हमारे में एक आदत बचपन से है और देर तक सोना, रेडियो सुनना, किसी को उधारी देकर उसे बार बार सोचना और किसी का तकलीफ देखा नहीं जाता। रेडियो सुनने की आदत से घर के लोग कभी कभी परेशान हो जाते। ओ नहीं सर, आजकल तो पता है पॉकेट एफएम भी आ रहा है तो आप पॉकेट में रख लीजिए, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या सुन रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं या व्हाटएवर यू वांट टू लिसन, आप सुन सकते हैं उसको और सबको सुनाने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको सुनने का मन है, सुनने का शौक है, सुनने की आदत है तो आप वो सुनिए और हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। और ये आदत बुरी नहीं है, ये बहुत अच्छी आदत है क्योंकि इससे आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है इस आदत के साथ आपके साथ जुड़े रहना।

वक्त हो चुका है 10:33 और पूरे 10 सेकंड्स और हम हैं यहाँ पर आपकी पसंद के साथ। आपके साथ हूँ मैं, आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना। बात यहाँ चल रही है कुछ वियर्ड आदतों के बारे में, तो बताइए जल्दी जल्दी आपके अंदर कोई है वियर्ड आदत या किसी और के अंदर है वियर्ड आदत जिससे आप परेशान होते हो या जिस आदत से सामने वाला परेशान होता हो, तो ये आदतें जरा शेयर कीजिए, बताइए मुझे भी, क्या पता मुझ में भी हो। अगर जब मेरी बारी आएगी ना तो मैं भी बताऊंगी मुझ में कौन सी वियर्ड आदत है।

दिलावर खान जी का अगला संदेश हमें मिल रहा है। ये कह रहे हैं कि मेरे अंदर दो आदत है, स्टेटस को बार बार पढ़ना और कोई गीत अच्छा लग जाए तो उसे कई बार दिन में गुनगुनाना। जैसे गाना है, दो आंखें बारह हाथ का सैया झूठों का बड़ा सर आज निकाला। यह गाना मुझे बहुत ज्यादा गुनगुनाता हूँ, मतलब ये गाना ये बहुत गुनगुनाते हैं। कोशिश करूंगी अगर ये गीत मुझे मिल गया तो, ठीक है। ये बाकी अगली आदत इन्होंने बताई, स्टेटस कभी गीत, मन को जो भा जाए वही उसकी आदत बन जाता है। हाँ, ये बात पता है मेरे अंदर भी है स्टेटस को बार बार चेक करना, अपने स्टेटस को भी कि किस किस ने उसे सीन किया है और दूसरों को भी कि किस किस ने क्या क्या स्टेटस डाला है ये आजकल ना कॉमन आदत हो गई है। जिसके पास फोन है, स्मार्टफोन है ना, उसके पास यही काम है, दूसरों के स्टेटस चेक करना और अपने स्टेटस को कितने लोगों ने सीन किया है, लाइक किया है, ये देखना। आप लिख रहे हैं, श्रोता रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू।

रहा है चीड़ी मोहाली से हमें ये संदेश मिल रहा है, साथ में ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप लिख रहे हैं। ये कहते हैं मेरी आदत है जैसे ही जरा सा खाली टाइम मिलता है मैं उन्हें लगता हूँ। ये आपकी नहीं सबकी आदत होती है। जब मैं भी खाली होती हूँ ना तो मुझे भी जमाई आने लगती है, ऊँगने लगती हूँ मैं भी, क्योंकि खाली होते हैं यार नींद तो आ ही जाती है और ये आना एक नॉर्मल है, नेचुरल प्रोसेस है, ये तो होता ही है। और इसके अलावा कौन सी वियर्ड आदत है, कभी कुछ ऐसा किया है कि जाते जाते कुछ भूल गए हैं, किचन में गए हैं, फ्रिज खोला है, क्यों खोला यही नहीं पता है, प्यास लग रही है। कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं बाहर निकल रही हूँ, मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही होती है घर में, लेकिन जल्दीबाजी में अगर निकल जाती हूँ तो बाद में याद आता है यार पानी पीना तो भूल ही गई मैं, हालांकि पानी की बॉटल साथ में होती है। तो बस ये ना छोटी छोटी सी वियर्ड सी आदत है, कुछ इस टाइप की आदत बताइए ना प्लीज़।

Oh, yeah.

जी हाँ, यहाँ पे बात चल रही है कुछ वियर्ड आदतों की जो हम में होती हैं और जो सामने वाले किसी और अन्य इंसान में भी होती हैं, तो बस उसी के बारे में आज यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा डिस्कशन चल रहा है। शेयर कर रहे हैं एक दूसरे की आदतें, मैं भी बता रही हूँ अपनी आदतें, बहुत सारी, एक नहीं बहुत सारी वियर्ड आदत है मुझ में, तो बताने पे आऊंगी ना तो शायद सारा का सारा शो मेरी आदतों में खत्म हो जाएगा। तो मेरी आदतों को अभी रखते हैं साइड लाइन और सुनते हैं आपकी आदतों के बारे में। अगला संदेश लेते हुए SP गोयल जी ने हमें संदेश लिखा है, ये कहते हैं किसी चीज का प्रयोग करने के बाद उसे यथास्थान रखने की मेरी आदत है। बहुत खूबसूरत और बहुत ही बढ़िया वाली आदत है सर आपकी, लेकिन घर में अन्य लोग ऐसा नहीं करते हैं। इस बात पर परिवार के अन्य सदस्यों से मेरी झिकझिक हो जाती है। इसके अलावा रात के समय सोने से पहले गैस की नॉब बंद करना, दरवाजा अच्छे से लॉक करना और दांतों पर ब्रश करने जैसी बातों को रोज रोज याद दिलाने पर भी परिवार के लोग मुझसे परेशान हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, पता है क्या है? आप एक रिमाइंडर है। सर आपने एक रिमाइंडर है जो हर चीज के लिए सबको रिमाइंड करवाते हैं कि अब आपको ये काम करना है, अब आपको वो काम करना है। तो ये बहुत अच्छी वाली आदत है, कोई इसमें बुरी वाली आदतें नहीं है। सबको उनके लिए, उनके पूरे, उनके जो काम है उनको याद दिलाना, ये बहुत अच्छी बात है। और खुद के काम भी याद रखते हैं, ये और भी अच्छी आदत है। तो आई सल्यूट यू कि आप अगर ऐसे हैं कि अपने घर में हर चीज को मेंटेन करके रखते हैं, अच्छी आदतों को मेंटेन करते हैं और दूसरों को मेंटेन करने के लिए बोलते हैं, तो बहुत बहुत बहुत बढ़िया आदत है। सत्य प्रकाश सनोटिया रोहिणी दिल्ली से ये हमें लिख रहे हैं, बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने भेजा। और वाकई में, और आप अपनी इस आदत को ना हमेशा मेंटेन रखिएगा, बेशक कोई इरिटेट होता रहे, नो मैटर।

अगला संदेश हमें मिल रहा है डीकेपी परिहार जी का। ये कहते हैं, आदरणीय मैडम अर्चना जी को हार्दिक नमस्कार। आपको भी हार्दिक नमस्कार सर। अब आप अजीब सी आदतों के बारे में बेहतरीन बातें कर रहे हैं। किसी को ज्यादा खाने की या कोई ज्यादा बातों नहीं होता है, आजकल तो ज्यादा मोबाइल पर बिजी रहने की आदत होती है वाकई में। और बार बार मोबाइल चेक करना मेरी आदत है, बार बार मोबाइल चेक करना। जी हाँ, वही अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बोला था कि कुछ लोगों को स्टेटस चेक करने की आदत होती है। कुछ लोगों को अपना स्टेटस कितनी बार सीन हुआ है दूसरे लोगों के द्वारा, ये चेक करने की आदत होती है। और पता है एक दो वियर्ड आदत मैं बता दूं आपको, कि कई बार क्या होता है ना, आप चश्मा लगाते हैं, चश्मा आपके सर पर होता है, आपकी आंखों पर नहीं होता। आपके चश्मा जो आंखों पर लगाने वाली चीज है, वो आप सर पर रखकर घूम रहे होते हैं और उसको पूरी दुनिया में, पूरे घर में ढूंढ रहे होते हैं कि आखिर मेरा चश्मा गया कहाँ। और सडनली आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड आपको बताते हैं, अरे भाई आपका चश्मा तो आपके सर पर है, कहाँ ढूंढ रहे हो, उसको अपने सर से उतार कर अपनी आंखों पर लगाओ। ये होती है एक वियर्ड आदत जो अक्सर चश्मे लगाने वाले लोगों में मिलती है। और अब एक और आदत बताऊं, मोबाइल वाली। मोबाइल आपके पॉकेट में है, मोबाइल आपके हाथ में, इवन फिर भी आप मोबाइल ढूंढ रहे हैं। जब तक वो बच के खुद ना बोल देना कि भाई मैं तुम्हारी पॉकेट में हूँ, भाई मैं तुम्हारे हाथ में हूँ, मुझे ढूंढो मत, मुझे यहीं पर अपने हाथों में, अपने शरीर पर पाओगे, अगर गौर से देखोगे तो ये एक बहुत बहुत कॉमन और वियर्ड आदत है आजकल के लोगों में।

स्वीटी छाबड़ा जी का संदेश हमें मिल रहा है, ये कहती हैं आदत तो कोई भी बुरी होती है, आदत तो कोई भी हो बुरी होती है, बस लोगों को दूसरों की आदत दिखती है बट अपनी आदत तो किसी को भी नहीं दिखती है। सो मैं क्या बताऊं अपने बारे में आपको, मुझ में तो कोई ऐसी आदत नहीं दिखती क्योंकि जो भी करवाता है वो प्रभु ही करवाता है जो सब में वास करता है। ये तो थोड़ी उपदेश वाली बात हो गई, वाकई में ये बात तो सही है कि जो होता है वो ऊपर वाला करवाता है या वो बस होना है तो मतलब होना ही है, उसके लिए किसी रीज़न की ज़रूरत नहीं है। बट यार कभी कभी अपनी चीज़ अपने हाथों में कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ बातें होती हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिनका हम सुधार कर सकते हैं और दूसरे परेशान ना हो तो उन्हें त्याग भी सकते हैं। ये हमें लिख रहे हैं कहाँ से, नई दिल्ली से, साथ में हैं इनके इंद्रजीत कौर छाबड़ा और रविंद्र सिंह छाबड़ा।

नरेश मल्होत्रा जी का संदेश हमें मिल रहा है, बड़े ही शिकायती लहजे में ये कह रहे हैं कि जवाब तो दिया है दीदी जी, हमें शामिल नहीं करोगे क्या? जी मैं पहले ही आपको शामिल कर चुकी हूँ, अगर आप ध्यान से गौर से हमारे शो को सुन रहे हैं ना, तो मैं आपको बहुत पहले ही शामिल कर चुकी हूँ। लेकिन चलिए कोई नहीं, आपकी शिकायत एक बार फिर से दूर करते हुए आपको दोबारा से शामिल कर लेते हैं। और ये कहते हैं कि हमारी तो आदत रही है 35 साल से रेडियो सुनने की, तभी तो रोज आपसे जुड़ जाते हैं। थैंक यू सो मच, आपका प्यार यूं ही और आगे 350 सालों तक हमारे साथ बना रहे। मैं 35 साल नहीं बोलूंगी, 350 साल बोलूंगी, बेशक उस वक्त मैं हूं ना हूं, कोई हो ना हो, लेकिन आपका प्यार यूं ही हमारे इस आकाशवाणी के साथ बना रहे, हम सभी आजिज के साथ बना रहे, यही हमारी आशा है। आप लिख कहाँ से रहे हैं, आपने खैल बाजार पानीपत से आप हमें लिख रहे हैं, साथ में आपके हैं लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और डुग्गू भाविक सिक्का।

संदीप मक्कर जी का संदेश हमें मिल रहा है, ये कहते हैं सारा दिन रेडियो सुनना, ये बहुत अच्छी आदत है, बुरी आदत नहीं है, मैं वियर्ड आदतों की बात कर रही हूँ सर, थोड़ा सा वियर्ड आदत है बताइए ना। हम आगे लिख रहे हैं आप, सारा दिन रेडियो सुनना और प्रोग्राम की रिपोर्टिंग करना, घर वाले भी कई बार कह देते हैं रेडियो से ही शादी करने से हमसे क्या, अच्छा रेडियो से ही शादी कर लेते हमसे क्या जरूरत थी। संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, पेंगावाला चौक, गोरैया, जालंधर, पंजाब से। भैया अगर शादी कर भी लेते तो क्या ही फर्क पड़ता, छोटा सा तो रेडियो है, एक साइड में पड़ा रहता, सुनते रहते उसे, क्या ही था, और हमारे साथ जुड़े भी रहते।

मांगे राम जी का अगला संदेश हमें मिल रहा है, कहते हैं आपने सभी श्रोताओं की ईमेल शामिल किया, बहुत बहुत बधाई, हमारे ईमेल को नजरअंदाज किया, बहुत बहुत बधाई। नहीं किया सर, देखिए मैं ले रही हूँ आपका संदेश और ऐसे ही प्रोग्राम प्रसारित करते रहें, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको प्रोग्राम पेश करने का बहुत अच्छी आदत। अच्छा क्या कह रहे हैं समझ नहीं आया। अच्छा आपको प्रोग्राम कर पेश करने का बहुत अच्छी आदत है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है, मुझे तो यही फील हो रहा है कि अगर कोई मेरी शिकायत भी करता है ना तो मुझे अच्छा वाला सुनाई देता है कि हम अपनी तारीफ ही कर रहे हैं। एनीवेज अगर आपने ये संदेश हमें हमारी तारीफ में भेजा, शिकायत में भेजा है, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में भेजा, उसके लिए थैंक यू सो मच।

अगला संदेश हम ले रहे हैं डॉल राणा जी का। ये कहते हैं, नमस्कार। अच्छी और बुरी आदतें सबकी होती हैं, इन आदतों को नजरअंदाज ना करें और आदतों को सुधारें। देवी राणा नेहरू विहार दिल्ली से ये लिख रहे हैं। वाकई में अगर अच्छी आदतें हैं तो उन्हें कंटिन्यू रख सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, जारी रख सकते हैं, और अगर बुरी आदतें हैं तो उनमें सुधार जरूर करें।

0: सुदर्शन मुखी जी का अगला संदेश हमें मिल रहा है, साथ में है अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से ये लिख रहे हैं। ये कहते हैं कि अर्चना जी सादर प्रणाम, और ये कहते हैं हर इंसान में अच्छी बुरी आदत होती है, किसी में कम किसी में अधिक होती है। दुनिया में कोई भी संपूर्ण परफेक्ट नहीं है। आपका दिवस और जीवन बहुत शुभ और सुखद हो। थैंक यू सो मच, कोटि कोटि धन्यवाद। वाकई में हर किसी में आदत होती है, बुरी आदतें भी होती है, अच्छी आदतें भी होती हैं। जैसे कि हमारे पास बहुत सारी अच्छी आदतों का एग्जाम्पल आया, संदेश आया, और ऐसे ही बुरी आदतों का भी आया। किसी को कुछ सुनने की आदत है या कुछ गलत करने की आदत है, होता ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं तो बस यही कहूँगी सर कि अगर अच्छी आदतें हैं तो उन्हें जारी रखिए, और अगर बुरी आदतें हैं तो उन्हें सुधार लीजिए।
1: बजे घुंघरू बिना पायल के, बजे घुंघरू।
0: अगला संदेश ले रहे हैं फटाफट से ओम प्रकाश राय जी का। ये कहते हैं गुड मॉर्निंग दीदी जी, सभी के लिए रेडियो एक अहम चीज़ है। आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, फिर भी रेडियो का एक अलग ही महत्व है। रेडियो चाहे गरीब ही क्यों ना हो, उसके लिए उपलब्ध है। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय हमें ये संदेश भेज रहे हैं।

बोधराज खोरवाल जी के संदेश भेज रहे, कहते हैं कि हमारी तो एक ही आदत है, रेडियो में फरमाइश सुनना, चाहे कोई बुरा माने या भला, पर हम चुपचाप सुनते रहते हैं, क्या करें, मजबूर हैं दिल से। क्यों भाई, क्यों मजबूर क्यों हैं सर आप दिल से? आपका इतना प्यारा सा संदेश आता है, उस प्यारे से संदेश को हम बड़े ही प्यार से यहाँ पे ऑन एयर करते हैं विद आपके आईडी, आपके नाम के साथ। आप लिख कहाँ से रहे? उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश आपके साथ हैं। देखिए कितना प्यारा सा संदेश आपने भेजा, लेकिन रेलिवेंट नहीं भेजा। ये आदत बुरी वाली नहीं है, आदत अच्छी है, रेडियो सुनना चाहिए, बिल्कुल सुनना चाहिए, सुनेंगे तभी तो आप हमसे जुड़ेंगे। तो इस आदत को कंटिन्यू रखें,

हीरामन शेंडे जी का हमें संदेश मिल रहा है, ये कहते हैं मुझे रात में बार बार उठकर पानी पीने की आदत है। पानी पीने की आदत बुरी नहीं होती वैसे तो, लेकिन हाँ रात में बहुत बार अगर पानी पियेंगे तो बहुत बार फिर जाना भी पड़ेगा आपको होता है ना, लेकिन वैसे पानी पीना बहुत अच्छी आदत है दोस्त, ये जारी रखिए इस आदत को। लिख कहाँ से रहे हैं आप? किशोर नगर अमरावती से हीरामन शेंडे और साथ में है सिद्धार्थ गोंडाने।

अनिल जैन जी का अगला संदेश हमें मिल रहा है, ये कहते हैं मेरे अंदर एक मंदिर आदत है किसी से बात करते हुए, रेडियो पर प्रोग्राम सुनते हुए या कुछ भी करते हुए मुझे नींद आ जाती है। ऐसा पता है होता है, हम कभी मूवी देखने जाते हैं ना तो हॉल में भी नींद आ जाती है, या फिर हम किसी चीज से बोर होने लगते हैं ना तब हमें नींद आ जाती है। तो थोड़ी सी है तो सही बुरी आदत, क्योंकि अगर देखिए हमारा प्रोग्राम चल रहा है और आपको नींद आ गई तो ये बहुत ही गलत हो जाएगा हमारे साथ। आप लिख कहाँ से रहे हैं? मलियान सरधना मेरठ से, अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन और मास्टर जीवयम जैन।

अगले संदेश हमें मिल रहा है कुलदीप गुप्ता जी का। ये कहते हैं, मेरी एक बहुत बुरी आदत है कि कार्यक्रम सुनता हूँ तो उससे संबंधित मुद्दे के लिए मैसेज भेज देता हूँ और फिर इंतजार करता हूँ और फिर निराशा हाथ लगती है हाथ में। कुलदीप गुप्ता उधौली बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। मुझे नहीं लगता कि आपको निराशा हाथ लगी होगी आज। आज पूरी पूरी आशा आपके हाथ लगी होगी क्योंकि आपका जो संदेश है ना मैंने ले लिया है, क्योंकि आज पहली बार ही मैंने ये मैसेज देखा है सर, तो पहली बार मिला है और मैंने पहली बार ले लिया है। जहां तक मुझे लगता है आज आपकी आशा पूरी हो गई होगी, निराश नहीं हुए होंगे। और थैंक यू सो मच ये संदेश हम तक पहुंचाने के लिए।

धर्मेंद्र छिपा जी का इतना सारे मैसेजेस आ रखे हैं, शिकायती मैसेजेस हैं, पूरे पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं? सर आपका मेल जो हमने शामिल किया है दैट इज आई थिंक सफिशियंट है कि हमने आपका मेल शामिल किया है। आप फरमाइशें भेज रहे हैं, रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, संदेश भेज रहे हैं, हम ले रहे हैं, उसके बाद भी आप शिकायत हमसे कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपकी शिकायत भी सर आंखों पर। और ये लास्ट मैसेज जो आपका है ना वो मैं ले रही हूँ, ना तो फरमाइश का गीत बजता है ना हमारा मैसेज शामिल होता है। आप खाना पूर्ति कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल खाना पूर्ति नहीं कर रहे हैं। पूरा संदेश में हमने आपका पढ़ा है, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र, कपिल और ईशान, पूजा परिहार, इन सबका नाम मैंने लिया है। अगर आपने ध्यान से सुना हो ना तो मैंने सबके नाम लिए हैं सर। और इस तरीके से ना आप हमें थोड़ा सा डीमोटिवेट कर देते हैं कि आप शिकायती मेल भेजते हैं। एनीवेज आपकी शिकायतें भी हमारे सर आंखों पर। फिलहाल इस कार्यक्रम से ना रुखसत होने का जो वक्त है ना नज़दीक आ चुका है, 10:58 और पूरे 15 सेकंड्स हो चुके हैं। और सभी श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद जिन सभी ने हमारे इस शो में बढ़ चढ़ कर पार्ट लिया, अपने संदेश भेजे। और जिनका नहीं ले सके मैं संदेश आज के शो में, 19 तारीख को फिर से आपसे वापस मिलने आऊँगे, तब लेंगे और कोई नए टॉपिक पर बात करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत इस कार्यक्रम से रुखसत होने की। आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, स्वच्छता का ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। सुबह के ठीक 11 बजने को है। अब से थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी प्रसारित होगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है। एक रिपोर्ट।
2: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और वैमनस्य को दूर करने तथा शांति, सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कामना की कि ये दिन सद्भाव और भाईचारे को बनाए रखने के हमारे संकल्प को

और मजबूत करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि विभाजन के कारण करोड़ों लोगों को अपने घर, संपत्ति और प्रियजनों को छोड़कर विस्थापित होना पड़ा। सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने आज वीरता के 301 पदकों की सूची जारी की। इनमें पुलिस कर्मियों के लिए 272 और अग्निशमन सेवा के कर्मियों के लिए 29 पदक शामिल हैं। वीरता पदक जीवन और संपत्ति की रक्षा, अपराध रोकने या अपराधियों को पकड़ने में उल्लेखनीय साहस दिखाने के लिए प्रदान किया जाता है। 301 वीरता पदकों में से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के 197 कर्मी, जम्मू कश्मीर के 51 तथा पूर्वोत्तर के 12 और अन्य क्षेत्रों के 41 कर्मी शामिल हैं। कुल 92 राष्ट्रपति पदकों और 664 सराहनीय सेवा पदकों की भी घोषणा की गई है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया है कि यह व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेन हर 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगे। लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल के सबसे नजदीकी स्टेशन हैं। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इनकार कर दिया है तथा सीबीआई जांच और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय सीजीएल परीक्षा रद्द करने की अपनी मांगों को दोहराया है। प्रदर्शनकारियों ने अपने आंदोलन को और मजबूत करने के लिए कल तिरंगा यात्रा निकालने की भी घोषणा की है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने संयुक्त अरब अमीरात से भगोड़े ड्रग सरगना वीरेंद्र सिंह बसोया की वापसी सुनिश्चित कर ली है। उन्होंने कहा कि ये मादक पदार्थों के खिलाफ सरकार की कतई बर्दाश्त न करने के नेते में एक नया मील का पत्थर है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार विदेशों में छिपे ड्रग तस्करों का लगातार पीछा कर रही है। उत्तराखंड में चमोली जिले के पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजना स्थल पर कल भूस्खलन और पानी के रिसाव से 7 लोगों की मृत्यु हो गई और 14 घायल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी एजेंसियों को राहत और बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरस, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। वक्त हुआ है 11:20 और पूरे 10 सेकंड्स। सबरस की अगली प्रस्तुति रहेगी फाल्गुनी पाठक की आवाज में, ये खूबसूरत गीत।

इसी गीत के साथ सबरस कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के ठीक 11:30 होने को है। अब प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुरमंजरी। इसमें आज आप सुनेंगे अशोक कुमार चौरसिया और साथियों द्वारा शहनाई पर बजाया राग गुर्जरी तोड़ी।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुर मंजरी में अभी आप सुन रहे थे अशोक कुमार चौरसिया और साथियों द्वारा शहनाई पर बजाया राग गुजरी तोड़ी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर दोपहर के ठीक 12 बजने को है। अब से थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में और बाद में अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्र कल अपना 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे। सरकार ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के 100 लाभार्थियों को लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विशेष मेहमान के रूप में आमंत्रित किया है। सरकार ने स्वाधीनता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने आज वीरता के 301 पदक की सूची जारी की। इनमें पुलिस कर्मियों के लिए 272 और अग्निशमन सेवा के कर्मियों के लिए 29 पदक शामिल है। 301 वीरता पदकों में से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के 197 कर्मी, जम्मू कश्मीर के 51 तथा पूर्वोत्तर के 12 और अन्य क्षेत्रों के 41 कर्मी शामिल हैं। कुल 92 राष्ट्रपति पदकों और 664 सराहनीय सेवा पदकों की भी घोषणा की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के 21 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक तथा सराहनीय सेवा के लिए पदक प्रदान किए जाने की भी घोषणा की गई है। 6 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिया जाएगा। इनमें सहायक पुलिस महानिरीक्षक शोभा दत्ता, अपर पुलिस अधीक्षक मनोज बैनर्जी, अपर पुलिस अधीक्षक गिन्नी राणा और पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार सामल शामिल हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम 5:10 पर सैनिकों को संबोधित करेंगे। उनका संबोधन आकाश

0: फणी के एफएम गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृत दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है।
1: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और वैमनस्य को दूर करने तथा शांति, सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इनकार कर दिया है तथा सीबीआई जांच और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय सीजीएल परीक्षा रद्द करने की अपनी मांग को दोहराया है। प्रदर्शनकारियों ने अपने आंदोलन को और मजबूत करने के लिए कल तिरंगा यात्रा निकालने की भी घोषणा की है। सरकार ने जम्मू कश्मीर में 18 करोड़ 60 लाख रुपए की 3 विरासत संरक्षण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनका उद्देश्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों को पुनर्स्थापित करना तथा क्षेत्र की विरासत पर्यटन क्षमता को मजबूत करना है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज सुबह के सत्र में लगभग 0.5% नीचे कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 326 अंक गिरकर 77,754 पर और निफ्टी 73 अंक गिरकर 24,323 पर आ गया। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: घर आंगन।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम घर आंगन, जहां हम बात करेंगे जिंदगी के अनुभवों की, बदलते समय की और उन छोटी छोटी बातों की जो हमारे जीवन में खुशियां और रंग भरती हैं। और आज के सफर में मैं यानी प्रतिभा और
2: रश्मि कुकरेती आपके साथ रहेंगे।
1: तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार
2: भरा नमस्कार जी।
1: और श्रोताओं, आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और हमारे इंद्रप्रस्थ चैनल के लिसनर्स हमें सुन रहे हैं मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर। और रश्मि जी, देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे श्रोता जानते हैं कि आज शुक्रवार का दिन है और आज का दिन समर्पित होता है हमारे बुजुर्गों को, और हम बढ़ाते हैं एक कदम बुजुर्गों की ओर
2: जी, है ना? और एक कदम बुजुर्गों

0: की ओर जो ये कार्यक्रम है इसमें हम बात करेंगे परंपरा से लेकर तकनीक तक की और खान पान से लेकर आर्थिक सुरक्षा तक की और उनके शौकों की जो उम्र के हर पड़ाव पर प्रतिभा जिंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं।
1: जी, तो श्रोताओं हमारे साथ बने रहिए कार्यक्रम घर आंगन में। और देखिए रश्मि जी, हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक प्रश्न के साथ, है ना
0: जी।
1: तो अपने श्रोताओं से प्रश्न पूछ लेते हैं आज का।
0: तो क्या है प्रतिभा आज का प्रश्न?
1: आज का प्रश्न ये है कि बुजुर्गों के
0: अनुभव और युवाओं की ऊर्जा, ये दोनों मिलकर देश को बेहतर कैसे बना सकते हैं। और हम ये भी बता देते हैं प्रतिभा कि ये जो जवाब है वो कहाँ लिखकर भेजेंगे, यानी हमारी ईमेल आईडी fmgoldga@gmail.com। और इसके अलावा मैं एक और आईडी बता रही हूँ आपको, fmgoldaidelhi@gmail.com, यानी कि fmgoldga@gmail.com और fmgoldaidelhi@gmail.com। इन दोनों ईमेल आईडीज पर हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। और बात की है तुमने प्रतिभा देश की, तो सुन लेते हैं देश की ओर चलता हुआ गीत।

0: गोदान फिल्म में अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी को। और रश्मि जी, देखिए भारत की खूबसूरती उसकी विविधता में है। अलग
1: जी
0: अलग राज्यों की अपनी परंपराएं, त्योहार और मान्यताएं हैं जो हमारी सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाती है।
1: यानी प्रतिभा, आज आप जो बात करने जा रही हैं वो है तमिलनाडु के एक ऐसा ही जो खूबसूरत पर्व है, आदिपुरम।
0: जी, और जो कि तमिल महीने आदि में मनाया जाने वाला ये जो ये पर्व है वो देवी आंदाल को समर्पित है। और इस अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है और भक्त श्रद्धा के साथ उत्सव में शामिल होते हैं।
1: जी, और जो देवी अंदाल हैं उनकी कहानी कुछ इस प्रकार है प्रतिभा,
0: जी
1: कि उन्हें आदिपुरम की जो कहानी

0: नहीं है, वो श्री विल्लीपुथुर जन्मे शहर में जन्मी और देवी अंदाल के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है। अंदाल, जिनको गोदा देवी के नाम से भी जाना जाता है, वो कहते हैं कि मंदिर के उद्यान में एक शिशु के रूप में वहाँ के पुजारी को मिली और उन्होंने उसे प्यार से पाला पोसा और अपनी बेटी की तरह रखा। बाद में यही आंदल बड़ी होकर भगवान विष्णु की समर्पित भक्त बनी और जो मंदिर श्री रंगम के भगवान रंगनाथ जी, उनकी वो बहुत बड़ी भक्त हुई। और किंवदंती है कि वो जो है रोज उनके लिए मालाएं बुनती ताजे फूलों की और पूर्ण प्रेम और भक्ति के साथ समर्पित करती। और जो उनकी कविताएं हैं जिन्हें कि तिरुअप्पवई और नचियार तिरुमोझी के नाम से जाना जाता है, उसमें जो भगवान विष्णु से मिलन की अपनी तीव्र इच्छा व्यक्त करती। तो ये लंबा चलने वाला उत्सव है और बड़े उत्साह से मनाया जाता है।
1: बिल्कुल, देखिए जो आपने कहा कि लंबा चलता है, 10 दिनों तक चलता है ये
0: जी
1: उत्सव, और इसका जो समापन होता है वो मुख्य पूरम के दिन होता है। और उत्सव के अंतिम दिन भगवान रंगनाथ स्वामी और देवी आंदाल का दिव्य विवाह अत्यंत धूमधाम से कराया जाता है। और रश्मि जी जानती हैं कि मंदिर में देवी को कांच की हरी चूड़ियां अर्पित की जाती हैं और
0: जी
1: बाद में उन्हीं चूड़ियों को प्रसाद के रूप में भक्तों को, विशेषकर महिलाओं को, वो बांटी जाती
0: और
1: हैं।
0: हरी चूड़ियां जो हैं वो इंगित करती हैं
1: जी
0: सावन की ओर।
1: हाँ
0: और
1: जी
0: हम फिर वापस चलते हैं उसी गीत।

0: लता मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म जुर्माना में, और रश्मि जी देखिए मेल आने शुरू हो गए हैं,
1: जी
0: है ना। और सबसे पहले हमारे पास मेल आया है नवीन भाटिया जी का। वो कहते हैं कि बुजुर्गों के अनुभव कभी पुराने और गलत नहीं हो सकते, दोनों को एक दूसरे की बात सुनकर समझ कर ही आगे बढ़ा जा सकता है। तो
1: जी और अफरोज शेख कह रहे हैं कि बुजुर्ग अगर कोई काम करने की सलाह दे रहे हैं तो उनको सही मानते हुए और सोच समझकर ही काम करना चाहिए।
0: और एक और मेल आया है चरणदास जी का हिसार से। वो कहते हैं कि बुजुर्गों ने लंबा समय देखा है और समय ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है। अपनी गलतियों से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। उनसे पूछकर काम करेंगे तो हमसे गलती नहीं होगी।
1: बिल्कुल सही। और गौरी शंकर जी जुड़ गए हैं नागलोई से, आप कह रहे हैं राम राम, हमारी भी राम राम आपको। और कहते हैं कि बुजुर्ग जो है, बुजुर्गों से बच्चे अपने मन की बात अगर कहने लग जाएं तो बहुत तरक्की हो जाएगी, यानी बिगड़े हुए काम भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। भाई बड़ों ने जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और उनका तजुर्बा जो है जिंदगी भर काम आता है, तो उनका तजुर्बा और जो युवा हैं उनका उनकी ऊर्जा अगर मिल जाए, प्रतिभा, तो
0: बिल्कुल
1: हमें लगता है हमारा देश काफी आगे बढ़ेगा।
0: बहुत ही सही बात है ये। और देखिए मेल हम पढ़ते रहेंगे और हम श्रोताओं से ये गुजारिश करेंगे कि आप अपने जवाब हमें fmgoldga@gmail.com पर भेजते रहिए, तो रश्मि जी प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं,
1: जी
0: है ना।
1: जी
0: और देखिए स्वस्थ रहने के लिए सही खान पान बहुत ज़रूरी है, ये हम सभी जानते हैं। और जब मौसम हो बारिश का तो थोड़ी ज़्यादा सावधानी तो बनती है, क्यों, है
1: बिल्कुल
0: ना।
1: सही कह रही हैं
0: और
1: आप।
0: देखिए बारिश का मौसम आते ही मन करता है गरम गरम चाय पकौड़े मिलें और तरह तरह के स्वादिष्ट खाने का मन सभी का ही करने लगता है। लेकिन वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस मौसम में खान पान को लेकर थोड़ी सावधानी ज़रूरी है।
1: बिल्कुल, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भोजन हो वो ताज़ा हो, अच्छी तरह पका हुआ हो, खुले हुए रखें अगर भोजन हो तो वो ना खाएं, और बहुत ज़्यादा तले भुने खाने से भी प्रतिभा
0: बिल्कुल
1: बचना ही
0: जी
1: चाहिए, है ना, क्योंकि उम्र के साथ हम सभी का जो पाचन तंत्र होता है बुजुर्गों का ही क्या कमज़ोर हो जाता है, तो ऐसे में जो गरिष्ठ भोजन होता है स्वादिष्ट तो ज़रूर लगता
0: जी
1: है लेकिन स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता।
0: बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और देखिए मौसम जो बारिश का मौसम होता है थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, प्यास कम लगने लगती है, लेकिन शरीर को तो पर्याप्त पानी की ज़रूरत होती ही है। इसलिए डॉक्टर की सलाह के अनुसार पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लेते रहें। और सबसे ज़रूरी बात कि बारिश के मौसम में जो पानी है उसको उबाल कर पिएं, क्योंकि बारिश में पानी से होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।
1: हाँ, और अगर किसी वरिष्ठ नागरिक को पहले से ही कोई स्वास्थ्य समस्या है तो भाई डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही खान पान रखे, और जो परिवार में प्रतिभा युवा सदस्य रहते हैं उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि घर में जो बुजुर्ग हैं उन्होंने समय पर खाना खाया या नहीं, पानी पूरा पी रहे हैं, उनकी दवाइयों का भी ध्यान रखना जरूरी है।
0: बिल्कुल देखिए श्रोताओं भाई, आखिर सेहत की देखभाल बड़ी चीजों से नहीं बल्कि छोटी छोटी आदतों से ही होती है।

0: सुराग, अभी इस फिल्म में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को
1: जी।
0: और रश्मि जी, अब बात करते हैं सिल्वर इकोनॉमी की,
1: जी
0: है ना?
1: बिल्कुल। और सिल्वर इकोनॉमी का अर्थ है प्रतिभा, जो बुजुर्ग हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाली आर्थिक गतिविधियां,
0: जी
1: जैसे वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, जो कि हमारे बुजुर्गों की जो रोज की देख जो जरूरतें हैं उनको पूरा करें। तो क्योंकि भारत में तेजी से बढ़ती हुई जो बुजुर्ग आबादी को देखते हुए इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक और आर्थिक दोनों रूप से ये बहुत जरूरी है, है ना?
0: बिल्कुल। और देखिए, बुजुर्गों के लिए तकनीक, स्वास्थ्य और देखभाल से जुड़े नए आइडियाज को वित्तीय सहायता देना, मतलब जो इस सिल्वर इकोनॉमी का जो उद्देश्य है उसकी जो रणनीतियां हैं उसमें ये आता है। और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहतर ब्याज दर वाली पेंशन योजनाएं और सुरक्षित निवेश विकल्प लाना, साथ ही साथ बुजुर्गों की सुविधा के लिए धार्मिक सांस्कृतिक जो टूरिज्म है
1: जी,
0: ना, जहाँ बुजुर्ग जनरली देखिए जाना चाहते हैं, है ना
1: जी, बिल्कुल,
0: उनके लिए आरामदायक पर्यटन पैकेजों का विकास करना, ये सब आता है
1: जी। क्योंकि देखिए, जब बुजुर्ग यात्रा करते हैं तो उनकी जरूरतें अलग तरह की होती हैं। कई बार ऐसा होता है घुटनों में दर्द की समस्या रहती है, उनको व्हील चेयर्स की आवश्यकता रहती है, मेडिसिन की आवश्यकता रहती है और हेलीकॉप्टर्स की आवश्यकता रहती है। तो इस प्रकार से जो उनकी उनकी जो पर्यटन की सुविधाएं उनको जो दी जाती हैं, उस प्रकार के स्टार्टअप शुरू करना, ये भी बिल्कुल सिल्वर इकोनॉमी से जुड़े हुई बातें हैं। इसके अलावा जैसे बुजुर्ग होते हैं प्रतिभा, उनके लिए दवाएं, अस्पताल और घर में दी जाने वाली जो चिकित्सा है ना, वो देखभाल, जब उससे जुड़े स्टार्टअप आते हैं तो ये एक तरह से सिल्वर इकोनॉमी से जुड़े हुए स्टार्टअप हैं। तो ये भी बढ़ाने की जरूरत है, इसमें भी बहुत अवसर हैं।
0: और साथ ही साथ देखिए, पेंशन बीमा और निवेश योजनाओं को भी उम्र दराज लोगों के लिए जो जरूरी होती हैं उनका भी इस इकोनॉमी जो सिल्वर इकोनॉमी है उसके अंदर उसका ध्यान रखा जाता है
1: जी, है ना? और जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए विशेष सुरक्षित आवास, जिन्हें कहते हैं ना कि रियल एस्टेट में भी बहुत

0: सारे स्टार्टअप्स हो सकते हैं, क्योंकि अब हम देखते हैं ना सीनियर सिटीजन लिविंग होम्स होते हैं जहाँ की विशेषकर उन्हीं की जो आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इनका पूरी जो है नियोजन किया जाता है।
1: बिल्कुल।
0: तो इस प्रकार की जो सिल्वर इकोनॉमी है जो भारत में अर्थ और अर्थ का दायरा और उसका बहुत महत्व है, जिससे कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो समाज में आत्मनिर्भर भी हो सकते हैं और सक्रिय जीवन भी जी सकते हैं।
1: बिल्कुल।

0: मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे फिल्म जीवन मृत्यु में। और रश्मि जी देखिए मेल हमारे पास आ गए हैं, तो सबसे पहले मैं पढ़ती हूँ महेश अग्रवाल जी का, जो हरियाणा से लिख रहे हैं। वो हमको नमस्कार कह रहे हैं और कह रहे हैं कि बुज़ुर्गों का साथ बहुत ज़रूरी है हर काम में। उनका तजुर्बा होता है क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ देखा है, समझा है, परखा है। उनकी परख कभी भी व्यर्थ नहीं गई और उनका जो मार्गदर्शन होता है वो बहुत ज़रूरी है अगर आपको कामयाब होना है। देखिए कितनी अच्छी बात कह रहे
1: जी।
0: हैं।
1: और शांति नगर सोनीपत से सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी हमारे साथ जुड़ गए हैं और कह रहे हैं किताबों से अच्छा ज्ञान किताबों से अच्छा ज्ञान होता है और अनुभव का ज्ञान अनुभव का ही ज्ञान होता है। हमारे बुजुर्गों के पास वो होता है और क्योंकि जो समझ और समय जब एक साथ होते हैं तो सफलता ज़रूर मिलती है।
0: और देखिए डी राजेश्वर राव जी कह रहे हैं कि जो बुज़ुर्ग होते हैं वो लिविंग ब्रिज की तरह होते हैं, हमारे परिवार, हमारे इतिहास, हमारे संस्कार और हमारी जो नेटिव लैंग्वेज, जो हमारी भाषा होती है और वो हमारी जो रूट्स होती हैं, कल्चरल रूट्स, उनके बीच में एक ब्रिज की तरह काम करते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे स्थानांतरण होती है।
1: जी, हम तो ये कहेंगे ना कि बुजुर्ग दिशा दिखाएं और युवा जो है उस दिशा में गति दें तो देश की प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। और एक और मेल आ गई है हमारे साथ, आप हैं सुरभि, मयूर विहार से हमारे साथ जुड़ गई हैं। उन्होंने बड़ी प्यारी सी एक बात कही है, कहा है भाई बुजुर्ग कहेंगे हमारे जमाने में ऐसा होता था और युवा कहेंगे दादाजी हम इसका ऐप बना देते हैं। तो जब इस प्रकार की कुछ विचारधारा जुड़ेगी ना तो भाई क्या बात होगी। और एक और बात उन्होंने कही है कि जो बुजुर्ग हैं वो अनुभव की गाड़ी हैं और युवा एक्सप्रेस ट्रेन हैं, जब दोनों साथ चलेंगे तो देश की यात्रा जो है और भी तेज होगी और रास्ता भी सही रहेगा।
0: और देखिए मतलब जब ये दोनों गाड़ियां मिलेंगी तो जीवन का सफर भी बहुत सुहाना होगा, है ना। और तो आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में
1: जी। और जैसा कि विचार था तो नई पीढ़ी के साथ कदम ताल मिलाना बहुत जरूरी है, दोनों जो हमारी पुरानी पीढ़ी है और जो नई पीढ़ी है, तो ऐसा ही कुछ विचार लेकर हम बात करते हैं।
0: देखिए आज की दुनिया में स्वस्थ और सक्रिय रहने के साथ साथ बदलती दुनिया से जुड़े रहना भी तो जरूरी है, जैसा कि हम अभी बात कर ही रहे थे। और जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं रश्मि जी, वो इसमें किसी से भी पीछे नहीं है।
1: आज की दुनिया तेजी से बदल रही है। जो काम कभी चिट्ठी लिखकर या बैंक की लंबी कतार में लगकर किए जाते थे उनमें से कई काम ऐसे हैं जो अब तो बैठे बैठे मोबाइल पर कुछ मिनटों में हो जाते हैं और हमारे बुजुर्ग भी इस बदलाव के साथ कदम ताल कर रहे हैं
0: जी। और देखिए वरिष्ठ नागरिक आज स्मार्टफोन चला रहे हैं, वीडियो कॉल के जरिए दूर बैठे परिवार से जुड़ रहे हैं और ऑनलाइन जानकारी लेते हैं आज हमारे बुजुर्ग, और साथ ही साथ जो डिजिटल सुविधाएं हैं उनका भी इस्तेमाल करना सीख गए हैं।
1: वही कभी कभी तकनीक थोड़ी मुश्किल जरूर लग सकती है, ऐसे में जो नई पीढ़ी है उसका फर्ज है कि वो धैर्य के साथ बुजुर्गों की मदद करें, क्योंकि ये रिश्ता जो है ना ये एक तरफा रख नहीं है, आप उसी पेड़ के फल हैं भाई जो बूढ़ा हो चुका है।
0: जी बिल्कुल। और देखिए युवा पीढ़ी तकनीक सिखा सकती है तो वरिष्ठ नागरिक अपने अनुभव और जीवन की समझ को साझा कर सकते हैं। वही आखिर नई और पुरानी पीढ़ी का साथ ही तो परिवार को मजबूत बनाता है।
1: और ये कदम ताल सिर्फ तकनीक सीखने और सिखाने का नहीं है भाई, दिल से दिल मिलना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, समझाना चाहिए, जहां जरूरत हो एक दूसरे की भावनाओं को समझें, जो आज हमारे बुजुर्ग और युवक भी कर रहे हैं और भी करें तो कितनी अच्छी बात हो।

0: मेरा गांव मेरा देश। अभी इस फिल्म में आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को। और रश्मि जी
1: जी बिल्कुल
0: है ना, देखिए जीवन में एक पड़ाव ऐसा आता है जब व्यक्ति थक कर बैठ जाता है ना, यानी जब वृद्धावस्था आ जाती है, तब एक और चीज़ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जो कि है आर्थिक सुरक्षा।
1: भाई देखिए, समय के साथ जिंदगी में बहुत सारी चीजें बदलती हैं, काम की व्यस्तता भी कम होती है, लेकिन जो खर्ची है, जरूरतें हैं, वो थोड़ा थोड़ा बनी ही रहती हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी है प्रतिभा की आर्थिक सुरक्षा हो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है।
0: बिल्कुल, देखिए अपनी पेंशन बचत और नियमित खर्चों का ध्यान रखना जरूरी, दस्तावेजों को सुरक्षित रखना और भविष्य के खर्चों की योजना बनाना ऐसे में बहुत उपयोगी हो जाता है, बहुत आवश्यक हो जाता है ना।
1: जी, और इसमें पहले ही हमें सोचना चाहिए कि हमें क्या निवेश करना है, लेकिन ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो आर्थिक फैसले होते हैं उसमें जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। बिना पूरी जानकारी के किसी भी तरह के निवेश में अपना पैसा लगाने से बचना चाहिए। और एक बहुत ज़रूरी बात जो बार बार हम FM गोल्ड चैनल से कहते हैं कि अनजान लोगों के साथ बैंक की जानकारी और OTP और पासवर्ड जैसी संवेदनशील जानकारी भाई कभी भी साझा ना करें।
0: बिल्कुल, और देखिए किसी भी वित्तीय निर्णय से पहले परिवारजन या किसी जो वित्तीय सलाहकार होते हैं उनसे सलाह लें, और परिवार के सदस्यों को भी चाहिए कि वरिष्ठ नागरिकों के आर्थिक मामलों में उनका सहयोग करें वो, है ना, और उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करें, क्योंकि आर्थिक सुरक्षा सिर्फ पैसों की बात नहीं होती है। मतलब जब अपनों का साथ मिलता है तो बुजुर्गों को भी बहुत अच्छा लगता है
1: जी। और आर्थिक सुरक्षा जब होती है ना प्रतिभा, तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है ना। एक विश्वास होता है कि हाँ, कोई भी अगर समस्या आएगी तो मेरे पास उतना धन है, उतने मैं मजबूत हूँ आर्थिक तरीके से कि मैं भविष्य के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो आर्थिक सुरक्षा भविष्य को सुरक्षित तो करती ही है, लेकिन जिंदगी सिर्फ भविष्य की चिंता करने का नाम नहीं है। जिंदगी में कुछ ऐसा भी होना चाहिए, मतलब आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल जैसा, जो हमें खुशी भी दे, व्यस्त रखे, हर दिन का इंतजार भी करवाए अपने कार्यक्रम जो है एक कदम बुजुर्गों की ओर, ये सुनने का और गीत संगीत के साथ जुड़ने का।
0: बिल्कुल।

0: रोटी कपड़ा और मकान, अभी आप इस फिल्म में सुन रहे थे लता मंगेशकर को। और देखिए रश्मि जी, एक मेल है हमारे पास
1: जी
0: उग्रसेन यादव जी का। वो कहते हैं कि बात बुजुर्गों की हो तो मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगा कि जो नई जनरेशन है, अगर वो अपने बुजुर्गों के साथ रोज कुछ घंटे, 1 घंटा अपने बुजुर्गों के साथ बैठे, तो उनके अनुभव को सुनकर धीरे धीरे जो हमारी युवा जो जनरेशन है, जो हमारे जो युवक हैं, उनका हृदय परिवर्तन होने लगेगा, उनमें संस्कार आएंगे, और जो युवा हैं वो बुजुर्गों की तकलीफों को करीब से जान पाएंगे, उनको समझेंगे, और इससे दोनों का ही अनुभव बढ़ेगा और बुजुर्गों को आपसे मदद मिलेगी।
1: जी
0: तो देखिए कितनी अच्छी बात कही है उन्होंने।
1: जी और उमेश कुमार ख्याला से कह रहे हैं कि हमें अपने बड़ों के कहने पर चलना चाहिए, और जो बुज़ुर्गों के साथ अगर आप काम करेंगे, उनके अनुभव से सीखेंगे, तो भाई वो कहते हैं लाभ ही लाभ मिलेगा। इसके अलावा शीश पल वर्धन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं गाज़ियाबाद से। वो कहते हैं कि मैं 75 साल का हूँ, लेकिन मैं अपने आप को बिल्कुल यंग मानता हूँ जी। और आप हैं शीशपाल अकेला जी, लेकिन आप अकेले कहाँ हैं, आप आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के
0: जी
1: साथ
0: बिल्कुल,
1: हैं, एक कदम बुजुर्गों की ओर इस कार्यक्रम के साथ हैं जो आप ही के लिए खासकर बनाया गया है। और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तो बिल्कुल हम तो कहेंगे कि अगर आप सेहतमंद हैं, अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दे रहे हैं, और रोज अगर आप जो है एक्टिव हैं, तो फिर हम कहेंगे बीमारियों से भी दूर रहेंगे, अपने आप को बिल्कुल एकदम जवान महसूस करेंगे। और हम ये कहेंगे जो युवा हैं प्रतिभा, उनको तो वो तो अगर तकनीक सिखाएं बुजुर्गों को, और युवा जो हैं बुजुर्गों से धैर्य
0: जी
1: सीखें, क्योंकि युवाओं को वाईफाई चाहिए और
0: बिल्कुल
1: बुजुर्गों को उनका साथ चाहिए।
0: जी
1: तो फिर हमें लगता है कि ऐसा जब दो पीढ़ियां जुड़ेंगी तो अनुभव और ऊर्जा का संगम होगा और हमारा देश जो है वो आगे बढ़ेगा। क्या कहती हैं आप?
0: बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप रश्मि जी। देखिए ये बहुत ज़रूरी है, बुज़ुर्ग अपने जीवन और कार्य क्षेत्र का अनुभव युवाओं से साझा करके युवाओं को मतलब बहुत कुछ सिखा सकते हैं, और युवा जो हैं वो अपने अनुभव को नई तकनीक और आधुनिक सोच के साथ बुज़ुर्गों को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, है
1: इसके
0: ना।
1: अलावा रोजगार और उद्यमिता की अगर हम बात करें, ये तो अनुभवी बुजुर्ग जो हैं वो युवाओं को व्यवसाय और रोजगार के क्षेत्र में भी मार्गदर्शन दे सकते हैं, और युवा नए स्टार्टअप और नवाचार के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं।
0: बिल्कुल
1: और इसके अलावा दोनों पीढ़ियां मिलकर भाई हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा, स्वच्छता हो, पर्यावरण संरक्षण हो, शिक्षा हो, मतदान हो और सामाजिक जागरूकता हो, ऐसे अगर अभियान होंगे तो फिर तो क्या बात है।
0: बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। देखिए ऐसे अभियान होंगे, ऐसे सब जुड़ेंगे तो ये बात होगी सोने पे सुहागा, क्यों।
1: जी और भाई बुजुर्ग अपने हुनर और पारंपरिक ज्ञान को युवा तक जब पहुंचाते हैं, और युवा उसे आधुनिक बाजार और तकनीक से जब जोड़ते हैं, तो संभावनाएं अपरिमित हो जाती हैं।
0: बिल्कुल, और देखिए हम तकनीक की बात कर रहे हैं, हम युवाओं की बात करें तो अब एक तकनीक की बात हम कर लेते हैं, क्योंकि तकनीक ने हमारे जीवन को कई तरह से, कई लिहाज से आसान बना दिया है, और आज स्वास्थ्य सेवाएं भी इससे अछूती नहीं है। ई संजीवनी भारत सरकार की राष्ट्रीय टेली मेडिसिन सेवा है, जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से लोग ऑनलाइन डॉक्टर से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए जिन्हें हर बार अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र तक जाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में ऐसी डिजिटल सुविधा उनके लिए काफी उपयोगी हो सकती है।
1: इसके जो आधिकारिक ई संजीवनी पोर्टल के माध्यम से देश का कोई भी नागरिक घर पर बैठे मुफ्त ऑनलाइन वीडियो या ऑडियो के जरिए डॉक्टर से परामर्श और डिजिटल पर्ची यानी ई प्रिस्क्रिप्शन प्राप्त कर सकता है।
0: देखिए इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग बैठे हैं उनके लिए भी ये बहुत उपयोगी है,
1: जी
0: और ऐसे में उन्हें भी घर बैठे इलाज की सुविधा उपलब्ध हो सकती है, और अस्पताल की लंबी लाइनों से में खड़े हुए बिना मोबाइल या कंप्यूटर से सीधे डॉक्टर से संपर्क ये कर सकते हैं।
1: और ये जो OPD है और ये परामर्श सेवा है, ये नागरिकों के लिए बिल्कुल ही निशुल्क है। और इसमें प्रतिभा एलोपैथी के साथ साथ जो आयुर्वेद है, जो हमारे भारत का ज्ञान है स्वास्थ्य का, और होम्योपैथी के विशेषज्ञ डॉक्टर ये भी उपलब्ध हैं।
0: बिल्कुल, और देखिए इसमें आप अपना टोकन जनरेट कर सकते हैं, वीडियो ऑडियो कॉल के माध्यम से डॉक्टर से जुड़ सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, हालांकि गंभीर या आपात स्थिति में देखिए हम भी यही कहेंगे और सब यही कहते हैं कि चिकित्सक से सहायता लेना जरूरी है, तो ऑनलाइन परामर्श को हमेशा परिस्थिति के अनुसार ही इस्तेमाल करें।

0: और रश्मि जी देखिए कार्यक्रम समाप्त करने का समय हो गया है और घड़ी ने हमें इजाजत अब नहीं दे रही है, वो कह रही है कि हम अपने श्रोताओं से ले अनुमति। तो इसी के साथ मुझे यानी प्रतिभा को
1: और रश्मि कुकरेती को दीजिए अनुमति।
0: नमस्कार।

0: घर आंगन।
1: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्र कल अपना 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे। सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के 100 लाभार्थियों को लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विशेष मेहमान के रूप में आमंत्रित किया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME ने कहा कि समारोह में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा लाभार्थियों की भागीदारी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के अनमोल योगदान को मान्यता देने जैसा है। सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने आज वीरता के 301 पदक की सूची जारी की। इनमें पुलिस कर्मियों के लिए 272 और अग्निशमन सेवा के कर्मियों के लिए 29 पदक शामिल हैं। 301 वीरता पदकों में से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के 197 कर्मी, जम्मू कश्मीर के 51 तथा पूर्वोत्तर के 12 और अन्य क्षेत्रों के 41 कर्मी शामिल हैं। कुल 92 राष्ट्रपति पदकों और 664 सराहनीय सेवा पदकों की भी घोषणा की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के 21 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक तथा सराहनीय सेवा के लिए पदक प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। 6 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिया जाएगा। इनमें सहायक पुलिस महानिरीक्षक शोभा दत्ता, अपर पुलिस अधीक्षक मनोज बैनर्जी, अपर पुलिस अधीक्षक गिन्नी राणा और पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार सामल शामिल हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम 5:10 पर सैनिकों को संबोधित करेंगे। उनका संबोधन आकाशवाणी के FM गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होगा। तमिलनाडु में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। बस टर्मिनल, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जैसे सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय

0: के फोर्ट सेंट जॉर्ज के प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। तमिलनाडु पुलिस की अलग अलग इकाइयों ने आज फुल ड्रेस रिहर्सल की। संवेदनशील इलाकों में यातायात का मार्ग बदला गया है। स्वाधीनता दिवस समारोह के मद्देनजर दिल्ली यातायात पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में लाल किले के आसपास आने जाने वाले यात्रियों के लिए यातायात संबंधी परामर्श जारी किया है। ये सुबह 4 बजे से दिन के 10 बजे तक प्रभावी रहेगा। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें, अतिरिक्त समय लेकर चलें। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने लाल किले में स्वाधीनता दिवस समारोह में शामिल होने वाले विशेष अतिथियों और आम जनता की आवाजाही के लिए विस्तारित मेट्रो सेवाओं की घोषणा की है। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कामना की कि यह दिन सद्भाव और भाईचारे को बनाए रखने के हमारे संकल्प को और मजबूत करेगा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के लालगोला पुलिस स्टेशन के अंतर्गत बलिग्राम इलाके से पुलिस ने 7 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत केंद्र में भेज दिया है। इन 7ों को कल हिरासत में लिया गया था। आरोप है कि वे कुछ महीने पहले भारत बांग्लादेश सीमा के रास्ते अवैध रूप से भारत में दाखिल हुए थे और बाद में काम की तलाश में दक्षिण भारत चले गए थे। घरेलू शेयर बाजार में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 261 अंक गिरकर 77,819 पर और निफ्टी 60 अंक गिरकर 24,336 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Valsa Williams. The nation will celebrate the 80th Independence Day tomorrow. Prime Minister Narendra Modi will lead the celebrations from the iconic Red Fort in Delhi. Flower petals will be showered at the venue by 2 Mi-17 helicopters of the Indian Air Force. After the showering of flower petals, the Prime Minister will address the nation from the ramparts of the Red Fort. More from our correspondent.
2: The grand event is set to commemorate 150 years of the enduring legacy of the national song Vande Mataram and celebrate the energy, aspirations and pivotal contribution of Yuva Shakti in driving India's journey towards Viksit Bharat by 2047. For the first time, Vande Mataram will be rendered during the celebrations at Red Fort. Around 5,000 special guests from different walks of life have been invited to witness the celebrations at Red Fort. These include artisans under PM Vishwakarma scheme, women entrepreneurs under PM Mudra Yojana, street vendors under PM Swanidhi and taxi drivers of Bharat Taxi. Delhi police has also made elaborate security arrangements in the national capital. With Dipendra, Anand Kumar, Akashwani News, Delhi.
1: Today is Partition Horrors Remembrance Day. Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah and Defence Minister Rajnath Singh have paid homage to all those who lost their lives and to those who struggled against the atrocities during the partition in 1947. In a social media post, Mr. Modi termed the partition as a moment in history that tore apart several lives, where families were uprooted, loved ones were lost, and immense suffering was endured. The Prime Minister also wished that the day deepens everyone's resolve to preserve harmony and brotherhood in the country and collectively work towards building a Viksit Bharat. The government has invited 100 beneficiaries of PM Vishwakarma from the Delhi NCR region as special guests to witness the 80th Independence Day ceremony at the Red Fort in Delhi. The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises informed the beneficiaries will also be presented with souvenirs as a token of recognition and appreciation, followed by an interaction with officials of the Ministry of MSME today. The government has announced gallantry and service medals for 1,057 personnel of the police, fire services, home guard and civil defence and correctional services on the occasion of Independence Day tomorrow. The Ministry of Home Affairs today released the list of 301 medals for gallantry, including 272 for police personnel and 29 for fire service personnel. President Draupadi Murmu will

0: Address the nation today on the eve of the 80th Independence Day. The President's address will be broadcast at 7 p.m. on the entire national network of Akashvani. It will also be telecast on all channels of Doordarshan in Hindi, followed by the English version. The telecast of the address in Hindi and English on Doordarshan will be followed by its broadcast in regional languages on the regional channels of Doordarshan. Akashvani will broadcast the regional language versions of the address at 9:30 p.m. on its respective regional networks. In view of the 80th Independence Day celebrations, the Delhi Traffic Police has issued a traffic advisory for commuters travelling around the Red Fort in the national capital. The advisory will remain in effect from 4 a.m. to 10 a.m. to ensure public safety and convenience. Meanwhile, the Delhi Metro Rail Corporation, DMRC, has announced extended metro services for the movement of special guests and the general public attending the Independence Day celebrations at the Red Fort. Commuters can deboard at Lal Qila, Jama Masjid and Delhi Gate metro stations to reach the Red Fort. The DMRC stated that the extended metro service will begin at 4 a.m. and will operate at an interval of 30 minutes until the regular scheduled timetable comes into effect. The Indian Meteorological Department has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall over Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, Jharkhand, Uttar Pradesh and Uttarakhand tomorrow. Heavy rainfall conditions are also likely to prevail over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, West Madhya Pradesh, Madhya Maharashtra, Odisha, Vidarbha, Sub-Himalayan, West Bengal and northeastern parts of India during the next 2 days. Benchmark domestic equity indices were trading moderately lower in afternoon trade today. The Sensex fell 261 points to 77,819 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर. इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:10 हुए हैं. वक्त है कार्यक्रम एक ही फिल्म से का. तो कार्यक्रम एक ही फिल्म से लेकर हाजिर हूं मैं आपकी होस्ट और दोस्त रिया. स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार. श्रोताओं, आज जिस फिल्म के बारे में हम आपसे बात करेंगे उस फिल्म का नाम है लम्हे. जी हाँ, वर्ष 1991 में बनी फिल्म लम्हे एक भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण यश चोपड़ा जी ने किया था और इसकी पटकथा हनी ईरानी और राही मासूम रजा ने लिखी थी. इस फिल्म में श्रीदेवी माँ पल्लवी और बेटी पूजा की दोहरी भूमिका में है और अनिल कपूर वीरेन के मुख्य किरदार में शामिल हैं. साथ ही वहीदा रहमान, अनुपम खेर, दीपक मल्होत्रा और दिप्पी सगू ने महत्वपूर्ण सहायक भूमिका भी निभाई है. तो चलिए श्रोताओं, बातें तो और भी होंगी, उससे पहले आइए सुनते हैं फिल्म का पहला गीत.

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोताओं, फिल्म लम्हे के संगीत के बारे में अगर हम बात करें तो इसका संगीत शिव कुमार शर्मा और हरि प्रसाद चौरसिया, जिन्हें शिव हरि के नाम से जाना जाता है, इन्होंने तैयार किया था और गीत आनंद बख्शी ने लिखे थे। इस फिल्म का गीत मोरनी बागामा बोले और कभी मैं कहूँ आज भी उतना ही लोकप्रिय है जितना पहले हुआ करता था। साथ ही आपको बता दें कि इस फिल्म ने 37वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में कुल 5 पुरस्कार जीते, जिसमें कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए यश चोपड़ा जी को फिल्मफेयर अवार्ड मिला, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए श्रीदेवी जी को, सर्वश्रेष्ठ कहानी के लिए हनी ईरानी को, सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता के लिए अनुपम खेर को और सर्वश्रेष्ठ संवाद के लिए राही मासूम रजा ने पुरस्कार प्राप्त किए। और प्राप्त हो भी क्यों ना, फिल्म थी ही इतनी बेहतरीन।

श्रोताओं, लम्हे फिल्म की शूटिंग राजस्थान और लंदन में दो चरणों में की गई थी। हालांकि फिल्म ने घरेलू स्तर पर औसत कारोबार किया, लेकिन समीक्षकों ने इसकी सराहना की। इस फिल्म को बॉलीवुड की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की सूची में शामिल किया गया है और इस फिल्म के निर्देशक यश चोपड़ा जी की बनाई फिल्मों में उनकी निजी पसंदीदा फिल्म बताई गई है।

श्रोताओं, लम्हे फिल्म की कहानी की अगर बात करें तो एक वीरेन नाम का लड़का लंदन से राजस्थान अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए आता है। तभी उसकी मुलाकात जयपुर में एक खूबसूरत लड़की पल्लवी से होती है। उसे देखते ही वीरेन को पल्लवी से पहली नजर में प्रेम हो जाता है, लेकिन पल्लवी सिद्धार्थ नाम के लड़के से प्रेम करती है और उससे शादी कर लेती है। ये देखकर वीरेन का दिल टूट जाता है। कुछ दिनों बाद एक हादसे में पल्लवी और उसके पति की मौत हो जाती है और ये वीरेन को अंदर से झंझोर देता है। मरने से पहले पल्लवी एक बेटी को जन्म देती है जिसका नाम पूजा होता है। वीरेन पूजा की परवरिश की जिम्मेदारी लेता है, लेकिन वो पल्लवी की यादों से बाहर नहीं आ पाता। साल बीतता है और पूजा बड़ी होकर बिल्कुल अपनी माँ पल्लवी जैसी दिखने लगती है। पूजा वीरेन से प्रेम करने लगती है, लेकिन वीरेन अपने मन में सिर्फ पूजा की माँ पल्लवी के प्रति अपनी वफादारी बनाए रखता है। उसके बाद पूजा वीरेन से के प्यार को पाने की जिद करती है। फिल्म के अंत में वीरेन को एहसास हो जाता है कि पूजा की भावनाएं सच्ची है। वीरेन अपनी पुरानी यादों से बाहर निकलकर पूजा के प्रेम को स्वीकार करता है और कहानी एक सुखद मोड़ पर खत्म हो जाती है।

श्रोताओं, फिल्म लम्हे अपनी अनूठी कहानी और बेहतरीन गीतों के लिए जानी जाती है। पिछले कुछ वर्षों में ये फिल्म एक कल्ट क्लासिक मूवी बन गई और अब फिल्म अपने समय से आगे थी।

इसी के साथ संपन्न होता है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आशा करती हूँ फिल्म से जुड़ी जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी। अब अपनी होस्ट रिया को दीजिए अनुमति।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को है, कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर, पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 80वें आजादी दिवस तो पहला दी शाम राष्ट्र नूं संबोधन करनगे। 2026 दे स्वतंत्रता दिवस दे मौके ते केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI दे 21 अधिकारियों नूं विलक्खण सेवा लई राष्ट्रपति मैडल अते शानदार सेवा लई मैडल नाल सन्मानित कीता गया है। चंडीगढ़ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभपात्रियों लिए CBDC आधारित भोजन सब्सिडी के सीधे लाभ तबादले को पूरी तरह लागू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बनया। 1947 की वंड दौरान अपनिया जाना गवाउण अते जुल्मा खिलाफ संघर्ष करने वाले की याद विच आज विभाजन विभीषिका यादगारी दिवस मनाया जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 2 दिन दौरान पंजाब, हरियाणा ते चंडीगढ़ समेत उत्तर पूर्वी भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है। हुण खबरां विस्तार नाल। राष्ट्र भलके अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 80वें आजादी दिवस तो पहला दी शाम राष्ट्र नूं संबोधन करनगे। राष्ट्रपति दा भाषण आकाशवाणी दे सारे राष्ट्रीय चैनलों ते शाम 7 प्रसारित किया जाएगा। ए सारे दूरदर्शन चैनलों ते हिंदी विच प्रसारित किया जाएगा, जिस तों बाद अंग्रेजी रूप भी प्रसारित होगा। दूरदर्शन ते हिंदी अते अंग्रेजी विच संबोधन दे प्रसारित होने तों बाद इस नूं दूरदर्शन दे खेतरी चैनलों ते खेतरी भाषावां विच भी प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी के स्रोतियों नूं सूचित किया जाता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के देश के नां संदेश के मद्देनजर पंजाबी खबरां दा शाम 7:30 प्रसारित होने वाला राष्ट्रीय बुलेटिन आज शाम 8 प्रसारित होगा। देश भलके अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के इतिहासक लाल किले तो जश्ना की अगुवाई करेंगे। भारतीय हवाई फौज के 2 MI-17 हैलीकाप्टर समागम स्थान ते फुलां दी वर्खा करेंगे। राष्ट्रीय झंडा लहराया जाएगा ते 21 तोपां दी सलामी दी जाएगी। फुलां दी वर्खा तो बाद प्रधानमंत्री लाल किले की फसील तो राष्ट्र नूं संबोधन करेंगे। पहली बार लाल किले विखे जश्ना दौरान वंदे मातरम गाया जाएगा। नैशनल कैडेट कोर अते माई भारत वलंटियर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाउणगे अते उस तों बाद राष्ट्रगान गाया जाएगा। फौज, समुद्री फौज अते हवाई फौज दे कुल 2500 कैडेट अते माई भारत वलंटियर जिन्हां च कुड़ियां ते मुंडे दोवें शामिल ने जश्ना विच हिस्सा लैणगे। लाल किले विखे जश्न देखण लई वख-वख खेतरां दे करीब 5000 विशेष मेहमानां नूं सद्दा दित्ता गया है। इस समारोह दे मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी विच सुरक्षा दे व्यापक प्रबंध भी कीते ने। सरकार ने दिल्ली दे लाल किले विखे 80वें आजादी दिवस समारोह नूं देखण लई राष्ट्रीय राजधानी खेतर दिल्ली तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना दे 100 लाभपात्रियों नूं विशेष मेहमान वजों सद्दा दित्ता है। सूखम, छोटे ते दरमियाने उद्यम बारे मंत्रालय MSME ने किया है कि लाभपात्रियों नूं सत्कार ते प्रशंसा दे प्रतीक वजों यादगारी तोहफे प्राप्त होणगे, जिस तों बाद अज MSME अधिकारियों नाल गल्लबात होएगी। सद्दे गए लाभपात्री प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना दे अधीन आउंदे 18 रवायती किट्टियां नाल जुड़े होए ने। इना विच दर्जी, तरखान, सुनियारे, लोहार, ताला बनाउण वाले ते होर कारीगर शामिल ने। इना लाभपात्रियों नूं इस योजना दे तहत कई लाभ प्राप्त होए ने, जिस विच रजिस्ट्रेशन, बुनियादी हुनर सिखलाई, टूल किट अते योजना दे तहत होर सहायता शामिल ए। इना विशेष मेहमानां विच वख-वख रवायती किट्टियां विच रुझियां औरत कारीगर भी शामिल ने। पंजाब च स्वतंत्रता दिवस का मुख राजपदरी समारोह फिरोजपुर विखे होगा, जिथे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान राष्ट्रीय झंडा लहराउणगे। पंजाब विधानसभा दे स्पीकर श्री कुलतार सिंह संधवा रूपनगर विखे अते डिप्टी स्पीकर तरनतारण विखे होण वाले समारोहां विच राष्ट्रीय झंडा लहरा के जश्नां च हिस्सा लैणगे। बाकी जिलियां विच वी पंजाब दे मंत्रियां अते नाल ही डिवीजनल कमिश्नरां ते डिप्टी कमिश्नरां वल्लों आजादी दिवस दे समारोहां दी प्रधानगी कीती जाएगी। आजादी दिहाड़े दे मद्देनजर पंजाब भर विच सुरक्षा दे पुख्ता इंतजाम किए गए ने। किसान सुखावी घटना नूं हुण तों रोकण लई पुलिस वल्लों थां थां ते नाके ला के वाहनां दी जांच की जा रही है। बाजार, बस अड्डियां ते सड़कां ते रेलवे स्टेशनां समेत संवेदनशील थावां ते पुलिस वल्लों गश्त की जा रही है ते कई जिलियां च झंडा मार्च भी कटे जा रहे ने। 2026 ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ CBI ਦੇ 21 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਸੇਵਾ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 6 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਸੇਵਾ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ੋਭਾ ਦੱਤਾ, ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮਨੋਜ ਬੈਨਰਜੀ, ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗਿੰਨੀ ਰਾਣਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਮਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। सरकार ने आजादी दिवस के मौके ते पुलिस हक बुझाऊ अमले, होमगार्ड्स अते सिविल सुरक्षा ते सुधार सेवावां दे 1057 मुलाजमां नूं बहादरी अते सेवा मैडल देण दा ऐलान कीता है। गृह मंत्रालय ने अज 301 बहादरी मैडलां दी सूची जारी कीती है। इन्हां विच पुलिस मुलाजमां लई 272 ते अग बुझाऊ अमले दे मुलाजमां लई 29 मैडल शामिल ने। बहादरी मैडल जान मान दी रक्षा करन, अपराध नूं रोकण जां अपराधियां नूं फड़न विच असाधारण हिम्मत दिखाउण लई दित्ते जांदे ने। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਹੈ @AIRRNEWS ਜਲੰਧਰ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 80वें आजादी दिवस तो पहला दी शाम आज शाम 5:10 ते सैनिकां नूं संबोधन करनगे। उन्हां दा संबोधन आकाशवाणी दे FM गोल्ड ते इंद्रप्रस्थ चैनल ते प्रसारित कीता जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तहत केंद्रीय बैंक डिजिटल करंसी CBDC सीधे लाभ तबादले DBT लई डिजिटल रूपी अज केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ विच जारी कीता गया। यह पहल भारत सरकार वलों भलाई योजनावां विच सबसिडी वाले अनाज दे भौतिक वंड तो सीधे लाभ तबादले अते हुण CBDC राही उद्देश बाद डिजिटल डिलीवरी तक दे अगले विकास नूं दर्शाउंदी है। अधिकारित हलकां दे हवाले नाल साडे पत्रकार ने दस्सिया है कि चंडीगढ़ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दे लाभपात्रियां लई CBDC आधारित भोजन सबसिडी दे सीधे लाभ तबादले नूं पूरी तरह लागू करन वाला देश दा पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इस समारोह की प्रधानगी पंजाब दे राज्यपाल ते केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ दे प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया ने की थी। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख मेहमान अते खपतकार मामले, खुराक ते जनतक वंड बारे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी विशेष मेहमान वजो शामिल होए। इस मौके अपने संबोधन विच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खुराक सुरक्षा सब तो वड्डी तरजीह है।
2: खाद्य सुरक्षा सबसे पहली चीज है, पैदा करेंगे इतना कि देश की जनता का तो पेट भरेंगे, जब पड़ेगी तो दुनिया का भी पेट भर के दिखाएंगे। तो अन्न का भंडार भरपूर है, मैं बहुत विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन खेतों में किसान जो अन्न पैदा कर रहा है वो गरीब की थाली तक समय पर पहुंच जाए।
1: ये पहलकदमी दादरा ते नगर हवेली लई भी चंडीगढ़ तो ही वर्चुअल माध्यम राही शुरू की गई। अज विभाजन विभीषिका यादगारी दिवस है। इस मौके देश 1947 दी वंड दौरान अपनियां जानां गवाउण अते जुल्मां खिलाफ संघर्ष करन वालियां नूं श्रद्धांजलि भेंट कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वंड दौरान अपनियां जानां गवाउण वालियां अते जुल्म खिलाफ संघर्ष करन वालियां नूं श्रद्धांजलि भेंट कीती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट विच वंड नूं इतिहास दा इक अजिहा पल दस्सिया जिसने कई परिवार बेघर कर दित्ते अते लोकां नूं बेअंत दुख झलने पए। प्रधानमंत्री ने इस गल ते जोर दिता कि उन्हां दीआं जीवन यात्रावां सारिआं नूं मनुखी भावना दी ताकत दी याद दवाउंदीआं ने। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB ने भगौड़े नशा तस्कर सरगना वीरेंद्र सिंह बासोया दी संयुक्त अरब अमीरात तो वापसी यकीनी बना ली है। आज सवेरे नवी दिल्ली दे IG हवाई अड्डे ते पहुंचण ते उस नूं हिरासत विच लै लिया गया। भारतीय एजेंसियां वल्लों संयुक्त अरब अमीरात दे अधिकारियां नाल लगातार तालमेल राही उस दी भारत

0: वापसी संभव बनाई गई है। श्री शाह ने कहा कि नशीले पदार्थों के खिलाफ सरकार दी बिल्कुल भी बर्दाश्त ना करन वाली नीति विच एक नवा मील पत्थर है। सरकार ने जम्मू कश्मीर विच 18 करोड़ 60 लाख दे 3 विरासती समाल प्रोजेक्टा नू मंजूरी दित्ती। इन प्रोजेक्टा दा उद्देश इतिहासक ते सभ्याचारक महत्व वाले स्थाना नू बहाल करना ते खेतर दी विरासती सैर सपाटा संभावना नू मजबूत करना है। भारतीय मौसम विभाग MD ने आज हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड समेत उत्तर पूर्वी भारत के कई इलाकों में भारी तो बेहद भारी बारिश लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन दौरान पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली ते भारत के होर उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी भारी बारिश होने की संभावना है। आखिर च खास खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अज असीवें आजादी दिवस तो पहला दी शाम राष्ट्र नूं संबोधन करेंगे। 2026 के स्वतंत्रता दिवस के मौके ते केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के 21 अधिकारियों नूं विलखण सेवा लिए राष्ट्रपति मैडल अते शानदार सेवा लिए मैडल नाल सम्मानित किया गया है। चंडीगढ़ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभपात्रियों लिए CBDC आधारित भोजन सबसिडी के सीधे लाभ तबादले को पूरी तरह लागू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बनया। इस नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला प्रादेशिक बुलेटिन शाम 6:20 तक होगा। नमस्कार।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं फैसल खान। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 80वें यौम आजादी के मौके पर आज शाम कौम से खिताब करेंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल दिल्ली में तारीखी लाल किले से यौम आजादी की तकरीबात में कौम की क्यादत करेंगे। आज मुल्क की तकसीम की हौलनाकी की याद का दिन मनाया जा रहा है। वजीर आजम, वजीर दाखिला और वजीर दिफा ने उन लोगों को खराज अकीदत पेश किया जिन्होंने मुल्क की तकसीम के दौरान अपनी जानें कुर्बान की थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रोन्स दरामद पर 100% तक के नए महसूल का ऐलान किया है और छत्तीसगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज बहुत शदीद बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 80वें यौम आजादी से कबल आज शाम मुल्क के लोगों से खिताब करेंगी। सदर जमहूरिया का यह खिताब आकाशवाणी के पूरे कौमी नेटवर्क पर शाम 7 बजे से नशर किया जाएगा। दूरदर्शन के सभी चैनलों पर पहले यह खिताब हिंदी में टेलीकास्ट किया जाएगा और उसके बाद अंग्रेजी में होगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में इस खिताब के टेलीकास्ट के बाद दूरदर्शन के इलाकाई चैनलों पर इसे इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। इधर आकाशवाणी से भी सदर जमहूरिया का यह खिताब मुतालिका इलाकाई नेटवर्क पर रात 9:30 बजे इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। कल पूरे मुल्क में 80वां यौम आजादी मनाया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी दिल्ली में तारीखी लाल किले से यौम आजादी की तकरीबात की क्यादत करेंगे। कौमी परचम लहराने के साथ साथ 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इस मौके पर भारतीय फिजाइया के 2 हेलीकॉप्टर फूलों की पत्तियां बरसाएंगे जिसके बाद वजीर आजम लाल किले की फसील से कौम से खिताब करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: इस अजीम शान तकरीब के साथ साथ कौमी गीत वंदे मातरम की शानदार विरासत के 150 साल मुकम्मल होने और 2047 तक विकसित भारत की समत भारत के सफर को आगे बढ़ाने में युवा शक्ति की तवानाई, उमंगों और उनके ग्रां कद्र ताउन का जश्न भी मनाया जाएगा। लाल किले पर तकरीबात के दौरान पहली मरतबा वंदे मातरम गाया जाएगा। NCC के कैडेट्स और माई भारत के रजाकार पहले कौमी गीत वंदे मातरम और फिर कौमी तराना गाएंगे। फौज, बहरिया और भारतीय फजाइया के 2500 लड़के लड़कियां और माई भारत के रजाकार इन तकरीबात में हिस्सा लेंगे। इनके अलावा जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 5000 खसूसी मेहमानों को भी लाल किला तकरीबात का नज़ारा करने की दावत दी गई है। दिल्ली पुलिस ने इस मौके पर कौमी राजधानी में सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए हैं। मुख्तलिफ एजेंसियों के तकरीबन 15,000 सिक्योरिटी एहलकारों को भी तैनात किया गया है। लाल किला और उसके आसपास 1,000 CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। इसके अलावा शहरियों में हुब्बुल वतनी के जज्बे को फरोग देने और यौम आज़ादी का जश्न मनाने की गरज से मुल्क भर में 343 अहम मकामात पर बहुत से बैंड्स अपने फन का मुजाहरा करेंगे। नई दिल्ली से दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक।
1: कल यौम आज़ादी के मौके पर दिल्ली मेट्रो के तमाम टर्मिनल स्टेशनों से खिदमत सुबह सवेरे

0: 4 बजे से शुरू होंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन ने कहा है कि यह फैसला इसलिए किया गया है ताकि यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत करने के लिए खसूसी मेहमानों, मुदीन और आम लोगों को आने जाने में सहूलत फराहम हो सके। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन ने कहा है कि मेट्रो खिदमात सभी लाइनों पर 30-30 मिनट के वक्फे से चलेंगी, इसके बाद वो बाज़ाब्ता तौर पर चलाई जाएंगी। हुकूमत ने दिल्ली के लाल किले पर यौम आज़ादी की 80वीं तकरीब का नज़ारा करने के लिए खसूसी मेहमानों की हैसियत से दिल्ली NCR खित्ते से PM विश्वकर्मा के 100 मुस्तफेदीन को मधु किया है। बहुत छोटी और औसत दर्जे की सनातों की वजारत ने बताया कि इन मुस्तफेदीन को आज MSMEs की वजारत के अफसरों के साथ बातचीत के बाद कद्र शनासी और कद्रदानी के अलामत के तौर पर सुवेनियर भी पेश किए जाएंगे। मधु किए गए मुस्तफेदीन में दर्जी, कारपेंटर, सोनार, लोहार, तालासाज समेत PM विश्वकर्मा के तहत आने वाले 18 रिवायती कारोबार की नुमाइंदगी करते हैं। मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में यौम आज़ादी की तकरीब के सिलसिले में मुनासिब तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं ताकि पुरमन और खुश उसलूबी से यौम आज़ादी तकरीबात को यकीनी बनाया जा सके। शहरी इंतजामिया की तरफ से दीगर जरूरी तैयारियां और इंतजाम के साथ सभी मकाम पर सिक्योरिटी के कसीर सतही इंतजाम किए गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: इस साल यौम आज़ादी की तकरीबात के मौके पर पूरे कश्मीर में बड़े पैमाने पर तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी और हुब्बुल वतनी से मुतालिक सरगर्मियां अंजाम दी जाएंगी। श्रीनगर से टीटवा में लाइन ऑफ कंट्रोल तक तिरंगा रैलियां और हुब्बुल वतनी के नगमे इन तकरीबात का खास हिस्सा होंगे। इस दौरान मरकज के जेर इंतजाम इस पूरे इलाके में कसीर सतही सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। खास तकरीब श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में मुनक़द की जाएगी, जहां वजीर आला उमर अब्दुल्ला मेहमान खसूसी की हैसियत से इस तकरीब में शिरकत करेंगे। न्यूज़ डेस्क से उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आज मुल्क की तकसीम की हौलनाकी की याद का दिन है। आज उन सभी लोगों को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है जिन्होंने 1947 में मुल्क की तकसीम के दौरान नाकाबिल तसव्वुर दुख और तकलीफ का सामना किया और अपनी जान कुर्बान कर दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने उन सभी लोगों को खराज अकीदत पेश किया जिन्होंने मुल्क की तकसीम के दौरान अपनी जानें कुर्बान की थीं और जिन्होंने मुल्क की तकसीम की हौलनाकी की याद के दिन के मौके पर जुल्म सितम के खिलाफ जद्दोजहद की थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने मुल्क की तकसीम को तारीख में एक ऐसा लम्हा करार दिया जिसमें बहुत से जानें कुर्बान हुई, जहां बहुत से कुंबे उजड़ गए, लोगों के अजीज व अकारीब की जानें गईं और जबरदस्त तकालीफ और मुसीबत का सामना किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रोन्स और उनके कलपुर्जों की दरामद पर 100% तक के नए महसूल का ऐलान किया है और कहा है कि इस कदम का मकसद मजकूरा सनअत में गैर मुल्की सप्लायर्स पर अमरीका का इन्हिसार कम करना है, जबकि बड़ी हद तक इस सनअत में चीन का गलबा है। व्हाइट हाउस के एक बयान के मुताबिक कौमी सलामती वजूहात से यह फैसला किया गया है। व्हाइट हाउस के एक बयान के मुताबिक यह फैसला कौमी सलामती की बुनियादों पर किया गया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मनुष्यात की रोकथाम के ब्यूरो NCB ने मुत्तहिदा अरब अमारात से मनुष्यात के मफरूर सरगना वीरेंद्र सिंह बसोया की मुल्क वापसी और हवालगी को यकीनी बना लिया है। उन्होंने कहा कि यह मनुष्यात के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की हुकूमत की पॉलिसी में एक नए संगमील की हैसियत रखता है। झारखंड के रांची में एहतजाज करने वाले तलबा आज 21वें दिन भी सरकारी भर्तियों में शफाफियत की मांग कर रहे हैं। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में इस मुजाहरे के दौरान तलबा लीडरों और हुकूमत के दरमियान तातुल में इजाफा हो गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: पिछले 3 हफ्तों से रांची में जारी तलबा का एहतजाज अब एक हसास मरहले में दाखिल हो गया है। तलबा के लीडर देवेंद्र नाथ महतो ने जो भूख हड़ताल की वजह से अस्पताल में दाखिल है एक वीडियो मैसेज जारी किया है जिसमें वो तहरीक को मजबूत और जारी रखने की अपील कर रहे हैं। खराब सेहत के बावजूद उन्होंने इल्जाम लगाया कि कुछ लोग तहरीक को कमजोर करने और उसे किसी और सम्त में मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान हुकूमत के एक वजीर की तरफ से तलबा के वफ्द की सदाकत पर सवाल उठा जाने के बाद तलबा के लीडर रविंद्र पासवान ने रद्दअमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि वफ्द के सभी अरकान सही हैं और सच्चे हैं। इस दौरान मुमताज़ माहिर तालीम अलका पांडे ने तलवा के एहतजाज की हिमायत में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम का दौरा किया। रांची से पूनम करकेटा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबर।

0: Ahani in Baleswar district is flowing at 7.84 meters against the danger level of 6.50 meters. Flood water has again entered through a breach in the Anandpur ring embankment. Joda and Balwil in Keonjhar district are also waterlogged. In Mayurbhanj, the Budha Balanga has spilled into parts of Baripada while several roads are underwater. The Subarnarekha and Baitarani rivers are above danger levels with more rainfall forecast. Residents in low-lying and river bank areas have been advised to remain alert. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
1: And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu to address the nation on the eve of 80th Independence Day. Prime Minister Narendra Modi to lead the nation in Independence Day celebrations from the iconic Red Fort in Delhi tomorrow. Partition Horrors Remembrance Day being observed today. Prime Minister, Home Minister and Defence Minister pay homage to all those who lost their lives during partition. India dispatches first tranche of 20 metric ton relief supplies to Colombia to support ongoing post-earthquake recovery efforts. And alert issued for very heavy rainfall over Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, Jharkhand, Uttar Pradesh and Uttarakhand today. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और रक्षा मंत्री ने विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यों में सहयोग के लिए 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी और छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र कल अपना 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे।
3: लाल किले में होने वाले इस समारोह में पहली बार वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रगान होगा। यह भव्य कार्यक्रम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 साल पुरानी गौरवशाली विरासत को याद करने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में सेना, नौसेना और वायुसेना के करीब 2500 कैडेट और माई भारत के स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे। इस समारोह में देश के अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों को भी लाल किला में आमंत्रित किया गया है। इनमें पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगर, पीएम मुद्रा योजना की महिला उद्यमी, पीएम स्वनिधि योजना के रेहड़ी पटरी वाले और भारत टैक्सी के टैक्सी चालक शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने समारोह को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के करीब 15,000 जवानों को तैनात किया गया है और 1,000 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा देशवासियों में देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए देश भर में 343 प्रमुख स्थानों पर प्रस्तुतियां भी आयोजित की जा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने वाले विशेष अतिथियों और आम जनता की आवाजाही के लिए विस्तारित मेट्रो सेवाओं की घोषणा की है। यात्री सुबह 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशनों पर उतरकर लाल किले तक पहुंच सकते हैं। सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1,057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
4: गृह मंत्रालय ने आज वीरता के 301 पदकों की सूची जारी की। इनमें पुलिस कर्मियों के लिए 272 और अग्निशमन सेवा के कर्मियों के लिए 29 पदक शामिल हैं। वीरता पदक जीवन और संपत्ति की रक्षा, अपराध रोकने या अपराधियों को पकड़ने में उल्लेखनीय साहस दिखाने के लिए प्रदान किया जाता है। 301 वीरता पदकों में से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के 197 कर्मी, जम्मू कश्मीर के 51 तथा पूर्वोत्तर के 12 और अन्य क्षेत्रों के 41 कर्मी शामिल हैं। विशिष्ट सेवा के लिए कुल 92 राष्ट्रपति पदकों की भी घोषणा की गई है। इनमें पुलिस सेवा के 83, अग्निशमन सेवा के 4, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड सेवा के 3 तथा सुधार सेवा के 2 पदक शामिल हैं। इसके अलावा 664 सराहनीय सेवा पदकों की भी घोषणा की गई है। इनमें पुलिस सेवा के 606, अग्निशमन सेवा के 28, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड सेवा के 18 तथा सुधार सेवा के 12 कर्मी शामिल हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
2: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के 21 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक तथा सराहनीय सेवा के लिए पदक प्रदान किए जाने की भी घोषणा की गई है। 6 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिया जाएगा। इनमें सहायक पुलिस महानिरीक्षक शोभा दत्ता, अपर पुलिस अधीक्षक मनोज बैनर्जी, अपर पुलिस अधीक्षक गिन्नी राणा और पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार सामल शामिल हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम 5:10 पर सैनिकों को संबोधित करेंगे। उनका संबोधन आकाशवाणी के FM गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होगा। देश भर में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए सभी प्रमुख आयोजन स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
5: शहरों से लेकर सरहदी इलाकों तक इस साल पूरे जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर तिरंगा रैलियां और देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम आयोजन किए गए। श्रीनगर में डल झील के किनारे निकाली गई मेगा तिरंगा यात्रा हो या लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक रैलियां, वुलर झील के किनारे 2 किलोमीटर लंबे तिरंगे की नुमाइश हो या डल और मानसबल झीलों में राष्ट्रीय ध्वज लहराती हुई शिकारा रैलियां, इस साल स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां बड़ी अनोखी रही। सभी जिलों में छात्रों, सरकारी कर्मचारियों, सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों ने रैलियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस बीच पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
2: उधर तमिलनाडु में बस टर्मिनल, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जैसे सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय चेन्नई के पोर्ट सेंट जॉर्ज के प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। चेन्नई के महत्वपूर्ण स्थानों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कों पर आज तिरंगा यात्रा के दौरान पूरे शहर में देशभक्ति का उत्साह देखने को मिल रहा है।
6: भोपाल में आज हर घर तिरंगा अभियान के तहत विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हैं। कोलार 6 लेन स्थित मदर टेरेसा स्कूल के सामने से शुरू हुई ये यात्रा करीब 32 किलोमीटर का सफर तय कर भैंसाखेड़ी मंडी पहुंचेगी। आयोजकों का दावा है कि यात्रा में करीब 1,00,000 से ज्यादा लोग शामिल हो रहे हैं। पूरे रास्ते में कई 100 जगह पर स्वागत की व्यवस्था की गई है। बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं और सामाजिक संगठनों के लोग हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हो रहे हैं। चूना भट्टी कई जगहों पर सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, जहां नशा मुक्ति और युवाओं को जागरूक करने के संदेश भी दिए जा रहे हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
2: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है।
7: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और वैमनस्य को दूर करने तथा शांति, सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने आज केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC ई रुपए का शुभारंभ किया। इस शुभारंभ के साथ चंडीगढ़ देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसने खाद्य सब्सिडी के लिए CBDC आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को पूरी तरह से लागू किया है। सरकार ने जम्मू कश्मीर में 18 करोड़ 60 लाख रुपए की 3 विरासत संरक्षण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनका उद्देश्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों को पुनः स्थापित करना और क्षेत्र की विरासत पर्यटन क्षमता को मजबूत करना है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने जनगणना 2027 के लिए परिवार अनुसूची से संबंधित प्रश्नावली अधिसूचित कर दी है। इसमें माता पिता का विवरण, आधार, मोबाइल नंबर, कुल बैंक खातों की संख्या, काम के स्थानों तक आने जाने का विवरण, धर्म और जाति से संबंधित 40 सवाल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने फरार ड्रग सरगना वीरेंद्र सिंह बसोया को संयुक्त अरब अमीरात से वापस लाने में सफलता हासिल की है। आज सुबह नई दिल्ली के IGI हवाई अड्डे पर पहुंचते ही उसे हिरासत में लिया गया। उन्होंने कहा कि ये मादक पदार्थों के खिलाफ सरकार की कतई बर्दाश्त न करने की नीति में एक नया मील का पत्थर है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इनकार कर दिया है।
8: छात्र कल राजधानी रांची की सड़कों पर एक भव्य तिरंगा मार्च निकाल रहे हैं जिसमें पूरे राज्य से हजारों युवाओं के जुटने की उम्मीद है। स्वतंत्रता दिवस समारोह और छात्र विरोध को देखते हुए रांची जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। संवेदनशील इलाकों और छात्रों के तिरंगा मार्च के रास्ते पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। छात्रों की मांगे हैं 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा को पूरी तरह रद्द किया जाए, पूरे मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच के आदेश दिए जाएं। सरकार राज्य के CID से मामले की जांच करा रही है और इस संबंध में JPSC के एक पूर्व अध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम करकेट्टा।
2: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस वर्ष जनवरी से मई के बीच कथित तौर पर आत्महत्या से 19 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर्मियों की मृत्यु के संबंध में केंद्रीय गृह सचिव और CRPF के महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद राहत कार्यों में सहयोग के लिए 20 मेट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि इस सहायता में दवाएं, चिकित्सा उपकरण, अस्थायी आश्रय और स्वच्छता सहायता तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत इस कठिन समय में कोलंबिया के साथ एकजुटता से खड़ा है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले में सुरंग हादसे के बाद आज घटनास्थल पहुंचे और राहत तथा बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने बचाव अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
9: 22 लोग कुल काम कर रहे थे, उसमें से 3 लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोग रेस्क्यू हो गए हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको यहाँ एडमिट किया है अस्पताल में। यहाँ पर बचाव के लिए और खोजबीन के लिए सभी प्रकार की एजेंसियां यहाँ पर हैं। हमारा प्रयास है कि सभी को जल्दी से जल्दी निकाला जाए।
2: पीपल कोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन सुरंग हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुरंग ढहने से हुई जान हानि पर दुख व्यक्त किया है। ओडिशा में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश के कारण उत्तरी हिस्सों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
0: उत्तरी ओडिशा के कई इलाकों में बाढ़ के हालात गंभीर है। बाढ़ का पानी निचले इलाकों में फैल रहा है, सड़कें डूब गई है और उफनती नदियों के वजह से संपर्क टूट गया है। केंदुझर जिले के आनंदपुर और पटना में बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि बालेश्वर जिले में मथानी में जलका नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आनंदपुर रिंग तटबंध में दरार

0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यों में सहयोग के लिए 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। और छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, दोपहर के 2:30 हुए हैं और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार।

0: तो दोस्तों, इस याहू के अंदाज को सुनने के बाद आपको ये तो पता चल गया होगा कि आज हम बात किसकी करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त आरती कौर और आप जुड़े हैं आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ पर, सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। दोस्तों, 14 अगस्त का जो ये दिन है, ये भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक ऐसा पन्ना है जब हमने उस सितारे को खो दिया था जिसने बॉलीवुड को डांस करना सिखाया। जी हाँ, आज बात करेंगे उसी अदाकार की जिनके आते ही पर्दे पर बिजली सी कौंध जाती थी, जिनकी आंखों में एक शरारत और चाल में एक अनूठा अंदाज था। आज हमारी जो ये खास पेशकश है वो समर्पित है याहू स्टार शम्मी कपूर जी की पुण्यतिथि पर। जी हाँ, शम्मी कपूर जी की आज पुण्यतिथि है, आज 14 अगस्त है और आज हम कर रहे हैं उन्हीं को याद उन्हीं के अंदाज में।
1: दुनिया चली चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे।

मुंबई में जन्मे थे एक बेटे जिनका नाम था शमशेर राज कपूर। जी हाँ, शम्मी कपूर का असली नाम एक्चुअली में यही था और उन्हीं को प्यार से हम कहते हैं शम्मी कपूर, लेकिन शम्मी कपूर नाम फिल्मी नाम है। असलियत में वो शमशेर राज कपूर के नाम से इस दुनिया में आए थे। महान थिएटर थे और फिल्म अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के बेटे, जिन्होंने मुगले आजम में अकबर का रोल किया है, याद है आपको? जी हाँ, और उन्हीं के एक और भाई थे राज कपूर, और राज कपूर के छोटे भाई शम्मी कपूर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने बड़े फिल्मी घराने से ताल्लुक रखने के बावजूद, मतलब जब हमें लगता है कि सब कुछ लाइफ में इनके सेटल्ड है, तो फिर इन्हें क्या दिक्कत आई होगी, आराम से फिल्मों में आ गए, आराम से सब कुछ मौका मिल गया। लेकिन नहीं, क्योंकि आपको फिल्मों में मौका तो आराम से मिल सकता है, एक फिल्मी फैमिली में पैदा होने का फायदा मिल सकता है, लेकिन आपको पसंद तो दर्शक करेंगे ना। और उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ, उनका जो शुरुआती जो सफर था वो आसान नहीं था। कैसे नहीं था ये भी बताऊंगी, लेकिन पहले ये गीत सुनते हैं।

जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे शम्मी कपूर साहब की असफलता के दौर की, क्योंकि वो फिल्मी फैमिली में पैदा हुए थे, इसलिए उन्हें फिल्मों में काम तो बहुत आसानी से मिला, लेकिन लोगों के बीच बीच जो पहचान थी वो बनाने में उन्हें काफ़ी वक्त लग गया। 1953 में एक फिल्म आई थी जीवन ज्योति, जिससे उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। शुरुआती दौर में उन्होंने लगातार 18 फ्लॉप फिल्में दी। उस समय लोग उन्हें राज कपूर की परछाई मानने लगे थे, लेकिन शम्मी कपूर जो थे वो अपने आप को एक पहचान दिलाना चाहते थे। वो चाहते थे कि लोग उन्हें उनके भाई के नाम से नहीं, उनके परिवार के नाम से नहीं, बल्कि उनके खुद के नाम से, उनके खुद की पहचान से जाने। और उन्होंने हार नहीं मानी और कोशिश करते रहे। फिर आया साल 1957, रिलीज हुई एक फिल्म तुमसा नहीं देखा। अपनी मूछें कटवा कर, हेयर स्टाइल बदल कर और एक बिंदास अंदाज में जब वो पर्दे पर आए तो एक नए शम्मी कपूर का जन्म हुआ। और इसके बाद 1961 की फिल्म जंगली आई, जिसका गीत आपने इसी कार्यक्रम के दौरान सबसे पहले सुना है। उस फिल्म ने उन्हें रातों रात भारत का एल्विस प्रेस्ली बना दिया। एल्विस प्रेस्ली जो थे वो अमेरिका के एक बहुत बड़े एक्टर सिंगर थे। उन्हें रॉक एंड रोल के सम्राट की उपाधि दी गई थी। तो सोचिए, हमारे देश में ये उपाधि मिली थी शम्मी कपूर को, क्योंकि उनका जो डांस का अंदाज था, उनका जो बॉडी की थिरकन थी, वो अपने आप में ही अलग थी। उन्हें किसी कोरियोग्राफर की जरूरत नहीं पड़ती थी। उनका कहना था कि जब भी कोई संगीत बजता है, पता नहीं मेरी बॉडी में क्या होता है कि मैं अपने आप ही उसकी बीट के साथ डांस करने लगता हूँ। फिलहाल उन्होंने हम सबको डांस करना सिखाया और इसी के बाद से हमने कहना शुरू किया कि तुमसा नहीं देखा।

दोस्तों ये जो गीत अभी आप सुन रहे हैं ये है फिल्म राजकुमार से, जिसमें शम्मी कपूर ने इस गीत के अंदर जो पिक्चराइजेशन है वो हाथी के ऊपर किया है और वो हाथी के ऊपर बैठे हैं और गीत गाते हुए मस्त मौला अंदाज में अपने वो इस गीत को बना रहे हैं। लेकिन पता है इस गीत के दौरान एक ऐसा हादसा हुआ था जिसके बाद से उनकी ज़िंदगी काफ़ी बदल गई, क्योंकि इस गीत में जहाँ पर वो हाथी के ऊपर बैठे हैं, हाथी ने जब चिंघाड़ा और अपनी सूंड को ऊपर किया तो उसके बाद उनके घुटने जो हाथी के कान के पास ही थे और वो दब गए और उनके घुटनों से काफ़ी तेज ओब्वियसली दर्द होने की आवाज़ भी आई। सबको पता चल गया कि कुछ गड़बड़ हो गई है, लेकिन शम्मी कपूर साहब तब भी नहीं रुके, उन्होंने इस गीत को फिनिश किया। अपना उन्होंने ये बात बताने की कोशिश की कि मैं अपने काम के प्रति कितना डेडिकेटेड हूँ, लेकिन इसके बाद उन्हें काफ़ी टाइम रेस्ट करना पड़ा और उसके साथ ही उनका जो फिल्मों में आने का जो जज्बा था वो तो बरकरार रहा, लेकिन उनका जो बॉडी का जो साइज था वो बढ़ता गया, यानी कि उनका वज़न वो बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि काफ़ी समय तक वो बिस्तर पर थे और इसके बाद से उनकी हालत में काफ़ी जो चेंजेस थे वो आप सबको देखने को मिले होंगे। ¶¶

दोस्तों, अभी तक आपने जितने भी गीत शम्मी कपूर के सुने, एक बात आपने शायद नोटिस की या नहीं की, मुझे नहीं पता, लेकिन आपने अगर ध्यान दिया होगा तो इन सभी गीतों के पीछे जो आवाज़ है, यानी जो प्लेबैक सिंगिंग है, वो किसकी है? वो है मोहम्मद रफ़ी की। जी हाँ, शम्मी कपूर और महान गायक मोहम्मद रफ़ी की जोड़ी को हिट जोड़ी माना जाता था। बॉलीवुड की ये सबसे सफल जोड़ियों में उस वक्त गिनी जाती थी और रफ़ी साहब जो शम्मी जी की आवाज़ बन गए थे। और शम्मी जी खुद रिकॉर्डिंग स्टूडियो जाकर रफ़ी साहब को बताते थे कि वो पर्दे पर कैसे एक्सप्रेशंस देंगे और आपको अपने गाने को उसी तरीके से गाना है। यानी कि उनकी जो जोड़ी थी वो एक मिसाल जोड़ी थी। उन्होंने इतने अच्छे अच्छे गीत दिए, चाहे वो जंगली का, चाहे कोई मुझे जंगली कहे ये गीत हो, इसके अलावा कश्मीर की कली का, तारीफ करूं क्या उसकी, तीसरी मंजिल का, ओ हसीना जुल्फों वाली, या इवनिंग इन पेरिस, या फिर ब्रह्मचारी, या ये गीत जो अभी आप सुन रहे हैं, ये सारे गीत बहुत ही दिल से, बहुत ही प्यार से मोहम्मद रफ़ी साहब ने उनके लिए गाए। और सच में ऐसा लगता था जैसे शम्मी कपूर ही इस गीत को गा रहे हैं, क्योंकि उनके एक्सप्रेशंस ही ऐसे होते थे।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, जिसमें हम बात कर रहे हैं रॉक एंड रोल कलाकार शमी कपूर की। शमी कपूर जी ने अपने 4 दशक से भी लंबे करियर में कई सम्मान और कई पुरस्कार भी हासिल किए। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला उन्हें फिल्म ब्रह्मचारी में उनके शानदार अभिनय के लिए। इसके अलावा उन्हें सहायक अभिनेता का भी जो अवार्ड था वो मिला फिल्म विधाता के लिए 1982 में। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी उन्हें फिल्म फेयर का मिला भारतीय सिनेमा में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए 1995 में, और जी सिने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी वो हासिल कर पाए 1999 में। यानी कि उन्होंने काफ़ी सारे जो अवार्ड्स थे वो हासिल किए। और उनका जो ये जीवन है ये हमें ये सिखाता है कि हार नहीं माननी चाहिए। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि 18 फिल्में फ्लॉप हुई थी उनकी, इतने के बाद बहुत सारे लोगों ने तो उन्हें टोकना शुरू कर दिया था कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में, वो तो सिर्फ अपने भाई की परछाई बन के रह जाएंगे। लेकिन इन अवार्ड्स की सूची जानने के बाद और सबसे बड़ी चीज़ उनके फिल्मों की जो कामयाबी है वो जानने के बाद, आज भी यानी उस दौर से लेकर आज तक हम उन्हें याद कर रहे हैं उनके गीतों से, उनके डांस से, उनके कला के अभिनय से, इन सब से हम उन्हें याद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान बनाई और हार नहीं मानी।

दोस्तों, शमी कपूर साहब ने लंबे समय तक अभिनय किया, कभी कैरेक्टर आर्टिस्ट के रूप में और अपने समय में वो तो एक्टर बन के आए ही थे, लेकिन 14 अगस्त सन 2011 को शमी जी इस दुनिया को अलविदा कह गए। पर जब भी उनके गीत आप सुनेंगे, जब भी आप उनका डांस देखेंगे और जब भी ये खूबसूरत गीत जितने भी मैंने अभी आपको सुनवाए, इनके अलावा भी बहुत सारे गीत हैं, बहुत सारी फिल्में हैं, उनका अभिनय है, ये सब आप देखेंगे तो आप उस याहू स्टार को भूल नहीं पाएंगे। उसकी गूंज आपके सीने में सुनाई देगी, क्योंकि शम्मी कपूर हमारे दिलों में जिंदा हो उठते हैं। उनका आखिरी ऑन स्क्रीन जो काम था वो था 2011 की फिल्म रॉकस्टार में उन्हीं के पोते रणवीर कपूर के साथ। दोस्तों, कार्यक्रम तो समाप्त हो गया है, बहुत सारी बातें हैं जो शमी कपूर साहब के बारे में मुझे आपसे कहनी थी, लेकिन क्या करें, वक्त नहीं है। शमी जी को उनकी पुण्यतिथि पर रेडियो परिवार की तरफ से शत शत नमन। आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। फिलहाल आप इसी तरीके से इस चैनल से जुड़े रहिए और सुनते रहिए। फिलहाल अपनी दोस्त आरती को इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 3 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मैटनी मेलोडीज़।

दोस्तों आप जुड़े हैं इंद्रप्रस्थ चैनल से, मैं हूं आपकी दोस्त आरती गौड़ और कार्यक्रम है मैटनी मेलोडीज। जब भी रेट्रो गानों की बात होती है तो दो नाम तो हमारे होठों पर अपने आप आ जाते हैं। एक है स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी और दूसरे सुरों के जादूगर मोहम्मद रफी साहब, जिन दोनों को ही अभी आप सुन रहे हैं। फिल्म का नाम है महबूब की मेहंदी।

दोस्तों, अभी आपने ये खूबसूरत सा गीत सुना स्वर कोकिला लता मंगेशकर की आवाज़ में, और साथ में थे सुरों के जादूगर मोहम्मद रफ़ी साहब। दोनों ने एक साथ दर्जनों सदाबहार जो डुएट हैं वो गाए हैं, लेकिन आपको कुछ उनके बारे में मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि इस गीत को सुनते सुनते मुझे भी कुछ याद आ गया। एक ऐसा किस्सा जो 1960 में हुआ था। जी हाँ, इस दशक में दोनों के बीच रॉयल्टी को लेकर इतनी बड़ी बहस हुई थी कि दोनों ने 3 साल तक एक दूसरे के साथ गाना बंद कर दिया था। अब सोचिए, सुरों का जादूगर भी नहीं है और लता मंगेशकर स्वर कोकिला भी गायब हैं, गानों में कितनी कमी रह गई। मतलब कितने और भी खूबसूरत गाने आ सकते थे अगर ये लड़ाई नहीं हुई होती। वो दोनों एक दूसरे को भाई बहन मानते थे, एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन कभी कभी होता है ना कि ओपिनियन मैच नहीं करते। बस यही हुआ। लता जी चाहती थी कि गायकों को भी गानों की रॉयल्टी मिले, जबकि रफ़ी साहब का मानना था कि एक बार जब सिंगर को फीस मिल गई तो गाना तो प्रोड्यूसर का हो गया। यानी दोनों के जो विचार थे वो बिल्कुल अलग थे। अब इसके बाद क्या हुआ ये भी आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आपको सुनवाती हूँ ये खूबसूरत सा गीत।

जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

दोस्तों, हम बात कर रहे थे उस बहस की, उस बात की, जिसमें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब एक दूसरे से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे, और इस वजह से उन्होंने 3 साल तक एक दूसरे के साथ काम नहीं किया, कोई गीत नहीं गाया। लेकिन उन दोनों के इस वैचारिक मतभेद को जो है सुलझाया, वो किसने सुलझाया? 1967 में ST वर्मन साहब ने उन दोनों के बीच में सुलह कराई, और उस सुलह के बाद बहुत सारे गीत उन्होंने गाए। उसी खूबसूरत और चुनिंदा गीतों में से एक खूबसूरत सा फूल, यानी कि ये प्यारा सा गीत आपके लिए चुनकर लाई हूँ उन्हीं दोनों की आवाज में।

0: दोस्तों आप जुड़े हैं इंद्रप्रस्थ चैनल पर। कार्यक्रम है कार्यक्रम है मैटनी मेलोडीज। और इस कार्यक्रम के दौरान आपको मैं बता रही हूँ कुछ ऐसे किस्से जो हुए थे रेट्रो के ज़माने में, यानी कि उस ज़माने में कुछ ऐसे किस्से हुए थे जो आज भी याद आते हैं। तो उन्हीं में से एक किस्सा मैं फिर से चुन के आपके लिए लेकर आई हूँ। बात करते हैं सबसे सतरंगी और हरफन मौला कलाकार किशोर कुमार की, किशोर दा की दीवानगी। और उनके किस्से तो कोई ऐसा है ही नहीं जो ना जानता हो। लेकिन आपको पता है कि किशोर दा अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा कर रखते थे जिस पर लिखा था बिवेयर ऑफ किशोर। ऐसा क्यों करते थे वो, ये भी बताऊंगी। पहले ये गीत सुनते हैं।
1: अरे मेरे यार, अपने रंग हजार।

तो दोस्तों मैं आपको सुना रही थी किस्सा किशोर कुमार का, और किशोर दा जो थे उनके पास एक बार संगीतकार एचपी पुरोहित उनके घर उनकी पेमेंट देने पहुंचे। लेकिन आपको पता है किशोर दा ने क्या किया? उन्होंने उनका हाथ काट लिया। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि किशोर दा अपने आप में एक मस्त मौला और हरफन मौला किरदार थे। वो अपनी ज़िंदगी में इस तरीके से जीते थे कि उस जीवन को जीने के लिए इंस्पिरेशन बन गए थे वो सबकी, क्योंकि उनके जो मूड थे ना वो हमेशा स्विंग होते रहते थे। वो अचानक से हंस देते थे, अचानक से शरारत कर देते थे, कुछ इस तरह से थे हमारे किशोर दा। लेकिन उनकी जो जादुई आवाज़ है ना वो कोई भूल नहीं पाता।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर दोपहर के 3:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

0: मिला तो उसे वापस फारसी की तरफ जाना पड़ा। अब उर्दू सहाफ़त और जंग आज़ादी का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो इसकी दास्तान पहली जंग आज़ादी 1857 से शुरू होती है। आपको मालूम है कि इस मुल्क की आज़ादी के लिए सबसे पहले जिस सहाफ़ी ने अपनी जान की कुर्बानी दी वो उर्दू दिल्ली उर्दू अखबार के एडिटर मौलवी मोहम्मद बाकर थे, जिन्हें 16 सितंबर 1857 को तोप के दहाने पर रखे उड़ा दिया गया था। उसी दौर में बहादुर शाह जफर के पड़पोते थे मिर्ज़ा बेदार बख्त और उनका अखबार था प्याम आज़ादी। उनको भी गिरफ्तार करके और उनके जिस्म पे सुअर की चर्बी मल करके उन्हें फांसी दे दी गई। और जहाँ जहाँ भी प्याम आज़ादी के शुमारे दस्तियाब हुए उन लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया और बड़ा जुल्म व सितम हुआ। ये तो एक पहलू जो है आगाज़ का है। और उसके साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ 1947 तक मुल्क की आज़ादी तक जो जंग आज़ादी का पूरा मतलब शुरू में तो जब 1857 की जंग नाकाम हो गई तो उससे अखबारों को भी बहुत नुकसान पहुँचा और उर्दू सहाफ़त भी बहुत पस्पा हुई। लेकिन 1907 में एक अखबार निकला इलाहाबाद से जिसका नाम था स्वराज्य। इस अखबार के 9 एडिटर्स को कालापानी की सज़ा हुई 10-10 साल की। इस अखबार के जो एडिटर थे बाबू शांतिलाल भटनागर, उन्होंने ये चाहा कि बेहतर से बेहतर लोग उनके अखबार से वाबस्ता हों और उसके मुदीर बने, तो वो कोशिश करते थे कि अच्छे से अच्छा और बासलाहियत एडिटर वहाँ पर आए। लेकिन जैसे ही कोई एडिटर नया आता था और वो इदारिया लिखता था तो उसको काले पानी भेज जाता था। और आपको ये एक दिलचस्प बात बताता हूँ कि उस अखबार में एक इश्तहार शाया होता था मुस्तकिल तौर पे, जिसकी इबारत ये थी कि ज़रूरत है एक एडिटर की जिसकी तनख्वाह जौ की एक रोटी और पानी का एक प्याला होगी जो उसे जेल में अदा की जाएगी
1: जी।
0: इस शर्त पर तकरीबन 9 एडिटर अपॉइंट हुए। एक एडिटर आता था और वो इदारिया लिखता था और उसे काला पानी की सज़ा दी जाती थी। मजमूई तौर पर तकरीबन 9 एडिटरों को 90 साल की सज़ा दी गई एक अखबार के
1: जी।
0: तो ये तो मैं आपको इब्तदाई दौर की बात बता रहा हूँ और आगे और गुफ्तगू करूँगा और आप दूसरे लोगों से
2: जी
0: बात
2: जी,
0: कर सकते।
2: जी जी जी हम यामीन अंसारी साहब से ये जानना चाहेंगे कि उर्दू के जो अखबार निकले उनमें ज़ाहिर हिंदू मिल्कियत के भी थे और मुस्लिम मिल्कियत के भी थे, दोनों मज़हबों के एडिटरों ने और अखबारों ने इस जंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया
1: जी।
2: जब इन अखबारों ने बरतानवी हुकूमत और उसकी जुल्म व इस्तबदाद के ख़िलाफ़ लिखना शुरू किया तो हुकूमत ने उन पर मज़ीद जुल्म व सितम ढाने शुरू कर दिए
1: जी।
2: तो जो इन अखबारात में जो कुछ छपता था उसका, हालांकि उनके तादाद अशात तो कम थी लेकिन मैं समझता हूँ आवाम पर खासा असर पड़ता था। तो आवाम पे इन अखबारात में जो कुछ छपता था चाहे वो नसर में हो या नज़्म में हो, वो आवाम के जोश व जज्बात को मज़ीद फजूतर करने में क्या किरदार अदा करते थे?
1: देखिए, जैसा कि अभी गुफ्तगु में शुरू में आपने ही कहा कि उर्दू सहाफ़त और जंग आज़ादी की जब बात होती है तो लाजिम व मलजूम है एक दूसरे के लिए। यकीनन उर्दू सहाफ़त का जो किरदार जंग आज़ादी में रहा और उस वक्त जिस चीज़ की और भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उसमें एक अहम किरदार ये था कि अंग्रेज़ों ने अपने तसल्लुत को बरकरार रखने के लिए और अपनी हुकूमत को बचाने के लिए जो एक और एक गलत कोशिश की थी वो ये थी कि मुल्क में फ़िरकावारियत को हवा दी जाए, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को तोड़ा जाए, जो यहाँ पर गंगा जमनी तहजीब एक तवील अरसे से रही है उसको तोड़ा जाए। तो उसके तोड़ने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिशें की। उसी दौरान उर्दू अखबारात ने इसमें भी बहुत अहम किरदार अदा किया और जो अपने इदारियों में और अपने मजामीन में उर्दू अखबारात ने जो चीज़ें लिखी या जो पैगाम दिया मुल्क के आवाम को जद्दोजहद के लिए, आज़ादी की जद्दोजहद के लिए, तो उसने एक ऐसी फ़िज़ा कायम की मुल्क के अंदर कि वो जो आज़ादी का हुसूल था हमारे लिए वो वहाँ तक हम पहुँचे और उसमें इनके जो मजामीन, इदारिये और नज़में वग़ैरह उन्होंने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। क्योंकि जो चीज़ें अखबारात लिखते थे, जैसा कि आपने कहा, उनकी इशात भले ही कम थी, लेकिन जाहिर सी बात है उनका असर इतना ज़्यादा था कि जैसा मासूम साहब ने भी जिक्र किया कि एक इदारिये के लिए या एक मज़मून के लिए या एक इश्तिहार के लिए भी जो एडिटर्स थे या जो कॉलम निगार मज़मून निगार थे उनको किस तरह की सज़ाएँ दी जाती थीं। तो जाहिर सी बात है जब उसका पैगाम आवाम तक पहुंच रहा था, इसीलिए उनको ये नागवार गुजरता था कि उर्दू सहाफ़ी क्यों इस तरह का काम कर रहे हैं, वो हमारी जो कोशिशें हैं उनको नाकाम बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा जुल्म व सितम किए उर्दू सहाफ़ियों में। इसीलिए हम देखते हैं कि उर्दू के जो अखबारात थे उन्होंने अपना बहुत अहम किरदार इसमें अदा किया कि मुल्क के आवाम को इकट्ठा रखा जाए और जद्दोजहद जो आज़ादी है उसमें उनको एक साथ पेश किया जाए।
2: शम्स तबरेज़ साहब, आप ये बताएं कि उर्दू अखबारात 1857 की पहली जंग आज़ादी से कबल बरतानवी हुकूमत के हमनमा थे किसी हद तक, लेकिन जब 1857 में पहली जंग आज़ादी का आगाज़ हुआ तो अखबारात भी उसमें कूद पड़े और फिर उसके बाद उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ और पूरी ताकत और कुव्वत के साथ इस जंग में शिरकत की। वो क्या जज्बा था जो इन अखबारात को और इनके मुदीरों को बरतानवी हुकूमत के खिलाफ नबरदाजमा होने के लिए और अखबारात में सख्त से सख्त मजामीन और सख्त से सख्त नज़में और गज़लें शाया करने के लिए मजबूर किया, वो कौन सा जज्बा था जो उनको तरगीब दे रहा था?
3: बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, आपने बहुत अहम सवाल पूछा है और जो गुफ्तगू आ रही है कि मीडिया का अहम रोल रहा है और आज़ादी से पहले अगर हम मीडिया की तारीख का जायज़ा लें, सहाफ़त को देखें, तो सबसे बुनियादी रोल उर्दू मीडिया का ही था। फारसी ज़ुबान में लोगों की दिलचस्पी कम होने लगी थी, अंग्रेज़ी बाहर की ज़ुबान थी, हिंदी के अखबारात भी उन दिनों ज़्यादा नहीं थे, तो उर्दू मीडिया का बड़ा रोल था। और जब उर्दू अखबारात के सहाफ़ियों ने ये देखा कि ब्रिटिश एम्पायर का जो जुल्म है बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ आज़ादी की जो जद्दोजहद है तेज़ हो गई है, तो उसमें मुजाहिदीन आज़ादी खुलकर सामने आए थे। उससे पहले जो मुजाहिदीन आज़ादी थे, जो आज़ादी की जंग थी, तो खुलकर नहीं होती, बड़ी खामोशी के साथ तहरीक चल रही थी, प्लानिंग चल रही थी, अलग अलग महाज पे अलग लोग अपना एक प्रोग्राम बना रहे थे, लेकिन सबकी जो तैयारी है वो 1857 में सामने आई। तो उर्दू अखबारात ने भी उस मौका का फ़ायदा उठाया, एडिटरों ने फ़ायदा उठाया और सब लोगों ने जंग आज़ादी की लड़ाई को खुलकर सपोर्ट किया। उर्दू मीडिया ने अपना नुमाया रोल अदा किया कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लिखा जाए, अंग्रेज़ों के जुल्म को बेनकाब किया जाए। और जहाँ जहाँ मुजाहिदीन आज़ादी थे मुल्क के अलग अलग इलाक़ों में 1857 की जंग हुई, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इकट्ठा होने नहीं दिया, उस को बगावत का नाम दिया, नाकाम बना दिया, तो उर्दू अखबारात ने भी उस वक्त अपना अहम तरीन किरदार निभाया। यही वजह है कि उर्दू अखबारात का जो पहला उर्दू अखबार जिसको माना जाता है जंग आज़ादी से पहले का, जो 1822 में शुरू हुआ हरियर दत्त साहब का अखबार जामे जहां नुमा, तो दिल्ली उर्दू अखबार के जो एडिटर थे मौलवी मोहम्मद बाकर साहब, उन्होंने जिस तरह का इदारिया लिखा, जो मज़मून लिखा, तो उनको 1857 के बाद तोप के गोले से उड़ा दिया गया। और ऐसे बहुत सारे सहाफ़ी हैं जिनको शहीद किया गया, फिर उनके बाद बहुत सारे अखबार निकले। तो उर्दू सहाफ़ियों में उस वक्त पूरा जज्बा था हुब्बुल वतनी का, देश को आज़ाद कराने का, और इसी आज़ादी के जज्बे ने अंग्रेज़ों को, ब्रिटिश एम्पायर को भी उर्दू के ख़िलाफ़ कर दिया। वरना शुरू में उनको भी लगता था कि उर्दू ज़ुबान तक हम मैसेज पैगाम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो ये सारी कोशिशें थी और जज्बा था कि देश को कैसे आज़ाद कराना है।
2: मासूम साहब, आपने अभी मौलवी बाकर का जिक्र किया, वो अव्वलीन शहीद सहाफ़ी हैं, और मिर्ज़ा बेदार बख्त का भी जिक्र किया। मिर्ज़ा बेदार बख्त का अखबार पजाम आज़ादी था जिसने जंग आज़ादी में बहुत बढ़ चढ़ करके रोल अदा किया, और आपने स्वराज का भी जिक्र किया। मैं चाहूँगा स्वराज के साथ साथ आप पयाम आज़ादी पर भी कुछ इजहार ख्याल फरमाएं, क्योंकि आपने पयाम आज़ादी के सिलसिले में भी काफ़ी कुछ लिखा है।
0: देखिए, मलिक अजीमुल्ला खां जो थे उनकी तहरीक पे ये अखबार निकला था पयाम आज़ादी, और आपको ये जानकर हैरत होगी कि इसका एक नामा निगार लंदन में बैठा हुआ था, अभी मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, और वो मलिक अजीमुल्ला खां ये चाहते थे कि आज़ादी की जोत जगाई जाए और अखबार को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। तो पयाम आज़ादी के बारे में उर्दू में मालूमात दस्तियाब नहीं थी, पहली बार मेरी किताब के ज़रिए से लोगों को पता चला कि पयाम आज़ादी नाम का भी कोई अखबार था। एक हिंदी राइटर ने पहली बार पयाम आज़ाद

0: गांधी का एक हल्का सा इशारा दिया था एक नवभारत टाइम्स में एक मजमून छपा था 1992 में, तब वो मेरे लिए भी एक नया था कि पयाम आज़ादी भी कोई अखबार था, तो मैंने उस पर रिसर्च शुरू की
1: जी
0: और जानने की कोशिश की, तो उर्दू में तो मुझे कुछ मिला नहीं, पयाम आज़ादी का नाम भी नहीं मिला, लेकिन कुछ हिंदी के माखज थे जहाँ तक मुझे मेरी रसाई हुई, उन्होंने पयाम आज़ादी पर रोशनी डाली और ये बताया गया, यहाँ तक लिखा गया कि पयाम आज़ादी के एडिटर को ही सजाए मौत नहीं दी गई बल्कि जो उसके कारीन थे उनमें से भी बास को फांसी पर चढ़ाया गया और तमाम अखबार जब्त करके ज़ाय कर दिए गए। उसका ये कुछ कहा जाता है कि उसकी एक फाइल ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में महफूज है, लेकिन मैंने कोशिश की उसकी भी मुझे तस्दीक नहीं हुई। तो आज आपको दिल्ली उर्दू अखबार के तो फाइलें मिलती हैं या दिल्ली में भी हैं अपने
2: जामे जानुमा की भी मिलती
0: है, लेकिन पयाम आज़ादी एक ऐसा अखबार था जिसकी कोई फाइल हमें कहीं नहीं मिलती है, उसका उसकी शक्ल देखने को कहीं नहीं मिलती है। एक बात मैं आपको ये बताऊं कि 1857 की जो जंग थी जब वो नाकाम हो गई तो जो एक रिपोर्ट तैयार हुई अंग्रेज़ों की जो इंटरनल रिपोर्ट थी कि ये बगावत कैसे शुरू हुई और कौन इसके एलिमेंट थे और किन लोगों ने इसको भड़काया, तो उस सीक्रेट रिपोर्ट की कॉपी मैंने देखी है, उसमें उन्होंने लिखा है कि बागियों और उर्दू देसी अखबारों के दरमियान एक कॉन्स्परेसी थी, एक साजिश थी जो उन्होंने मिलकर के तैयार की और हुकूमत को ब्रिटिश राज को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्होंने ऐसी साजिश तैयार की कि ऐसा महसूस होता था कि हम किसी वॉलकोनों पर बैठे हुए हैं, और ये इतनी कामयाब साजिश थी कि ज़रा सी अगर चूक होती तो हमारा नामो निशान मिट जाता। तो आपको मैं बताऊं कि ये वो दौर था जब अखबारों को कोई सहूलत दस्तियाब नहीं थी, ना उसके प्रोफेशनल नामा निगार हुआ करते थे, बहुत से अखबार तो ऐसे थे जो कलमी अखबार थे।
2: आपने प्रोफेशनल नामा निगारों की बात की, एक बहुत अच्छा अखबार निकला था रियासत अखबार, सरदार दीवान सिंह मफ्तू ने निकाला था। कहा जाता था कि हिंदुस्तान में या तो अंग्रेज़ी हुकूमत के जासूस फैले हुए हैं जगह जगह चप्पे चप्पे पे, या फिर रियासत अखबार के नुमाइंदे फैले हुए हैं। सरदार दीवान सिंह का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उनका बड़ा ताउन है उनके अखबार का भी, और नाकाबिले फरामोश उनके जो खुदनविश थे जो वाक़ात लिखते थे। तो मैं चाहूँगा कि आप अखबार रियासत के बारे में और सरदार दीवान सिंह के बारे में भी थोड़ी सी रोशनी डालें।
0: देखिए, दीवान सिंह मफ्तून कोई बुनियादी तौर पर सहाफ़ी नहीं थे, वो बचपन में अपने घर से भाग गए थे और वो इधर उधर भटकते रहे, वालिद का उनका इंतकाल हो गया था और उन्होंने अखबार निकाला यहाँ से दिल्ली से
2: रियासत,
0: और इसका दफ्तर अजमेरी गेट पर था। अभी एक साहब जिंदा हैं जो दीवान सिंह मफ्तून के करीबी लोगों में थे, बिलाली साहब, महमूद सईद बिलाली, मैंने उनका इंटरव्यू किया और एक मज़मून भी लिखा है, उन्होंने बहुत सारे खतूत भी मुझे दीवान सिंह मफ्तून के दिए हैं, मेरे पास हैं। तो दीवान सिंह मफ्तून के बारे में ये आम तौर पर कहा जाता है कि उन्होंने जो देसी रियासतें थी उन वहाँ पर अपने कुछ जासूस मुतय्यन कर दिए थे जिसे वो अपना रिपोर्टर कहते थे, वो उन रियासतों के जो राज थे अंदर की, जाहिर है जो उस ज़माने की जो रियासतें थी स्टेट्स थी उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, तो वो उनको अपने अखबार में छापते थे और छाप करके उनसे ये भी कहा जाता है कि वो कुछ मामलात करते थे, तो मुझे इसकी तस्दीक नहीं है।
2: हम तो चूंकि मौजू हमारा जंग आज़ादी है इसलिए हम उसी पर गुफ्तगू करेंगे। तो यामीन साहब, आप ये बताएं कि जब जंग आज़ादी आगे बढ़ी
1: जी
2: और बहुत से अखबार निकले, आप जिस अखबार से वाबस्ता हैं रोज़नामा इंकलाब, ये 1938 में बम्बई से निकला था, जाहिर है वो जंग आज़ादी के शबाब का दौर था
1: जी।
2: तो आप अखबार इनकलाब की कुर्बानियों और जंग आज़ादी में उसके हिस्से
1: जी
2: के हवाले से कुछ उस पर रोशनी डालें, कुछ मज़ीद दीगर अखबारात पर, या आप जंग आज़ादी के हवाले से जो भी गुफ्तगू करना चाहें।
1: जी जी, जाहिर सी बात है जो उस वक्त जो अखबार मौजूद थे और जो नए नए अखबारात निकल रहे थे उसमें इनकलाब भी था, तो इनकलाब में भी बड़ा किरदार अदा किया उसमें, उस वक्त जो 1947 की जद्दोजहद जंग आज़ादी जो थी उसके लिए जो जद्दोजहद चल रही थी, तो इनकलाब के अलावा भी उस वक्त बहुत सारे मेरे ख्याल से जो मशहूर अखबारात थे उनका जिक्र करना भी ज़रूरी है, जैसे ज़मींदार है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर का कॉमरेड था, हमदर्द था, मौलाना आज़ाद का हिलाल, इस तरह से बहुत सारे अखबारात थे जो पूरी तरह उन्होंने अपने आप को, अपने इदारियों को, अपने मजामीन को और अपने आप को जद्दोजहद आज़ादी के लिए झोंक दिया था, और वो उनकी जो कोशिशें थीं, जो उनकी

0: जो काविशें थीं वो रंग लाईं और आज़ादी पर जाकर ख़त्म हुईं। इसमें एक अखबार उर्दू मौल्ला का भी जिक्र करना ज़रूरी है जो मौलाना हसन मोहानी ने 1903 में शुरू किया था। ये वैसे तो एक रिसाला था लेकिन अदबी रिसाला था, लेकिन इसमें शाये होने वाले जो सियासी नौयत के मजामीन थे वो अंग्रेज़ों की आंखों में खटकने लगे, क्योंकि वो इस तरह की के मजामीन होते थे जो सिर्फ जद्दोजहद आज़ादी के लिए ही मखसूस थे। तो इसमें शाये होने वाले जो जो मवाद था जो अंग्रेज़ हुक्मरानों की नींद हराम हो गई, इससे आखिरकार उर्दू मौल्ला से ज़मानतें जब्त की गईं, प्रेस को जब्त कर लिया गया, उसके असासों को नीलाम कर दिया गया, मौलाना हसन मोहानी को भी पाबंद सलासिल किया गया इसी के लिए। लेकिन उन लोगों के हौसले पस्त नहीं हुए, मौलाना हसन मोहानी के अलावा भी जो दीगर उस वक्त के जो जय्यद सहाफ़ी थे जो जिन्होंने अपने आप को आज़ादी के लिए वक्फ कर दिया था, उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा अज़ियतों का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद ये इन अखबारात और रिसालों की इशाअत जारी रही, अगरचे बहुत सारे अखबारात को जब्त भी किया गया, उनको बंद भी किया गया अंग्रेज़ों के ज़रिए। इसी तरह जो आज़ादी के हुसूल के बाद जो माहौल हुआ, जो मुल्क की तामीर और तरक्की का जब बात आई, तो उसमें भी उर्दू सहाफ़त ने जो किरदार अदा किया उसको भी हम फरामोश नहीं कर सकते।
1: आपने आज़ादी के बाद की सूरत हाल पर इशारा दिया है।
0: जी जी,
1: हम ये जानना चाहेंगे कि जंग आज़ादी के दौरान उर्दू अखबारात जब्त कर लिए जाते थे, उन पर बहुत ज़्यादा जुर्माने लगाए जाते थे और ज़मानतें ली जाती थीं, तो हुकूमत का रवैया उन अखबारात के ख़िलाफ़ बहुत सख्त था। आज़ादी के बाद अगरचे उर्दू अखबारात अब उतनी तादाद में नहीं निकल रहे हैं, लेकिन आप क्या इख्तसार से इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल सकते हैं कि हुकूमत जो है वो उर्दू अखबारात के फ़रोग के लिए या उर्दू ज़बान के फ़रोग के लिए क्या काम कर रही है? चूँकि आपने आज़ादी के बाद का जिक्र कर दिया, इसलिए हम ये चाहेंगे तो इख्तसार के साथ आप इस पर
0: गुफ्तगू। हाँ, यकीनन देखिए, जैसा कि आज़ादी से पहले जो माहौल था वो तो एक आज़ादी के हुसूल के लिए हम जो सहाफ़ी थे उस वक्त के या जो अखबारात थे वो उसके लिए लड़ रहे थे। अब उसके बाद एक चैलेंज आया कि मुल्क की तामीर और तरक्की कैसे की जाए, तो उसमें भी उर्दू सहाफ़त ने वही किरदार अदा किया, अपना अहम कलीदी किरदार अदा किया कि जिससे कि मुल्क की तामीर और तरक्की में जो जो भी कोशिशें हो सकती थी और जो जिम्मेदारियां उर्दू सहाफ़त पर थी वो उसने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी अदा की उसको।
1: जी शम्स तबरेज़ साहब, यामीन साहब ने अभी मौलाना आज़ाद का, मौलाना मोहम्मद अली जौहर का, मौलाना हसरत मोहानी का, मौलाना ज़फ़र अली का जिक्र किया। ज़ाहिर है बहुत सारे उलमा ने अखबारात निकाले और ये अखबारात मदारिस के असातज़ा और तलबा भी पढ़ते थे, क्योंकि आप एक मदरसे के फारिग हैं, इसलिए हम जानना चाहेंगे कि इन अखबारात में जो कुछ छपता था उसका असर मदारिस पे कितना पड़ा और क्यों पड़ा कि उलमा जो है वो जोक दर जोक मैदान जंग में आ गए।
2: जी बिल्कुल, बल्कि इन ये जो अखबारात थे इनके जो ज़्यादातर एडिटर्स थे, इनके जो कॉलम नवेस थे वो भी मौलाना थे और मदारिस में उनकी भी अपनी मकबूलियत थी, खा मौलाना अबुलकलाम आज़ाद हो या मौलाना मोहम्मद अली जौहर हो, ज़फ़र अली साहब हो या उससे पहले के लोग रहे हो, तो इनका जो इदारिया था, इनके जो अखबारात थे वो मदरसों में जाते थे, मदरसे के तलबा असातज़ा पढ़ते थे और उनके अंदर भी हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग लड़ने का शौक़ और जज्बा था। इसी वजह से आप देखेंगे कि जंग आज़ादी की तारीख़ में मदरसों के असातज़ा ने, उलमा ने अहम तरीन किरदार अदा किया है। कई सारी तहरीकें उनकी है, खास शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह का तहरीक रेशमी रुमाल हो, या उससे पहले मौलाना कासिम ननौतवी ने शामली के मैदान में जंग का जो पूरा महा संभाला था, या उसके फिर बाद का जो दौर है मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, तो हर एक दौर में उलमा ने आज़ादी की जंग में हिस्सा लिया और उर्दू अखबारात का बड़ा रोल था। आप देखें कि आज भी उर्दू अखबारात को अगर सबसे ज़्यादा कोई पढ़ने वाला तबका है तो मदारिस का तबका है, या उर्दू अखबारात में जो काम करने वाले ज़्यादातर अफराद हैं तो मदारिस से आते हैं। तो उर्दू को ज़िंदा रखने में, इसी तरह उर्दू सहाफ़त को ज़िंदा रखने में, उसके मैार को बुलंद करने में मदारिस ने हमेशा अहम तरीन किरदार अदा किया है। और जब उर्दू अखबारात ने आज़ादी की जंग में अहम तरीन किरदार अदा किया कि कैसे हर एक हिंदुस्तानी को आज़ादी की जंग को अपनी जंग समझनी चाहिए, क्योंकि उर्दू अखबारात का यह भी बड़ा रोल था कि आज़ादी की जो जंग है, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो जिद्दोजहद हो रही है, तो उसको हर इंसान अपनी कोशिश समझे, यह ना समझे कि जो लीडर्स हैं मुख्तलिफ पार्टियों के ग्रुप

0: से जुड़े हुए हैं या उनके बकाए की लड़ाई है, उनके वजूद की लड़ाई है, बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में हर एक को शरीक होना चाहिए। और उर्दू उस वक्त की अवामी जुबान थी, तो उर्दू अखबारात ने इसमें अहम रोल अदा किया, तो मदारिस ने सबसे ज्यादा इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।
1: मासूम साहब, 1857 की जो पहली जंग आज़ादी थी, जिसे बगावत भी कुछ लोग कहते हैं, उसके बाद उसको नाकाम बनाने के लिए बरतानवी हुकूमत ने जो जुल्म इस्तबदाद ढाए, दिल्ली का कोई दरख्त ऐसा नहीं था जो फांसी गंडा बना हुआ हो, और हर दरख्त पे लोगों को सूली पर लटकाया गया, तो ये जो सूरत हाल थी इसने वक्ती तौर पर तो कुछ दिनों के लिए जंग आज़ादी के जज्बे को सर्द तो नहीं किया, आप यह कह सकते हैं कि दबा दिया, लेकिन उसके बाद फिर अचानक ये सिलसिला शुरू हो गया। तो क्या वजह रही कि खामोशी के बाद फिर अचानक जंग आज़ादी शुरू हो गई और उर्दू अखबारात ने उसमें बढ़ चढ़ करके रोल अदा करना शुरू कर दिया?
2: देखिए, 1857 की जंग आज़ादी की नाकामी के बाद, जिसमें मौलवी मोहम्मद बाकर को सजाए मौत दी गई, तकरीबन 20-22 साल का अर्सा ऐसा है कि कोई दूसरा अखबार नहीं निकला। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा हमें गूंज सुनाई देती है, यानी 19वीं सदी के पहले दहे में के बाद, चार बड़े अखबार निकले, और चारों अखबार निकालने वाले वो लोग थे जो जंग आज़ादी में ख़ुद ज़ाती तौर पर शरीक थे और वो उसको लीड कर रहे थे
3: जी।
2: 1912 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कलकत्ता से अल हिलाल निकाला
3: जी,
2: और अल हिलाल की ज़मानत 17 मरतबा जब्त की गई, अंग्रेज़ों ने 17 मरतबा उसकी ज़मानत जब्त की, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, फिर उन्होंने अलबलाग
3: निकाला जी।
2: इसी तरह से आप देखिए कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने वो कॉमरेड निकालने से कलकत्ता से, लेकिन वो दिल्ली आए और दिल्ली के कूचो चलान से उन्होंने हमदर्द अखबार निकाला, और बड़ा पावरफुल अखबार था जिससे उस ज़माने के तमाम बड़े सहाफ़ी वाबस्ता थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर चूँकि जंग आज़ादी में खुद शरीक थे और अखबार को वो एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, नतीजा ये हुआ कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया, और उनकी गैर मौजूदगी में दूसरे जो उनके अहबाब थे उन्होंने अखबार निकाला। इसी तरह से ज़मींदार का किरदार देखिए आप, मौलाना जफर अली खां का जो अखबार था वो भी एक जंग आज़ादी के हरावल दस्ते के तौर पे इस्तेमाल हुआ और बहुत भरपूर तरीके से इस्तेमाल हुआ। उसी दौर में एक अखबार निकला मदीना बिजनौर से
3: जी,
2: ये भी 1912 के आसपास निकला, और ये वो अखबार था जो लगभग 62 साल तक निकलता रहा, और सबसे ज़्यादा उम्र इसने पाई, और इसके मुदीरों की एक पूरी कहकशां थी, कैसे कैसे लोग थे, क्या उनकी तारीख है। तो ये जो पीरियड है ना, इब्तदाई 19वीं सदी के इब्तदाई ज़माना
3: जी जी,
2: ये उर्दू अखबारात के मुजाहिदाना किरदार का सबसे रोशन
3: दौर है जी
1: जी जी जी जी। मासूम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, हमने गुफ्तगू की जंग आज़ादी और उर्दू सहाफत के मौजू पे। इस गुफ्तगू के दौरान बहुत अहम मालूमात हमारे सामने आईं, हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। इस गुफ्तगू से वाज़े हुआ कि जंग आज़ादी में उर्दू अखबारात का जो रोल था वो बहुत दरक्षा था, उसको किसी भी तरह से आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और जब भी, जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज किया था, कि जब भी हिंदुस्तान की जंग आज़ादी की तारीख लिखी जाएगी या मुरतब की जाएगी, तो उसमें उर्दू अखबारात और उसके मुदीरों के नाकाबिल फरामोश किरदार और उनकी कुर्बानियों का जिक्र ज़रूर होगा, उसके बगैर जंग आज़ादी की दास्तान मुकम्मल नहीं होगी। इसी के साथ हम ये मुबाहसा ख़त्म करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।
4: सामीन, अभी आप प्रोग्राम अंदाज़ नज़र के तहत ये पुरमौज़ मुज़ाकरा समाप्त कर रहे थे। इस मुज़ाकरे में माहिरीन ज़बान बयान और उर्दू सहाफ़त के मयार पर गुफ्तगू कर रहे थे। इस गुफ्तगू में जिन शुरका ने हिस्सा लिया उनके इसमें ग्रामी हैं जनाब मासूम मुरादाबादी, जनाब यामीन अंसारी, जनाब शम्स तबरेज़ कासमी, और निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे जनाब सुहेल अंजुम साहब। मौजू था उर्दू सहाफ़त और जंग आज़ादी। तो सामईन, इसी उम्मीद के साथ कि आपसे फिर मुलाकात होगी, आपको ये भी बताते चलें कि इस प्रोग्राम की तरतीब व पेशकश इंतज़ार सैफ़ी की थी। तो सामईन, आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और प्रोग्रामों के साथ, कुछ और मेहमानों के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान शाहनवाज हाशमी को प्रोग्राम ख़त्म करने की दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।
5: आप सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू मजलिस, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंदुप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 300

0: 66.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 4 बजने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। इसका प्रसारण दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर से राष्ट्र ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे।
2: लाल किले में होने वाले इस समारोह में पहली बार वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रगान होगा। यह भव्य कार्यक्रम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 साल पुरानी गौरवशाली विरासत को याद करने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में सेना, नौसेना और वायुसेना के करीब 2500 कैडेट और माई भारत के स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे। इस समारोह में देश के अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों को भी लाल किला में आमंत्रित किया गया है। दिल्ली पुलिस ने समारोह को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने वाले विशेष अतिथियों और आम लोगों की आवाजाही के लिए विस्तारित मेट्रो सेवाओं की घोषणा की है। यात्री सवेरे 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन पर उतरकर लाल किला तक पहुंच सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम 5:10 पर सैनिकों को संबोधित करेंगे। उनका संबोधन आकाशवाणी के FM गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के 21 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक और सराहनीय सेवा के लिए पदक देने की घोषणा की गई है। 6 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिए जाएंगे। सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने आज वीरता के 301 पदकों की सूची जारी की। इनमें पुलिस कर्मियों के लिए 272 और अग्निशमन सेवा के लिए 29 पदक शामिल हैं। इसके अलावा विशिष्ट सेवा के लिए कुल 92 राष्ट्रपति पदक की भी घोषणा की गई है। 664 सराहनीय सेवा पदक प्रदान किए जाएंगे। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 में विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों का स्मरण कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस का स्मरण किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि स्वापक नियंत्रक ब्यूरो ने फरार ड्रग माफिया वीरेंद्र सिंह बसोया को संयुक्त अरब अमीरात से वापस लाने में सफलता प्राप्त की है। उसे नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज सवेरे हिरासत में लिया गया। गृह मंत्री ने कहा कि यह मादक पदार्थों के खिलाफ सरकार की कतई बर्दाश्त न करने की नीति में एक नई उपलब्धि है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने इस वर्ष जनवरी से मई के बीच कथित तौर पर आत्महत्या से 19 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कर्मियों की मृत्यु के संबंध में केंद्रीय गृह सचिव और CRPF के महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने हरियाणा के मुख्य सचिव और फरीदाबाद पुलिस आयुक्त को जहरीली गैस से एक व्यक्ति की कथित तौर पर मौत और अन्य के घायल होने की घटना पर नोटिस जारी किया है। घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के अंदर जांच की विस्तृत स्थिति रिपोर्ट मांगी है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज उत्तराखंड के चमोली में एक जल विद्युत परियोजना स्थल पर सुरंग ढहने की घटना पर शोक व्यक्त किया है। उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने आज केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा ई रुपए का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य गरीबों के लिए चलाई जा रही सरकारी लाभार्थी योजनाओं से बिचौलियों को हटाना है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। President Draupadi Murmu will address the nation this evening on the eve of the 80th Independence Day. The address will be broadcast at 7 p.m. on the entire national network of Akashvani. It will also be telecast on all channels of Doordarshan, first in Hindi and then in English. This will be followed by the telecast in regional languages on the regional channels of Doordarshan. Akashvani will broadcast the regional language versions of the address at 9:30 p.m. on its respective regional networks. The nation will celebrate the 80th Independence Day tomorrow. Prime Minister Narendra Modi will lead the celebrations from the iconic Red Fort in Delhi. Flower petals will be showered at the venue by two Mi-17 helicopters of the Indian Air Force. The unfurling of the national flag will be synchronized with the 21-gun salute. After the showering of the flower petals, the Prime Minister will address the nation from the ramparts of the Red Fort. The grand event is set to commemorate 150 years of the enduring legacy of the national song Bande Mataram and celebrate the energy, aspirations and pivotal contribution of Yuva Shakti in driving India's journey towards Viksit Bharat by 2047. For the first time, Bande Mataram will be rendered during the celebrations at Red Fort. Services of the Delhi Metro will commence from all terminal stations across its network at 4 a.m. tomorrow on the Independence Day to facilitate the movement of special guests, invitees and the general public. The services will operate at a 30-minute frequency on all lines until the commencement of regular revenue services as per the scheduled timetable for the day. 21 officials of the Central Bureau of Investigation, CBI, have been honored with the President's Medal for Distinguished Service and Medal for Meritorious Service on the occasion of Independence Day this year. President's Medal for Distinguished Service have been awarded to 6 officials. Today is Partition Horrors Remembrance Day. Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah and Defence Minister Rajnath Singh have paid homage to all those who lost their lives in the partition and to those who struggled against the atrocities on Partition Horrors Remembrance Day. In a social media post, Mr. Modi termed the partition as a moment in history that tore apart several lives where families were uprooted, loved ones were lost and immense suffering was endured. He also wished that the day deepens everyone's resolve to preserve harmony and brotherhood in the country and work collectively towards building a Viksit Bharat. President Draupadi Murmu today attended the opening of the Amrit Udyan Summer Annuals Edition at the premises of the Rashtrapati Bhavan. Amrit Udyan will be open for the general public from Sunday until the 15th of next month from 10 a.m. to 6 p.m. with the last entry at 5 p.m. The Udyan will remain closed on Mondays for maintenance. Visitors can book their slots online at visit.rashtrapatibhavan.gov.in. Booking of slots for a particular day will close at 10 a.m. on the previous day. India has dispatched the first tranche of the 20 metric ton relief supplies to Colombia to support ongoing post-earthquake recovery efforts. In a social media post, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said the assistance includes medicines and medical equipment, temporary shelter and hygiene support, and other essential items needed in the aftermath of the disaster. He noted that India stands in solidarity with the people of Colombia during these difficult times. In Odisha, 2 days of incessant rain have triggered a fresh flood threat in northern parts of the state, with several rivers swelling rapidly and crossing danger levels. Our correspondent reports the flood situation is grim in several parts of northern Odisha. Flood water is spreading into low-lying areas, roads are submerged and swollen rivers are cutting off connectivity. The Baitarani is flowing above the danger mark at Anandpur and Patna in Kyonjhar district, while the Jalka and the Mathani in Balasore district is flowing at 7.84 meters against a danger level of 6.50 meters. With more rainfall forecast, residents in low-lying and riverbank areas have been advised to remain alert. Meanwhile, the IMD has issued an orange alert for heavy to very heavy rain today in Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, Jharkhand, Uttar Pradesh and Uttarakhand. And that is the end of this news bulletin.
0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर. 4:10 हुए हैं. आइए आपको जानकारी देते हैं गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में. खोई हुई युवती का पूरा नाम कुमारी नेहा है. ये फकीर चंद की पत्नी है. निवासी ग्राम सालवाहनपुर, थाना अहमदगढ़, जिला बुलंदशहर. इन्हें अंतिम बार 23 जून 2026 को ग्राम सालवाहनपुर में देखा गया. नेहा की आयु करीब 20 वर्ष है. कद 5 फीट है. शरीर की बनावट सामान्य है एवं चेहरे का रंग गेहुआ है. ये अपने घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं, फिर वापस नहीं लौटी. इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक थाना अहमदगढ़ जनपद बुलंदशहर से संपर्क कर सकते हैं. लापता पुरुष का पूरा नाम फहीमुद्दीन है. ये नजमुद्दीन के पुत्र हैं. निवासी ग्राम चिड़ावक, थाना गुलावटी, बुलंदशहर. इन्हें अंतिम बार ग्राम चिड़ावक, थाना गुलावटी, जनपद बुलंदशहर में देखा गया. इन्हें अंतिम बार दिनांक 16 जून 2026 को देखा गया. इनकी आयु 26 वर्ष है. कद 5 फीट 5 इंच है. मध्यम शरीर है एवं चेहरे का रंग सांवला है. इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप मोबाइल संख्या 9084242433 या फिर उपनिरीक्षक थाना गुलावटी बुलंदशहर से संपर्क कर सकते हैं. लापता युवती का पूरा नाम तनु है. ये जोनी की पुत्री है. निवासी थाना परतापुर, मेरठ. इनकी आयु 15 वर्ष है. कद 5 फीट. लंबे काले बाल हैं. चेहरा गोल है. रंग गोरा है एवं शरीर की बनावट सामान्य है. इन्होंने अंतिम बार सूट सलवार एवं पैरों में चप्पल पहने थे. इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक थाना सिविल लाइन मेरठ से संपर्क कर सकते हैं. गुमशुदा पुरुष का पूरा नाम आदेश सिंह है. निवासी दिलावर पैलेस, मेरठ. इनकी आयु 30 वर्ष है. कद 5 फीट 6 इंच है. काले बाल हैं. चेहरा गोल है. रंग गोरा है एवं शरीर की बनावट सामान्य है. इन्होंने अंतिम बार टी शर्ट और पैंट पहना था. इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक थाना टीपी नगर जनपद मेरठ से संपर्क कर सकते हैं. लापता युवती का पूरा नाम सरस्वती है. इनकी आयु 19 वर्ष है. कद 5 फीट 3 इंच है. काले बाल हैं. इखरा शरीर है एवं रंग गेहुआ है. इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप मुंडाली जनपद मेरठ से संपर्क कर सकते हैं. गुमशुदा पुरुष का पूरा नाम अनिल कुमार है. ये श्री मोहनलाल के पुत्र हैं. इन्हें अंतिम बार 20 जून 2026 को शाम 5 बजे देखा गया. इनकी आयु 59 वर्ष है. कद 5 फीट 6 इंच है. मध्यम शरीर है एवं चेहरे का रंग गोरा है. इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप SHO शहादरा दिल्ली से संपर्क कर सकते हैं. और अंत में गुमशुदा युवती का पूरा नाम सपना है। इनकी आयु 20 वर्ष है, कद 5 फीट 1 इंच है, काले लंबे बाल हैं, चेहरा सामान्य है, रंग

0: गोरा है एवं शरीर की बनावट इखरा है। इन्होंने अंतिम बार पीले रंग का सलवार, पीले रंग का लोअर एवं पैरों में हवाई चप्पल पहने थे। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक थाना दिल्ली गेट मेरठ से संपर्क कर सकते हैं। गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 4:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं नालसा, न्याय सबके लिए।
1: जब कोई राह नजर ना आए, नालसा का साथ पाए।

0: मिट्टी की खुशबू में एक कहानी है, हर सांस में बसी हिंदुस्तानी है। जो मिली है हमें ये आज़ादी, इसके पीछे ना जाने कितनों की कुर्बानी है। नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी युववाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ करिश्मा और मेरे साथ मौजूद है मेरे को होस्ट केशव।
1: नमस्कार, मैं हूं केशव। दोस्तों, आज की शाम थोड़ी अलग है। हवा में कुछ अपनापन सा है, आसमान में कुछ रंग ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, और दिल में एक एहसास बार बार कह रहा है, कल यानी 15 अगस्त का दिन सिर्फ सेलिब्रेट करने को नहीं, कुछ महसूस करने को भी है।
0: बिल्कुल, क्योंकि 15 अगस्त सिर्फ कैलेंडर की एक डेट नहीं है। कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो कैलेंडर में नहीं, सीधे दिल में दर्ज होती हैं, और 15 अगस्त हमारे लिए वही तारीख है।
1: बिल्कुल, आज तिरंगा सिर्फ उस खुले आसमान में नहीं लहर रहा, वो तो आज हम सबके दिलों में एक अजब सी उमंग बनकर बह रहा है। हर सांस में एक फक्र है, हर धड़कन में एक ही नाम है, भारत।
0: वाह, बहुत खूब केशव। और वाकई ये बिल्कुल सही बात है। ये दिन कोई साधारण दिन नहीं है, क्योंकि कल आज़ादी का जश्न है। इसलिए केशव, आज हमारा एक-एक शब्द देशभक्ति के रंग में रंगा होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ 3 रंगों का परचम नहीं, ये 140 करोड़ धड़कनों की शान है। ये वाणी के सभी श्रोताओं को हमारी ओर से स्वतंत्रता दिवस की असीम शुभकामनाएं।
1: लेकिन करिश्मा, आज़ादी के इस जश्न के साथ साथ हमें आज के दिन को भी याद रखना चाहिए। आज का दिन विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के नाम से जाना जाता है। आज के दिन को हम 1947 के विभाजन से हुई त्रासदी के रूप में याद रखते हैं, जहां लाखों लोग अपना घर छोड़कर सरहद के उस पार गए। और इसके लिए प्रस्तुत है खानदान मूवी का एक गीत, कल चमन था।

0: केशव, क्या तुम जानते हो, फिल्में समाज का आईना होती हैं, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देती हैं। इसी को समझने के लिए हमारे आज के मन से माइक्रोफोन तक के सेगमेंट में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्मकार श्री अतुल गंगवार जी का साक्षात्कार। उनसे बात की है संतोष द्विवेदी ने।
1: बताओ। नमस्ते।
0: अतुल गंगवार जी को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में उनकी डॉक्यूमेंट्री मैं निदा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।
1: बताओ। नमस्कार। राष्ट्र के निर्माण में साहित्य, संगीत, सारी चीजों का अपना एक योगदान होता है, जो कि युवाओं को गढ़ते हैं, उनके सपनों को एक आकार देते हैं और राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आज हम जुड़ने वाले हैं नेशनल अवार्ड विनर अतुल गंगवार जी के साथ, जो कि फिल्म निर्माता भी हैं, निर्देशक भी हैं और एक सजग पत्रकार के तौर पर भी आप समाज में अपना योगदान देते हैं। अतुल जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी धन्यवाद, आभार।
1: अतुल जी, आपने एक लंबी यात्रा तय की है, नेशनल अवार्ड तक आप पहुंचे हैं। तो जब आपने शून्य से जो यात्रा शुरू की थी, जो आज शिखर तक पहुंची है, तो इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं? उस युवा अतुल को कैसे एक बार याद करके हमारे युवा श्रोताओं को बताएंगे कि जब उन्होंने फिल्म डॉक्यूमेंट्री इस विधा में कदम रखा था और आज आप नेशनल अवार्ड विनर हैं, आपको राष्ट्रपति महोदया से पुरस्कार मिलने वाला है, कैसे फील कर पा रहे हैं एक युवा अतुल और एक फिल्म मेकर अतुल गंगवार?
2: एक बहुत लंबी यात्रा है सच में ये, लेकिन मेरा मानना यह है कि जो लोग कुछ सोचते हैं, जो लोग कुछ करना चाहते हैं, मैं अगर अपनी कल्पना करूं, जब मैं युवा था तो मन में कहीं ना कहीं ये था कि कुछ ऐसा करूं जो देश के लिए, समाज के लिए, मेरी फैमिली के लिए कुछ ऐसा करूं कि लोगों को लगे कि हाँ। क्योंकि युवाओं के बारे में लोगों को मानना है कि उनके पास कई बार अपनी सोच नहीं होती, या तो बहुत स्टूडियस होते हैं तो पढ़ाई में लगते हैं तो पढ़ते रहते हैं, या फिर राजनीति अगर स्टूडेंट पॉलिटिक्स है, या फिर अलग अलग तरीके से, मतलब युवाओं के बारे में। और जैसे आज हमें लगता है कि आज हम देखते हैं आज के माहौल में, तो लोग कुछ जेंजी को बड़ा अच्छा पॉजिटिव मान रहे हैं, कुछ लोग मान रहे हैं भ्रमित है, दिशाहीन है। तो हर युग में ऐसा ही हुआ है, मेरे समय में भी ऐसा ही था। हमारे जो वरिष्ठ होते थे, हमारे माता पिता या हमारे बड़े रिश्तेदार, उनको लगता था कि भाई लड़का क्या करेगा, सरकारी नौकरी ना मिले तो क्या जीवन है। लेकिन मुझे लगता था कि नहीं, जीवन बहुत है। मेरे पिताजी पत्रकार थे तो मुझे लगता था कि रास्ते और भी हैं। तो उस समय टेलीविजन क्योंकि नया नया आया था, तो टेलीविजन नया आया था तो उसमें स्कोप था, प्रिंट में नहीं था उतना, क्योंकि भाई वहाँ धुरंधर लोग थे और बड़ी सारी और चुनौतियां थी। और मेरे पिताजी का कहना था कि मैं खुद पत्रकार हूँ, तो मेरे को तुम ऐसा कुछ करके दिखाओ कि मैं कह सकूँ तुम मेरे बेटे हो। तो ये चैलेंज था। तो हमने अपनी दिशा बदल ली, क्योंकि हर युग में युवा बागी ही होता है। तो हमने कहा चलो छोड़िए, अब प्रिंट में आएंगे ही नहीं, तो हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चले गए। तो हमारी मुलाकात हुई, हमारे एक मित्र ने हमें रिकमेंड किया, तो हमने बैक फिल्म ज्वाइन किया। तो वहां से हमने अपना सफर शुरू किया, उन्होंने हम पे भरोसा किया। तो धीरे धीरे एक सफर यहाँ से शुरू हुआ। और मुझे लगता है कि जिस फील्ड में हम हैं, और मुझे लगता है अगर युवाओं को भी अगर सिनेमा के क्षेत्र में, रंगमंच के क्षेत्र में, फिल्म निर्माता के क्षेत्र में, अगर इसमें कुछ भी करना है तो एक खुला दिमाग और एक खुली सोच रखकर चलना चाहिए। अपने मन में बड़ी इच्छा थी और ये पैशन भी था सिनेमा के बारे में, बचपन से बड़ा शौक था। तो हमने जब टेलीविजन मिला तो हमने उसको खूब एंजॉय किया। लोग कहते थे 8 घंटे की शिफ्ट होती है, हम 16 घंटे, 24 घंटे, हम वहीं रहते थे। जब तक हमारी शादी नहीं हुई तब तक हमने कभी घंटे काउंट ही नहीं किए कि इतने घंटे नौकरी करना है तो इतने घंटे में करना चाहिए। लोगों से बहुत सीखने को मिला, क्योंकि इस फील्ड में सबसे बड़ी चीज है आपको बहुत लोग मिलते हैं। और अगर आप सीखने की इच्छा करें तो ऐसे ऐसे व्यक्तित्व मिले, ऐसे ऐसे लोग मिले जो मेरे लिए एक समय में आप समझिए सपना थे। मैं जब अपना पहला प्रोग्राम एज ए प्रोड्यूसर अदवी कॉकटेल प्रोड्यूस कर रहा था, तो निदा फाजली साहब से मेरा परिचय हुआ, निदा फाजली साहब के साथ, टॉम वॉल्टर साहब के साथ परिचय हुआ। ये लोग वो थे जिन्होंने जीवन को बहुत जीवंतता के साथ जिया हुआ था। उनके पास इतने अनुभव, इतने किस्से थे जीवन के बारे में जो मुझे हमेशा एनर्जाइज करते थे। जब मेरा मॉरल डाउन भी होता था, मुझे लगता था यार क्या कर रहा हूँ, थक गया हूँ, सफलता नहीं मिल रही, तो मैं सोचता था यार निदा साहब कैसे सोचते हैं, टॉम वॉल्टर साहब कैसे सोचते हैं। फिर मैं कई सारे एक्टर्स, क्योंकि उस शो में बड़े लोग आते थे, जॉनी वॉकर साहब, पता नहीं आज की पीढ़ी परिचित है कि नहीं, मुकरी साहब, जगदीप, हसन कमाल साहब, बड़े शायर, बशीर बद्र साहब, ऐसे लोग आते थे। तो बड़ा सीखने को और बड़ा जानने को मिलता था। तो वो एक एनर्जी जो मिलती गई जब मैंने ये निदा साहब वाली डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूस की, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पहुंचेंगे। लेकिन अगर मैं देखता हूँ कि जो 26 साल का सफर सन 2000 से लेकर आज 2026 तक, ये जो निदा साहब के साथ एक रिश्ता बना, जो एक सफर तय किया, मुझे लगता है कि 26 साल बाद मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने इतने बड़े आसमान में एक छोटा सा तारे की तरह अपना भी एक मुकाम हमें मिला है, हमारी टीम को मिला है।
1: जी बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना कि जहां भी रहेगा रोशनी लुटाएगा, चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता। जैसे आपने शुरुआत की पत्रकारिता से, मीडिया की शक्ति तो है ही, जिन लोगों को हम टीवी पर देखते हैं उनके साथ आप रूबरू हो सकते हैं। तो जैसे कल आपके रोल मॉडल निदा फाजली साहब या टॉम वॉल्टर साहब, ये जैसे आपने और नाम गिनाए वो रहे, वैसे आज आप पे अब जिम्मेदारी है आज की युवा पीढ़ी को रास्ता दिखाने का। जैसे आपने कहा भी कि रास्ते और भी हैं, तो ये रास्ते और भी हैं, अगर कोई युवा आपसे जानना चाहे तो कौन कौन से रास्ते बताएंगे आप उसको?
2: मतलब एक चीज और भी बताता हूँ कि मैं जब पढ़ता था तो मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी था, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनिट डूसू का मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा 92 में। मैं अगर अपने जीवन को कभी विविधता में भी देखता हूँ तो राजनीति, फिर टेलीविजन, फिर डॉक्यूमेंट्री, फिर प्रोग्राम एंटरटेनमेंट, सहारा में लंबे समय रहना, कुछ शोज को एंकर भी करना, बतौर एक्टर भी काम करना, तो मुझे लगता है कि जब मैं ये सारी चीजें देखता हूँ, और मुझे लगता है कि जब स्टूडेंट्स जब शिकायत करते हैं, कुछ लोग शिकायत करते हैं कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, जीवन में कुछ नहीं है, मेरा हमेशा से मानना ही है कि हर आदमी हर काम नहीं कर सकता। सबसे पहले तो यूथ को, जो युवा है, जो व्यक्ति किसी प्रोफेशन में आना चाहता है, उसको ये तय करना चाहिए कि उसके मन में क्या है। उसके परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक लड़ाई सबसे पहली ना अपने घर में शुरू होती है। मैं जब पॉलिटिक्स में था तो मेरे पिताजी को लगता था, यार तुम जीवन में कुछ कर पाओगे क्या, कहीं कुछ मिलेगा क्या, डिग्री तुम्हारी तुम्हें कुछ दे पाएगी क्या, है ना। मैं लिटरेचर में एमए भी किया लेकिन नहीं उसका इस्तेमाल

0: 92 की बात की, तो आप नेता भी रहे, अभिनेता भी रहे, निर्देशक भी हैं और निर्माता भी हैं। इन सारे रोल्स में रहते हुए आपने एक ट्रांजिशन भी देखा है, जो हमारे टेक्नोलॉजी का हो या फिर लोगों के काम करने का ढंग का अंतर हो। आज जब हम स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज जब ये बात कर रहे हैं, आप इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें कि जो हमारा फिल्म मेकिंग है या जो फिल्मों का जो संदेश रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारे नेशन मेकिंग में भी, नेशनल बिल्डिंग का भी काम करती है। कैसे करती है?
1: देखिए, अगर मैं बहुत पुरानी चीज याद करूं, आजादी की लड़ाई में भी सिनेमा का और बाकी सारी चीजों का बड़ा योगदान था। ऐसे कई गीत बने जिन्होंने देश में, नौजवानों में, लोगों में जोश भरा। मैं याद करता हूँ किस्मत फिल्म का जो गीत है, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, है ना। तो आज भी अगर हम इस मीडियम की बात करें तो ये अपने आप में बहुत सशक्त मीडियम है, देश के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए, देश में आपके अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, अपने को आगे बढ़ाने के लिए। तो सिनेमा का हमेशा से योगदान रहा है समाज में। आप अगर याद करें तो कई ऐसी फिल्में बनी जिन्होंने सामाजिक जो आंदोलन है उनको हवा दी, उनको सशक्त बनाया, है ना। अगर आजादी की लड़ाई की बात करें, समाज में बड़े सारे परिवर्तन भी किए। और आज भी हम देखते हैं कि कई फिल्में इस तरीके की आती हैं जो छोटी छोटी समस्याओं को, छोटी छोटी चीजों के बारे में, क्योंकि सिनेमा कहें, रंगमंच कहें, यह एंटरटेनमेंट है और ये मैसेज एंटरटेनमेंट के साथ ही देता है। हमेशा से सिनेमा का योगदान रहा है। अब इसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं, इसको नेगेटिव भी ले सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की सोच होती है, अपनी अपनी बात को कहने का एक तरीका होता है। तो मेरा हमेशा से मानना ही है कि भाई युवाओं को इस माध्यम का सशक्त इस्तेमाल करना चाहिए। आज अपॉर्चुनिटी भी है उसके पास, क्योंकि उसके पास अपनी सोच को एक्सप्रेस करने के लिए, विजुलाइज करने के लिए उसके हाथ में एक मोबाइल है। अगर आप वहां से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसके माध्यम से अपने को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपना काम दिखा सकते हैं, चीजें कर सकते हैं और लोगों को अपने बात से, अपने विचार से प्रभावित कर सकते हैं। मेरी लेकिन हमेशा से युवाओं से एक ही चीज रहती है कि आप सोचें, समझें और चिंतन करें। आज क्या है उससे ज्यादा आप ये सोचें भविष्य कैसा होगा। आज आप जो कर रहे हैं उसका फल आपको 2 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद मिलेगा। अगर हमारे से पहले वाले लोग अगर ऐसा नहीं सोचते कि आने वाला भारत कैसा होगा, आने वाला हिंदुस्तान कैसा होगा, तो फिर हम हर बार नई शुरुआत करते। तो आज हमारी युवा पीढ़ी के पास भी ये जवाबदारी और ये दायित्व है कि वो कुछ ऐसा करें जो आने वाले समय में देश के हित में, समाज के हित में हो, तो इस तरीके से उसको इस्तेमाल करें तो अच्छा रहेगा, देश के लिए भी और उसके लिए भी।
0: बिल्कुल अतुल जी, आपने बहुत अच्छी बात की। और सिनेमा भी समाज का एक तरीके से आईना ही होते हैं। तो मैं आपसे एक चीज और आगे बढ़ के जानना चाहूंगा, जो युवा हमें भी सुन रहे हैं और उनमें से कोई व्यक्ति अभिनेता बनना चाहता है, फिल्म मेकिंग से जुड़ना चाहता है, तो उसके लिए क्या तरीका होगा?
1: सबसे पहली बात तो बहुत सारे ऑप्शन और अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन अगर आप अभिनय के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है दिल्ली के अंदर, वहां पर आप आ सकते हैं, वहां पर आप काम कर सकते हैं, अभिनय कैसे करें वो सीख सकते हैं। पुणे में फिल्म इंस्टीट्यूट है, FTIA करके फिल्म इंस्टीट्यूट है, वहां पर आप जा सकते हैं, वहां पर भी आपको अभिनय और सिनेमा की टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है। दिल्ली NCR के आसपास के लोगों के लिए रोहतक में एक बड़ा अच्छी यूनिवर्सिटी है, सुपुवा करके, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, जहां पे आपको सिनेमा, टेलीविजन, परफॉर्मिंग आर्ट्स, काफी सारी विधाएं आपको वहां सिखाई जाती हैं। एक तो इस तरीके के इंस्टीट्यूट है, आप वहां जाकर सीख सकते हैं। दूसरा, आप अपने आप से भी सीख सकते हैं, देश में, समाज में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, अगर आप ऑब्जर्व करें उस चीज को, देखें और किस तरीके का सिनेमा देश में, विश्व में बन रहा है उसको देखें। और सबसे बड़ी बात है कि पढ़ें, क्या लिखा गया है, साहित्य पढ़ें, क्योंकि उसी में से आपको चीजें मिलती हैं, उसी में से आपको कैरेक्टर्स मिलते हैं, किरदार मिलते हैं, और उसमें कुछ चीजों में आप अपने आप को विजुलाइज कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने बताया, राजनीति से शुरू हुआ मैं, मेरे पास कोई, जैसे कहते हैं ना कि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी टेलीविजन में आने की भी, मेरे पास ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं थी कि मैं कभी अभिनय भी कर पाऊंगा या कभी मैं प्रोडक्शन करूंगा या कभी मैं डॉक्यूमेंट्रीज डायरेक्ट करूंगा, ये कभी नहीं था। मैं काम करता गया, ऑब्जर्व करता गया, सीखता गया। तो इसलिए सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं युवाओं से ये कहना चाहूंगा कि सर पर बोझ ना लें। क्या है ये, मतलब इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, आपके अंदर अगर कुछ भी है, कुछ सोचते हैं, कुछ कहते हैं, आप राइटर बन सकते हैं, अच्छी कहानियां लिख सकते हैं। मतलब मेरी कहानी पे फिल्म भी बनी है और एक और कहानी दी रखी है, तो उम्मीद है कि अगले 2-4 महीने में उस पर भी फिल्म शुरू होगी। तो ये कहीं सीखा नहीं है मैंने, लेकिन आज की जनरेशन फॉर्चुनेट है कि उसके पास ये बड़े सारे एवेन्यूज खुले हुए हैं कि जहां पर वो सीख सकती है। लेकिन सीखने के बाद भी दिल और दिमाग आपका ही काम आएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ।
0: जी बिल्कुल, जैसे दुष्यंत कुमार जी ने कहा था, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो इस सूरत को अगर आपको बदलना है तो जैसे अतुल गंगवार साहब ने कहा, पढ़ें और उसके बाद फिर एक्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

दोस्तों सच कहूँ तो आज के समय में हमारे लिए आज़ादी इतनी नॉर्मल है कि शायद हम उसकी वैल्यू भूल जाते हैं। लेकिन एक वक्त था जब अपने ही देश में अपनी आवाज़ उठाना भी एक संघर्ष था, और उस संघर्ष में सबसे आगे थे हमारे युवा, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे कई बड़े नाम। तो दोस्तों भगत सिंह जी की फांसी से एक रात पहले जो उनकी मनस्थिति थी उस पर हमारी ओर से एक विशेष प्रस्तुति।

0: सरदार जी सो नहीं रहे?
1: नींद उन्हें आती है चरण सिंह जी, जिनके पास वक्त हो और अधूरे सपने, क्योंकि वो भरोसे के साथ सो सकते हैं कि वो सपने कल पूरे होंगे। मेरे पास ना वक्त बचा है ना कोई अधूरा सपना, बस एक फैसला बचा है जो बहुत पहले ही मैं ले चुका हूँ।
0: अरे ये तूफान, आज ही रात को आना था इसे।
1: शायद कुदरत भी ये जानती है कि कल कुछ बदलने वाला है।
0: मैंने बहुत कैदी देखे हैं इस जेल में, कोई रोता है, कोई चिल्लाता है और कोई खामोश हो जाता है, पर आप मुस्कुरा रहे हैं।
1: डर मौत से नहीं लगता चरण सिंह जी, डर इस बात से लगता है कि हम जिए किस लिए। मैंने जो जिया उस पर मुझे कोई पछतावा नहीं।
0: पर आप तो पढ़े लिखे थे, नौकरी करते, घर बसाते, ये सब छोड़कर बम गोली झेल आखिर क्यों? ये सब शुरू कहां से हुआ था सरदार जी?
1: 12 साल का था मैं, एक दिन में ही मैं काफी बदल गया था।

0: इतनी खामोशी। कल तक तो यहाँ हजारों लोग जमा थे, बैसाखी का मेला चल रहा था। ये मिट्टी, ये सिर्फ मिट्टी नहीं है, मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगा ताकि इस पल को कभी ना भूलूं, कभी नहीं।
1: वो शीशे आज भी मेरी माँ के पास है चरण सिंह जी। उस दिन के बाद से मैंने कभी दुनिया को उस नजर से नहीं देखा।
2: 12 साल की उम्र में इतना बड़ा बोझ।
1: बोझ नहीं था चरण सिंह जी, वो तो मशाल थे और मशाल जलती रहनी चाहिए थी, लेकिन मात्र फुसफुसाहट से नहीं, बुलंद आवाज से।
2: आवाज से मतलब?
1: किसी बहरे आदमी को अगर कोई बात समझानी हो तो क्या फुसफुसाहट काम आती है?
2: नहीं, आवाज ऊंची करनी पड़ती है।
1: यही तो हमने किया। यह मुल्क बहरा हो चुका था, सालों से अंग्रेजों का जुल्म सहते सहते उसने सुनना बंद कर दिया था। हमें उसे झकझोरना था, इतनी जोर से कि आवाज पूरे असेंबली में गूंजे, पूरे हिंदुस्तान में गूंजे।
2: असेंबली? वो दिल्ली वाला किस्सा?
1: दत्त याद रहे, किसी को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। खाली गैलरी की तरफ फेंकना, हमें मारना नहीं है, जगाना है इन्हें।
3: और भागेंगे नहीं हम?
1: नहीं, पकड़े जाना ही हमारी सबसे बड़ी दलील होगी और कोर्ट का कटघरा ही हमारा पंच बनेगा।
4: इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद।
3: आप भाग सकते थे।
1: भागना कमजोरों का काम है चरण सिंह जी। मुझे मुल्क को दिखाना था कि जो अपने ख्यालात के लिए मरने से नहीं डरता वो सच में आजाद।

0: चाहे पैरों पर बेड़ियां ही क्यों ना हो।
1: मैं एक सरकारी नौकर हूं सरदार जी, पर आज रात के बाद मुझे नहीं लगता मैं वही इंसान रहूंगा जो मैं कल था।
0: यही तो इंकलाब है चरत सिंह जी। इंकलाब का मतलब बम या बंदूक नहीं होता, इंकलाब वो पल होता है जब किसी आदमी का जमीर जाग जाए।
1: सुबह होने वाली है सरदार जी,
0: और शायद ये सुबह आज कुछ जल्दी आ गई है।

तब हाथों में तिरंगा था, आज हाथों में टेक्नोलॉजी है। तब आज़ादी एक सपना थी, आज उसे बचाना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तब उन्होंने देश को आज़ाद किया, अब हमारी बारी है देश को और बेहतर बनाने की। भगत सिंह से संबंधित यह एक लघु नाटक आप तक लाने का सहयोग हमारे साथी निखिल और विजेंद्र ने किया। इस वाइब्रेंसी को बनाए रखते हुए अब सुनते हैं एक ऐसा गीत जिसमें यूथ की एनर्जी भी है और इंडिया की स्पिरिट भी। गीत का नाम है वंदे मातरम, जो मूवी है ABCD2 से।

0: नाचना जरूर है, मुझे नाचना जरूर है माँ, मुझे नाचना जरूर है माँ, मेरी देखेगी नाचना जरूर है।
1: रंग केसर शूरा वाले रंग सब्ज खिल

0: केशव, क्या तुम जानते हो, उम्मीद हमारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि देश सिर्फ सरकारों से नहीं बनता, देश बनता है उसके लोगों से। और जब करोड़ों युवा एक ही डायरेक्शन में कदम बढ़ाते हैं, तो बदलाव सिर्फ सपना नहीं रहता, वो रियलिटी बन जाता है। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अपनी साथी आस्था त्रिपाठी का काव्य पाठ।
1: जय हिंद। मैं आस्था त्रिपाठी आप सभी के बीच आज अपनी कुछ लयबद्ध कविताएं प्रस्तुत करने वाली हूँ। मेरी पहली कविता है हमारा ये तिरंगा। हमारा

भारत बनाता है, जिसके चक्र में मुस्कान वो भारत बनाता है। जरा इतिहास को देखो, यहाँ क्या क्या महकता है। भगत आजाद है कितने, ये कह अंग्रेज थकता है। यहाँ कोई नरम दिल का है, कोई गर्म बुद्धि का। देते ज्ञान देते एकता का, आत्मशुद्धि का। ये लफ्ज कुछ ऐसे हैं। गवाया है करोड़ों रकम अपने ज्ञान और धन का, आजादी मांगी सब रंग ने, दिलाया लाल रंग ने था। गवाया है करोड़ों रकम अपने ज्ञान और धन का, आजादी मांगी सब रंग ने, दिलाया लाल रंग ने था। जख्म को जख्म से जोड़े उसे घायल समझते हैं। हाँ, उस खून की घनी बारिश पे खुद बादल भी कहते हैं। वो खुशकिस्मत की मैं जो ऐसी भू पर राज करता हूँ, कहे रस खान थे जो कृष्ण की महिमा वो कहता हूँ। गुरु गोविंद के आगे मैं अब अरदास करता हूँ। हाँ, ये विश्वास है मुझको, मैं ये आगाज करता हूँ। ये भारत है विविधता का, ये त्रिकोण मीति है। सभी हैं अपने मूल्यों के, या सबकी एक नीति है। हाँ, कोई जाए शिखरों पर, ये खुद पनडुब्बी कहती है। भले हो वेशभूषा भिन्न या बंगाली कहती है। हाँ, ये पहचान है उसकी के वो भारत में रहती है। और ये पहचान काफी है कि वो भारत की बेटी है। ये भारत में शिखर हैं जितने ऊंचे हैं वो सागर भी। जिन्हें कुछ ना समझ है, बस पता है एक भारत ही। जिन्हें कुछ ना समझ है, बस पता है एक भारत ही। हो काली हो या खद्दर, है ये सारी एक माटी ही। हो पूर्वी हो या पश्चिम, है ये सबकी एक ख्याति ही। जिन्हें कुछ ना समझ है, बस

0: एक भारत ही, जिन्हें कुछ ना समझ है बस पता है एक भारत ही।
1: तो ये थी मेरी पहली कविता, और अब बढ़ते हैं मेरी दूसरी प्रस्तुति की ओर, जिस कविता का शीर्षक है भारत की माटी।
0: जहाँ

ऐसी उद्भवी माटी को हम भारत ही कहते हैं, ऐसी उद्भवी माटी को हम भारत ही कहते हैं, जहाँ खुद राम ने भी जान गवाई मुस्कुरा कर, खुद आजाद ने कुर्बानी दी गोली चला कर, ऐसी क्रांति

में थे, ऐसे ही जो सारी चाल चल के झांसी मांगे, धन धन त्याग के भी रानी ने झांसी तो ना दे, ऐसे राज

0: आंसुए दिखा रहा है, चेस के चैंपियंस में जीतता गुकेश प्यारा है, अरे वो जेवलिन में चोपड़ा नीरज दिला रहा है, विकसित देश को बनाने में सारे धुरंधर करेंगे चांद को भी पार, ये सारे दिवाकर ऐसी अग्रसर माटी को हम भारत ही कहते हैं, ऐसी अग्रसर माटी को हम भारत ही कहते हैं, जन कल्याण में भी इस युवा के भाग अच्छे हैं, अलख हैं खान भी हैं सारे इनके प्यारे बच्चे हैं, सबने एकजुट होकर प्रकृति को बचाया है, सारे एक ही हैं ध्येय सबका एक पाया है, ऐसी मातृभूमि पाके हम तो धन्य ही हैं, यहाँ भी भेद में भी भेदता अनन्य ही है, ऐसी सौम्य सुंदर माटी को भारत ही कहते हैं, ऐसे विविधता के देश को भारत ही कहते हैं, विविधता में भी एकता को हम भारत ही कहते हैं। धन्यवाद साथियों, मेरे साथ मेरी कविताओं के साथ इतने प्यार से जुड़े रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।
1: तो दोस्तों, ये था हमारी साथी आस्था त्रिपाठी का अद्भुत काव्य पाठ, जिसे उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से प्रस्तुत किया। तिरंगा महज ध्वज मात्र लहराने की चीज नहीं, ये अपने मन के भीतर उतारने की भावना है।
2: दोस्तों, आप सुन रहे थे आकाशवाणी युववाणी का स्वतंत्रता दिवस पर विशेष कार्यक्रम आजादी का जश्न युववाणी के युवाओं के संग। आप अपने सुझाव और प्रतिक्रिया भेज सकते हैं हमें yuvvani@gmail.com पर, yuvvaneifeedbacke@gmail.com पर।
3: आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक नालसा, न्याय सबके लिए।

0: नालसा। न्याय सबके लिए, कानूनी सहायता के लिए कॉल कीजिए 1500 पर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये प्रसारण दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी होगा। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम 5:10 पर सैनिकों को संबोधित करेंगे। उनका संबोधन आकाशवाणी के FM गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे।
2: लाल किले में होने वाले इस समारोह में पहली बार वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रगान होगा। यह भव्य कार्यक्रम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 साल पुरानी गौरवशाली विरासत को याद करने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में सेना, नौसेना और वायुसेना के करीब 2500 कैडेट और माई भारत के स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे। इस समारोह में देश के अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों को भी लाल किला में आमंत्रित किया गया है। दिल्ली पुलिस ने समारोह को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने आज वीरता के 301 पदकों की सूची जारी की। इनमें पुलिस कर्मियों के लिए 272 और अग्निशमन सेवा के कर्मियों के लिए 29 पदक शामिल है। इसके अलावा विशिष्ट सेवा के लिए कुल 92 राष्ट्रपति पदक की भी घोषणा की गई है। 664 सराहनीय सेवा पदक प्रदान किए जाएंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के 21 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक और सराहनीय सेवा के लिए पदक देने की घोषणा की गई है। 6 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिए जाएंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने वाले विशेष अतिथियों और आम लोगों की आवाजाही के लिए विस्तारित मेट्रो सेवाओं की घोषणा की है। यात्री सुबह 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशनों पर उतरकर लाल किला तक पहुंच सकते हैं। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्र वर्ष 1947 में देश के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों का स्मरण कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस का स्मरण किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज उत्तराखंड के चमोली में एक जल विद्युत परियोजना स्थल पर सुरंग ढहने की घटना पर शोक व्यक्त किया है। उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने और मलबे के नीचे फंसे लोगों के सुरक्षित निकलने के लिए प्रार्थना की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुरंग हादसे के बाद आज घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने सुरंग में फंसे शेष लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बचाव अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। पीपलकोटी क्षेत्र में THDC के निर्माणाधीन सुरंग में मलबा और पानी भरने से फंसे करीब 22 लोगों में से 19 को बाहर निकाला गया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में आज एक ग्राम रक्षा कोड VDG सदस्य की कथित तौर पर एक अन्य VDG सदस्य द्वारा झड़प के बाद गोली चलाने से मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया है और आगे की जांच जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन परिसर में अमृत उद्यान के ग्रीष्मकालीन वार्षिक संस्करण 2026 के उद्घाटन में भाग लिया। अमृत उद्यान आम जनता के लिए रविवार से अगले महीने की 15 तारीख तक खुला रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले सेना के खिलाड़ियों से बातचीत की। सेना के खिलाड़ियों ने इस बार 8 स्वर्ण, 7 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 16 पदक जीते थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि ये खिलाड़ी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साई रमुज तबा।

हमारा देश कल अपनी स्वतंत्रता का 80वां वर्षगांठ मनाने जा रहा है। इस गौरवपूर्ण अवसर पर मैं सशस्त्र सेनाओं में सेवारत और सेवानिवृत्त सभी सैनिकों और सैन्य अधिकारियों को अपनी और समस्त भारत की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं उन परिवारों के प्रति भी अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं जिनके त्याग और धैर्य के कारण ही हमारे सैनिक पूरी निष्ठा के साथ मातृभूमि की सेवा कर पाते हैं। साथियों, आज से 79 वर्ष पूर्व हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने अथक संघर्ष, त्याग और बलिदान के बल पर हमें आजादी का अमूल्य उपहार दिया है। महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सरोजनी नायडू, रानी गडिनलू और असंख्य ज्ञात अज्ञात वीरों के सपनों और बलिदानों ने स्वतंत्र भारत की नींव रखी। उसके बाद से ही उस विरासत को सुरक्षित रखने और भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता की रक्षा करने का दायित्व आज हमारे सशस्त्र बलों के मजबूत कंधों पर है। और साथियों, आपका अनुशासन, आपका साहस, आपका समर्पण और राष्ट्र के प्रति आपकी अटूट निष्ठा प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत है। विपरीत परिस्थितियों में भी आपका अडिग संकल्प यह सुनिश्चित करता है कि देश का प्रत्येक नागरिक सुरक्षित वातावरण में अपने सपनों को साकार कर सके। राष्ट्र आपकी इस अद्वितीय सेवा, त्याग और समर्पण के लिए सदैव आपका ऋणी रहेगा। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में वैसे तो मैं समय समय पर अलग अलग अवसरों पर आप सबसे मिलता ही रहता हूं, लेकिन स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी से कुछ बातें साझा करना हमेशा एक अलग अनुभव होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन हम हमारी आर्म फोर्सेज के किसी एक यूनिट के बारे में ही बात नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि हम भारत के डिफेंस सेक्टर के डेवलपमेंट को हॉलिस्टिक नजरिए से देख रहे होते हैं। एक राष्ट्र के रूप में भारत ने आजादी के इन 80 वर्षों में जो प्रगति की है वह अपने आप में एक प्रेरक गाथा है। लेकिन यह कहानी तब और सुखद हो जाती है जब हम इसमें भारत के रक्षा क्षेत्र की यात्रा को देखते हैं। साथियों, 1947 से लेकर आज तक हमारे रक्षा क्षेत्र ने अभूतपूर्व प्रगति की है और हम सब इसके साक्षी हैं। लेकिन आज स्वतंत्रता दिवस की इस पूर्व संध्या पर मैं आपसे उस इतिहास की नहीं बल्कि वर्तमान की और आने वाले भविष्य की योजनाओं पर बात करना चाहूंगा। साथियों, आप सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और उनमें भी पिछले 12 वर्षों में आप सबने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन देखा है। आज भारत केवल अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने वाला देश ही नहीं रहा, बल्कि हम ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस एक्सपोर्ट्स के क्षेत्र में एक उभरती हुई शक्ति बन चुके हैं। हमारे प्रयासों ने रक्षा उत्पादन को नई दिशा दी है, हमने आयात पर अपनी निर्भरता कम की है और स्वदेशी निर्माण को हमने अभूतपूर्व गति प्रदान किया है। आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं। हमारा घरेलू रक्षा उत्पादन जो 2014 तक मात्र 46,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, वो वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। यानी पिछले एक दशक में हमारा घरेलू रक्षा उत्पादन लगभग 4 गुना बढ़ चुका है। यह पिछले एक दशक में हुए स्ट्रक्चरल चेंज का प्रमाण है। इस कुल उत्पादन में रक्षा, सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की लगभग 76% हिस्सेदारी रही, जबकि निजी क्षेत्र ने 24% का योगदान दिया, जो पिछले वर्ष के 22% से अधिक है। निजी क्षेत्र की यह बढ़ती भागीदारी इस बात का संकेत है कि रक्षा क्षेत्र में बिजनेस इन्वायरमेंट लगातार बेहतर हो रहा है। साथियों, रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का सबसे प्रभावशाली प्रमाण हमारा रक्षा निर्यात है। वर्ष 2013-14 में महज 686 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट आज वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़कर 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यानी लगभग एक दशक में हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट ने 5,500% से भी अधिक की छलांग लगाई है। आज भारत में 145 डिफेंस एक्सपोर्टर्स हैं

और हमारे डिफेंस प्रोडक्ट्स 80 से अधिक देशों में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। इसी आत्मविश्वास के साथ सरकार ने 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम यह लक्ष्य जरूर प्राप्त करके रहेंगे। साथियों, रक्षा क्षेत्र में इतना बड़ा परिवर्तन बिना किसी ठोस निवेश के संभव नहीं था। हमने रक्षा बजट लगातार बढ़ाया है। हमारा डिफेंस बजट वर्ष 2013-14 के 2.53 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2026-27 में 7.85 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसी तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर 94,588 करोड़ रुपए से बढ़कर 2.19 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी हमारा फोकस लगातार बढ़ा है। वर्ष 2014-15 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बजट जहां 15,283 करोड़ रुपए हुआ करता था, वह 2026-27 में 90% बढ़कर 29,100 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। सारे आंकड़े भविष्य की रक्षा तकनीकों में भारत की बढ़ती प्रतिबद्धता को दर्शा रही हैं। साथियों, रक्षा क्षेत्र में इस निवेश का लाभ हमारे पूरे रक्षा औद्योगिक परिदृश्य को भी मिल रहा है। आज देश में रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए 16 सार्वजनिक उपक्रम, 462 लाइसेंसी रक्षा कंपनियां और लगभग 17,000 MSME रक्षा निर्माण से जुड़ी हैं। नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए आईडेक्स जैसे प्लेटफॉर्म तैयार किए गए, साथ ही अदिति जैसी योजना के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसी अत्याधुनिक तकनीकों के लिए 25 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है। साथियों, भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी सेनाओं के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। पिछले एक वर्ष में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने लगभग 8.75 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी प्रदान किया है। यह अपने आप में हमारे रक्षा आधुनिकीकरण के इतिहास का सबसे बड़ा निवेश है। इसके अंतर्गत भारतीय सेना को, भारतीय नौसेना को और भारतीय वायुसेना को अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध कराए जाएंगे। ये निर्णय हमारे रक्षा क्षेत्र को भविष्योन्मुखी बनाने की दिशा में उठाए गए ठोस कदम है। आधुनिकीकरण की इस प्रक्रिया को गति देने के लिए हमने रक्षा खरीद प्रक्रिया में भी बुनियादी सुधार किए। 2026 में डिफेंस सर्विसेज के लिए डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स में व्यापक संशोधन कर फील्ड कमांडर्स के अधिकार 100% तक बढ़ा दिए गए। इससे कॉन्ट्रैक्ट्स का क्रियान्वयन तेज होगा और हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी मजबूत होगी। इसके अतिरिक्त स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशीकरण से जुड़े वित्तीय अधिकार भी 2x कर दिए गए हैं, जिससे 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा खरीद को रेवेन्यू रूट के माध्यम से गति मिलेगी। साथियों, हमारी सेनाओं ने बढ़ चढ़कर आत्मनिर्भरता की इस यात्रा में भाग लिया है। भारतीय नौसेना ने आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में एक के बाद एक कई मील के पत्थर स्थापित किए हैं। वर्ष 2025 और 2026 में नौसेना के बेड़े में प्रोजेक्ट 17A के तहत 4 अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट्स INS उदयगिरी, INS हिमगिरी, INS तारागिरी और INS महेंद्रगिरी को शामिल किया गया। ये सभी स्वदेशी युद्धपोत हमारी समुद्री क्षमताओं और सुरक्षा को मजबूत कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त गोवा में इंडियन कोस्ट गार्ड शिप समुद्र प्रताप का भी कमीशन होना ऐतिहासिक रहा, जो 60% से अधिक स्वदेशी कंटेंट वाला भारत का पहला स्वदेशी पॉल्यूशन कंट्रोल वेजल है। भारतीय वायुसेना के लिए भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नासिक संयंत्र में LCA तेजस मेक 1A की तीसरी और HTT-40 की दूसरी प्रोडक्शन लाइन शुरू की गई है। हाल ही में इस नई फैसिलिटी में बने पहले LCA मेक 1A को भी राष्ट्र को समर्पित किया गया। एमका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मॉडल को मंजूरी देना भी हमारे इसी रणनीतिक कदम का उदाहरण है, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को समान भागीदारी का अवसर मिलेगा। फरवरी 2026 में टाटा एडवांस सिस्टम्स की एयरबस H125 हेलीकॉप्टर

0: इनर असेंबली लाइन का उद्घाटन भी भारत के एरोस्पेस इकोसिस्टम की बढ़त को दिखा रहा है। साथियों, हमारी आर्मी को भी अत्याधुनिक तकनीक से सशक्त बनाने के लिए हमने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड तथा इलेक्ट्रो न्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ लगभग 975 करोड़ रुपए की लागत से T-72 और T-90 टैंक्स के लिए ट्रॉल असेंबली की खरीद के कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। ये अत्याधुनिक माइन क्लियरिंग सिस्टम्स युद्ध के दौरान टैंकों के लिए सुरक्षित मार्ग तैयार करेंगे, जिससे हमारी आर्मर कोर की मोबिलिटी, सर्विवेबिलिटी और कंबैट इफेक्टिवनेस में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। साथियों, रक्षा क्षेत्र के इस बदलते परिवेश में DRDO और हमारी सेनाओं ने भविष्य की युद्ध तकनीकों में भारत को अग्रणी पायदान पर ला खड़ा किया है। हमने अपनी पहली टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन प्रणाली का सफल परीक्षण किया, जो पारंपरिक हथियारों को प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स में बदलने की क्षमता रखती है। MIRV तकनीक से लैस एडवांस्ड अग्नि मिसाइल के परीक्षण ने हमारी रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता को नया आयाम दिया है। इसी क्रम में लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल रुद्रम 2, एयर टू सरफेस मिसाइल, नेवल एंटी शिप मिसाइल YASAR और पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट के सफल परीक्षणों ने हमारी मारक क्षमता को अभूतपूर्व मजबूती दी है। भविष्य की तकनीकों में हमने हाइपरसोनिक क्षेत्र में भी बड़ी छलांग लगाई है। एक्टिव कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कंबस्टर के 1200 सेकेंड से अधिक के सफल परीक्षण ने भारत को हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी विकसित करने की क्षमता रखने वाले चुनिंदा देशों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफल प्रदर्शन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एयर डिफेंस में हमारी शक्ति स्वदेशी कुशा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के पहले सफल परीक्षण से और बढ़ गई है, जिसके सभी सिस्टम पूर्णतः स्वदेशी हैं। साथियों, आधुनिकीकरण के साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्रों को मजबूत करना भी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस वर्ष बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने एक साथ 125 रणनीतिक आधारभूत संरचनाएं राष्ट्र को समर्पित किए, जो BRO के इतिहास की सबसे बड़ी एकल उपलब्धि है। लगभग 5000 करोड़ रुपए की लागत से लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे क्षेत्रों में बनी 28 सड़कें और 93 पुल हमारी सेनाओं की तेज आवाजाही को सुनिश्चित करेंगे। इससे सीमावर्ती क्षेत्रों से हमारा जुड़ाव और मजबूत हो रहा है। हमारे सैनिकों का सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों के साथ जुड़ाव पहले की तुलना में अब और ज्यादा बढ़ रहा है। सिर्फ सीमावर्ती क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि हर जगह हमारी सेनाएं फर्स्ट रेस्पॉन्डर के रूप में कार्य करती हैं। देश में कहीं भी जब कभी दुर्भाग्यपूर्ण आपदा आती है तो हमारी सेनाएं वहां तुरंत पहुंचकर राहत बचाव का कार्य करती हैं। इसलिए साथियों, हम आधुनिकता या आत्मनिर्भरता के जो कुछ भी प्रयास कर रहे हैं, उसका मुख्य आधार हमारी सेनाएं, हमारे सैनिक और उनके परिवारजन ही हैं। हमारी सेनाएं हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान का प्रतिबिंब है। हम अपने वेटरन्स के कल्याण के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। पिछले 5 वर्षों में यक्ष सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम बजट में 300% की वृद्धि हमारी इसी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसके अलावा आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड के अंतर्गत इन्यूरी ग्रांट 4000 से बढ़कर 8000 रुपये, एजुकेशन ग्रांट 1000 से बढ़ाकर 2000 रुपये और मैरिज ग्रांट 50000 से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये कर दी गई है। यह बदलाव साफ तौर पर हमारे सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दिखा रहे हैं। साथियों, आज जब हम रक्षा क्षेत्र में इतने बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं, मुझे आपसे यह कहते हुए भी बहुत खुशी हो रही है कि भारत का रक्षा क्षेत्र भारत की बेटियों के लिए भी सम्मानजनक रास्ते खोल रहा है। 2026 में हमने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, जब नेशनल डिफेंस एकेडमी से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली पहली महिला कैडेट्स ने सेना, नौसेना और वायुसेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त किया। 17 महिला अधिकारियों का यह जत्था साबित करता है साहस और नेतृत्व किसी एक जेंडर की सीमा में नहीं बने, हमारी नारी शक्ति की इसी भावना का विस्तार समुद्र प्रदक्षिणा भी है, जहां तीनों सेनाओं का पहला ऑल वेमेन सरकम नेविगेशन सेलिंग एक्सपेडिशन हुआ, जिसमें IASV त्रिवेणी पर सवार 9 महिला अधिकारियों ने 314 डेज में 4 महासागरों में 25,500 नॉटिकल माइल्स की यात्रा पूरी की। यह अदम्य साहस नारी शक्ति के नए भारत का जीवंत प्रतीक है। साथियों, इस वर्ष का स्वतंत्रता दिवस हम सबके लिए बहुत ही विशेष है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वर्ष हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। हम सबकी यह जिम्मेदारी है कि हम सब इस अवसर को एक उत्सव के रूप में मनाएं। यह केवल एक वर्षगांठ नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक चेतना का उत्सव है। मुझे पूरा विश्वास है यह स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा और हम सबके अंदर राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र सेवा की ऊर्जा को ऐसे ही बनाए रखेगा। अंत में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मैं अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के वीर जवानों, सम्मानित पूर्व सैनिकों और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आइए हम संकल्प लें कि राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी बनेंगे और अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हुए विकसित भारत के निर्माण में अपना सार्थक योगदान देंगे। जय हिंद, जय भारत।
1: अभी आप स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का सैनिकों के नाम संदेश सुन रहे थे। ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। शाम के 5:30 होने को है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खिलाड़ी खेलों का आईना।
2: नमस्कार, स्वागत है आपका खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में। मैं हूं रेनू गुप्ता और मेरे साथ हैं
3: वसीम अहमद

0: 2026 हॉकी से।
1: जी हाँ बिल्कुल, तो हॉकी के बारे में बात करते हैं। हॉकी के मैदान पर एक बार फिर दुनिया की नजरें भारत पर हैं। FIH हॉकी वर्ल्ड कप बेल्जियम और नीदरलैंड्स 2026 का आगाज कल यानी 15 अगस्त से होने जा रहा है। बेल्जियम और नीदरलैंड्स संयुक्त रूप से इस विश्व कप की मेजबानी कर रहे हैं और पुरुष तथा महिला दोनों वर्गों में 16-16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। पुरुषों का फाइनल 30 अगस्त और महिलाओं का फाइनल 29 अगस्त को होगा। लेकिन भारतीय हॉकी के लिए ये सिर्फ एक और विश्व कप नहीं है, भारत ने अपना एकमात्र पुरुष हॉकी विश्व कप खिताब 1975 में क्वालालंपुर में जीता था। फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराया था। कप्तान थे अजीत पाल सिंह, जबकि निर्णायक गोल महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के पुत्र अशोक कुमार ने किया था। इस वर्ल्ड कप से अशोक कुमार को क्या उम्मीदें हैं, आइए सुनते हैं।
2: पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया रवि साहब, आपके उस पुनरावृत्ति को जो आप आज से 51 साल पहले भारतीय हॉकी टीम ने मलेशिया क्वालालंपुर में फाइनल मैच में पाकिस्तान के खिलाफ जीत कर देश को एक अपनी अपना तोहफा दिया था। देखें तो हमारे जीता, भारत देश जीता, एक भारतीय टीम जीती है, उसके 11 खिलाड़ी होते हैं जिनका फर्ज धर्म होता है इस टीम को आगे बढ़ाना, आगे जिताना। और शायद फाइनल गोल जो जीतने वाला था मेरी हॉकी स्टिक से निकला, उसका मुझे थोड़ा सा खुद के अपने आप से मुझे एक अच्छा लगता है। लेकिन वो देश की जीत थी और वर्ल्ड कप में हमारी तीसरी लगातार पोडियम पर पार्टिसिपेशन था। 71 वर्ल्ड कप ब्रॉन्ज मेडल, 1973 एम्स्टर्डम जिसमें भारत की टीम 2 गोल की जीत लेने के बाद सेकेंड हाफ में हॉलैंड से हार जाती है टाई ब्रेकर में। लॉन्गेस्ट मैच जो खेला गया है खेल इतिहास में वो 1973 वर्ल्ड कप का था, जिसमें सडन एक्स्ट्रा टाइम उसमें फिर भारत की टीम की टाई ब्रेकर में हार, वो एक हमारे लिए बहुत दुखदायक क्षण थे 1973 वर्ल्ड कप के, क्योंकि उस वर्ल्ड कप को भारत की टीम को जीतना चाहिए था बट वी लॉस्ट। और यह 75 वर्ल्ड कप हमारे लिए उस 73 की हार का बदला लेने का प्रण कमिटमेंट, और वो ये प्रण कमिटमेंट मैं खुद करता हूँ। जब हम वहाँ पर होटल में जाते हैं, होटल में चेक इन के लिए जाते हैं, तो ये वार्डरोब में कप रखा होता है सामने डिस्प्ले के लिए, वो जाते हैं तो 73 की याद आती है। डेफिनेटली कोई चीज जब जहन पर दिमाग पर असर डालती है तो मैं उस वार्डरोब के पास जाके और खड़ा हो जाता हूँ और कमिट करता हूँ, और कमिट ये कि जो कुछ भी कर पाऊंगा मुझे करना चाहिए इस वर्ल्ड कप में मैं करूंगा। और ईश्वर ने मुझे साथ दिया, ईश्वर ने मुझे आशीर्वाद दिया, लोगों का स्नेह प्यार, देश का प्यार, और मैं समझता हूँ वो एक जीत हमारे लिए जीत ही नहीं थी बल्कि एक सेकंड चैप्टर था इंडियन हॉकी के आगे बढ़ने का। उसका प्रेडिक्शन तो मैं कौन सी पोजीशन आई ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे को पूरा पूर्ण विश्वास है कि हम भारतीय टीम पोडियम पर खड़ा होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि यह टीम एक संतुलित टीम है, इसके अंदर सीनियर खिलाड़ियों का समावेश और हमारे जूनियर और जितने भी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं इसके अंदर, वो सब इसके अंदर मौजूद है, जो अपने अपने रणनीति के अनुसार, अपने खेल कला कौशल के अनुसार टीम में जिन्होंने जगह बनाई और बनाए हुए हैं। खिलाड़ी जो है अपने पूर्ण शक्ति से, जो भी शक्ति उनकी आखिरी होता ना आखिरी दम, अंदर मुझे देखने को मिलेगी ऐसा मुझे
1: बिल्कुल ऐसी ही कुछ उम्मीदें हम सभी भारतीयों को हैं, क्योंकि आज उस ऐतिहासिक विजय के 51 वर्ष बाद भारतीय पुरुष टीम फिर विश्व कप ट्रॉफी को देश में लाने के लक्ष्य के साथ मैदान पर उतरेगी। और पुरुष टीम ही क्यों, महिला टीम भी उतने ही उम्मीदों के साथ मैदान पर उतरी है। हॉकी इंडिया ने 20 सदस्यीय टीम की कप्तान कमान एस ड्रैग फ्लिकर और डिफेंडर हरमनप्रीत सिंह को सौंपी है। अनुभवी मनप्रीत सिंह, विवेक सागर प्रसाद, मनदीप सिंह और शिलानंद लाकरा जैसे खिलाड़ी भी टीम का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। भारत पुरुष वर्ग के पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ इस है, और इस पर मनप्रीत सिंह क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं।
3: अच्छा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इनके साथ मैचेस खेल चुके हैं, ठीक है, रिसेंटली जो हमारी प्रो लीग के मैचेस थे उसमें हम लोग इंग्लैंड और पाकिस्तान दोनों टीमों के साथ खेले थे, वेल्स के साथ नहीं खेले हैं, बट उन दोनों के साथ काफी अच्छे मैचेस रहे, काफी कुछ सीखने के लिए मिला कि क्या उनके प्लस पॉइंट है, क्या उनकी वीकनेस है, कहाँ पे हम लोग उनको हर्ट कर सकते हैं, कि हम लोग कैसे और गोल मार सकते हैं, तो वो काफी अच्छा रहा हमारे लिए। और वर्ल्ड कप में ऐसा है कि हमारा एक पर्सनल ये रहेगा कि हाँ, कि किसी भी टीम को अंडर एस्टिमेट ना करें, क्योंकि भले जो अभी कैसा भी हो हम लोग अपना हर मैच में पूरा बेस्ट करें।
1: जी हाँ बिल्कुल, किसी भी टीम को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। भारत का पहला मुकाबला 15 अगस्त को वेल्स से, दूसरा 17 अगस्त को इंग्लैंड से और तीसरा 19 अगस्त को चिर प्रति

0: बंदी पाकिस्तान से होगा। तीनों मुकाबले एब्स्टनविल नेदरलैंड्स के वैगनर हॉकी स्टेडियम में खेले जाएंगे। भारतीय अटैक में मनदीप सिंह और शिलालन लाकरा जैसे फॉरवर्ड्स पर भी नजरें रहेंगी। शिलालन लाकरा इस पर क्या महसूस करते हैं, आइए जानते हैं।
1: ये तो है प्राइड की बात है सर कि इंडिया की जर्सी पहन के इंडिया को रिप्रेजेंट करना। जब नेशनल एंथम बजता है तो मतलब फीलिंग्स वो फीलिंग्स जो
2: जी। पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया रवि साहब आपके उस पुनरावृत्ति को जो जी। पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया रवि साहब आपके।
1: ये तो है प्राइड की बात है सर कि इंडिया की जर्सी पहन के इंडिया को रिप्रेजेंट करना। जब नेशनल एंथम बजता है तो मतलब फीलिंग्स वो फीलिंग्स जो मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो जितना भी हॉकी प्लेयर्स है सभी का हॉकी प्लेयर्स लोग का ड्रीम होता है कि वर्ल्ड कप रिप्रेजेंट कर वर्ल्ड कप में इंडिया को रिप्रेजेंट करें। तो वो सपना मेरा भी था और मैं इस अपॉर्चुनिटी को मैं मेहनत अपना 100% दूंगा और मैं इसको बेस्ट करने मैं अपना बेस्ट दूंगा इस वर्ल्ड कप में। और जो ट्रेनिंग का जो बात है जो मेंटेलिटी का जो बात है वो ये है कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी कि स्ट्रक्चर के बारे काम कर रहे हैं पेनल्टी कॉर्नर के बारे काम कर रहे हैं। तो ये मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा अपने आप को कि हम क्या बेस्ट कर सकते हैं इंडिविजुअल प्लेयर को। तो उसमें मैं अपना अपने आप पे ज्यादा फोकस हूँ कि मैं क्या बेस्ट कर सकता हूँ टीम के लिए उसके बारे में अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूँ। एक्साइटमेंट भी था और कॉन्फिडेंट भी कि टीम में मेरे लिए एक जगह मिला वर्ल्ड कप रिप्रेजेंट करने के लिए
3: जी।
1: तो इसमें मैं अपना बेस्ट देने का कोशिश कर रहा हूँ हर एक ट्रेनिंग मैच में। अगर आज मैं बेस्ट किया तो उसको कैसे कंसिस्टेंट आगे कंटिन्यू करो वो करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं इसमें ज्यादा ये दूसरों के बारे में नहीं सोचा खुद का बारे में ज्यादा इम्पोर्टेंस है कि अपने आप को कैसे मैं स्ट्रॉन्ग करूँ उसके बारे में।
0: भारत के चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के मुकाबले पर सभी की निगाहें टिकी होंगी। ऐसे में मुकाबला बेहद खास होने वाला है क्योंकि इस मुकाबले पर हमने बात की मनप्रीत से और वो इस मुकाबले के बारे में क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं।
4: सर हमारा यही रहेगा कि जो हम लोगों ने अभी लास्ट दो मैच जैसे खेले हैं वैसे ही खेलेंगे तो हम लोग उनको बीट कर सकते हैं। बट हमें इमोशनल नहीं होना है। जो हमारा गेम स्ट्रक्चर रहेगा जो गेम प्लानिंग हम लोग उस दिन के लिए करके जाएंगे तो उसको एग्जीक्यूट करना है क्योंकि एक हॉकी टीम के में सभी को अपना 100% देना होगा उस दिन क्योंकि वर्ल्ड कप है। वो भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएंगे और हमारा यही रहेगा कि हम लोग अपना डिफेंस स्ट्रांग रखें तो उनके साथ जब भी हमें अपॉर्चुनिटी मिले हम लोग उसको गोल में करें।
0: हॉकी इंडिया ने वर्ल्ड कप से पहले फॉरवर्ड लाइन की केमिस्ट्री और फिनिशिंग को टीम की तैयारियों का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। मिडफील्ड में अनुभव और युवा ऊर्जा का संतुलन भी भारत की बड़ी ताकत है। मनप्रीत सिंह और विवेक सागर प्रसाद जैसे अनुभवी खिलाड़ी मिडफील्ड को मजबूती देंगे। भारतीय हॉकी की नई पीढ़ी में एक दिलचस्प नाम है यशदीप सिवाज। वह अपना पहला सीनियर वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं और वो पूर्व भारतीय महिला कप्तान प्रीतम रानी सिवाज के पुत्र हैं। प्रीतम रानी सिवाज की विश्व कप के लिए क्या सलाह है, आइए सुनते हैं।
5: जब हम नेशन कप खेलते हैं या प्रो लीग खेलते हैं या टेस्ट सीरीज खेलते हैं उसमें बिल्कुल अलग होता है क्योंकि ना तो प्रेशर होता है ना कंपटीशन इतना बड़ा होता है क्योंकि जो टीमें होती है उसमें नए पुराने खिलाड़ी ट्राई करते हैं सब तो उसमें इतना कंपटीशन नहीं होता। लेकिन जब मेजर कॉम्पिटिशन आता है जब वर्ल्ड कप होता है या ओलंपिक होता है या ऐसे कॉम्पिटिशन होते सब अपना 100% लेके आते हैं और अच्छी से अच्छी टीम बना के लेके आते हैं तो इसमें तो डिफरेंट बिल्कुल अलग है। और हमारी टीम को भी उसी उससे खेलना है कि भाई हमारी टीम भी अब सबसे टॉप की टीम बनी हुई है और उसी लेवल पे जाके खेलना कि हमें वर्ल्ड कप की जो चार में पहुंचना है। तो हर लड़की का हर कोच का हर स्टाफ का हर प्लेयर का मतलब जो सोच लेवल है ना जो सोच है वो एक जैसी होनी चाहिए मतलब कि हमें पोडियम पे फिनिश करना और हमें 100% देना क्योंकि ये चार साल के बाद होता है और इतनी मेहनत की होती है सारा रिजल्ट यही दिखाना। देखो नेदरलैंड से वो आए हैं और नेदरलैंड की टीम से चलो हमें बाद में खेलना यूरोप की टीमें सब एक जैसा खेलती है जैसे लाइक बेल्जियम है न्यूजीलैंड है ये सब एक जैसा स्ट्रक्चर तो जिससे हमें आइडिया हो जाए और ये पहले भी ओलंपिक में टीम के साथ काम कर चुका है उसी हिसाब से मुझे ऐसा लगता कि भाई काफी हेल्प मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। देखो जैसे स्ट्राइकर है तो प्लेयर चलते रहते हैं चेंज भी हो देते हैं। आप इस टाइम उसको नहीं देखते हम इसको देख रहे हैं कि इस टाइम पीक पे कौन है जैसे कि लाइक नेहा नवनीत और बैक में जाके सुशीला चानू मोस्ट सीनियर प्लेयर है, जैसे लाइक सविता गोलकीपर जो है कि कैप्टन भी रह चुकी है, सलीमा टेटे, ये सभी मोस्ट सीनियर प्लेयर है, उनको सीनियर के साथ साथ एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है। इनको जूनियर लड़कियां जो आई है उनको अपने

0: साथ लेके चलना है ना, पूरी टीम को मोटिवेट करने करके चलना है, क्योंकि ये लोग अच्छे हैवी टूर्नामेंट खेल चुके हैं, पिछले ओलंपिक भी खेल चुके हैं, तो इनके ऊपर ज्यादा रहेगा। जैसे अपनी दीपिका ड्रैग फ्लिकर है, जबकि वो थोड़ा इंजरी भी है उसको इस टाइम, लेकिन फिर भी टीम के लिए वो ड्रैग जरूर मारे, क्योंकि पीछे जो टूर्नामेंट हम जीत के आए हैं उसकी सपोर्ट से ही जीत के आए। तो ये जो पांच छह प्लेयर है इनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरे देश का वो है, लेकिन उसको प्रेशर में ना ले, टीम के लिए स्पोर्ट में खेले, एक दूसरे से मिलके खेले, एक दूसरे बात करके खेले, है ना, दूसरे की गलतियां जो है उसको कवर अप करे, इससे हमारी टीम ज्यादा बेहतर जा पाएगी। कई लड़कियां नहीं है तो उनको भी साथ में लेके चलो, लेकिन उनका एक्सपीरियंस काफी अच्छा, प्रो लीग में खेल चुकी हैं, तो मुझे लगता नहीं है टीम में कहीं कमी है, ऑल प्लेयर्स अच्छे हैं, लेकिन तीन चार प्लेयर सीनियर है, उनको साथ में जूनियर्स को लेके चलना, जोर नहीं लेना, तीनों ही टीमें अच्छी हैं। आप थोड़ा बहुत कह सकते हैं साउथ अफ्रीका टीम एक ऐसी है जिसपे हम गोल एवरेज भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन 2010 में हम साउथ अफ्रीका से भी हारे थे जब कॉमनवेल्थ गेम्स था, और तीन गोल से शायद आई थिंक दो या तीन गोल से हारे थे, जो कि वो टीम हमें वो मैच हमें जीतना बहुत जरूरी था। तो कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कोई सी टीम कमजोर नहीं है, सब टीमें अच्छी है। जब हमारी टीम ओलंपिक में मेडल ला सकती है मैन की, तो इसमें भी ला सकते हैं वर्ल्ड कप में। और पीछे आप देखेंगे प्रो लीग के टाइम जो पहले मैचेस के लिए तो उसमें हम हारे थे जब इंडिया में, उसके बाद हम लोगों ने इम्प्रूव किया, हमने इंग्लैंड से हारे भी है और हराया भी है, हॉलैंड टीम से हारे भी थे हराया भी था प्रो लीग में, तो मतलब नेक टू नेक फाइट है, ऐसा नहीं है कोई टीम कमजोर है या हम किसी से कमजोर है। तो मेन टीम को मैं यही कहना चाहूंगी कि भाई वो अच्छा खेले और मेडल लेके आए, 75 का वर्ल्ड कप का जो रिकॉर्ड है उसके साथ अब कंटिन्यू करें, उसको ब्रेक करके दोबारा से गोल्ड लाएं। और मैं आपको बताना चाहूंगी आपके रेडियो के माध्यम से, उसमें मेरा बेटा भी खेल रहा है यशदीप सिवाच, और मुझे बड़ा वो लगता है कि भाई हमारी मैन विमेन दोनों ही टीमें खेल के आए और मेडल लेके आए, क्योंकि विमेन्स में जो है मेरी पांच लड़कियां, मेरी पांच स्टूडेंट मेरी अकेडमी की खेल रही उसकी, तो मैन विमेन दोनों को गुड विशेस देना चाहूंगी और ओलंपिक में मेडल लेके आए, और हमें बहुत अच्छा लगेगा, पूरे देश को अच्छा लगेगा।
1: जी हाँ, पूरे देश को अच्छा लगेगा। और जैसा प्रीतम सिवाच ने बताया कि महिलाओं की चुनौती भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, भारतीय महिला टीम भी इस विश्व कप में मजबूत आत्मविश्वास के साथ उतर रही हैं। टीम की कप्तान है सलीमा तेते, इस विश्व कप पर उनकी क्या तैयारी है, आइए उन्हीं से सुनते हैं।
2: मैं होने से बताऊंगी, मैं नर्वस भी हूँ, और एक होता है ना कि हर एक प्लेयर को होता है, बट कोई बात नहीं, नर्वस नॉर्मल है, और मैं यही जब भी ग्राउंड में जाती हूँ तो मैं यही अपने आप को मोटिवेशन देती हूँ, नहीं मुझे अपने टीम के लिए खेलना है और हर एक प्लेयर को सपोर्ट करना है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि नहीं, अगर हार भी रहे हैं तो भी से मैं टीम के साथ हूँ, जीत भी रहे हैं तो भी से मैं टीम के साथ हूँ, मैं हमेशा एक मैं टीम का एक रोल मॉडल बनना चाहती हूँ कि नहीं, मैं हर एक प्लेयर को मैं सपोर्ट करूंगी कि मिस्टेक हुआ तो भी से कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट करेंगे, तो एक पॉजिटिविटी लेकर आना चाहती हूँ टीम में कि अभी तो हम कर ही रहे हैं बट इसको और ज्यादा कर सकते हैं। तो मेरा यही टारगेट है कि मैं एक्साइटेड भी हूँ और मैं जितना हो सके मेरी तरफ से अपनी टीम को मैं पूरी तरफ से, एक होता ना अपने आप को मैं उनको एक सौंपती हूँ कि नहीं जितना हो सके मेरी तरफ से मैं उनको सपोर्ट करूंगी। बहुत सारे यंग प्लेयर हैं जैसे साक्षी है, इसी का है और ऋतुजा है, तो मैं अपने तरफ से उनको हमेशा यही मोटिवेशन देती हूँ कि आप लोग खुलकर खेलिए और अपना एंजॉय कीजिए, क्योंकि प्रेशर लेने वाली बात आप लोग की नहीं है, वो हम लेंगे, और मैं अपनी तरफ से यही बोलती हूँ कि आप लोग खुलकर खेलिए और एंजॉय कीजिए। हमारे टीम में सविता पुनिया का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारा एक होता है ना कि आपके पास इतना अच्छा वर्ल्ड क्लास एक गोलकीपर है और आपको इतना अच्छा सपोर्टिव करने वाली प्लेयर है, तो आई थिंक इससे बड़ी हो ही नहीं सकती, और एक मोटिवेशन मिलता है कि अगर आपके पास इतना अच्छा गोलकीपर हो और वो पीछे बस वो फ्रीडम देते हैं, आप लोग खुलकर खेलिए आगे मैं पीछे खड़ी हूँ, तो वो चीज हमेशा मोटिवेशन देती है।
1: जी हाँ बिल्कुल, ये चीज़ हमेशा मोटिवेशन देती है। ये थी सलीमा तेते जो भारतीय महिला टीम की कप्तान हैं। भारत पूल डी में चाइना, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के साथ है। भारत का महिला विश्व कप अभियान 16 अगस्त को चाइना के खिलाफ शुरू होगा, इसके बाद 18 अगस्त को साउथ अफ्रीका और 20 अगस्त को इंग्लैंड से मुकाबला होगा। तीनों मैच एम्स्टलवीन में होंगे। महिला टीम हाल में शानदार फॉर्म में रही है। भारत ने जून में ऑकलैंड में आयोजित FIH विमेंस नेशंस कप के सभी पांच मैच जीते और खिताब के साथ अगले FIH प्रो लीग में प्रमोशन हासिल किया। युवा खिलाड़ियों के साथ अनुभवी सविता, नवनीत कौर, निकी प्रधान, नेहा और लाल रेम सियामी जैसे खिलाड़ियों का अनुभव भारतीय टीम की बड़ी ताकत है। महिला टीम का लक्ष्य इस बार वर्ल्ड कप में अपने पिछले प्रदर्शन से आगे निकलना है। इस बार वर्ल्ड कप का फॉर्मेट भी बदला हुआ है। इस विश्व कप की बड़ी खासियत है इसका नया कॉम्पिटिशन फॉर्मेट। तो वसीम, क्या है इसका फॉर्मेट, आप जरा बताएंगे हमारे श्रोताओं को?
3: जी रेनू, इस बार ट्रेडिशनल क्वार्टर फाइनल्स नहीं होंगे, पुरुष और महिला दोनों वर्गों में 16-16 टीमें हैं।

0: जिन्हें कि चार चार के ग्रुप में बांटा गया है, ए बी सी और डी। प्रत्येक ग्रुप में चार टीमें होंगी। पहले ग्रुप चरण में हर ग्रुप की प्रत्येक टीम बाकी तीन टीमों के साथ मैच खेलेगी, जिससे कि ग्रुप चरण के अंत में चारों टीमों की पोजीशन साफ हो जाएगी। अगले चरण में चार नए ग्रुप होंगे, ई एफ जी और एच। ग्रुप ई और एफ में पिछले चरण के हर ग्रुप की शीर्ष दो टीमों को रखा जाएगा। इसी तरह ग्रुप ई में ग्रुप ए और डी की पहले और दूसरे स्थान की टीमें, और ग्रुप एफ में पहले चरण की ग्रुप बी और सी की पहले और दूसरे स्थान की टीमें होंगी। ग्रुप ई बनेगा ए वन ए टू डी वन और डी टू से, ग्रुप एफ बनेगा बी वन बी टू सी वन और सी टू से। और दूसरी तरफ ग्रुप जी और एच में पिछले चरण के हर ग्रुप की तीसरी और चौथे स्थान की टीमें होंगी। ग्रुप जी बनेगा ए थ्री ए फोर डी थ्री और डी फोर से, और ग्रुप एच बनेगा बी थ्री बी फोर डी थ्री और डी फोर से। सेमीफाइनल में F1 का मुकाबला होगा E1 पे रही टीम से, और F1 का मुकाबला होगा E2 पे रही टीम से, और F2 का मुकाबला होगा E1 के स्थान पे रही टीम से। दोनों विजयी टीमें आपस में फाइनल खेलेंगी और दोनों पराजित टीमें तीसरे और चौथे स्थान के लिए मैचेस खेलेंगी। वहीं ग्रुप जी और ग्रुप एच की टीमें शेष क्लासिफिकेशन मैचेस के लिए आपस में मैच खेलेंगी।
1: तो इसका अर्थ साफ है कि हर पूल मैच बेहद महत्वपूर्ण होगा। एक हार या एक गोल का डिफरेंस भी आगे की राह पर बड़ा असर डाल सकता है, और इसलिए भारत के लिए 15 अगस्त से शुरू होने वाला सफर सिर्फ शुरुआत नहीं बल्कि एक एक मुकाबले में आगे बढ़ने की परीक्षा है। 1975 की यादें, 51 साल का इंतजार और नई पीढ़ी का जोश, भारतीय हॉकी के लिए वर्ल्ड कप 2026 की कहानी यहीं से शुरू होती है।
0: जी रेनू, और कल इस प्रतियोगिता का आगाज हो रहा है। पुरुष वर्ग का पहला मैच खेला जाएगा कल भारत और वेल्स के बीच, वहीं दूसरा मैच जर्मनी का मैच होगा मलेशिया से। महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलिया का सामना जापान से होगा, वहीं दूसरा मैच होगा जर्मनी और स्कॉटलैंड के बीच।
1: जी वसीम, तो ये तो थी खबरें हॉकी से। काफ़ी विस्तार से हमने हॉकी के बारे में अपने श्रोताओं को बताया, तो अब बात कर लेते हैं क्रिकेट की। तो क्रिकेट का जो मुकाबला यानी कि हम जिसके बारे में अभी बात करने वाले हैं, तो वसीम उसके बारे में आप क्या हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे?
0: श्रीलंका के दौरे पर भारत अपना अभियान कल 15 अगस्त से गोल में खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच से करेगा। जून 2026 में अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में पारी एवं 300 रन की भारी जीत ने भारत को उससे पहले घरेलू श्रृंखला में न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका से मिली शिकस्त के बाद आत्मविश्वास से तो भरा, लेकिन वर्तमान अनुभवी खिलाड़ियों के चोटिल होने से भारतीय टीम एक बार फिर अपना संतुलन और सकारात्मक प्रदर्शन दिखाना चाहेगी। भारत और श्रीलंका के बीच अब तक 46 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिनमें से भारत ने 22 और श्रीलंका ने 7 मैच जीते, जबकि 17 मैच ड्रॉ रहे। यह कहानी तब थोड़ी अलग लगती है जब श्रीलंका की जमीन पर खेले गए टेस्ट मैच की बात करें। श्रीलंका में खेले गए 24 टेस्ट मैच में भारत ने 9 जीते, वहीं श्रीलंका ने 7 जीते और 8 मैच ड्रॉ रहे। यहां कहानी बराबर की लगती है। हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल निश्चित रूप से 2 टेस्ट मैच की इस श्रृंखला को जीतकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की दौड़ में अपनी जीत प्रतिशत को आगे बढ़ाना चाहेंगे, और आने वाले न्यूजीलैंड के दौरे पर 2 टेस्ट और न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 टेस्ट की घरेलू श्रृंखला में आत्मविश्वास के साथ उतरना चाहेंगे। श्रीलंका के साथ पहला टेस्ट कल प्रातः 10 बजे से गोल में आरंभ होगा।
1: जी बिल्कुल, तो यहाँ पर हम एक बाइट सुनाना चाहेंगे अपने श्रोताओं को मॉर्ने मॉर्केल की।
2: Last couple of years, the way he's been leading up front with the batting has been exceptional, and you know, that's a sort of communication that we expect him to you know, speak to the guys here in the preparation at the nets, what to expect. But I think you know, our guys have learned a lot about their games individually over the last couple of months, and that's one of the reasons why we've come out here 10 days earlier to give the guys the best opportunity to prepare and to work on their individual game plans and just to figure out how they're going to score on the surface here.
1: जी वसीम, तो ये हमने सुना मॉर्ने मॉर्केल को, तो अब बात कर लेते हैं फुटबॉल की। तो फुटबॉल से जुड़ी क्या खबरें हैं हमारे पास
0: रेनू? पहले हम बात करेंगे डूरेंट कप की। भारत का ऐतिहासिक फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप का 135वां संस्करण अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है।

0: ग्रुप स्टेज 13 अगस्त को समाप्त हुए और अंक तालिका में ग्रुप ए से मोहन बगान सुपर जायंट और ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने क्वालिफाई किया, ग्रुप बी से इंडियन आर्मी एफटी, ग्रुप सी से स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली, ग्रुप डी से फुटबॉल क्लब रंगदे, ग्रुप ई से शिलोंग लाजोंग फुटबॉल क्लब, ग्रुप एफ से नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने क्वालिफाई किया। क्वार्टर फाइनल लाइनअप तैयार हो चुके हैं। पहले क्वार्टर फाइनल में एससी दिल्ली का मुकाबला एफसी रिंगदाई से रविवार 16 अगस्त को खेला जाएगा, वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल में इंडियन आर्मी एफटी का मुकाबला ईस्ट बंगाल एफसी से 16 अगस्त को ही खेला जाएगा। तीसरे क्वार्टर फाइनल में मोहन बगान सुपर जायंट का मुकाबला जमशेदपुर एफसी से 17 अगस्त को खेला जाएगा और आखिरी क्वार्टर फाइनल में शिलोंग लाजोंग एफसी का मुकाबला नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड से 17 अगस्त को ही खेला जाएगा। पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा बुधवार को 19 अगस्त और दूसरा सेमीफाइनल 20 अगस्त को खेला जाएगा, वहीं फाइनल 23 अगस्त को खेला जाएगा। बात अब सुब्रतो कप की कर लेते हैं। सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल एक प्रतिष्ठित इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट है जो हर साल भारत में आयोजित किया जाता है। इस टूर्नामेंट में कई देशों की स्कूल टीमें खेली हैं। 1993 में फाइनल तक पहुंचने वाली पहली टीम उज्बेकिस्तान की स्पेशल स्पोर्ट्स स्कूल था। 2026 में 65वां सुब्रतो इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट 18 अगस्त से 24 सितंबर तक दिल्ली एनसीआर और बेंगलुरु में चलेगा, जिसमें की 106 टीमें हिस्सा लेंगी। तीन कैटेगरी, जूनियर बॉयज अंडर 17, सब जूनियर बॉयज अंडर 15 और गर्ल्स जूनियर अंडर 17 में 215 से ज्यादा मैचेस खेले जाएंगे, जिसमें कुल 37.7 लाख रुपए का कैश प्राइज और 90 खिलाड़ियों के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी।
1: जी वसीम, तो ये तो थी खबरें फुटबॉल से और अब बात कर लेते हैं स्क्वैश की। तो कोलकाता में चल रहे HCL स्क्वैश PSA चैलेंजर टूर 2026 के सेमीफाइनल में भारतीय चुनौती समाप्त हो गई है। विमेन सिंगल के पहले सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त भारत की तन्वी खन्ना को इजिप्ट की थर्ड सीड सोहेला हाजिम ने 4 गेमों के मुकाबले में 6-11, 11-2, 11-7 से शिकस्त दी। वहीं मेन सिंगल सेमीफाइनल में फोर्थ सीड सूरज कुमार चंद को इजिप्ट के टॉप सीड मोहम्मद गौहर के खिलाफ सीधे गेमों में 11-8, 11-2, 11-7 से हार झेलनी पड़ी। वहीं पुरुषों के दूसरे सेमीफाइनल में तीसरे वरीय सैफ रेफाई ने दूसरी वरीयता प्राप्त हमवतन अहमद सईद सोभी को भी हराकर फाइनल में जगह पक्की की। महिलाओं के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में दूसरी वरीयता प्राप्त मेना वाली ने चेक गणराज्य की फोर्थ सीड कैरोलिना को हराकर ऑल इजिप्ट फाइनल में जगह बनाई। इन नतीजों के साथ टूर्नामेंट के दोनों खिताबी मुकाबले पूरी तरह से मिस्र खिलाड़ियों के बीच खेले जाएंगे। विमेंस फाइनल में सोहेला हाजिम का सामना सेकंड सीड मैना वालिद से होगा, जबकि मेंस फाइनल में टॉप सीड मोहम्मद गौहर की भिड़ंत थर्ड सीड सीफ रेफे से होगी। फाइनल मुकाबला आज खेला जा रहा है। तो ये तो थी खबरें स्क्वैश से। अब बात कर लेते हैं टेबल टेनिस की। तो स्वीडन के माल्मो एरेना में WTT यूरोप स्मैश 2026 का रोमांच चरम पर है। सीजन के इस तीसरे ग्रैंड स्मैश में उस वक्त सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला जब घरेलू स्टार गत चैंपियन और टॉप सीड ट्रूल्स मॉरिगार्ड पहले ही दौर में बाहर हो गए। जर्मनी के अनुभवी पैडलर दिमित्रिस और ओत्रक कैरोव ने शानदार खेल दिखाते हुए मॉरेगार्ड को सीधे गेमों में 11-9, 11-3, 11-8 से मात देकर बाहर का रास्ता दिखाया। वहीं महिला सिंगल्स में चीन की शीर्ष खिलाड़ी वांग मान्यू ने चोट के बाद टेबल पर दमदार वापसी की है। उन्होंने राउंड ऑफ 64 के मुकाबले में मिस्र की अनुभवी खिलाड़ी डीना मेशरेफ को एक तरफा अंदाज में 3-0 से हराया। पुरुष वर्ग में मॉरेगार्ड के बाहर होने के बाद खिताब की दौड़ और दिलचस्प हो गई है। हाल ही में US स्मैश जीतने वाले जापान के सोरा मात्सुशिमा, फ्रांस के फेलिक्स लेब्रुन और चीन के लिन शिदोंग खिताब के मजबूत दावेदार के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। इस 9 दिवसीय टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 16 अगस्त को खेला जाएगा।
0: क्रिकेट में एक अंतर्राष्ट्रीय मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच में खेले जा रहे पहले टेस्ट में आज दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश ने नजमुल शंतो के शानदार 84 और तंजिद हुसैन के 101 रन के बदौलत 6 विकेट पर 351 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर 153 रनों की लीड बना ली। इससे पहले बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 198 रन पर ऑल आउट कर दिया था।
1: तो अब बात कर लेते हैं दिल्ली प्रीमियर लीग

0: 2026 की, तो कल 13 अगस्त को खेले गए दो मुकाबलों में आउटर दिल्ली वॉरियर्स ने वेस्ट दिल्ली लॉयंस को 5 विकेट से हराया। वेस्ट दिल्ली लॉयंस ने 178 रन बनाए, जिसके जवाब में आउटर दिल्ली वॉरियर्स ने 19.1 ओवर में 179 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया। दूसरे मैच में पुरानी दिल्ली सिक्स ने नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स को 4 विकेट से हराया। नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने 20 ओवर में 186 रन बनाए, जबकि पुरानी दिल्ली सिक्स ने 19.3 ओवर्स में 192 रन बनाकर लक्ष्य हासिल किया। पुरानी दिल्ली 6 की जीत में ललित यादव का अहम योगदान रहा, उन्होंने 41 गेंदों पर 64 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द मैच रहे। DPL का अगला मुकाबला 15 अगस्त को न्यू दिल्ली टाइगर्स और साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स के बीच होगा। दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 की अंक तालिका में फिलहाल सेंट्रल दिल्ली किंग्स शीर्ष पर है, जबकि आउटर दिल्ली वॉरियर्स और पुरानी दिल्ली सिक्स बराबरी पर हैं। नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स भी मजबूत स्थिति में हैं, वेस्ट दिल्ली लॉयंस और साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स मिड टेबल पर हैं, जबकि न्यू दिल्ली टाइगर्स और ईस्ट दिल्ली राइडर्स निचले पायदान पर संघर्ष कर रहे हैं।
1: रेनू, अब बात हम करते हैं चेस की। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा को गुरुवार को ग्रैंड चेस टूर के सिंकफील्ड कप में जर्मनी के विंसेंट कीमर के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। प्रज्ञानंदा के 3 दौर के बाद 1.5 अंक हैं, वह संयुक्त 4th स्थान पर खिसक गए हैं। अभी 6 दौर बाकी हैं।
0: जी हाँ बिल्कुल, तो बात कर लेते हैं एथलेटिक्स U20 चैंपियनशिप की। तो अमेरिका के यूजीन में चल रही वर्ल्ड एथलेटिक U20 चैंपियनशिप में भारत ने आज 2 पदक हासिल किए हैं। बसंत कुमार मेघवाल ने हाई जंप में और शाहनवाज खान ने लॉन्ग जंप में पदक जीतकर इतिहास रचा। दोनों इन स्पर्धाओं में भारत के पहले पदक विजेता बने। और जैसा कि आपने शतरंज के बारे में हमारे श्रोताओं को बता ही दिया है, और अब बात कर लेते हैं कैर्न्स कप की। अमेरिका में कैर्न्स कप में भारत की आर वैशाली, दिव्या देशमुख और कुनेरू हम्पी जैसी शीर्ष महिला शतरंज खिलाड़ी हिस्सा ले रही हैं। यह भारतीय महिला शतरंज के लिए महत्वपूर्ण प्रतियोगिता है।
1: एशियन गेम्स 2026 आने वाले हैं, जिसके लिए आज एक 72 मेंबर की भारतीय एथलेटिक स्क्वाड का अनाउंसमेंट किया गया है। यह कहा जा रहा है कि इसमें कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने अपने क्वालिफिकेशन माइलस्टोन्स को पूरा करके जगह बनाई, और कुछ लोगों को उनसे आने वाले अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की बुनियाद पर इस स्क्वाड में लिया गया है। उनके नाम फेडरेशन ने रिक्वेस्ट किए हैं कि ये आने वाले एशियन गेम से पहले प्रतियोगिताओं में माइलस्टोन पूरा करेंगे।
0: और आज की एक महत्वपूर्ण खबर में नीरज चोपड़ा और पुलेला गोपीचंद ने मिलकर इंडियन स्कूल ऑफ कोचिंग एक्सेलेंस शुरू करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य भारत में वर्ल्ड क्लास कोचेस की नई पीढ़ी तैयार करना है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। और खेलों का जो रोमांच है, खेलों का जो उत्साह है, वो हमेशा बरकरार रहता है, हमेशा बना रहता है। खेल हमें आत्मविश्वास से भरते हैं, और जब एक खिलाड़ी वसीम मैदान पर उतरता है तो ना सिर्फ वो हार और जीत, बल्कि एक संयम, अनुशासन, हमेशा दिमाग में चलने वाली एक जोश को लेकर मैदान में उतरता है। तो इसलिए खेलों से हमें हमेशा जुड़े रहना चाहिए, इन खबरों को अपना एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाए रखना चाहिए।
1: जी बिल्कुल रेनू, खेल हमें सिर्फ खेल के मैदान पर ही नहीं, बल्कि अपने जीवन में भी निरंतर आगे बढ़ना, जूझने का भी सबक देते हैं।
0: और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हम अपने श्रोताओं से विदा लें, और कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज के साथ मैं रेनू गुप्ता और मेरे साथ
1: वसीम अहमद।
0: नमस्कार।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये प्रसारण दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर राष्ट्रध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे।
3: लाल किले में होने वाले इस समारोह में पहली बार वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रगान होगा। यह भव्य कार्यक्रम

0: राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 साल पुरानी गौरवशाली विरासत को याद करने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में सेना, नौसेना और वायुसेना के करीब 2500 कैडेट और माई भारत के स्वयं सेवक हिस्सा लेंगे। इस समारोह में देश के अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों को भी लाल किला में आमंत्रित किया गया है। दिल्ली पुलिस ने समारोह को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने आज वीरता के 301 पदकों की सूची जारी की। इनमें पुलिस कर्मियों के लिए 272 और अग्निशमन सेवा के कर्मियों के लिए 29 पदक शामिल हैं। इसके अलावा विशिष्ट सेवा के लिए कुल 92 राष्ट्रपति पदक की भी घोषणा की गई है। 664 सराहनीय सेवा पदक प्रदान किए जाएंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के 21 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक और सराहनीय सेवा के लिए पदक देने की घोषणा की गई है। 6 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिए जाएंगे। दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवाओं की घोषणा की है। यात्री सवेरे 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशनों पर उतरकर लाल किला तक पहुंच सकते हैं। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्र वर्ष 1947 में देश के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले लोगों का स्मरण कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस का स्मरण किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया है। सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा ई रुपए का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने की दिशा में सरकार की ये महत्वपूर्ण पहल है। इस पहल का उद्देश्य गरीबों के लिए सरकारी लाभार्थी योजनाओं से बिचौलियों को हटाना है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज नई दिल्ली में वस्त्र क्षेत्र के समग्र विकास और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति मजबूत करने से संबंधित विषयों पर चर्चा के लिए बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने वस्त्र क्षेत्र के विकास में नई गति लाने के तरीकों के साथ साथ नवाचार, प्रौद्योगिकी, सतत विकास, निर्यात, निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के तरीकों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हरियाणा के मुख्य सचिव और फरीदाबाद पुलिस आयुक्त को जहरीली गैस से एक व्यक्ति की कथित मौत और अन्य के घायल होने की घटना पर नोटिस जारी किया है। घटना का संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के अंदर जांच की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में आज एक ग्राम रक्षा गार्ड की एक अन्य गार्ड के साथ झड़प में मौत हो गई और दूसरा गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घटना का संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले सेना के खिलाड़ियों से बातचीत की। सेना के खिलाड़ियों ने इस बार 8 स्वर्ण, 7 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 16 पदक जीते थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि खिलाड़ी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। जुलाई महीने में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रा स्फीति 9.87% से घटकर 9.78% रह गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मुद्रा स्फीति में कमी का मुख्य कारण ईंधन और ऊर्जा दरों में कमी आना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: गुड इवनिंग, this is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. President Draupadi Murmu will address the nation this evening on the eve of 80th Independence Day. The address will be broadcast at 7 p.m. on the entire national network of Akashvani. It will also be telecast on all channels of Doordarshan, first in Hindi and then in English. This will be followed by the telecast in regional languages on the regional channels of Doordarshan. Akashvani will broadcast the regional language versions of the address at 9:30 p.m. on its respective regional networks. The nation will celebrate the 80th Independence Day tomorrow. Prime Minister Narendra Modi will lead the celebrations from the

0: दिया ताकि हम आजाद भारत में सांस ले सकें। महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानी जो खुशी खुशी अपनी प्राणों की आहुति दे गए सिर्फ देश को आजाद करने के लिए।
1: बिल्कुल, लेकिन स्वतंत्रता सिर्फ अधिकार नहीं है, एक जिम्मेदारी भी है और हमारा कर्तव्य है कि भारतीय नागरिक होने के नाते एकता, भाईचारे और प्रगति में हम अपना योगदान दें। भ्रष्टाचार, अशिक्षा, गरीबी और भेदभाव जैसी बुराई को हम मिलकर समाप्त करें और आने वाली पीढ़ी को एक विकसित भारत की ओर ले चलें।
0: जी बिल्कुल श्रोताओं, अपने जो किसान भाई बहन हैं और जो हमारे श्रोता जो कार्यक्रम सुन रहे हैं उनको हम और भी बहुत सारी बातें करेंगे लेकिन मनोरंजन भी कराएंगे। तो सबसे पहले कार्यक्रम में सुनते हैं एक देशभक्ति रागिनी ऋषिपाल खदाना की आवाज़ में।

0: इंकलाब भी आया करता देश में नए विचारों से, और आज भी उन्हीं नए विचारों की आवश्यकता है जैसी पहले थी। अभी सुन रहे थे आप ये देशभक्ति रागनी ऋषिपाल खदाना की आवाज़ में।
1: और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि स्वतंत्रता दिवस, जो आज़ादी जो हमें मिली थी, ये सिर्फ आज़ादी नहीं है, जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी है उन सब युवाओं की हमारे देश को आगे बढ़ाने की, राष्ट्र निर्माण की। तो इसी से संबंधित अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं एक बातचीत, ग्रामीण युवाओं की राष्ट्र निर्माण में भागीदारी
0: एवं नेतृत्व। और विशेषज्ञ हैं उदय शंकर सिंह, कार्यकारी अधिकारी विश्व युवा केंद्र नई दिल्ली से।
1: आइए सुनते हैं।
2: किसान बहनों और भाइयों को नमस्कार। किसान बहनों और भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे ग्रामीण युवाओं की राष्ट्र निर्माण में भागीदारी एवं नेतृत्व। और हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे उदय शंकर जी, कार्यकारी अधिकारी हैं विश्व युवा केंद्र नई दिल्ली से। तो सबसे पहले उदय शंकर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 2047 में राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका को आप किस तरीके से देखते हैं?
3: सबसे पहले तो मैं अपने सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूँ। तो जहाँ तक युवाओं की बात है कि भारत की विकास यात्रा गाँव के विकास के बिना पूरी नहीं हो सकती। यदि विकास को सही धागे में पिरोना है तो गांव के गलियों से ही विकास की धारा गुजरेगी। इसमें युवा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उनकी कृषि कौशल, रोजगार, उद्यमिता, डिजिटल तकनीक और सामाजिक नेतृत्व, हर क्षेत्र में जब तक युवा आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक शायद हम समावेशी विकास की बात नहीं कर सकते। इसलिए युवाओं के कंधे पर अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
2: जिस तरीके से आपने कहा कि युवाओं के सामने जो कई सारी चुनौतियां हैं, तो उनमें प्रमुख चुनौतियां क्या है, किस तरीके से युवा आगे बढ़ सकते हैं, उन चुनौतियों को किस तरीके से वो पार कर सकते हैं?
3: अगर हम चुनौती को कहें तो चुनौती में उसे नहीं बोलता, इसे मैं अवसर बोलता हूँ। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। युवाओं को रोजगार का चैलेंज है, डिजिटल डिवाइड का चैलेंज है, वहीं उनके बीच अवसर भी है। यदि रोजगार की चुनौती है तो वो खाली रोजगार लेने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले भी बन सकते हैं। अगर कहीं पर हमारी डिजिटल गैप है तो वो वहाँ पर एक नई उद्यमिता का वहाँ शुरुआत कर सकते हैं। बढ़ती हुई हमारी जनसंख्या है, उसी बीच रोजगार सृजन करने हैं, क्वालिटीपूर्ण शिक्षा चाहिए, गांव के जो जोत हैं वो घटते चले जा रहे हैं, देश के लिए जो पैदावार करनी है वो भी हमारे लिए चैलेंज है, लेकिन नई तकनीकी पद्धति हम कैसे लाएंगे, परंपरागत कृषि से हटकर हम नए कृषि पद्धति को कैसे अपनाएंगे, उद्यमिता के क्षेत्र में कैसे बढ़ेंगे। तो चैलेंज और अपॉर्चुनिटी दोनों साथ साथ मैं देख रहा हूँ।
2: अगर युवाओं के लिए अवसर है तो भारत सरकार वो युवाओं के लिए क्या कुछ कदम उठा रही है, क्या कुछ उनके लिए योजनाएं उपलब्ध करा रही है जिससे वो आगे बढ़ सके?
3: सबसे बड़ी बात अपॉर्चुनिटी देना है। बाकी युवाओं में इतनी पोटेंशियल है, इतनी ऊर्जा है कि अपने आप वो खुद अवेल कर लेते हैं। मनरेगा में ज्यादातर युवा शामिल हो रहे हैं, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, अगर आप देखेंगे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, इन सभी में युवा भाई बहन का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है, खुद तो उसको अवेल करें ही साथ ही साथ ग्रामीण समुदाय को उससे जोड़ें। योजना होना महत्वपूर्ण नहीं है, योजना को सही दिशा में चैनलाइज करना और उसको अवेल करना, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी बहुत जरूरी है। अगर उस तक पहुंच नहीं है तो हम कैसे पहुंच बनाएं, उसके बारे में लोगों को जागृत करें। योजनाएं सरकार ने एक से एक चला रखी है, अगर इसका सफल क्रियान्वयन हो जाए और सही ढंग से इसका समायोजन हो जाए तो मैं नहीं समझता कि इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं कहीं रुक सकती है। तो बहुत अच्छी योजनाएं हैं, युवाओं को इसको अवेल करना चाहिए और साथ ही साथ अपने ग्रामीण भाई बहनों को इसमें उत्प्रेरक का काम उनको करना चाहिए।
2: उदय शंकर जी, अक्सर हम लोग ये सोच, इसमें मैं भी आ गया कि मैं सोचता हूँ कि मुझे नौकरी मिल जाए, मैं नौकरी करके अपना गुजारा कर लूं। क्या हमारे

0: ये भावना नहीं आ सकती कि मैं रोजगार देने वाला बनूं, ये गुण है, ये कैसे आएंगे हमारे युवाओं में?
1: आपके प्रश्न में ही बहुत सुंदर उत्तर छुपा हुआ है। दो चीजें हैं, अगर हम कुछ रोजगार खुद लेते हैं तो हम एक व्यक्ति एम्प्लॉयमेंट में जा रहे हैं और एक परिवार का हम देख रेख कर सकते हैं। लेकिन यदि हमने छोटे छोटे हस्तकरघा शुरू किए, छोटे छोटे कुटीर उद्योग शुरू किए, छोटे छोटे इनिशिएटिव हमने लिया, तो हम 10 लोगों को रोजगार दे सकते हैं, 20 लोगों को रोजगार दे सकते हैं। इस तरह का वातावरण होना चाहिए कि सबसे पहले हमें एक ऐसा वातावरण निर्माण हो कि हमारे युवा अब खाली जॉब सीकर नहीं हो, जॉब गिवर हो। वो कब हो सकता है? जब थोड़ी सी जोखिम लेने का हमें सामर्थ्य आएगा और अंदर से आत्मविश्वास जगेगा। दुनिया के जितने कंपनी हैं, ज्यादातर हमारे भारतीय वहां पर सीईओ हैं, डायरेक्टर पोजीशन पर वो हैं। क्यों हैं? उनमें योग्यता कूट कूट कर भरी हुई है, लेकिन उद्यमिता के तरफ वो अपने आप को ज्यादा नहीं जोड़ पा रहे हैं। लेकिन समय बदल चुका है। मुझे लगता है सबसे बड़ी बात कि एक आत्मविश्वास का माहौल बनाना, एक अच्छे वातावरण का निर्माण करना और सही ढंग से ये सोचना कि अगर आज हम नौकरी के बजाय यदि हम उद्यमिता में आते हैं तो हम अपने लिए तो जीविकोपार्जन कर ही सकते हैं, साथ ही साथ बहुत भाई बहनों को हम नए रास्ता दिखा सकते हैं, उसको रोजगार से जोड़ सकते हैं। जब हमारी रोजी रोटी की बंदोबस्त हो जाएगी तो हम शिक्षा पर भी ध्यान देंगे, स्वास्थ्य पर भी ध्यान देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान देंगे, लेकिन इसके लिए छोटे छोटे उद्यमिता की बहुत आवश्यकता है।
0: महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हमारा जो देश है वो गांव में बसता है और बड़ी संख्या जो गांव में रहती है, लेकिन आजकल पलायन जरूर हो रहा है शहरों की तरफ, तो जो युवा है वो किस तरीके से जो कृषि क्षेत्र में बदलाव ला सकते हैं?
1: ये जो हम पपीन लेते हैं, कैचअप लेते हैं, ये आता कहाँ से है? हमारे गांव के किसान भाई बहन टमाटर उपजाते हैं और उसको हम कैचअप के रूप में अलग अलग ढंग के कंपनी वहां बाहर बनाते हैं। पपीता होता है गांव में, उसका पपीन तैयार होता है बाहर में। आज मसाले होते हैं तैयार और उसको हम अलग अलग पैकेजिंग करके हम शहर में लाते हैं। अगर हमको वहीं पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट की हम देख रेख करें, दो चीजें बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि कैसे हम अपने कृषि के पैदावार का वैल्यू एडिशन करें ताकि हमारे किसान भाई बहन को इससे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो सके। वैल्यू एडिशन कैसे होगा? एक तो बिचौलिए को इसमें से हटाना होगा, दूसरी चीजें हम अपने प्रोडक्ट को वैल्यू एड कैसे करें। यदि ग्रामीण स्तर पर इन चीजों का होगा तो समृद्धि भी आएगा, आत्मविश्वास भी आएगा और जो हमारे उत्पादक हैं उनको सही ढंग से उनका मूल्य मिल सकेगा। तो किसान भाई बहनों को अपने पैदावार के साथ साथ वैल्यू एडिशन के क्या तौर तरीके हो सकते हैं उसे जरूर सीखना चाहिए और युवाओं का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है।
0: शंकर जी, आज का जो जमाना है वो डिजिटल का जमाना है, AI का जमाना है, तो इसमें युवाओं के लिए क्या कुछ अवसर रहेंगे?
1: इसमें बहुत अवसर है। जब हम ई कॉमर्स की बात आज से 10 वर्ष पहले सुनते थे, 15 वर्ष पहले सुनते थे, समझ से बाहर था, लेकिन आज देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में, आज डिजिटल एरा में, आज हम घर बैठे अपने प्रोडक्ट को बड़े शहर में हम सप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आज यदि कोई रॉ मटेरियल्स की हमको जरूरत है तो हम दूसरी जगह से अपने जगह रॉ मटेरियल्स भी ला सकते हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले माइग्रेशन की बात कहा, वो माइग्रेशन कैसे रुकेगा? जब हमारे ग्रामीण युवाओं में भी, वहीं भाई बहनों में भी इस बात का संचार हो जाएगा कि डिजिटल इनिशिएटिव हमारे लिए भी वरदान है। आज सपोज करें कि एक पैकेट पर डिजाइन उनको करना हो, अब उस डिजाइन कराने के लिए वो छोटे से गांव से बड़े शहर की तरफ जाते थे, आज उनको कला है कि वो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपने डिजाइन का कई फॉर्मेट तैयार करवा सकते हैं। मुझे लगता है कि डिजिटल लिटरेसी साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समुचित सदुपयोग उतना ही हमको करना है जो हमारे विकास का बाधक ना हो, उतना हमको करना है जो हमारे लिए अच्छे सहयोगी हो सके, उतना भी नहीं हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना है जो हमारे विकास का ही बाधक हो जाए। मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र में और अवसर है, शहर से ज्यादा अवसर है। सरकार भी ग्रामीण भाई बहनों के लिए ज्यादा देख रेख कर रहे हैं।
0: ग्रामीण क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि युवा बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वहां पर आज के दिन जो महिलाएं हैं वो भी कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, तो आप महिलाओं की भूमिका को किस तरीके से देखते हैं?
1: सही वातावरण का यदि निर्माण हो, सही अवसर मिले, तो हमारी बहनें भाइयों से आगे बढ़कर दिखाते हैं और ये अनेक बार प्रमाणित हो चुका है। और अभी के क्रम में मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी भी गैप है, अभी बहनों को और आगे आने की जरूरत है। और सभी भाइयों से मैं अपील करना चाहूंगा कि उनके घर के जो भी परिवार के सदस्य हैं, यदि उत्पादकता के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको जरूर प्रमोट करें, क्योंकि जब आमदनी बढ़ती है तो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बढ़ता है और जो महिलाएं घर के लिए निर्णय ले सकती हैं वो पुरुष नहीं ले सकते, इसलिए बहनों की भागीदारी सबसे ज्यादा सुनिश्चित होनी चाहिए।
0: उदय शंकर जी, आप जो है विश्व युवा केंद्र

0: जाते हैं, तो आपका संगठन ग्रामीण युवा विकास के लिए क्या कुछ कदम उठा रहा है?
1: विश्व केंद्र 1961 से लगातार युवा विकास की तरफ देख रही है और उनको भागीदारी से जोड़ रही है। मुझे कहते हुए बहुत ही हर्ष की अनुभूति हो रही है कि भारत का सबसे पहला यूथ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन विश्व केंद्र है, और तब से एक ही प्रयास है कि युवाओं को कैसे हम सही दिशा में चैनलाइज कर सकें, उनमें कैसे सकारात्मक की भावना जागृत किया जा सके और उनके पोटेंशियल को हार्नेस किया जाए, उनके छिपे हुए गुण को कैसे निखारा जाए। इसके लिए हम लोग सॉफ्ट स्किल की भी ट्रेनिंग देते हैं, हम लोग हार्ड स्किल्स भी ट्रेनिंग देते हैं। अगर कोई एक व्यक्ति प्लम्बर का ट्रेनिंग ले लिया या इंजीनियरिंग ही वो लिए, उन्हें एक इंटरव्यू के दौर से तो गुजरना ही पड़ेगा। अब उसके लिए जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, इसके लिए विश्व केंद्र अपने स्वयंसेवी संस्थानों के साथ जुड़कर, युवा संगठनों के साथ जुड़कर देशव्यापी एक मुहिम चला रखा है। आज लाखों युवक ऐसे हैं जो विश्व केंद्र से जुड़े हुए हैं और अपने रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, अपने भाइयों को जोड़ने में आगे बढ़ रहे हैं, और स्वयंसेवी संस्थान भी उनसे ट्रेनिंग लेकर सुदूर गाँव में, आज उड़ीसा के किसी रिमोट गाँव में आप जाएं, आज झारखंड के किसी रिमोट गांव में जाएं, आज बिहार और उत्तर प्रदेश के किसी गांव में जाएं, हर जिला तक विश्व केंद्र की एक पहुंच है। और मैं धन्यवाद देता हूं कि इसमें हमारे को सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा सपोर्ट है, इसमें हमें जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो इंडस्ट्रीज हैं उनके तरफ से बहुत सपोर्ट है, और सबसे ज्यादा सपोर्ट जो स्वयंसेवी संस्थान हैं जो गांव-गांव काम कर रहे हैं उनके तरफ से योगदान है। तो युवा कैसे आगे बढ़े, क्वेश्चन यही है। सबसे बड़ी बात है कि उनको सही अवसर देना, उनके क्षमता को निखारना, और उनको उनकी जब क्षमता बढ़े तो सही एक दृष्टिकोण में उनको जोड़ना, स्टेक होल्डर्स इंगेजमेंट और मैनेजमेंट, ये सबसे बड़ी जरूरी है। और बहुत प्रभावी रूप से विश्व केंद्र इसी को करने में लगा हुआ है।
0: आज का जो युवा है उसे कल देश का नेतृत्व करना है, और युवा बड़ी तेजी के साथ आगे भी बढ़ रहा है, तो क्या हम उनमें नेतृत्व अक्षमता के गुण है, क्या हम वो विकसित कर सकते हैं?
1: प्रधानमंत्री महोदय मन की बात में अनेक बार इस बात को उठा चुके हैं, युवा दो पीढ़ी की कड़ी है। जो एक उनके बुजुर्ग हैं उनके भी देखरेख करना उनकी जिम्मेदारी है, और साथ ही साथ जो आने वाली पीढ़ी है उनके भी वो कर्णधार हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लोगों की जोड़ने की कला, यदि ये चार पांच चीजों को हम लोग विकसित कर लेते हैं, जो कि युवा कर रहे हैं, तो वो केवल एक नेतृत्वकर्ता ही नहीं बन सकते बल्कि वे एक दिशा निर्धारण करने वाले लोग बन सकते हैं। और जब एक छोटा सा गांव आगे बढ़ेगा तभी एक जिला आगे बढ़ सकता, जब एक जिला बढ़ेगा तभी एक राज्य बढ़ सकता, जब राज्य बढ़ेगा तभी हमारा पूरा देश बढ़ सकता है। आज हम वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, किनके बदौलत कर रहे हैं? ग्रामीण युवाओं के बदौलत कर रहे हैं। आज शहर बसा तो क्या आया गाँव से, वहां का कल्चर आया, वहां का डिसिप्लिन आया, वहां का वैल्यू सिस्टम आया। इसलिए ग्रामीण युवाओं की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है शहरी युवाओं से भी ज्यादा है। मैं केवल एक संदेश युवाओं को ये देना चाहता हूं कि अपने गांव को छोटा मत समझिए और अपनी क्षमता को कम मत आंकिए। आदर्श विकास की धारा गांव के गलियों और खेत खलिहानों से ही संभव है। कौशल सीखें, तकनीकी अपनाएं, सरकारी योजनाओं की जानकारी लें, उद्यमिता की ओर बढ़ें, अपने समुदाय के विकास में नेतृत्व की भूमिका निभाएं। यदि हम विकसित भारत की कल्पना करते हैं तो युवाओं की भूमिका सबसे ज्यादा जरूरी है। सशक्त युवा, सशक्त गांव और सशक्त भारत, यही विकसित भारत की पहचान है और यही हमारी मजबूत नींव भी है। तो आप चलते रहें, बढ़ते रहें, प्रगति करें। पहला कदम ही किसी भी मंजिल की असली उड़ान है और अपनी पहचान है, इसलिए पहला कदम बढ़ाने से कभी मत चूकें। हम सभी आपके साथ हैं, युवा बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा।
0: किसान भाइयों, अगर हम देखते हैं जो ग्रामीण युवा है वो तेजी के साथ आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन महात्मा गांधी ने जिस तरीके से कहा था कि जो देश है वो गांव के अंदर बसता है, तो बड़ी बात यह है कि गांव के जो युवा है उन्हें सही दिशा में उन्हें आगे ले जाना है ताकि वो भी आगे बढ़ सके और उन्हें शहरों के मुकाबले समान अवसर उन्हें मिले और वो देश के निर्माण में अपनी भूमिका निभा सके। उदय शंकर जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोता सुन रहे थे ये बातचीत ग्रामीण युवाओं की राष्ट्र निर्माण में भागीदारी एवं नेतृत्व, और इनमें हिस्सा लिया था उदय शंकर सिंह। आप कार्यकारी अधिकारी हैं विश्व युवा केंद्र नई दिल्ली से, और इनसे बातचीत कर रहे थे परमिंदर सिंह।
3: और अब कार्यक्रम में करवाते हैं मनोरंजन और सुनवाते हैं ब्रह्मपाल नागर की आवाज में ये देशभक्ति रागिनी।

0: अभी आप सुन रहे थे ब्रह्मपाल नागर की आवाज़ में देशभक्ति रागनी।
1: और श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का ग्राम संसार कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम राम,
2: राम।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
1: MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: नालसा, न्याय सबके लिए। कानूनी सहायता के लिए कॉल कीजिए 1500 पर।
1: दिस इज आकाशवाणी। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे वी नाउ ब्रिंग यू ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मूज एड्रेस टू द नेशन।
2: ये आकाशवाणी है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अब प्रस्तुत है भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश।

मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को मैं इस राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक बधाई देती हूँ। अब से कुछ घंटों बाद हमारे देश की स्वाधीनता के 80वें वर्षों का शुभारंभ होगा। देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीय ये पर्व उल्लास के साथ मनाते हैं। हमारा तिरंगा हमारी स्वाधीनता का प्रतीक है, इसे हम पूरी शान से फहराते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत माता स्वाधीनता की बेड़ियों से मुक्त हुई। सभी देशवासी स्वतंत्र भारत की नियति के निर्माता बने। हम भारत के लोग अपने सपनों को साकार करने के अवसरों का उपयोग कर सके और भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने की भावना से कार्य करें, इसी में स्वतंत्रता की सार्थकता है। निष्ठावान विद्यार्थी और शिक्षक, विकास के लिए तत्पर वैज्ञानिक और इंजीनियर, स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी, मेहनती श्रमिक और अन्नदाता किसान अपने प्रयासों से राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। प्रतिभावान खिलाड़ी, शिल्पकार तथा कलाकार, मार्गदर्शक बुद्धिजीवी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की टीमों के कर्मठ सदस्य, जनहित में सेवारत जनप्रतिनिधि, न्याय व्यवस्था से जुड़े न्यायकर्मी, कार्यनिष्ठ सिविल सेवक, अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले छोटे बड़े सभी निवेशक, निस्वार्थ समाजसेवी और स्वच्छता अभियान के अग्रणी कार्यकर्ता, हमारे सभी सफाई मित्र देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में सक्रिय असंख्य देशवासी तथा संविधान में निहित मूल कर्तव्यों का पालन करने वाले सभी नागरिक राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भागीदार है। मैं उन सभी के हृदय से सराहना करती हूँ। तीनों सेनाओं के जवानों, सभी सशस्त्र पुलिस बलों

पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा के लिए मैं उनकी विशेष सराहना करती हूँ। विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों और दूतावासों में कार्यरत देशवासियों की मैं प्रशंसा करती हूँ। प्यारे देशवासियों, स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अंत्योदय की भावना के साथ हमारा संकल्प है कि विकास के लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। अपनी समृद्ध विरासत और स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों को अपनाते हुए हम आधुनिक विकास के मार्ग पर अग्रसर हैं। वयं राष्ट्र जागरूयाम, ये वेदवाक्य हमें प्रेरणा देता है कि हम राष्ट्र के लिए सदैव जागरूक रहे। हमारे स्वाधीनता संग्राम में संघर्षरत अलग अलग विचारधाराओं के लोगों का लक्ष्य एक ही था, भारत की स्वतंत्रता। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम जन जन के गीत बन गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में अनगिनत देशवासी स्वाधीनता संग्राम से जुड़ गए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज सुधार तथा राष्ट्र निष्ठा के उच्च आदर्श प्रस्तुत किए। भारत माता की उन सभी महान संतानों को मैं सादर नमन करती हूँ जिनके आदर्श पर चलते हुए हमारा देश स्वतंत्र हुए और आगे बढ़ा। आज 14 अगस्त के दिन को हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। हम उन लाखों देशवासियों को याद करते हैं जो विभाजन से जुड़े हिंसा में मारे गए या विस्थापन की त्रासदी झेलने को मजबूर हुए। सांप्रदायिक हिंसा की वजह से लाखों लोगों को शरणार्थी बनना पड़ा और बंटवारे की विभीषिका सहन करनी पड़ी। फिर भी उन्होंने अपनी पहचान नहीं छोड़ी। जब हमारा देश स्वतंत्र हुई, उस समय देश के विभाजन के गंभीर परिणामों के साथ साथ 550 से अधिक रियासतों को नव स्वाधीन भारत के साथ जोड़ना भी एक असाधारण चुनौती थी। सरदार पटेल ने राजशाही व्यवस्थाओं को समाप्त करके हमारे स्वाधीन लोकतंत्र में उनका विलय किया। एक कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से आधुनिक भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पावन स्मृति को मैं सादर नमन करती हूँ। प्यारे देशवासियों, भारत के लोगों द्वारा निर्मित हमारे संविधान नागरिकों की भागीदारी पर आधारित है। लोकतंत्र की जननी भारत भूमि के निवासियों में जन भागीदारी की भावना सदा से विद्यमान रही है। उस भावना को नई ऊर्जा के साथ हमारे देशवासी आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय अभियानों को जन भागीदारी से आगे बढ़ाया जा रहा है। ये हमारे लोकतंत्र की प्रेरक उपलब्धि है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्रों में असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरी भी कर सकता है। हमारे संविधान में कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका के उत्तरदायित्व का स्पष्ट उल्लेख है। जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि वे विधायिका में जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करें। कार्यपालिका का कर्तव्य है कि जनहित और राष्ट्रहित की नीतियों को कार्य रूप दे। न्याय व्यवस्था से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि अभाव के कारण कोई व्यक्ति न्याय से वंचित ना रहे। हर नागरिक को, विशेषकर वंचित वर्गों के लोगों को समानता के आधार पर सम्मान के साथ समय से न्याय मिलना चाहिए। प्यारे देशवासियों, पिछले एक दशक से कुछ अधिक समय में हमारे देश ने तेज गति से समावेशी विकास किया है। विरासत और विकास के समन्वय को प्राथमिकता दी है तथा विकास में बाधक दशकों पुराने अनेक अवरोधों को दूर किया है। हमारे देशवासी महात्मा ज्योतिबा फुले की 100वीं जयंती मना रहे हैं। महात्मा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने सामाजिक न्याय, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समानता के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया है। उनके आदर्शों के अनुसार विगत कुछ वर्षों के दौरान
वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्यों को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है। महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के नए प्रतिमान स्थापित हुए हैं। 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाने में सफलता मिली है। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेश की योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लगभग 59 करोड़ खाता धारक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ चुके हैं। उनमें 32 करोड़ से अधिक महिला खाता धारक शामिल है। 80 करोड़ लोगों के लिए निःशुल्क राशन की व्यवस्था द्वारा उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 60 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपया तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए गए हैं। किसान सम्मान निधि तथा किसान क्रेडिट कार्ड से खेती, डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन जैसे गतिविधियों से जुड़े किसान भाई बहनों को संबल मिला है। विश्व का इतिहास साक्षी है कि सांस्कृतिक आत्मबल पर आधारित विकास गतिमान और स्थायी होता है। आज देश में ये चेतना बलबत्ती हो रही है कि सांस्कृतिक गौरव का भाव देश की संप्रभुता को आत्मिक शक्ति प्रदान करता है। हमारे पूर्वजों ने ज्ञान विज्ञान, कला संस्कृति, अध्यात्म और सदाचार की अनमोल विरासत सौंपी है। हम विरासत और विकास के समन्वय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सरकार ने जन कल्याण की सुविधाओं को पारदर्शी तरीके से जन जन तक पहुंचाया है। हमारे देश में हाईवेज, वाटरवेज, रेलवेज और एयरवेज के रूप में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। इससे नई उद्यमों के लिए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, नई रोजगारों का सृजन हो रहा है तथा निवेशकों का विश्वास बढ़ रहा है। प्यारे देशवासियों, विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध एवं अस्थिरता का सभी देशों पर प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रही है। आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत के विकास दर विश्व के औसत विकास दर की तुलना में 2 गुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है। आधुनिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी भारत विश्व स्तर पर अग्रणी योगदान दे रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 के कुछ लक्ष्यों को हमारे देश ने समय से पहले ही प्राप्त कर लिया है। रिन्यूएबल एनर्जी के विकास को पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व गति मिली है। हमारी विदेश नीति देश हित पर आधारित है। शांति, सहयोग, संवाद तथा वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श हमारी विदेश नीति के स्तंभ है। आर्थिक सहयोग बढ़ाने तथा पारस्परिक संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए हमने अनेक देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। ग्लोबल साउथ के देशों में हम अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। विश्व पटल पर हमारे देश का सम्मान बढ़ा है। हम रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर में विश्वास रखते हैं। हमारे प्रयास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सहित मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस में विश्व समुदाय का समुचित प्रतिनिधित्व हो। हमारे इस प्रयास को अनेक देशों का प्रबल समर्थन मिल रहा है। प्यारे देशवासियों, प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक भी कमी ना हो। हमारे प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें
पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारे

आस्था हमारी परंपरा का हिस्सा है। संताली भाषा के एक सरल गीत में हमें गहरा संदेश मिलता है। पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा रचित उस गीत के कुछ शब्द इस प्रकार है। दारे गुजुक कान नेलते मिरु चणे राग बया दाया हाया गे गुजुक कान अबुआ जति धर्म दारे चेदा बाबन राग बया अबो ओना नेलते। इस गीत में एक पेड़ के पूरी तरह सूख जाने के कारण रोते हुए एक तोते का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं, हे मेरे भाइयों, मरते हुए पेड़ को देखकर तोता पक्षी दुख भरी आवाजों में रो रहा है। हे मेरे भाइयों, मानव संस्कृति रूपी वृक्ष का विनाश होता देखकर हम मानव समाज के लोग विलाप क्यों नहीं कर रहे हैं। इस गीत का संदेश यह है कि सभी मनुष्यों को मानवीय मूल्यों और प्रकृति के संरक्षण के लिए तत्पर रहना चाहिए। एक हरा भरा पेड़ मानव समाज के नैतिक और स्वस्थ रहने का प्रतीक है। एक पेड़ माँ के नाम तथा लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट यानी लाइफ जैसे अभियानों की भावना के अनुरूप सभी को पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास करना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता होती है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बेटियां प्रभावशाली प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही कृषि उत्पादकता बढ़ाने में योगदान देने वाले ड्रोन दीदी से लेकर वायुसेना में फाइटर कॉम्बैट लीडर बनने तक विभिन्न क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। हाल ही में ग्लासगो में संपन्न हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के कुल 13 स्वर्ण पदकों में 8 स्वर्ण पदक बेटियों ने जीते हैं। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। स्वयं सहायता समूह की 10 करोड़ से अधिक महिला सदस्य है। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया था। इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा चुका है। अब हमारे देश 3 करोड़ महिलाओं को नई लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मुद्रा योजना के तहत सहायता प्राप्त करने वाले उद्यमियों में लगभग 2/3 लाभार्थी महिलाएं हैं। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता के प्रयासों के साथ साथ हम देख रहे हैं कि वे विभिन्न क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। मतदान में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी हमारी गणतंत्र की विशेष सफलता है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं का 33% प्रतिनिधित्व आरक्षित करने के लिए वर्ष 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया जा चुका है। इस अधिनियम के लक्ष्य को प्राप्त करने से महिलाओं का नेतृत्व बढ़ेगा तथा हमारे लोकतंत्र और अधिक समावेशी बनेगा। देश के कुल आबादी में 65% लोगों की आयु 35 वर्ष से कम है। ये युवा आबादी हमारी सबसे मूल्यवान संपदा है। हमारे देश के युवा टैलेंटेड है, कमिटेड है और स्किल्ड है। जमीनी स्तर पर युवाओं द्वारा किए गए विभिन्न समस्याओं के इनोवेटिव और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को देखकर मुझे समाज और देश के लिए उनकी प्रतिबद्धता का परिचय मिलता है। केवल 28 वर्ष के औसत आयु वाली युवा टीम द्वारा हाल ही में रॉकेट का सफल प्रक्षेपण करके अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए चरण का शुभारंभ किया गया है। हमारे अनेक युवा स्वरोजगार के मार्ग पर चलते हुए रोजगार प्रदान करने की संस्कृति को अपना रहे हैं। युवा उद्यमियों की भागीदारी से हमारे देश में एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित हुआ है। विश्व के बड़े बड़े उद्यम भारत के युवाओं की प्रतिभा और लगन से प्रभावित रहते हैं तथा उन्हें नेतृत्व की भूमिकाओं में नियुक्त करते हैं। ऐसे युवाओं ने विश्व समुदाय में भारत की युवा शक्ति की साख बढ़ाए है। हमारी युवा पीढ़ी भारत के स्वर्णिम भविष्य के प्रति मेरी आस्था को और प्रबल बनाती है। हमारे विद्यार्थी भारत के भविष्य निर्माता है। जिस तरह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सरकार और समाज का एकजुट रहना जरूरी है, उसी तरह विद्यार्थियों के वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा के लिए भी सभी के सम्मिलित प्रयास जरूरी है। सार्वजनिक परीक्षाएं विद्यार्थियों के लिए अवसर के द्वार खोलती है, इसीलिए सरकार इन परीक्षाओं में
सुधार के लिए व्याप्त

कदम उठा रही है। इन सुधारों का उद्देश्य है कि सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर पूरी तरह से अंकुश लगे, परीक्षा प्रणाली और अधिक पारदर्शी तथा युवाओं के लिए सुरक्षित एवं भरोसेमंद हो। सरकार के प्रयासों तथा नई आर्थिक गतिविधियों से युवाओं के लिए अनेक प्रकार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करके हमारे युवा सफलता के नए मार्ग चुन सकते हैं। हमारे युवाओं का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य देश के भविष्य का आधार है। परिवार और समाज की भी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहे। खेल कूद को युवाओं के विकास और राष्ट्र निर्माण के माध्यम के रूप में अपनाया जा रहा है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक देश के सभी क्षेत्र के लिए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम उपलब्ध कराया जा रहा है। खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। इन प्रयासों के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा में हमारे खिलाड़ी प्रदर्शन और उपलब्धियां के उच्च शिखरों तक पहुंच रहे हैं। एक ओर हमारे देश में सबसे बड़ी युवा आबादी है तो दूसरी ओर वरिष्ठ नागरिकों की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। 70 साल और उससे अधिक आयु के लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं उपलब्ध है। वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपनेपन की भावना तथा उनके आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए पूरे समाज को संवेदनशील रहना चाहिए। प्यारे देशवासियों, सत्य और न्याय के पक्ष में मानवता विरोधी शक्तियों पर विजय प्राप्त करने की भारतीय परंपरा पर हम गर्व करते हैं। 26 जुलाई को हमने कारगिल विजय दिवस मनाया है। उसके पहले 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के आरंभ का 1 वर्ष पूरा होने पर हमने अपनी सेनाओं के अतुल्य पराक्रमों को स्मरण किया। आतंकवाद के विरुद्ध वो ऐतिहासिक ऑपरेशन भारतीय सेनाओं की अचूक क्षमता का प्रमाण है। आतंकियों और उनके समर्थकों को ये कठोर संदेश दिया गया कि वे चाहे कहीं भी जाकर छुप जाए, लेकिन उन्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। आतंकवाद को संरक्षण देने वाले देश के साथ अतीत में की गई सिंधु जल संधि का निलंबन करना हमारे देश के विशेषकर किसानों के हित में एक निर्णायक कदम है। दशकों से नक्सलवाद देश के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ था। भारत को नक्सल मुक्त बनाना एक बड़ी उपलब्धि है। अब नक्सल प्रभावित क्षेत्र में उत्साह का वातावरण है तथा विकास के सर्वस्पर्शी धारा प्रवाहित हो रही है। बस्तर ओलंपिक्स में खिलाड़ियों ने, बस्तर पंडुम में कलाकारों ने तथा इन आयोजनों में दर्शकों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। राष्ट्र गौरव की रक्षा हेतु निर्मित मराठा सैन्य परंपरा से जुड़े 12 दुर्गों को पिछले वर्ष यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में स्थान दिया गया है और इस वर्ष भगवान बुद्ध के प्रथम प्रवचन के स्थल सारनाथ को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। भारत भूमि में एक और भगवान बुद्ध से जुड़े आध्यात्मिक स्मारक है तो दूसरी ओर आत्मसम्मान तथा अपने गौरवशाली परंपराओं की रक्षा हेतु युद्ध करने की हमारी प्रभावशाली क्षमता के प्रतीक भी विद्यमान है। मेरे प्यारे देशवासियों, सभी भारतवासियों का विकास और कल्याण ही विकसित भारत के निर्माण का वास्तविक लक्ष्य है। तेलुगु भाषा में रचना करने वाले महान राष्ट्रवादी साहित्यकार गुर्जाड़ा अप्पा राव ने अपने एक गीत में सभी भारतवासियों को देश प्रेम का अमूल्य संदेश दिया है। उन्होंने कहा है, देश मुन्नु प्रेमिंचु मन्ना, मंची अन्नदे पेंचु मन्ना, देश मंटे मट्टी का दोई, देश मंटे मनुष्यलोय। इन पंक्तियों का भाव है, देश से प्रेम करो, भलाई को बढ़ाओ। देश का अर्थ केवल मिट्टी ही नहीं है, देश का अर्थ
समस्त जन समुदाय है। मुझे विश्वास है कि समाज की भागीदारी और सरकार के प्रयासों से गांव-गांव में, नगर-नगर में, भारत के घर-घर में रहने वाले सभी लोग स्वस्थ, सुखी और समृद्ध बनेंगे। आइए, देश प्रेम की इसी सर्वसमावेशी भावना के साथ हम सब स्वतंत्र भारत को विकसित भारत बनाने की राष्ट्रीय साधना में स्वयं को समर्पित करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माय डियर फेलो सिटीजन्स, नमस्कार। ऑन द ईव ऑफ आवर इंडिपेंडेंस डे, आई कन्वे माई वार्म ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस नेशनल फेस्टिवल। इन ए फ्यू आवर्स फ्रॉम नाउ, आवर कंट्री विल विटनेस द ऑस्पिशियस बिगिनिंग ऑफ द 80th ईयर सिंस इट्स इंडिपेंडेंस। ऑल इंडियंस लिविंग इन द कंट्री एंड अब्रॉड सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल विथ ग्रेट जॉय। आवर ट्राइकलर इज द सिंबल ऑफ आवर फ्रीडम। वी अनफर्ल इट विथ इमेंस प्राइड। On the 15th of August 1947, Bharat Mata was liberated from the shackles of subjugation. Every citizen became an architect of the destiny of independent India. The true meaning of freedom lies in ensuring that all citizens are able to utilize opportunities to fulfill their aspirations and work towards the goal of making India the foremost nation in the world. Dedicated students, teachers, scientists and engineers committed to development, doctors and healthcare workers providing health services, industrious workers and our annadata farmers are all contributing to nation building through their efforts. Talented sports persons, craft persons and artists, visionary intellectuals, diligent members of the workforce in the private and public sectors, people's representatives devoted to serving them, officials in the judicial system, dutiful civil servants, big and small investors contributing to our economy, selfless social workers, and all Safai Mitra who are frontline workers of the Swachhata Abhiyan are all playing an important role in the nation's progress. Numerous citizens engaged in various other activities, and every citizen who faithfully discharges the fundamental duties enshrined in our constitution are active partners in our nation building process. I wholeheartedly appreciate each one of them. I especially commend the devotion of our soldiers in the three armed forces, armed police forces, and all police personnel for their unwavering dedication to duty. I also praise the Indian diaspora and the officials serving in our embassies who enhance India's prestige and honor on the global stage. My dear fellow citizens, we are moving ahead towards building Viksit Bharat by the centenary year of our independence in 2047. Guided by the spirit of Antyodaya, it is our resolve to ensure that the fruits of development reach every individual. Embracing our rich heritage and the ideals of the freedom movement, we march ahead on the path of modern development. The Vedavakya, Vayam Rashtre Jagrayamo, inspire us to always remain ready to serve the nation. During our freedom struggle, people with diverse ideologies were united by one common goal, India's independence. During the Swadeshi movement, the song Vande Mataram became the song of the masses. Countless Indians plunged themselves into our freedom struggle under the leadership of the father of the nation, Mahatma Gandhi. Babasaheb Dr. Bhimrao Ambedkar embodied the highest ideals of social reform and patriotism. I humbly bow to all those great sons and daughters of the Bharat Mata whose ideals guided our country to its freedom and its progress thereafter. Today, on the 14th of August, we observe Vibhajan Vibhishika Smriti Divas. We solemnly remember those lakhs of Indians who lost their lives in the violence resulting from the partition. We are forced to endure the tragedy of displacement. Lakhs of people had to become refugees due to communal violence and endure the horrors of partition. Yet,
दे डिड नॉट गिव अप देयर आइडेंटिटी।

0: On the eve of Independence Day, you were listening to Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu's Address to the Nation.
1: स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अभी आप भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश सुन रहे थे।
2: MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।

आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 8 बजे हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे गीत मालिका कार्यक्रम।

गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते, स्वागत है आपका आपके अपने फिल्मी संगीत के कार्यक्रम गीत मालिका में। आज का गीत मालिका का रोलर कोस्टर राइड लेकर हम हाजिर हैं आपके लिए कुछ बहुत प्यारी बातें, बहुत खास बातें और कुछ चुनिंदा गीतों के संग। और गीत मालिका के इस रोलर कोस्टर राइड में आज आप एंजॉय करेंगे ये सफर आपकी मित्वा, आपकी साथी, आपकी दीप्ति के संग।

दोस्तों, कुछ शामें सिर्फ शामें नहीं होती, उनमें मौसम की खुमारी भी होती है और त्योहारों की तैयारी भी। और होती हैं कुछ यादें जिन्हें हम ताउम्र अपने साथ लेकर चलते हैं। और आज की शाम दोस्तों, आज की शाम भी कुछ ऐसी ही है। एक नई उम्मीद, एक नई उड़ान और खुद की खुद से पहचान की शाम। तो आइए जिंदगी को थोड़ा और करीब से महसूस करते हैं और करते हैं खुद से एक मुलाकात। रूबरू होते हैं अपने जुनून से, उस जुनून से जो हमें हर पल हर दम आगे बढ़ना सिखाता है।

0: रूबरू होकर खुद से मिलो तो कुछ ऐसा लगता है कि जिंदगी ना सिर्फ मंजिलों का नाम नहीं है, ये तो नाम है छोटी छोटी खुशियों को जीने का। और इमेजिन करिए, सावन की फुहार, हाथों में मेहंदी, झूले और देश डूबा है त्योहार के रंग में, आजादी के रंग में, तो ये खुशी कैसी होगी। आज की शाम में आजादी की खुली हवा है और साथ ही रौनक है, रौनक त्योहारों की। तो चलिए इस रौनक में थोड़ा सा रंग डालते हैं, थोड़ी सी मस्ती डालते हैं और मिलाते हैं कुछ ऐसे गीत से कि बस पाओ ना अपने आप ही तिरक उठेंगे।
1: आई माझी लाडाची लाडाची ग, आवडतीला चंद्राची चंद्राची ग, नवराई माझी नवसाची नवसाची ग, अप्सरा जशी इंद्राची

जोश, जिस जोश के साथ ये गीत सुना, ये जोश तभी मुकम्मल होगा जब उसके साथ उम्मीद भी हो, है ना? और जब उम्मीद मुस्कुराने लगे तो हर सफर एक जश्न बन जाता है। तो कुछ जज्बे ऐसे होते हैं ना जिन्हें किसी एक दिन या किसी एक मौके का मोहताज नहीं होना पड़ता, वो तो बस दिल में होते हैं। उमंग बनकर, हौसला बनकर, अपनी पहचान पर गर्व बनकर। तो चलिए जीते हैं थोड़ा सा इसी जोश को, थोड़ा और खुलकर। कदमों में रफ्तार, दिल में जुनून, और होठों पर बस एक ही आवाज़।

दोस्तों जिद और जोश ये सिर्फ जीतने के लिए नहीं होता। जोश वो ताकत है जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता दिखाती है या रास्ता आसान बना देती है। कभी सपने बड़े होते हैं, कभी रास्ते मुश्किल होते हैं, लेकिन जब इरादा पक्का हो तो मुश्किलें छोटी लगने लगती हैं। क्योंकि जिंदगी में कुछ मुकाम ऐसे होते हैं ना जहाँ पहुँचने के लिए सिर्फ ख्वाब देखना काफ़ी नहीं, उन्हें हर हाल में हासिल करने का जुनून होना चाहिए। हर हाल में हासिल करने का जुनून। चलिए देते हैं अपने इसी जुनून को आवाज़।

जिन्होंने अभी अभी हमारा चैनल ट्यून इन किया है उनको हम बता दें कि आप जुड़े हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के संग। कार्यक्रम चल रहा है गीत मालिका और आज इस कार्यक्रम की रोलर कोस्टर राइड को लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी साथी, आपकी मितवा, आपकी अपनी दीप्ति। और आज की ये शाम है कुछ खास, क्योंकि हम साथ मिलकर मना रहे हैं अपने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या। तो क्यों ना इस शाम को थोड़ा सा और कलरफुल बना लें, थोड़ी सी फिक्र को किनारे रखें और आजादी की इस खूबसूरत हवा में खुशी और मस्ती के कुछ पल बांट लें। तो चलिए भाई, हमारे दोस्तों, हमारी श्रोताओं, हमारी लवली लिसनर्स के लिए आज की ये शाम, ये मुस्कान और ये जश्न, ओवरऑल आज की ये पार्टी मेरी तरफ से।

का असली मजा भी तो इसी में है जब हम कुछ देर के लिए मंजिल की दौड़, रास्तों की उलझन और कल की फिक्र को पीछे छोड़कर बस इस पल में जीना सीख लेते हैं, जहां ना तो कोई जल्दी होती है ना कोई बोझ और बस एक सुकून होता है। तो चलिए आज की इस शाम को बनाते हैं और भी खास, करते हैं थोड़ा सा हल्का महसूस, थोड़ा दिल से मुस्कुराते हैं, थोड़ा सुकून को पास लाते हैं और छोड़ देते हैं खुद को इस खूबसूरत माहौल की धुन पर।

और हवाओं के साथ चलते चलते चलिए बदलते हैं थोड़ा सा रास्ता, क्योंकि हर सफर में थोड़ा सा ठहरना जरूरी है, लेकिन ठहराव के साथ आगे बढ़ना भी जरूरी है। मतलब क्या हुआ इस बात का? तो जनाब, बात किसी मंजिल की नहीं होती, बात तो बस उन पलों की होती है जिन्हें याद करके बाद में मुस्कुराया जा सके। ये जिंदगी बिना बड़ी अजीब होती है, कभी हमें किसी मंजिल तक पहुंचने की जल्दी होती है और कभी बस मन करता है कि रास्ता थोड़ा सा लंबा और हो जाए, कुछ देर बस यूं ही साथ चलते रहें बिना ये सोचे कि अगला पड़ाव कैसा है, कहाँ है। क्योंकि असल में याद तो वही पल रह जाते हैं जिनमें हमने कुछ हासिल करने के लिए नहीं बल्कि अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकाला हो। दोस्तों के साथ हंसी, बेवजह की बातें, वो छोटी छोटी खुशियां जिनका कोई हिसाब नहीं, जिनका कोई मतलब भी नहीं। तो चलिए आज कुछ ऐसा ही करते हैं, मंजिल की बात हम बाद में करेंगे, फिलहाल जिंदगी को थोड़ा सा अपने अंदाज में जीते हैं।

और दोस्तों देखिए ना, आपसे बातें करते करते इस रोलर कोस्टर राइड को विदा कहने का वक्त आ गया। लेकिन विदाई अगर ऐसी हो कि चेहरे पर मुस्कान रह जाए तो वो विदाई कहलाएगी क्या? बताइएगा मुझे। वैसे आज की इस मुलाकात में कभी जिंदगी के रंग थे, कभी सपनों की बातें, कभी मिट्टी से, अपनी मिट्टी से जुड़ा गर्व, और फिर बहुत सारी ढेर सारी हंसी मस्ती ठहाके भी। आखिर जश्न की सबसे अच्छी बात यही तो है कि उसे अकेले नहीं, साथ मिलकर जिया जाता है। बस जाते जाते कोई टाटा बबाई नहीं, एक बार आखिरी बार आज के इस प्रोग्राम में दिल खोल कर मुस्कुराते हैं और इस शाम को एक बार फिर से साथ में सेलिब्रेट करते हैं।

की गीत मालिका की रोलर कोस्टर राइड आपने एंजॉय करी आपकी अपनी दीप्ति पाठक निधीश के संग। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम समाप्त करने की मुझे इजाजत दीजिए। बहुत जल्द मिलूंगी आपसे फिर किसी यूं ही संगीतमय मोड पर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल।

0: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। राष्ट्रपति ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचना हमारा संकल्प। सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति का भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान। राष्ट्रपति ने डिजिटल क्रांति को विकास का महत्वपूर्ण कारक बताया। कहा, डिजिटल तकनीक से विकास और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की घोषणा। और उड़ीसा में लगातार मूसलाधार वर्षा से बाढ़ की स्थिति गंभीर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।
3: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
2: राष्ट्रपति ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके आदर्शों के आधार पर ही वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है।
3: महात्मा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने सामाजिक न्याय, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समानता के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया है। उनके आदर्शों के अनुसार विगत कुछ वर्षों के दौरान वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है।
2: राष्ट्रपति मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया।
3: हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है।
2: राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है।
3: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
2: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है।
3: प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें ये सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक भी कमी ना हो। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें।
2: राष्ट्रपति ने भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अंत्योदय की भावना के साथ विकास का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने का संकल्प सुदृढ़ है। अपने संबोधन के अंत में राष्ट्रपति ने महान तेलुगु साहित्यकार गुरजाड़ा अप्पाराव के एक गीत का उल्लेख किया। इसका भाव है, अपने देश से प्रेम करो, सर्वहित बढ़ाओ, देश का अर्थ केवल मिट्टी नहीं बल्कि समस्त जन समुदाय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रेरणादायक और सुविचारपूर्ण भाषण दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू के विचार राष्ट्र की शक्ति और प्रत्येक भारतीय की आकांक्षाएं दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश देशवासियों को विकसित भारत के लिए नए दृढ़ संकल्प के साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री बिरला ने कहा कि देश की आजादी के लिए प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करने का अवसर है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रेल भवन परिसर में तिरंगा रैली का नेतृत्व किया। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य रेलवे संगठन में देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का आयोजन वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में चल रहे तीसरे चरण के साथ किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल से पिछले 12 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया।
4: हमारी सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आज भारत केवल अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने वाला देश ही नहीं रहा, बल्कि हम ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस एक्सपोर्ट्स के क्षेत्र में एक उभरती हुई शक्ति बन चुके हैं। हमारा घरेलू रक्षा उत्पादन जो 2014 तक मात्र 46,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, वो वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पहली बार लाल किले

0: पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा। इस भव्य आयोजन के माध्यम से राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150 वर्ष पुरानी विरासत को याद किया जाएगा। साथ ही 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में देश की यात्रा में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाया जाएगा। समारोह में 2500 सेना, नौसेना और वायुसेना के कैडेट तथा मेरा युवा भारत के स्वयंसेवक भाग लेंगे। इस वर्ष लाल किले पर आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में देश के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 5000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। इनमें समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभार्थी महिला उद्यमी, पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर, स्वच्छ भारत मिशन के शहरी सफाई कर्मचारी, राष्ट्रीय नवाचार कार्यक्रम के युवा नवोन्मेषक, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के प्रशिक्षित उत्कृष्ट युवा और पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी कारीगर इस समारोह में शामिल होंगे। समारोह के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। विभिन्न एजेंसियों के लगभग 15,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। लाल किले पर 1,000 से अधिक CCTV कैमरे लगाए गए हैं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवा की घोषणा की है। ये सेवा सवेरे 4 बजे से दिन के 10 बजे तक प्रभावी रहेगी। यात्री सवेरे 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन पर उतरकर लाल किला तक पहुंच सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। एक रिपोर्ट।
2: इनमें से 13 पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए हैं। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायुसेना मेडल शामिल है। लेफ्टिनेंट कर्नल मनियो फ्रांसिस और मेजर जितेंद्र राठी को कीर्ति चक्र के लिए चुना गया है। हवलदार गजेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल जगबीर सिंह, बशीर अहमद, कांस्टेबल जसवंत सिंह, बलविंदर सिंह, तारिक हुसैन और इंस्पेक्टर सुनील कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया जाएगा। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्र वर्ष 1947 में देश के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले लोगों का स्मरण कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर हम उन लाखों देशवासियों को याद कर रहे हैं जो विभाजन से जुड़ी हिंसा में मारे गए या विस्थापित की त्रासदी झेलने को मजबूर हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि आज हमें जिस स्वतंत्रता का सुख प्राप्त हुआ है वो पिछली पीढ़ियों के महान बलिदान से मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित लोगों के साहस का स्मरण किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उन लोगों को याद करने का अवसर है जिन्होंने विभाजन के दौरान अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपनों को खोया और पलायन करने के लिए मजबूर हुए। हरियाणा के गुरुग्राम में इस अवसर पर एक कार्यक्रम में श्री नवीन ने उन सभी परिवारों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया और विस्थापन का दर्द सहा।
3: जब 1940 में लाहौर प्रस्ताव में द्वीप राष्ट्र के सिद्धांत की चर्चा हुई, उसी समय इस देश के लोगों को अंदाजा मिलने लगा था कि इस देश में जब आजादी मिलेगी तो आजादी का दंश हमें विभाजन के रूप में देखना पड़ेगा। मैं आज उन सभी परिवारों को जिन्होंने अपने परिवार जनों को खोया, जिन्होंने विस्थापन का दर्द झेला, मैं उन सबको आज नमन करता हूँ।
1: रांची में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 21वें दिन भी जारी है। वरिष्ठ अधिकारी आज जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित धरना स्थल पर पहुंचे और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों से मुलाकात कर कल प्रस्तावित तिरंगा यात्रा के संबंध में जानकारी ली। बड़ी संख्या में छात्रों की यात्रा में शामिल होने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की है। छात्रों ने कहा है कि तिरंगा यात्रा शांतिपूर्ण रूप से निकाली जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए आज प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए केंद्रीय डिजिटल बैंक मुद्रा डिजिटल रुपया शुरू किया। इस अवसर पर खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार जरूरतमंदों को मुफ्त राशन वितरण पर 2,10,000

0: करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है। इस अवसर पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है। भुवनेश्वर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उड़ीसा में लगातार घनघोर वर्षा जारी है। वर्षा के कारण बालेश्वर, भद्रक, क्योंझर और मयूरभंज के कुछ हिस्से प्रभावित हुए हैं।
1: आज उत्तरी उड़ीसा में चारों तरफ पानी ही पानी है। बैतरणी, जलका, बूढ़ा बलंगा, सुवर्णरेखा और सालंदी नदियों का एक बार फिर उफान पर है। खेत पानी में डूब गए हैं और सड़कें व गांव में पानी भरा हुआ है। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। कई लोग राहत शिविरों में हैं और कुछ इलाकों के निवासी राहत सामग्री और गांव में बाढ़ का पानी घुसने को लेकर चिंता जता रहे हैं। IMD ने आज सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़ और संबलपुर के लिए ऑरेंज वार्निंग और 14 जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: जल जीवन मिशन के 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को इसे शुरू किया था। योजना का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध कराना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। राष्ट्रपति ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। कहा, विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचना हमारा संकल्प। सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति का भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान। राष्ट्रपति ने डिजिटल क्रांति को विकास का महत्वपूर्ण कारक बताया। कहा, डिजिटल तकनीक से विकास और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की घोषणा। और उड़ीसा में लगातार मूसलाधार वर्षा से बाढ़ की स्थिति गंभीर। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: for the next 2 days. The weather agency has forecast a generally cloudy sky with a spell of very light rainfall at a few places in the national capital tomorrow. On to sports. Indian Grandmaster R. Pragyananda bounced back from his previous round defeat to secure a convincing victory over Dutch player Jordan van Forest in the fourth round of the Sinkfield Cup. The win took Pragyananda's tally to 2.5 points from 4 games, placing him in a share of second position in the 10-player 9-round tournament. Pragyananda had suffered a defeat against Germany's Vincent Kramer in the previous round. His latest victory will boost his confidence and strengthen his bid for a podium finish. On the eve of the Parsi New Year, Navroz, President Draupadi Murmu has extended greetings and best wishes to all people of the Parsi community living in India and abroad. In her message, the president said that Navroz symbolizes new beginnings and renewed hope. President Murmu noted that the festival of joy and harmony reminds all of the values of coexistence and service to humanity. She highlighted that the Parsi community has made significant contributions to the country's development through its spirit of enterprise and philanthropy. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu says India remains fastest growing major economy amid global instability. Addressing the nation on the eve of Independence Day, President Murmu reiterates government's resolve to ensure development reaches every individual. Government taking comprehensive steps to curb use of unfair means in public examinations to safeguard future of students. President calls for responsible use of natural resources for future generations. Nation to celebrate 80th Independence Day tomorrow. Prime Minister Narendra Modi to lead the celebrations from the iconic Red Fort. 78 gallantry awards announced for Defence Forces and Central Armed Police Forces personnel. And flood situation remains grim in Odisha due to relentless monsoon spell. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि दुनिया की गैर यकीनी की सूरत हाल में भारतीय मईशत तेज रफ्तारी के साथ फरोग पाती हुई अहम मईशत के तौर पर तरक्की कर रही है। यौम आजादी के मौके पर कौम से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अंत्योदय के जज्बे की रहनुमाई में इस बात को यकीनी बनाना मुल्क का अहद है कि हर की तरक्की हर एक फर्द तक पहुंचे। हुकूमत तालिबे इल्मों के मुस्तकबिल को तहफ्फुज फराहम करने की गरज से पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक जाम इकदाम कर रही है। कल मुल्क 80वां यौम आजादी मनाएगा। वजीर आजम ने मोदी तारीखी लाल किले से तकरीबात की क्यादत करेंगे। दिफाई फोर्सेज और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज के अमले के लिए 78 बहादुरी के अवार्ड का ऐलान किया गया है। मानसून की मुसलसल बारिश के बाइस उड़ीसा में सैलाब की सूरत हाल संगीन बनी हुई है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि दुनिया के कई हिस्सों में जंग और अदम इस्तेहकाम के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली बड़ी मईशत है। 80वें यौम आजादी के मौके पर आज शाम कौम से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत की मईशत की शरह नमू औसत आलमी शरह नमू से 2 गुना से भी ज्यादा रहने की तवक्को है।
2: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में 2 गुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
1: सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत ने पायदार तरक्याती अहदाफ 2030 में से बाज अहदाफ मुकर्रर वक्त से पहले ही हासिल कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि कौमी मफाद भारत की खारजा पॉलिसी की बुनियाद है, जबकि अमन ताउन मुजाकरात और वसुधैव कुटुंबकम का नजरिया भारत की खारजा पॉलिसी के सुतून हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने इक्तसादी ताउन बढ़ाने और बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए कई मुल्कों के साथ आजाद तजारती समझौते किए हैं। सदर जमहूरिया ने उजागर किया कि मुल्क को नक्सलिज्म से पाक बनाना एक बड़ी कामयाबी है। उन्होंने कहा कि आज वो

0: इलाके जो कभी नक्सलिज्म से मुतासिर थे, वहां अब जोश और जज्बा नजर आ रहा है।
1: भारत को नक्सल मुक्त बनाना एक बड़ी उपलब्धि है। आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र में उत्साह का वातावरण है तथा विकास के सर्वस्पर्शी धारा प्रवाहित हो रही है। बस्तर ओलंपिक्स में खिलाड़ियों ने, बस्तर पंडुम में कलाकारों ने तथा इन आयोजनों में दर्शकों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया।
0: अपने खिताब में मोहतरमा मुर्मू ने कहा कि तलबा भारत के मुस्तकबिल के मेमार हैं और हर फर्द को अपने मुस्तकबिल की हिफाजत और उसे संवारने में अपना रोल अदा करना चाहिए। पब्लिक मुसाबकती इम्तिहानात तलबा के लिए मौके के दरवाजे बन गए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि हुकूमत इन इम्तिहानात में इस्लाहात की खातिर जाम इकदामात कर रही है।
1: सरकार इन परीक्षाओं में सुधार के लिए व्यापक कदम उठा रही है। इन सुधारों का उद्देश्य है कि सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर पूरी तरह से अंकुश लगे, परीक्षा प्रणाली और अधिक पारदर्शी तथा युवाओं के लिए सुरक्षित एवं भरोसेमंद। सरकार के प्रयासों तथा नई आर्थिक गतिविधियों से युवाओं के लिए अनेक प्रकार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करके हमारे युवा सफलता के नए मार्ग चुन सकते हैं।
0: मुआशरे के महरूम तबकात की फलाह बहबूद के बारे में सदर जमहूरिया ने कहा कि 25 करोड़ से ज्यादा अफराद को गुर्बत की सतह से निकाला गया है। उन्होंने मजीद कहा कि मुफ्त राशन के जरिए 80 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए खुराक की फराहमी को यकीनी बनाया गया है और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 60 करोड़ लोगों को हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम की गई है। मुल्क के डिजिटल बुनियादी ढांचे के बारे में सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा और बेहतरीन डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार किया है और दुनिया भर में होने वाले बरवक्त डिजिटल लेन देन निस्फ से ज्यादा भारत में होते हैं।
1: हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गाँव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तालीम के मैदान में लड़कियों की गैर मामूली कारकर्दगी पर भी खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा और रियासती कानून साज असम्बलियों में खवातीन के लिए 33% नुमाइंदगी मुख्तस करने की गरज से 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को मंजूर किया गया। उन्होंने कहा कि इस कानून के मकासद हासिल होने से क़यादत में खवातीन का रोल मजीद मजबूत होगा और हमारी जमहूरियत ज्यादा जामे बनेगी। खेलों के फरोग के बारे में सदर जमहूरिया ने कहा कि खेलों को नौजवानों की तरक्की और मुल्क की तामीर के एक वसीले के तौर पर अपनाया जा रहा है। सदर जमहूरिया मुर्मू ने कहा कि मुल्क 2047 में आजादी की सद साला तकरीब तक विकसित भारत की तामीर की जानिब गामजन है। मोहतरमा मुर्मू ने कहा कि अंत्योदय के जज्बे से तहरीक हासिल करते हुए मुल्क का अज़्म है कि तरक्की के समरात हर फर्द तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि आजादी की तहरीक की अजीम विरासत और उसके नजरियात को अपनाते हुए मुल्क जदीद तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है। वजीर आजम ने मोदी ने कहा है कि सदर जमहूरिया ने यौम आजादी के मौके पर मुल्क के नाम एक फिक्र अंगेज और हौसला बख्श खिताब पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम ने कहा कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का खिताब मुल्क की ताकत और हर भारतीय की उमंगों की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा कि सदर जमहूरिया का पैगाम मुल्क के लोगों को विकसित भारत के लिए नए जज्बे और पुख्ता अज़्म के साथ काम करने की तरगीब देता है। मुल्क कल अपना 80वां यौम आजादी मनाने जा रहा है। वजीर आजम ने मोदी दिल्ली के तारीखी लाल किले से यौम आजादी की तकरीबात की क्यादत करेंगे। भारतीय फदाइया के 2 MI-17 हेलीकॉप्टरों के जरिए तकरीब के मकाम पर फूल बरसाए जाएंगे। कौमी परचम फहराने के अमल को 21 तोपों की सलामी के साथ हम आहंग किया जाएगा। वजीर आजम लाल किले की फसील से कौम से खिताब करेंगे। तफसील हमारे नाम निगार से।
2: लाल किले पर यौम आजादी की तकरीबात के दौरान पहली बार कौमी गीत वंदे मातरम गाया जाएगा। वंदे मातरम के शानदार विरासत के 150 साल पूरा होने की अजीम तकरीब में 2047 तक विकसित भारत के सफर में युवा शक्ति की तवनाई, उमंगों और अहम ताउन को भी उजागर किया जाएगा। इस तकरीब में लड़के और लड़कियां कैडेट समेत बर्री फौज, बहरिया, फजाई फौज

0: और माई भारत वॉलेंटियर्स के 2500 जवान शिरकत करेंगे। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 5000 खसूसी मेहमानों को लाल किला पर मुनक़िद होने वाली तकरीब के लिए मदऊ किया गया है। इसमें पीएम विश्वकर्मा स्कीम के मुस्तफीद फनकारों, पीएम मुद्रा योजना से मुस्तफीद होने वाली कारोबारी खवातीन, पीएम स्वानिधि के तहत खांचा फरोशों और भारत टैक्सी के टैक्सी ड्राइवर शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने कौमी राजधानी में सिक्योरिटी के वसी तर इंतजाम किए हैं। मुख्तलिफ एजेंसियों के तकरीबन 15000 सिक्योरिटी अहलकारों को तैनात किया गया है और 1000 CCTV कैमरे लाल किले पर नस्ब किए गए हैं। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
1: कल यौम आज़ादी के मौके पर दिल्ली मेट्रो के तमाम टर्मिनल स्टेशनों से खिदमत सुबह सवेरे 4 बजे शुरू हो जाएंगी, ताकि यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत करने के लिए खसूसी मेहमानों, मदऊईन और आम लोगों को आने जाने में सहूलत फराहम हो सके। सभी लाइनों पर मामूल के मुताबिक बाकायदा सर्विस शुरू होने के वक्त तक मेट्रो ट्रेनें 30-30 मिनट के वक्फे से चलेंगी। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने यौम आज़ादी के मौके पर आज रेल भवन के अहाते के अंदर एक तिरंगा रैली की क़यादत की। रेलवे की वजारत ने कहा कि भारतीय रेलवे मूलगीर हर घर तिरंगा मुहिम में फाल तौर पर शिरकत कर रही है और पूरी रेलवे तंजीम में हुब्बुल वतनी, कौमी फख्र और इत्तेहाद के जज्बे की तकरीबात मना रही है। ये मुहिम वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के तीसरे मरहले के साथ यकजहती मुनक़िद की जा रही है। इस मौके पर रेल भवन में वसी पैमाने पर वंदे मातरम पर दस्तखत करने का भी एहतमाम किया गया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने यौम आज़ादी 2026 के मौके पर डिफेंस फोर्सेज और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज के अमले के लिए बहादुरी के 78 अवार्ड्स की मंजूरी दी है। 13 अवार्ड्स बाद अजमर्ग दिए जाएंगे। इनमें 9 कीर्ति चक्र, 1 बार 2 शौर्य चक्र, 19 शौर्य चक्र, 5 बार 2 सेना मेडल्स, 36 सेना मेडल्स शामिल हैं। कीर्ति चक्र के लेफ्टिनेंट कर्नल मानियो फ्रांस पीएफ मेजर जितेंद्र राठी को नामजद किया है, जबकि हवलदार गजेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल जगबीर सिंह, बशीर अहमद, एसजी कांस्टेबल जसवंत सिंह, बलविंदर सिंह, तारिक हुसैन और इंस्पेक्टर एसटीएफ सुनील कुमार को कीर्ति चक्र बाद अजमर्ग दिए जाएंगे। पारसियों के साले नौ नवरोज के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत और बैरून मुल्क रहने वाली पारसी बिरादरी के तमाम अफराद को मुबारकबाद दी है और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि नवरोज नई शुरुआत और नई उम्मीद की अलामत है। सदर जमहूरिया ने वाज़े किया कि खुशी और हम आहंगी का ये त्यौहार हम सबको बकाए बाहमी और इंसानियत की अकदार की याद दहानी कराता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने IGRMS भोपाल जुनूब वस्ती जोन सकाफती मरकज और संगीत नाटक अकेडमी के कलाकारों के ग्रुप के साथ आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर जमहूरिया ने कहा कि इन कलाकारों के शाहकारों की कल राष्ट्रपति भवन में मुनक़िदा यौम आज़ादी के इस्तक़बालिये में नुमाइश की जाएगी। भारतीय रेलवे नन्हे ऑपरेशन फरिश्ते के तहत रेलवे स्टेशनों पर मिलने वाले 65 गुमशुदा बच्चों को उनके अहले खाना से मिलाया है। ये बच्चे फिरोजपुर रेलवे डिवीजन के मुख्तलिफ रेलवे स्टेशनों पर मिले थे। फिरोजपुर डिवीजन ने मुसाफिरों से अपील की है कि अगर उन्हें किसी रेलवे स्टेशन पर कोई बच्चा अकेला, गुमशुदा या अपने खानदान से बिछड़ा हुआ मिले तो फौरी तौर पर RPF या स्टेशन के अमले को इत्तला दें। मुसाफिर बच्चों के हिफाजत के लिए रेलवे हेल्पलाइन 139 पर भी राब्ता कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में विलेज डिफेंस गार्ड VDG का एक रुकन उस वक्त हलाक और एक शदीद तौर पर जख्मी हो गया जब आज उधमपुर जिले में एक आपसी झगड़े के बाद उनके साथ ही VDG के एक रुकन ने मुबैना तौर से उन पर फायरिंग कर दी। ये वाकया दूर दराज के पंचेरी इलाके में उस वक्त पेश आया जब VDG के मेम्बरान पुलिस चौकी जा रहे थे। जख्मी होने वाले शख्स को अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जबकि पुलिस की एक टीम ये मालूमात हासिल करने के फौरन बाद जाए वकूअ के लिए रवाना हो गई। मुलजिम को गिरफ्तार करने की कोशिश जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के बहुत से हिस्सों से एहतजाज की खबरें मिली हैं। मुजाहिरीन बुनियादी हकूक, मुबैना हलाकतों के लिए एहतसाब और शहरी आज़ादी पर मुबैना पाबंदियों को खत्म करने का मुतालबा कर रहे हैं। पाकिस्तान के इस मकबूजा इलाके में जारी गड़बड़ के दौरान पाकिस्तानी फोर्सेस के जरिए तकरीबन 100 अफराद हलाक किए जा चुके हैं।

0: ओडिशा को मॉनसून की दिक्कतों का मुसलसल सामना है, जहां मूसलाधार बारिश शिमाली अजला में बार बार सैलाब आने का बायस बन रहा है। इसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए हैं। एक महीने में चार मरतबा आने वाले सैलाब के बायस कई अजला बुरी तरह मुतासिर हैं, जबकि बालासोर, भद्रक, क्यूंझर और मयूरभंज शदीद तौर पर मुतासिर हुए हैं। मजीद बारिश होने की आईएमडी की पेशगोई के साथ ही चार जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 14 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। सैलाब की सूरत हाल पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पेश एक रिपोर्ट।
1: गुज़श्ता 30 दिनों में बार बार शदीद सैलाब आने के बाद बेतरनी, जलाका, सुवर्णरेखा, बुधबलंगा और सालंदी नदियां एक बार फिर तुगयानी पर हैं। दरियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जबकि बहुत से गांवों का राबता दूसरे इलाकों से मुनक़ते हो चुका है। मयूरभंज में बुधबलंगा दरिया के पानी की वजह से बेतनती ब्लॉक जेरे आब है। भुवनेश्वर से आकाशवाणी न्यूज़ के लिए प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल हफीज।
0: भारत के महकमे मौसमियात ने कल छत्तीसगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और उड़ीसा में आइंदा दो दिनों के लिए शदीद बारिश की पेशगोई की है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि दुनिया की गैर यकीनी की सूरत हाल में भारतीय मईशत तेज रफ्तारी के साथ फरोग पाती हुई अहम मईशत के तौर पर तरक्की कर रही है। यौम आजादी के मौके पर कौम से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अंत्योदय के जज्बे की रहनुमाई में इस बात को यकीनी बनाना मुल्क का अहद है कि तरक्की हर एक फर्द तक पहुंचे। हुकूमत तालिबे इल्मों के मुस्तकबिल को तहफ्फुज़ फराहम करने की गरज से पब्लिक इम्तहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक जामे इकदाम कर रही है। कल मुल्क 80वां यौम आज़ादी मनाएगा। वज़ीर आज़म ने मोदी तारीखी लाल किले से तकरीबात की क़यादत करेंगे। दिफाई फोर्सेज और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज के अमले के लिए 78 बहादुरी के अवार्ड्स का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।

0: Judges Amendment Bill 2026 was also passed, the Kerala Alteration of Name Bill 2026 and the Appropriation Number 3 Bill 2026 were the other bills that were passed in this monsoon session. And it was a pleasure speaking to you, Aditi, and to you, Sandeep, you know, on the significance and the impact on our nation, our country and our development journey of these important legislations that have come.
1: Thank you.
2: Thank you. Thank you so much.
0: Thank you so much.
3: You were listening to a discussion on key bills passed in monsoon session of Parliament. The participants were Sandeep Phukan and Aditi Tandon, senior journalist. Moderator was Sonu Sood. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
4: Current Affairs.
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम करंट अफेयर्स, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब सुनिए समाचार।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष रूप से प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है, ऐसी स्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।
6: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
5: राष्ट्रपति ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके आदर्शों के आधार पर ही वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व के सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है।
6: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
5: राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। अपने संबोधन के अंत में राष्ट्रपति ने महान तेलुगु साहित्यकार गुर्जाड़ा अप्पाराव के एक गीत का उल्लेख किया जिसका भाव है, अपने देश से प्रेम करो, सर्वहित बढ़ाओ, देश का अर्थ केवल मिट्टी नहीं बल्कि समस्त जन समुदाय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रेरणादायक और सुविचारपूर्ण भाषण दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू के विचार राष्ट्र की शक्ति और प्रत्येक भारतीय की आकांक्षाओं को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश देशवासियों को विकसित भारत के लिए नए दृढ़ संकल्प के साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल से पिछले 12 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र

0: को संबोधित करेंगे। दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवा की घोषणा की। ये सेवा सवेरे 4 बजे से दिन के 10 बजे तक प्रभावी रहेगा। यात्री सुबह 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशनों पर उतरकर लाल किला तक पहुंच सकते हैं। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्र वर्ष 1947 में देश के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले लोगों का स्मरण कर रहा है। रांची में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 21वें दिन भी जारी है। वरिष्ठ अधिकारी आज जयपाल सिंह मुड्डा स्टेडियम स्थित धरना स्थल पहुंचे और प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात कर कल प्रस्तावित तिरंगा यात्रा के संबंध में जानकारी ली। बड़ी संख्या में छात्रों की यात्रा में शामिल होने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की है। छात्रों ने कहा कि तिरंगा यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निकाली जाएगी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए आज प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा डिजिटल रुपया शुरू किया। इस अवसर पर खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार जरूरतमंदों को मुफ्त राशन वितरण पर 2,10,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर रही है। जल जीवन मिशन के 7 वर्ष पूरे हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को इसे शुरू किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। President Draupadi Murmu has said that Indian economy is the fastest growing major economy despite warfare and instability prevailing in several parts of the world. Addressing the nation on the eve of the 80th Independence Day this evening, the President highlighted that the growth rate of the Indian economy is expected to be more than twice the average global growth rate.
2: Even in such trying circumstances, our economy is moving ahead as the fastest growing major economy in the world. According to economic projections, the growth rate of the Indian economy is expected to be more than twice the average of global growth rate. Atmanirbhar Bharat Abhiyan has further strengthened the foundation of our economic progress and national security.
1: President Draupadi Murmu highlighted that making the country Naxal-free is a major achievement as for decades, Naxalism posed a serious challenge to the nation. She said today the areas once affected by Naxalism are filled with enthusiasm.
2: For decades, Naxalism posed a serious challenge to the nation. Making India Naxal-free is a major achievement. Today, enthusiasm prevails in the areas once affected by Naxalism. All-inclusive development is underway in these regions. A large number of players took part in the Bostar Olympics and many artists showcased their talent in Bostar Pandum, which were enjoyed by a large number of people.
1: The President said that students are the architects of India's future and emphasized that the government is undertaking comprehensive steps to reform public examinations.
2: Everyone must contribute through joint and concerted efforts to safeguard the present and future of our students. Public examinations become gateways to the opportunities for our students. The government is undertaking comprehensive steps to reform these examinations. The objectives of these reforms are to completely curb the use of unfair means in public examinations, make the examination system more transparent, more secure, and more trustworthy for the youth.
1: Speaking about the country's young population, the President said 65% of the country's population is below the age of 35, which is the most valuable asset. She said many of our youth are embracing the culture of job creation as they pursue the path of self-employment. President Murmu said India is moving ahead towards building a Viksit Bharat by the centenary year of independence in 2047. The nation will celebrate its 80th Independence Day tomorrow with Prime Minister Narendra Modi leading the celebrations from the iconic Red Fort in Delhi. As part of the celebrations, two Mi-17 helicopters of the Indian Air Force will shower flower petals at the venue. The unfurling of the national flag will be synchronized with the 21-gun salute. Following the showering of flower petals, Prime Minister Narendra Modi will address the nation from the ramparts of the Red Fort.

अभी आप सुन रहे थे माटी के रंग। आज माटी के रंग के अंतर्गत आपने सुने देशभक्ति गीत। अब आइए सुने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत रवि शंकर भट्ट द्वारा वायलिन वादन।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रंजन में अभी आप सुन रहे थे रविशंकर भट्ट का वायलन वादन। आज आपने सुना तिलांग राग जोग। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिसकर्मियों की कर्तव्यनिष्ठता तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष रूप से प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।
2: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
1: राष्ट्रपति ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके आदर्शों के आधार पर ही वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है।
2: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। अपने संबोधन के अंत में राष्ट्रपति ने महान तेलुगु साहित्यकार गुरजाडा अप्पा राव के एक गीत का उल्लेख किया, जिसका भाव है, अपने देश से प्रेम करो, सर्वहित बढ़ाओ, देश का अर्थ केवल मिट्टी नहीं बल्कि समस्त जन समुदाय है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देश को एक प्रेरणादायक और प्रभावशाली संदेश दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के संबोधन में युवाओं की उम्मीदों, महिलाओं की शक्ति और योगदान तथा देश की आर्थिक प्रगति का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश हर नागरिक से राष्ट्र निर्माण में पूर्ण समर्पण से योगदान का आह्वान करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल से पिछले 12 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवा की घोषणा की है। ये सेवा सवेरे 4 बजे से दिन के 10 बजे तक प्रभावी रहेगी। यात्री सुबह 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन पर उतरकर लाल किला तक पहुंच सकते हैं। आज विभाजन

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर, और प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम को लेकर आज मैं हूँ आपके साथ, तरन्नुम जहाँ। कबूल कीजिए प्यार भरा आदाब, नमस्कार। और साथियों, आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। कोई भी आपकी फरमाइश हो, जो आप के दिल में हो, वो दिल की बात हम तक ज़रूर पहुंचा सकते हैं। जी हाँ, आप हमें मेल भी कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं, अपने संदेश भी और अपने गीत की फरमाइश भी कर सकते हैं। और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत

जी हाँ, बहुत ही किस्मत से भी आप हमको मिले हैं और हम आपको कैसे छोड़ सकते हैं बिना आपके मैसेजेस को, बिना आपके नाम को शामिल किए। ये जो कार्यक्रम है, आपकी फरमाइश, ये कार्यक्रम ही अधूरा है। तो मैं उन लोगों के नाम ले लेती हूँ जो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। जी हाँ, भाटापारा छत्तीसगढ़ से हमें मेल किया है हिमकेश्वर साहू, करण साहू, राहुल साहू, चंपा साहू ने, और गांव फरासी हिसार से राजकुमार दूधी, प्रमोद दूधी, पुष्पेंद्र कुमार दूधी का मैसेज आया है। जिला नांदेड़ यताल महाराष्ट्र से मैसेज किया है शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल, शुभम प्रसाद, अर्णव जायसवाल, कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल, राखी तृप्ति जायसवाल ने। वडिंग खेड़ा पंजाब से मैसेज किया है मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा ने। आदर्श नगर मलौट पंजाब से हमें मेल किया है राज शर्मा, मीना, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, मैंडी शर्मा और सौरभ शर्मा ने, और साथ हैं शायना। अस्तुपुरा जिला मऊ से मैसेज आया है मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी का, और बहादुरगंज गाजीपुर से हमें मैसेज किया है आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद ने। और जहाँ पुरखलूस सलाम आपको भी, और बहुत अच्छी बात आपने लिख के हमें भेजी है कि स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और कुछ नशा तिरंगे की आन का है।

0: है कुछ नशा, मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। बहुत ही खूबसूरत बात है। और तिरंगे की जो शान है, वो शान अगर हर इंसान अपने दिल में महसूस करे तो भारत हमेशा यूं ही जगमगाता रहेगा, और हिंदुस्तान की जो शान है वो हमेशा ये ऊंची रहेगी। और कहते हैं कि इतने प्यार से जब आप हमें लिखकर ये संदेश भेजते हैं, कुछ ऐसा ही जज्बा आपके अगर दिल में भी हो और आपके लिखने भर से आपकी बात कई लोगों तक पहुंचे और ये एहसास, ये भाव जो है अपने हिंदुस्तान के लिए अगर सबके दिल में जगे तो क्या बात है। जी हाँ, ये खूबसूरत सा मैसेज किया है सतीश अनेजा और बिमला अनेजा ने चंडीगढ़ सिटी से। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीटी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप ने मैसेज किया है। और साथ ही कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज का हमें मैसेज आया है। गुन्नौर से आदिल कमर, तस्दीक अली, मुजफ्फर अली ने भी हमें मैसेज किया है। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश का मैसेज आया है। और कुम्हार हैड़ा सहारनपुर से मैसेज किया है सैयद मसरूर, साइना हसन, नाजिया इब्राहिम, इन्होंने भी हमें मैसेज किया और साथ में लिखा है मेरा भारत महान। जी हाँ, और एक और मैसेज है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव का, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव का भी इनका साथ में मैसेज है। और शास्त्री नगर बीड़ शहर से हमें मैसेज किया है किशन सपकाल ने, आशा सपकाल, सोनिया साईराज और विशाल सपकाल ने। पसंद पंचकुला सेक्टर 9 से हमें मैसेज किया है आशु चुग, अश्वनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे भाविक डींगरा ने। और पंचकुला सेक्टर 11 से अतुल शर्मा ने भी हमें मैसेज किया है। और फिल्म दिल जले के इस खूबसूरत से गीत की इन्होंने फरमाइश की है, तो इनकी ये फरमाइश जल्द ही पूरी करते हैं।
1: शाम, तुझे पता है तुम्हारे बाबूजी को कभी प्यार का पैगाम भेजना ही नहीं आया।
2: क्या कहती हो शाम?
1: तुम तो ऐसे न थे, तुम्हारा दिल तो हिंदुस्तानी था, प्यार था तुम्हें हिंदुस्तान से।
3: गिला मुझे हिंदुस्तान से नहीं, हिंदुस्तानियों से है। आज भी ये दिल चीर के देखो, मेरे मुल्क, मेरे देश का नक्शा अब भी छपा मिलेगा इस पर।

जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत ये गीत सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ में भी आपने सुना, और इसी खूबसूरती के साथ हम अपने श्रोताओं के नाम भी ले लेते हैं। जी हाँ, ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना गोंडाने, हीरामण शेंडे, किशोर धनाडे, हिम्मत राव शुंगारे, संजय कुमार गुरनाम, किशोर गुप्ता और दीपक कुराड़े का हमें मैसेज आया है। अनिल कोहले, छाया कोहले और प्रियांश कोहले का मैसेज आया है विजाराया लेआउट नागपुर से। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से हमें मैसेज किया है अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक ने। मेहरनगढ़ उमरखेड़ महाराष्ट्र से हमें मैसेज किया है अभिजीत गांवकर, राहिश, श्रीमती सरिता, प्रिंस एकांश।

जी हाँ, और फटाफट हम उन अपने श्रोताओं के नाम भी ले लेते हैं जिन्होंने हमें मैसेज किया है। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से मैसेज आया है। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगला बहन शाह और राजेंद्र जी शाह का। और मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ का भी मैसेज आया है और इनके साथ इनके सभी मित्रगण का भी मैसेज है साथ में। संजय डीकिया, संदीप मक्कड़, अनिल जैन, राधा नामदेव और दर्शन भाई। और कार्यक्रम में आप हमेशा बने रहते हैं और हमें मैसेज करते हैं, ये हमें बहुत ही ज़्यादा बात जो है दिल को बिल्कुल दिल में एक अलग ही एहसास पैदा करती है कि आप हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि सिर्फ हमें अपने दिल की बात कहते हैं, नाम लिखते हैं और कोई भी गीत की फरमाइश नहीं करते, लेकिन फिर भी हम अपने के आपके मन के मुताबिक और मिजाज के मुताबिक, अपनी ही सोच के मुताबिक कोई भी गाना प्ले करते हैं और आप उस गीत को भी बहुत पसंद करते हैं। जी हाँ, और मैसेज हमें किया है मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद, सुहेल, अनप और यशफ का हमें मैसेज आया है। और साथ ही मैसेज लिखने का जो सिलसिला है वो तो जारी रहेगा ही और बहुत कम वक्त रहता है कि हम आपके नाम को शामिल करें और गीत भी सुनवाएं। इसी के साथ कृष्णा पार्क दिल्ली से हमें मैसेज किया है सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना ने। और मैसेज जो आया है वो ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर से मैसेज आया है सिद्धार्थ गुंडा ने, अर्चना ताई गुंडा ने और हीरामण शेंडे जी का। तो चलिए आइए सुनते हैं अगला गीत। और हम सभी जानते हैं कि हमारे लिए कल का दिन कितना ख़ास है, कितना महत्व रखता है, और इसी महत्व को अगर हम महेंद्र कपूर की आवाज़ में सुनते हैं तो सबके दिल में जो है एक अलग सा जज्बा पैदा होता है अपने देश के लिए। चलिए हम भी इस जज्बे को महसूस करते हैं।

और साथ ही बता दें कि इस खूबसूरत गीत की जो फरमाइश आई है वो पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से हमें मैसेज किया है, और अनिल मोहन जी ने हमें मैसेज किया है उत्तम नगर दिल्ली से, बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश का हमें मैसेज आया है, पीटीआई संसद मार्ग से भी हमें मैसेज किया है अनिल जी ने, चिरमुरी कुरसिया कुरासिया कालरी से हमें मैसेज आया है इंद्रभान सिंह, अनुभव ऋषभ राम सहोदर जी का, और साथ है नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे, कालिंदरी लहरे का हमें मैसेज मिला है, और 15 अगस्त की शुभकामनाओं के साथ बहुत अच्छा मैसेज किया है, और ये मैसेज आया है रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू का, और

मैसेज आया है नजफगढ़ से, जय विहार से शाहरुख फारूक शबनम और शहनाज का। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि समय हमारे पास ऐसा रहता है कि बहुत कम समय में हमें ढेरों मैसेजेस के साथ कुछ खूबसूरत गीत भी आपको सुनवाने हैं, तो हम गीतों को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आइए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुनते हैं ये बहुत खूबसूरत।

0: इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर 12 बजने वाले हैं। इन मीटरों पर हमारे प्रसारण संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज 24/7 पर हमारे कार्यक्रम जारी रहेंगे। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिसकर्मियों की कर्तव्य निष्ठा तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष रूप से प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक देशों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।
2: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
1: राष्ट्रपति ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके आदर्शों के आधार पर ही वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है।
2: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देश को प्रेरणादायक और प्रभावशाली संदेश दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के संबोधन में युवाओं की उम्मीदों, महिलाओं की शक्ति और योगदान तथा देश की आर्थिक प्रगति का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश हर नागरिक से राष्ट्र निर्माण में पूरे समर्पण से योगदान का आह्वान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला की प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवा की घोषणा की है। सेवा सवेरे 4 बजे से शुरू होगी। यात्री जामा मस्जिद, लाल किला और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशनों पर उतरकर लाल किला तक पहुंच सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल से पिछले 12 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया। रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए लाइटर म्यूनिशन प्रणाली खरीदने के लिए टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और निबे प्राइवेट लिमिटेड के साथ 1,500 करोड़ रुपए से अधिक के समझौते पर कल हस्ताक्षर किए। ये समझौते कल नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में हुए। यह प्रणाली आर्टिलरी रेजिमेंट की क्षमता बढ़ाएगी और सेना की ऑपरेशनल क्षमता मजबूत करेगी। अमेरिका के कई राज्यों में 15 अगस्त 2026 को इंडिया डे के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। अमेरिकी नेताओं ने भारतीय अमेरिकी समुदाय के योगदान की भी सराहना की। सिएटल में इस साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर फेडरल रिजर्व बिल्डिंग पर भारतीय तिरंगा फहराया जाएगा। समारोह में अमेरिकी नेताओं के साथ भारतीय अमेरिकी समुदाय के प्रमुख लोग भी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आश्रम स्कूल के हॉस्टल में सांप के काटने से 3 आदिवासी छात्राओं की मौत के मामले में

जी हाँ, आज हम जानेंगे कि कैसे अमृतसर की गलियों से निकला एक आम लड़का हिंदी सिनेमा का सबसे कहते हैं कि हिंदी सिनेमा की बात करें तो सबसे बड़ी और बुलंद आवाज़ बना और भारतीय संगीत की दुनिया में इस बुलंद सितारे का नाम महेंद्र कपूर पड़ा। जी हाँ, अगर इतिहास में थोड़ा पीछे जाएं तो तारीख थी 9 जनवरी 1934 और शहर था पंजाब। इस ऐतिहासिक शहर अमृतसर में इनकी पैदाइश हुई और इसी शहर की पावन मिट्टी में इनका जन्म

हुआ था। इनका परिवार एक मध्यम वर्गीय पंजाबी परिवार था। पिता कपड़ा व्यापारी थे और चाहते थे कि बेटा भी पारिवारिक कारोबार में हाथ बटाए, लेकिन कुदरत ने इस बालक के भाग्य में कुछ और ही लिखा। बचपन से ही महेंद्र जी को गानों में बहुत दिलचस्पी थी और इन्हीं की वजह से इनको कई बार जो है कुछ सुनना भी पड़ता था, कई बार ताने भी सुनने पड़ते थे, लेकिन बस वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर गीत की धुन में लगे रहते। जब वो थोड़े बड़े हुए तो उनका परिवार मुंबई के माटुंगा इलाके में आकर बस गया। मुंबई की हवा भी कुछ ऐसी थी कि सिनेमा और संगीत की खुशबू इनके दिलो दिमाग में चढ़ती गई। जब युवा महेंद्र कपूर उस दौर के महान गायक मोहम्मद रफ़ी के पास आए, इनके संपर्क में आए, तब इनकी हर तान हर हरकत को कॉपी करने की कोशिश करते थे, मोहम्मद रफ़ी की ये कॉपी करने की कोशिश करते थे। लेकिन जब वो रफ़ी साहब को अपना गुरु, अपना मेंटोर, अपना आदर्श मान ही चुके थे, तो भला गीत से कैसे अछूते रह जाते। है ना ये खूबसूरत बात कि किसी ऐसे को गुरु बना लें कि उसी की कला को आदर्श मान लें, अपनी मंजिल बना लें। यही खासियत थी महेंद्र कपूर की। बहुत कुछ जानेंगे इस कार्यक्रम के दौरान। आइए सुनते हैं एक खूबसूरत गीत।

जी हाँ, महेंद्र कपूर जी तो रफ़ी की आवाज़ का जादू जो है अपनी आवाज़ में लाते ही थे। कहते हैं ना कि रफ़ी साहब को ही उन्होंने अपना गुरु बनाया, अपना मेंटोर बनाया, आदर्श मानते थे। लेकिन वो जानते थे कि सिर्फ नकल करने से, यानी कि रफ़ी साहब की नकल करने से काम नहीं चलेगा। इसलिए उन्होंने संगीत की, बाकायदा शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेनी शुरू की। उन्होंने पंडित हुस्नलाल भगत राम की जोड़ी से, उस्ताद अमानत अली खान से, पंडित तुलसीदास शर्मा से और उस्ताद मजीद खान जैसे संगीत के महारथियों से शास्त्रीय संगीत की सारे दाव पेच सीखे, सारी बारीकी सीखी। और फिर टर्निंग पॉइंट आया 1957 में। जी हाँ, 1957 में पूरे भारत स्तर पर एक बहुत बड़ा गायन मुकाबला आयोजित किया गया और इसका नाम था ऑल इंडिया मर्फी मेट्रो सिंगिंग कॉन्टेस्ट। जी हाँ, इस प्रतियोगिता में देश भर के करीब 25,000 से ज़्यादा महत्वाकांक्षी गायकों ने भाग लिया। अब सोचिए, 25,000 गायक और इस प्रतियोगिता के जज कौन थे? संगीतकार नौशाद, सी रामचंद्र, मदन मोहन, अनिल विश्वास और सी रामचंद्र साहब। जी हाँ, तब क्या था, इन्होंने 23 साल की उम्र में ही जजों के सामने अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा और तभी सभी 10-ों के 10 जज जो है वो दंग रह गए। और महेंद्र कपूर ने वो प्रतियोगिता जीती। इनाम के तौर पर उन्हें फिल्म नवरंग में गाने का मौका मिला और यही गाना आप अभी इस कार्यक्रम में सुन रहे थे। संगीतकार सी रामचंद्र ने उससे उनसे ये गीत गवाया था कि आधा है चंद्रमा रात आधी, और ये गाना हुआ सुपरहिट और एक नए स्टार सिंगर का जन्म हुआ फिल्मी दुनिया में। जी हाँ, बहुत कुछ जानेंगे हम कार्यक्रम के दौरान, और आइए सुनते हैं।

यहाँ इस नवरंग के गीत के बाद की बात करें तो हिंदी सिनेमा में इसके बाद एक ऐसी तिकड़ी बनी जिसने सफलता के कई कीर्तिमान रचे, और वो तिकड़ी थी फिल्म मेकर बी आर चोपड़ा, संगीतकार रवि और गायक महेंद्र कपूर की। जी हाँ, बी आर चोपड़ा साहब अपनी फिल्मों में गाने के सिचुएशन के लिए एक ऐसी आवाज़ चाहते थे जिसमें ड्रामा भी हो, गहराई भी हो, ऊंचे सुर में भी अगर इस गीत को गाया जाए तो आवाज़ ना फटे। और महेंद्र कपूर की आवाज़ जो है इस कसौटी पर 100% खरी उतरती थी। धूल का फूल, गुमराह, वक्त, हमराज, पति पत्नी और वो, धुंध, निकाह, लिस्ट इतनी लंबी है कि पूरा दिन बीत जाए। महेंद्र कपूर जी ने हमें फिल्मी दुनिया में बेहतरीन गाने दिए हैं। और फिल्म हमराज की बात करें तो बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने फिल्म हमराज में भी कई गाने गाए। तो आइए सुने महेंद्र कपूर की आवाज़ में ये गीत।

महेंद्र कपूर की बात करें तो उनसे जुड़े हुए कई किस्से हैं। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि मोहम्मद रफ़ी जो है इनके मेंटोर थे और इनको संगीत की दुनिया में इनको लाने में भी मोहम्मद रफ़ी का बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि जब भी कभी कोई संगीतकार गीत की फरमाइश लेकर रफ़ी साहब के पास आता और जब गाना ऊंचे स्वर का होता, ऊंचे सुरों का होता, तो फिर रफ़ी साहब खुद कहते थे कि ये गाना बहुत ऊंचे सुर का है और इसे मेरा शिष्य महेंद्र कपूर मुझसे भी ज़्यादा बेहतर गा सकता है। अब सोचिए अपने आप में ये बात कितने मायने रखती है कि एक गुरु ही अपने से ज़्यादा अच्छा गाने की बात कह रहा है अपने शिष्य की। जी हाँ, कुछ ऐसा ही रिश्ता था उस्ताद और इस शिष्य का। ऐसी मोहब्बत थी कि जहाँ रफ़ी साहब को लगता था कि ये गाना उनसे बेहतर महेंद्र कपूर साहब गा सकते हैं, तो ये जो है दिल की बात संगीतकारों तक ज़रूर वो अपने पहुँचाते थे और उस गीत को गाते थे महेंद्र कपूर जी। ऐसा ही एक और किस्सा है कि मनोज कुमार, जिसे हम भारत की आवाज़ कहते हैं, इसके पीछे भी महेंद्र कपूर की ही कोशिश रही है कि वो इतने दिल से और इतने जज्बे से गाते थे कि पर्दे पर जो अभिनय मनोज कुमार करते थे उसमें कहीं ना कहीं इनके गीतों का असर भी मनोज कुमार की बुलंदियों तक, उनको बुलंदियों पर पहुंचाने में महेंद्र कपूर की आवाज़ का बहुत बड़ा एक अहम रोल भी रहा है। कहते हैं कि उपकार में, पूरब पश्चिम, क्रांति, रोटी कपड़ा और मकान में जब महेंद्र कपूर ने अपनी आवाज़ दी तो असली आत्मा ही इस फिल्म की बनी महेंद्र कपूर की आवाज़ से। और ये बात मनोज कुमार भी मानते थे कि उनके देशभक्ति के जज्बे को अगर कोई आवाज़ पर आवाज़ देकर पर्दे पर उतार सकता है तो वो आवाज़ है सिर्फ महेंद्र कपूर की। और कहते हैं ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। ऐसे ही कई बातों के साथ कार्यक्रम में हम आपसे जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे। आइए सुनते हैं ये।

महेंद्र कपूर की देशभक्ति गीतों को सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे सीमा पर हर खड़ा कोई भी जवान जब इस देशभक्ति के गीतों को सुनता है तो देशभक्ति का जो जज्बा है वो अपने अंदर महसूस करता है। और एक और किस्सा इनका है कि जब धारावाहिक महाभारत में इन्होंने आवाज़ दी और वो आवाज़ थी शंखनाद आवाज़ की तरह। जी हाँ, 80 के दशक की बात करें तो इसके उत्तरार्ध में जब B.R. चोपड़ा ने दूरदर्शन पर महाभारत धारावाहिक शुरू किया तो उसकी शुरुआत का जो श्लोक कहे या फिर शीर्षक गीत कहे, अथ श्री महाभारत कथा, इस गीत को गाने के लिए उन्होंने बिना किसी झिझक के महेंद्र कपूर को चुना। हर रविवार सुबह जब महेंद्र कपूर की आवाज़ टीवी पर सुनाई देती तो ऐसे कड़कदार आवाज़ में ऐसा लगता था कि पूरे देश की जो सड़कें हैं वो सूनी हैं और जो बाजार है वो बिल्कुल बंद हैं, बिल्कुल सन्नाटा छा जाता था। लोग दूरदर्शन के आगे, टीवी के आगे अपने बैठ जाते थे और महाभारत जो है देखने की जो उत्सुकता थी वो महेंद्र कपूर की आवाज़ सुनकर कहीं भी किसी भी कोने में कोई भी कुछ भी काम करता हुआ इंसान है वो अपने टीवी के आगे आकर बैठ जाता था। कुछ ऐसा ही दम था महेंद्र कपूर की आवाज़ में। और इनके गीतों की बात करें तो साथियों, उनके उन्होंने सिर्फ हिंदी भाषा में ही नहीं मराठी में भी कई गीत गाए हैं, है ना, ये अलग सी बात। यहाँ महेंद्र कपूर जी की ये खासियत है कि वो हिंदी सिनेमा तक सीमित नहीं रहे बल्कि उन्होंने पंजाबी, मराठी, गुजराती, भोजपुरी और यहाँ तक कि बंगाली भाषा में भी कई सुपरहिट गाने गाए हैं। खासकर मराठी सिनेमा में भी प्रसिद्ध अभिनेता दादा कोंडके की फिल्मों की तो वो कहते हैं कि आधिकारिक आवाज़ बन गए थे। जिस तरह मनोज कुमार की आवाज़ आधिकारिक तौर पर महेंद्र कपूर की आवाज़ हो बनी थी, वैसे ही मराठी अभिनेता दादा कोंडके की फिल्मी बात करें, फिल्मों के गीतों की बात करें तो उनकी आवाज़ भी महेंद्र कपूर की आवाज़ ही होती थी। और उनका गाया मराठी गाना जैसे वर ढगाला लागली, ये भी आज महाराष्ट्र के हर तीज त्यौहार, हर बात पर, यानी कहते हैं गणेश उत्सव में भी ये गीत हमेशा बजता है और बड़े जोश से, बड़े उल्लास से इस गीत को लोग पसंद करते हैं, गाते हैं, नाचते हैं। और कहते हैं कि यहीं पे महेंद्र कपूर का जो गीतों का सिलसिला है वो कभी रुका ही नहीं, कभी थमा ही नहीं। ऐसा लगता था कि हर फिल्म में कहीं ना कहीं उनके गीत ज़रूर हमें सुनने को मिल जाते थे। और आवाज़ का जादू कहें या देशभक्ति का जज्बा कहें या मोहब्बत की वो संजीदगी कहें, गहराई कहें, इनको इनकी गायकी के लिए कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया। इनको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला 1968 में फिल्म उपकार के लिए, जो गीत इन्होंने गाया मेरे देश की धरती सोना उगले, उन्हें देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का जो नेशनल अवार्ड होता है वो मिला इस गीत के लिए। ये पद्मश्री से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। जी हाँ, संगीत और कला के क्षेत्र में इनके अब प्रतिम योगदान के लिए भारत सरकार ने 1972 में इन्हें देश के चौथे सबसे अच्छे नागरिक सम्मान पद्मश्री से अलंकृत किया और इन्हें कई फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। 1964 में चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं इस गाने के लिए भी मिला। 1968 में नीले गगन के तले फिल्म हमराज के लिए मिला। 1975 में और नहीं बस और नहीं, रोटी कपड़ा और मकान के लिए मिला। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें लता मंगेश

मंगेशकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो कहीं ना कहीं ये पुरस्कार इनकी अदायगी की, इनकी गायकी की, इनकी कह सकते हैं कि इन्होंने जो भावपूर्ण एक गायकी, एक अंदाज हमें फिल्मी दुनिया को दिया है, हम सब युवाओं के दिलों में प्यार भरा, मोहब्बत भरा, देशभक्ति का जज्बा भरा, इनके गीतों का कमाल कहिए, इनकी आवाज़ का जादू कहिए, या फिर इनकी कह सकते हैं कि इनकी जो गायकी है इसका अंदाज़ कहिए, ये कहीं ना कहीं हम हर भारतीयों के दिलों में देशभक्ति तो जगा के ही गया और साथ ही साथ बहुत मोहब्बत भी पैदा करके गया, है ना। कि आज हम कोई भी गीत इनकी आवाज़ में सुनते हैं तो हम बस महसूस करने लग जाते हैं उस भाव को। ये अपने आप में बहुत ही अनोखी बात है, बहुत प्यारी बात है कि जब भी कोई संगीतकार संगीत देता है, गीतकार गीत लिखता है और जो गाता है, जो आवाज़ देता है, आवाज़ का जादू, इन सब को मिलाकर जो भाव पैदा होता है वो एक गीत में कुछ इस तरह पैदा होता है कि वो गीत हमारे दिल पर राज करता है। जी हाँ, ऐसे ही हर गाने को, हर दिल को, हर जज्बे को महसूस नहीं किया जा सकता कि जब तक उसमें कोई ना कोई जादू हो।

जी हाँ, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना तो गाएगा ही, और गाना अगर महेंद्र कपूर का की आवाज़ में हो तो क्यों ना गाया। आइए सुनते हैं ये।

समय का चक्र चलता रहा और 27 सितंबर 1908 का वो दिन जब 74 वर्ष की आयु में मुंबई में कार्डियक अरेस्ट यानी कि दिल के दौरा पड़ने से ये बुलंद सितारा दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गया। महेंद्र कपूर जी आज शारीरिक रूप से हमारे बीच भले ही नहीं हैं, लेकिन जब भी सीमा पर खड़ा कोई भी जवान देशभक्ति का गीत सुनता है या गाता है, तो या फिर कहें कि कोई भी नीले गगन के तले बैठकर अपनी मोहब्बत का एक प्रेमी इजहार करता है, या फिर कभी हम महाभारत की बात को अपने दिल में महसूस करते हैं, याद करते हैं, तो कहीं ना कहीं महेंद्र कपूर की आवाज़ में महाभारत का ये श्लोक भी गूंज उठता है। इन सभी मोहब्बत भरी बातों में, देशभक्ति गीत में, हम यूँ कह सकते हैं कि महेंद्र कपूर की जो आवाज़ है वो हमारे बीच अमर होकर मुस्कुराती रहती है। जी हाँ, वक्त कह सकते हैं कि अब विदा लेने का भी है, और इस कार्यक्रम को यानी कि शुरू का जो सफ़रनामा कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए, महेंद्र कपूर की कई गीतों को इस कार्यक्रम में हमने शामिल किया, और इस कार्यक्रम को इस खूबसूरत से गीत के साथ यहीं संपन्न करते हैं। मुझे यानी तरन्नुम जहां को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाज़त।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष रूप से प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक देशों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है, ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।
1: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
0: राष्ट्रपति ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके आदर्शों के आधार पर ही वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है।
1: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता की शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देश को प्रेरणादायक और प्रभावशाली संदेश दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के संबोधन में युवाओं की उम्मीदों, महिलाओं की शक्ति और योगदान तथा देश की आर्थिक प्रगति का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश हर नागरिक से राष्ट्र निर्माण में पूरे समर्पण से योगदान का आह्वान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला की प्राचीर पर ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवा की घोषणा की है। सेवा सवेरे 4 बजे से शुरू होगी। यात्री जामा मस्जिद, लाल किला और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशनों पर उतरकर लाल किला तक पहुंच सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल से पिछले 12 वर्षों में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया। जल शक्ति मंत्रालय ने केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित परिवारों को मुआवजा और पुनर्वास नहीं मिलने के आरोपों को गलत और भ्रामक बताया। मंत्रालय ने कहा कि ज्यादातर पात्र परिवारों को पूरा मुआवजा और पुनर्वास लाभ मिल चुका है, जबकि कुछ मामलों में केवल प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताएं बाकी हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत केन नदी का अतिरिक्त पानी बेतवा नदी में पहुंचाया जाएगा। इससे बुंदेलखंड में सिंचाई, पेयजल और बिजली की सुविधा बढ़ेगी। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने नई दिल्ली में कौशल विकास पर भारत जापान हितधारक परामर्श का आयोजन किया। इस विचार विमर्श का उद्देश्य दोनों देशों के बीच कौशल विकास सहयोग और कार्यबल की आवाजाही बढ़ाना है। परामर्श के दौरान मुख्य रूप से भारत जापान मानव संसाधन आदान प्रदान और सहयोग कार्य योजना को आगे बढ़ाने पर विचार हुआ। जापान में रोजगार अवसरों के लिए भारतीय युवाओं को तैयार करने और दोनों देशों की संस्थाओं के बीच निकटतम समन्वय पर भी विचार हुआ। भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे से होगा। भारतीय टीम अपना 600वां टेस्ट मैच खेलने उतरेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत बहार। नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक के इस कार्यक्रम में आइए सुने कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिसकर्मियों की कर्तव्य निष्ठा तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष रूप से प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है।

0: रही है।
1: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
0: राष्ट्रपति ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके आदर्शों के आधार पर ही वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है।
1: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देश को प्रेरणादायक और प्रभावशाली संदेश दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के संबोधन में युवाओं की उम्मीदों, महिलाओं की शक्ति और योगदान तथा देश की आर्थिक प्रगति का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश हर नागरिक से राष्ट्र निर्माण में पूरे समर्पण से योगदान का आह्वान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला की प्राचीर पर ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवा की घोषणा की है। सेवा सवेरे 4 बजे से शुरू होगी। यात्री जामा मस्जिद, लाल किला और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशनों पर उतरकर लाल किला तक पहुंच सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल से पिछले 12 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कई क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी मौलिक अधिकारों, कथित हत्याओं के लिए जवाबदेही और नागरिक स्वतंत्रता पर लगाए गए कथित प्रतिबंधों को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। क्षेत्र में जारी अशांति के दौरान पाकिस्तानी सेना ने 100 लोगों की हत्या कर दी है। प्रदर्शनकारियों ने अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने पहले के प्रदर्शनों में मारे गए लोगों के लिए जवाबदेही की भी मांग की। उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर से पाकिस्तानी सेना की वापसी की भी मांग की। सर्वोच्च न्यायालय ने कल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और मंत्री पी नारायण के खिलाफ अमरावती विकास योजना में कथित अनियमितताओं से संबंधित आपराधिक मामलों को रद्द करने के आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले में आपराधिक कार्यवाही एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी के कहने पर शुरू की गई थी और कोई भी किसान शिकायत लेकर आगे नहीं आया। पीठ ने कहा कि राजनीतिक लड़ाइयां अदालतों में नहीं लड़ी जानी चाहिए। भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज गॉल स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार 10 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम अपना 600वां टेस्ट मैच खेलने उतरेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। President Draupadi Murmu has said that Indian economy is the fastest growing major economy despite warfare and instability prevailing in several parts of the world. Addressing the nation on the eve of the 80th Independence Day yesterday, the President highlighted that the growth rate of the Indian economy is expected to be more than twice the average global growth rate.
1: Even in such trying circumstances, our economy is moving ahead as the fastest growing major economy in the world.

0: और इसी गीत के साथ इस कार्यक्रम से मुझे यानी तरन्नुम जहां को दीजिए इजाजत। अब समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष रूप से प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है, ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।
2: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
1: राष्ट्रपति ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके आदर्शों के आधार पर ही वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया। राष्ट्रपति ने कहा

0: कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है।
1: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता की शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देश को प्रेरणादायक और प्रभावशाली संदेश दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के संबोधन में युवाओं की उम्मीदों, महिलाओं की शक्ति और योगदान तथा देश की आर्थिक प्रगति का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश हर नागरिक से राष्ट्र निर्माण में पूरे समर्पण से योगदान करने का आह्वान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला की प्राचीर पर ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। स्वतंत्रता दिवस से पहले देशभर में हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया गया। देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और तिरंगे के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने के लिए रैलियां, जागरूकता कार्यक्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन किए गए। इस कार्यक्रम को अपार जन समर्थन मिला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल से पिछले 12 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कई क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी मौलिक अधिकारों, हत्याओं के लिए जवाबदेही और नागरिक स्वतंत्रता पर लगाए गए प्रतिबंधों को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। क्षेत्र में जारी अशांति के दौरान पाकिस्तानी सेना ने 100 लोगों की हत्या कर दी है। प्रदर्शनकारियों ने पहले के प्रदर्शनों में मारे गए लोगों के लिए जवाबदेही की भी मांग की। उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से पाकिस्तानी सेना की वापसी की भी मांग की। सरकार ने टीवी चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा हटाने का फैसला किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि यह फैसला केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना जारी होने के बाद लागू होगा। मंत्रालय के अनुसार टीवी प्रसारण में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि के नियमों की समीक्षा की गई है। वर्ष 2006 में जब यह सीमा लागू की गई थी तब देश में 65 टीवी चैनल थे, अब इनकी संख्या 900 से ज्यादा हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में डिजिटल बदलाव के बाद दर्शकों के पास अब चैनलों के ज्यादा विकल्प उपलब्ध हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित परिवारों को मुआवजा पुनर्वास नहीं मिलने के आरोपों को गलत और भ्रामक बताया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. President Draupadi Murmu has said that Indian economy is the fastest growing major economy despite warfare and instability prevailing in several parts of the world. Addressing the nation on the eve of the 80th Independence Day yesterday, the President highlighted that the growth rate of the Indian economy is expected to be more than twice the average global growth rate.
3: Even in such trying circumstances, our economy is moving ahead as the fastest growing major economy in the world. According to economic projections, the growth rate of the Indian economy is expected to be more than twice the average of global growth rate. Atmanirbhar Bharat Abhijan has further strengthened the foundation of our economic progress and national security.
2: President Draupadi Murmu highlighted that making the country Naxal-free is a major achievement, as for decades, Naxalism posed a serious challenge to the nation. She said, yesterday the areas once affected by Naxalism are filled with enthusiasm.
3: For decades, Naxalism posed a serious challenge to the nation. Making India Naxal-free is a major achievement. Today, enthusiasm prevails in the areas once affected by Naxalism. All-inclusive development is underway in these regions. A large number of players took part in the Bostar Olympics, and many artists showcased their talent in Bostar Pandum, which were enjoyed by a large number of people.
2: The president said that the students are the architects of India's future and emphasized that the government is undertaking comprehensive steps to reform public examinations.
3: Everyone must contribute through joint and concerted efforts to safeguard the present and future of our students. Public examinations become gateways to the opportunities for our students. The government is undertaking comprehensive steps to reform these examinations. The objectives of these reforms are to completely curb the use of unfair means in public examinations, make the examination system more transparent, more secure, and more trustworthy for the youth.
2: Speaking about the country's young population, the president said 65% of the country's population is below the age of 35, which is the most valuable asset. She said many of our youth are embracing the culture of job creation as they pursue the path of self-employment. President Murmu said India is moving ahead towards building a Viksit Bharat by the centenary year of independence in 2047. Vice President C.P. Radhakrishnan has said that the President has given a powerful and inspiring message on the eve of Independence Day, reflecting the aspirations of a confident, growing and vibrant India. In a social media post, Mr. Radhakrishnan said that the President's address offered a broad vision of a stronger and more prosperous nation by touching upon the hopes of youth, strength and contribution of women and the country's economic progress. The Vice President said that the President's words served as a call to every citizen to contribute wholeheartedly to nation building. The nation will celebrate its 80th Independence Day today, with Prime Minister Narendra Modi leading the celebrations from the iconic Red Fort in Delhi. As part of the celebrations, two Mi-17 helicopters of the Indian Air Force will shower flower petals at the venue. The unfurling of the national flag will be synchronized with the 21-gun salute. Following the showering of flower petals, Prime Minister Narendra Modi will address the nation from the ramparts of the Red Fort. Services of the Delhi Metro will commence from all terminal stations across its network at 4 a.m. today on Independence Day to facilitate the movement of special guests, invitees and the general public. The services will operate at a 30-minute frequency on all lines until the commencement of regular revenue services as per the scheduled timetable for the day. And the government has decided to remove the 12-minute advertisement duration cap for television channels. Information and Broadcasting Ministry said in a statement that the decision shall come into effect from the date of notification of the amendment in the Cable Television Network Rules 1994. And that is the end of this news bulletin.
4: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। समय हुआ है रात्रि के 3:10 और ये समय है कार्यक्रम गजलों और गीतों का, जिसमें आज आपके साथ मैं हूं मनोज। श्रोताओं, आइए शुरुआत करते हैं पंकज उदास साहब की इस प्यारी सी गजल के साथ।

श्रोताओं, ये प्यारी सी गजल अभी आपने सुनी पंकज उदास साहब की आवाज में। आइए सुनते हैं एक और गजल उन्हीं की प्यारी सी आवाज में।

श्रोताओं, जगजीत सिंह साहब गजलों की दुनिया में वो जाना माना नाम है जिनके बिना गजलें आज भी अधूरी मानी जाती हैं। हालांकि आज वो हमारे बीच में मौजूद नहीं है, लेकिन अपनी गजलों और यादों के जरिए वो हमेशा हमारे जहन में मौजूद रहेंगे। आइए सुनते हैं उन्हीं की आवाज़ में उनकी ये मशहूर गजल।

श्रोताओं, गजलों की दुनिया में गजल गायिका चित्रा सिंह का भी एक अलग ही मुकाम है। आइए सुनते हैं उनकी प्यारी सी आवाज में ये गजल।

श्रोताओं, इसी के साथ गजलों और गीतों के कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं ये अंतिम गजल भूपेंद्र साहब की ही आवाज में।

0: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। सुबह के 4 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

0: इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के 4:20 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 24वीं तिथि, तदनुसार 15 अगस्त सन 2026। सुबह के चार बजकर चौवन मिनट और 7 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: है। अब से थोड़ी देर में ठीक 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 5:05 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार। 5:10 पर समय होगा कार्यक्रम आओ योग करें का। आओ योग करें कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे योग, उज्जायी प्राणायाम और वृक्षासन। 5:20 पर आप सुन सकते हैं देशभक्ति गीत। 5:30 पर समय होगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी का। सुबह ठीक 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार। 6:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 6:40 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम चिंतन और 6:45 पर आप सुनेंगे रामचरितमानस। रामचरितमानस में आज आप सुनेंगे अयोध्या कांड का भाग 18। 6:55 पर आप संस्कृत समाचार सुन सकेंगे। सुबह 7 से 9 बजे का समय होगा स्वतंत्रता दिवस 2026 समारोह का। और सुबह 8 बजे आप सुनेंगे हिंदी समाचार। 8:15 पर आप अंग्रेजी समाचार सुन सकते हैं। 8:30 पर आप उर्दू समाचार सुनेंगे। सुबह 8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका। 9:15 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम धरती आकाश। सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक और 10 बजे आप सुन सकते हैं हिंदी समाचार। 10:05 पर आप अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे और 10:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के 5 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ ही वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा करेंगे। ध्वजारोहण के साथ 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इसके बाद प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से करीब 5,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के स्वयंसेवक, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की महिला उद्यमी, माय भारत के उत्कृष्ट स्वयंसेवक, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थी और पीएम स्वनिधि योजना से जुड़े स्ट्रीट वेंडर शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की। उन्होंने तीनों सेना के जवानों और पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष रूप से प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।
2: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है।
2: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा

0: में सुधार और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति के संबोधन को प्रेरणादायक और प्रभावशाली बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के संबोधन में युवाओं की उम्मीदों, महिलाओं की शक्ति और योगदान तथा देश की आर्थिक प्रगति का उल्लेख किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रेरणादायक और सुविचार पूर्ण भाषण दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश देशवासियों को विकसित भारत के लिए नए दृढ़ संकल्प के साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल से पिछले 12 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी। इनमें से 13 पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए हैं। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायु सेना मेडल शामिल हैं। अमेरिका के कई राज्यों में 15 अगस्त 2026 को इंडिया डे के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। अमेरिकी नेताओं ने भारतीय अमेरिकी समुदाय के योगदान की भी सराहना की। सिएटल में इस साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर फेडरल रिजर्व बिल्डिंग पर भारतीय तिरंगा फहराया गया। समारोह में अमेरिकी नेताओं के साथ भारतीय अमेरिकी समुदाय के प्रमुख लोग भी शामिल होंगे। दिल्ली मेट्रो की विस्तारित सेवा आज सुबह 4 बजे से शुरू हो गई है। ये व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच सुबह 10 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. President Draupadi Murmu has said that Indian economy is the fastest growing major economy despite warfare and instability prevailing in several parts of the world. Addressing the nation on the eve of the 80th Independence Day yesterday, the President highlighted that the growth rate of the Indian economy is expected to be more than twice the average global growth rate.
2: Even in such trying circumstances, our economy is moving ahead as the fastest growing major economy in the world. According to economic projections, the growth rate of the Indian economy is expected to be more than twice the average of global growth rate. Atmanirbhar Bharat Abhiyan has further strengthened the foundation of our economic progress and national security.
1: President Draupadi Murmu highlighted that making the country Naxal-free is a major achievement, as for decades, Naxalism posed a serious challenge to the nation. She said, yesterday the areas once affected by Naxalism are filled with enthusiasm today.
2: For decades, Naxalism posed a serious challenge to the nation. Making India Naxal-free is a major achievement. Today, enthusiasm prevails in the areas once affected by Naxalism. All-inclusive development is underway in these regions. A large number of players took part in the Bostar Olympics and many artists showcased their talent in Bostar Pandum, which were enjoyed by a large number of people.
1: The President said that students are the architects of India's future and emphasized that the government is undertaking comprehensive steps to reform public examinations.
2: Everyone must contribute through joint and concerted efforts to safeguard the present and future of our students. Public examinations become gateways to the opportunities for our students. The government is undertaking comprehensive steps to reform these examinations. The objectives of these reforms are to completely curb the use of unfair means in public examinations, make the examination system more transparent, more secure, and more trustworthy. For the youth.
1: Speaking about the country's young population, the President said, 65% of the country's population

नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी शौखन। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। दोस्तों, तनाव ग्रस्त जीवन शैली से थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम आजकल बहुत ही कॉमन हो गई है। आधुनिक जीवन में व्यक्ति अनेक चिंताओं से ग्रस्त है, जैसे परिवार की चिंताएं, पर्सनल प्रॉब्लम्स या ऑफिस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो आज हम के सेशन में हम देखेंगे कि थायराइड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, उससे आप कैसे निजात पा सकते हैं। थायराइड हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है, जिसका काम होता है हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण करना, और साथ ही साथ यह ग्रंथि हमारे हृदय, मांसपेशियों और कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रण करती है। परंतु जब ये ग्रंथि सही रूप से काम नहीं कर पाती, तो हमारे शरीर में हाइपर या हाइपो थायरॉइडिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, और उससे उत्पन्न होने वाली कॉन्सिक्वेंसेस को हमें फेस करना पड़ता है। देखा गया है कि योग अभ्यास में उज्जयी प्राणायाम थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करने में काफी सहायक है। तो आज हम सीखेंगे कि उज्जयी प्राणायाम किस प्रकार किया जाता है। तो इसकी अभ्यास विधि के लिए आप सबसे पहले किसी भी सुखद पूर्वक आसन में बैठ जाएं, अपने मुंह को बंद कर लें, पूरे क्षेत्र को गले के पिछले हिस्से पर संकुचित कर लें, दोनों नासिकाओं से धीरे धीरे एक ही लय में तब तक श्वास भरते रहें जब तक आप गले से लेकर हृदय तक उसको महसूस ना करें। श्वास लेने के क्रम में कंठ द्वार यानी थ्रोट रीजन के आंशिक रूप से बंद होने के कारण एक विशिष्ट ध्वनि उत्पन्न होती है। यह ध्वनि हल्की और समान होनी चाहिए, साथ ही साथ इसे लगातार करते रहना चाहिए। श्वास लेते समय सीने को फुलाएं। कुछ समय पश्चात धीरे धीरे दोनों नासिका छिद्र से श्वास को बाहर निकालें। यह इस अभ्यास का एक चक्र है। इसी प्रकार एक सेशन में आप कम से कम 4 से 5 बार उज्जयी प्राणायाम अवश्य करें, तभी आप इसका परिपूर्ण रूप से लाभ उठा पाएंगे। उज्जयी प्राणायाम आपके थायराइड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, उससे काफी निजात पा सकते हैं। प्राणायाम के साथ साथ आप सर्वांगासन को भी कर सकते हैं, यह भी थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए काफी हद तक लाभकारी है। तो इस सेशन में आज हमने सीखा कि किस प्रकार आप थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए उज्जयी प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप योग अभ्यास करें, तो कुछ बातों का अवश्य ध्यान दें। कोई भी आप योग अभ्यास करें, उसे सहज पूर्वक करें, पूरी एकाग्रता के साथ करें, तभी आप उसका लाभ उठा पाएंगे और अपने जीवन को खुशहाल बना पाएंगे। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। नमस्कार।

आप सभी को सादर प्रणाम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमानी शौखन, आपकी योग विशेषज्ञ। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग अभ्यास बताऊंगी जो बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है। केवल बच्चों के लिए ही नहीं, परंतु हर वर्ग के लोगों के लिए यह आसन जरूरी है। आज हम करेंगे वृक्षासन। वृक्ष शब्द का अर्थ है पेड़। इस आसन के अभ्यास की अंतिम अवस्था में हमारा शरीर एक पेड़ का आकार ले लेता है, यानी बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता है। इसीलिए इस आसन को वृक्षासन कहते हैं। आजकल लैक ऑफ कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती जा रही है, यानी किसी भी कार्य में ध्यान ना लगना। इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई भी काम लगन से तो करना चाहते हैं, पर लैक ऑफ कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता की कमी से उस कार्य को परिपूर्ण रूप से नहीं कर पाते और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी हमें आगे फेस करना पड़ता है। वृक्षासन का अभ्यास करते समय सर्वप्रथम दोनों पैरों को एक दूसरे से 2 इंच की दूरी पर रखकर खड़े हो जाएं। आंखों के सामने किसी भी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए दाएं पैर को मोड़कर उसके पंजे को बाएं पैर की अंदरूनी जांग पर रखें। श्वास को शरीर के अंदर लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाकर दोनों हथेलियों को जोड़ें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास करें और सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए हाथों और दाएं पैर को मूल अवस्था में वापस ले आएं। शरीर को शिथिल करें और इसी आसन का अभ्यास पुनः बाएं पैर से भी

दोहराए। दोस्तों, यह आसन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। यदि आप इस आसन को 3 से 4 बार एक सेशन में दोहराते हैं तो यह धीरे धीरे आपकी एकाग्रता को बढ़ाने में सहायक है और शरीर को संतुलित बनाता है, सहनशीलता और जागरूकता भी बढ़ाता है। तो आज हमने सीखा कि किस प्रकार आप अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए वृक्षासन का अभ्यास कर सकते हैं। परंतु ध्यान रहे, यदि आपको कोई आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या मोटापा बहुत ज्यादा है, चक्कर आते हैं, तो इस आसन का अभ्यास ना करें। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। धन्यवाद।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के 5:20 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। समय हुआ है सुबह के 5:30। आइए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी।